मेल मलाया, तिन्ही किया वजोग जिन उपाया, मूर्ख भोगे भोग दुख सबाया, सुख हो उठे रोग पाप कमाया, हरख हो सोग वजोग उपाय खपाया, मूर्ख गणत गणाए झगड़ा पाया, सतगुर हाथ नबेड़ झगड़ चुकाया, करता करे सो होग ना चले चलाया। श्लोक महला पहला, कूड़ बोल मुरदार खाई, अवरी नो समझावन जाई, मुठा आप महाए साथ है, नानक ऐसा आगू जापे। महला चौथा, जिसदे अंदर सच है, सो सच्चा नाम मुख सच अलाई, ओहो हर मार्ग आप चलदा, होर नानो हर मार्ग पाई, जे अगे तीर्थ होए ता मल लह, छप्पड़ नातै सगवी मल लाई, तीर्थ पूरा सतगुरु जो अन दिन हर हर नाम त्याई, ओहो आप छुट्टा कुटंब सियो, दे हर हर नाम सब सृष्ट छडाई, जन नानक तिस बलिहार ने, जो आप जपै अवरा नाम जपाई। पौड़ी, एक कंद मूल चुन खाहे वन खंड वासा, एक भगवा वेस कर फिर है जोगी सन्यासा, अंदर तृष्णा बहुत साधन भोजन की आसा, बिरथा जन्म गवाई ना गिरही ना उदासा, जम काल सिरहो ना उतरे त्रेविद मनसा, गुरमति काल ना आवे नेड़े जा होवै दासन दासा, सच्चा शब्द सच मन घर ही माहे उदासा, नानक सतगुर सेवन आपना से आसा ते निरासा। श्लोक महला पहला, जे रत लगे कपड़े जामा होए पलीत, जो रत पीवे है मानसा तिन क्यों निर्मल चीत, नानक नाहो खुदाई का दिल हच्छै मुख ले हो, अवर दवाजे दुनी के झूठे अमल करे। महला पहला, जाहो नाही ता क्या आखा, किहो नाही क्या हुआ, कीता करना कहया कथना, भरिया पर धुआ, आप ना बुझा लोक बुझाई, ऐसा आगू हुआ, नानक अंधा हुए कै दसेरा है, सब समहाए साथ है, अग्गे गया मुहे मुह पाए, सो ऐसा।

जिस लाभ लोभ अहंकारा नाव पढ़िया नाव बुझिया गुरमति विचारा गुरमति नाम धन खटिया भगति परे भंडारा निर्मल नाम मनिया गर सच्चै सचियारा जिस

काम कामनी मोह तजै ता अंजन माही निरंजन पावे तज मान अभमान प्रीत सुत दारा तज प्यास आस राम निवलावे नानक साचा मन वसै साच शब्द हर नाम समावे पौड़ी राजे रैयत सिकदार कोई ना रहसियो हट पटन बाजार हुक्मी टहसियो पक्के बंक द्वार मूर्ख जाने अपने दर्भ भरे भंडार रीते एक खाने ताजी रथ तुखार हाथी पाखरे बाग मिलख घरवार किते से अपने तंबू पलंग निवार सराय के लालती नानक सच दातार सनाखत कुदरती।

महला पहला पार अठारह मेवा हुए गरुड़ा हुए सुआऊ चांद सूर्य दोए फिर दे रखी है निश्चल होए थाव पी तू है सालाहना आखण लह ना चाऊ महला पहला जे देह दुख लाई है पाप ग्रह दोए राह रात पीने राजे सिरे ऊपर रखी है इवें जापै पाऊ पी तू है सालाहना आखण लह ना चाऊ महला पहला अग्गी पाला कपड़ होवे खाना होवे वाऊ सुरगै दियां मोहनियां इस्त्रियां होवन नानक सबो जाऊ पी तू है सालाहना आखण लह ना चाऊ पवड़ी बद फैली गै बाना खसम ना जाने सो कहिए देवाना आप ना पछाने कलह बुरी संसार वादे खपिए बिनना वै बेकार परमी पचिए राह दोए एक जाने सोई सिजसी कुफर गो कफराने पया धजसी सब दुनिया सुबहान।

क्या लश्कर क्या नेब खवासी आवै महली वास नानक सच्चे नाम वेण सबे टोल वडास पवड़ी जाति दे क्या हाथ सच परखी है मोहरा हुए हाथ

सच्चा शब्द विचार सच समाणिया मनमुख सदा कूड़ियार परम फलाणिया विस्ता अंदर वास साधना जानिया बिनमावे दुख पाए आवन जानिया नानक पारख आप जिन खोटा खरा पछाणिया। श्लोक महला पहला सिंहा बाजा चरगा।

खाले थली करे असगा कीड़ा थाप दे पातशाही लश्कर करे स्वाह जेते जी जीवह लै साहा जीवाले ताके असाहा नानक ज्यों ज्यों सच्चे भावे त्यों त्यों दे ग्राह महला पहला एक मास हारी एक त्रिण खाहे एक ना शक्ति अमृत पाहे एक मिटिया मह मिटिया खाए एक पौन समारी पौन समार एक निरंकारी नाम आधार

सारे कर्म कमाई है, गुरमति आप गवाए नाम त्याई है, दूजी कार लाग जन्म गवाई है, बिन नावे सब विस पेंजे खाई है, सच्चा शब्द सलाहे सच समाई है, बिन सतगुर सेवे नाही सुख निवास, फिर आई है, दुनिया खोटी रास कूड़ कमाई है, नानक सच खरा सलाहे पत स्यों जाई है, सलोक महला पहला, तुद भावे ता वावे गावे, तुद भावे जल नावे, जा तुद भावे

सिख कहावह, जां तुद भावै ता होवह राजे, रस कस बहुत कमावह, जां तुद भावै तेग भगावह, सिर मुंडी कट जावह, जां तुद भावै जाहे दसंतर, सुन गल्लां घर आवह, जां तुद भावै नाहिर चावह, तुद पाणी तू भावह, नानक एक कह बेनंती, होर सगले कूड़ कमावह। महला पहला, जां तू वड्डा सब वड्याईया, चंगा चंगा होई, जां तू सच्चा ता सब को सच्चा, कूड़ा कोई ना कोई, आखण वेखण बोलण चलण, जीवन मरना तात, हुक्म साज हुक्मै विच रखै, नानक सच्चा आप पौड़ी, सतगुर सेवन संग परम चुकाई है, सतगुर आखै कार सो कार कमाई है, सतगुर हुए दयाल ता नाम त्याई है, लाहा भगत सो

तोह किन बेद गत होई महला तीजा कल कीरत प्रगट चानन संसार गुरमुख कोई उतरै पार जिसनो नदर करे तिस देवै नानक गुरमुख रतन सो लेवै पौड़ी भगतां तै संसारियां जोड़ कदे ना आया करता आप अभुल है ना भुलै किसै दा भुलाया भगत आपे मेलियन जिन्नी सचो सच कमाया संसारी आप खुआयन जिन्नी कूड़ बोल बोल बिख खाया चलन सार ना जाननी काम क्रोध विस वधाया भगत करन हर चाकरी जिन्नी अन दिन नाम त्याया दासन दास होए कै जिन्नी विचों आप गवाया ओना खसमै कै दर मुख उजले सच्चै शब्द सुहाया सलोक महला पहला सबाही सलाह जिन्नी त्याया इक मन से पूरे साह वक्त है उपर लड़ मोए दूजे बहुते राह मन किया मती खिंडियां बहुत पए असगाह गोते खाहे ना निकलह तीजे मुही ग्राह भुख तिखा दोए पौंकियां खादा हुए स्वाह पी खाने स्यों दोस्ती।

पूरा जे करे कटे नाही तोल पौड़ी जा तू ता क्या होर मैं सच सुनाई है मुठी तंदे चोर महल ना पाई है इन चित कठोर सेव गवाई है जित घट सच ना पाई सो पन कढ़ाई है क्यों कर पूरे वट तोल तुलाई है कोई न आखै घट हौमै जाई है लइन खरे परख दर भी नाई है सौदा इक तहट पूरे गुर पाई है सलोक महला दूजा अठी पैरी अठ खंड नावा खंड शरीर इस विच नौ निद नाम एक पाल है गुणी गहीर कर्म

लिखवाइए, सच्चा शब्द निशान ठाक ना पाइए, सच सुन बुझ बखान महल बुलाइए, सलूक महला पहला पहरा अगन हिवै कर बाधा, भोजन सार कराई सगले दुख पानी कर पीवा, धरती हाक चलाई तरत राजी अंबर तोली, पिछे टंक चढ़ाई एवड बद्दा मावा नाही, सब सह नत चलाई ईता तान हुआ मन अंदर, करी पे आख कराई जेवड साहेब तेवड दाती, दे दे करे रजाई नानक नदर करे जिसे ऊपर,

गुण गाहक एक वन भुखियां भुख ना उतरै गली भुख ना जाए नानक भुखा ता रजै जा गुण कह गुणी समाए पौड़ी बिन सच्चे सब कूड़ कूड़ कमाई है बिन सच्चे कूड़ियार बन चलाई है बिन सच्चे तन शार शार रलाई है बिन सच्चे सब

ठगियो ठग आइए जाइए तन मह तृष्णा अग शब्द बुझाइए। सलोक महला पहला नानक गुर संतोख रुख धर्म फुल फल ज्ञान रस रसिया हरिया सदा पक्के कर्म ध्यान पत के।

संसार किन समझाई है, सच ना धरे प्यार तंदै ताई है। काल बुरा खै काल सिर दुनियाई है, हुक्मी सिर जंदार मारे दाई है। आपे दे प्यार मन वसाई है, मोहत ना चसा विलम भरिए पाई है। गुर प्रसादी बुज सच समाई है, सलोक महला पहला तुम्मी तुम्मा विस। आकत तूरा निम फल मन मुख वसह तिस, जिस तू चेतना आवही नानक कहिए किस। हंडन कर्मा बाहरी महला पहला, मत पंखे रू किरत साथ। कब उत्तम कब नीच, कब चंदन कब अक डाल, कब उच्ची परीत। नानक हुक्म चलाई है।

पावना, खट दर्शन कै भीख किसे सच समावना, सच्चा पुरख अलख शब्द सुहावना, मन्ने नाउ बसंख दरगाह पावना, खालक कौ आदेश ढाडी जावना, नानक जुग जुग एक मन वसावना, सलोक महला दूजा मंत्री होए अठूहिया, नागी लगे जाए आपण हथी आपण, देखू चाया पे लाए हुक्म पया तुर खसम का, अती हूं टका खाए गुरमुख स्यों मनमुख अड़े, डुबे हक न्याय दुहां सिरियां आपे खसम, वेखे कर व्यपाय नानक एवै जानिए, सब किस सहर जाय महला दूजा, नानक परखे

डारिया करण भगत दिन रात न रहनी वारिया महला मांजनवास शब्द सवारिया सच कहन अरदास सेवे चारिया सोहन खसमै पास हुक्म सिधारिया सखी कहन अरदास मनो प्यारिया बिन नावै त्रिगवास फिट सो जीविया शब्द सवारी आस अमृत पीविया।

पौड़ी खसमै के दरबार ढाडी वसिया सच्चा खसम कलान कमल विगसिया खसम पूरा पाए मनो रहस्या दुश्मन कड्डे मार सज्जन सरस्या सच्चा सतगुरु सेवन सच्चा मार्ग दस्या सच्चा शब्द विचार काल वधौसिया ढाडी कथे अकथ शब्द सवारिया नानक गुण गहरास

कित के होम जग सद पूजा पय कार्य सो है गुरु समुंद नदी सब सिखी नाते जित वडे आई नानक जे सिर खुते नावन नाही ता सत चट्टे सिर शाई महला दूजा अग्नि पाला की करे सूरज के ही रात चंद अनेरा की करे पौन पानी क्या जात धरती चीजी के करे जिस विच सब किछ होए नानक ता पत जानी है जा पत रखे सोए पौड़ी तुद सच्चे सुभान सदा कलाणिया तू सच्चा दी बाण होर आवन जानिया सच जे मंगह दान से तुदै जेहया सच तेरा फरमान शब्दे सोहया।

सुआया नानक मंगे दान जो तुद पाया सलोक महला दूजा दीख्या आंख बुझाया सिफती सच समेओ तिनको क्या उपदेसी है जिन गुर नानक देव महला पहला आप बुझाए सोई बुझे जिस आप सुझाए तिस सब किस सूझे कह कह कतना।

बुलाया, सच्ची सिफत सालाहा कपड़ा पाया, सच्चा अमृत नाम पूजन आया, गुरमति खादा राज तिन सुख पाया, ढाडी करे पसाऊ शब्द बजाया, नानक सच सलाहे पूरा पाया, शुद्ध राग गौड़ी ग्वारी महला पहला, चौपदे दोपदे

ना डूबै तरे जिन किस किया सो किस करे हुक्मे आवे हुक्मे जाए आगे पाछे हुक्म समाई हंस हित आसा समान तिस विच भूख बहुत नहसान पाओ खाना पीना आधार बिन खादे मर होए गवार जिसका कोई कोई कोई कोई सबको तेरा तू सबना का सोए जाके जी जंत धन माल नानक आखन बिखम बीचार गौड़ी महला पहला माता मत पिता संतोख सत भाई कर इहो वसेख कहना है किस कहन न जाए तौ कुदरत कीमत नहीं पाए रहाओ शर्म सुरत दोए ससुर भए करनी कामन कर मन लए साहा संजोग व्याह वजोग सच संतत कहो नानक जोग।

तीर्थ जाही, रत्न पदार्थ काट ही माही, पढ़ पढ़ पंडित बाद वखाने, पीतर होंदी वस्त ना जाने, हौ ना मुआ मेरी मुई बलाई, ओ ना मुआ जो रहे आसमाई, कहो नानक गुर ब्रह्म दिखाया, मरता जाता नदर ना आया, गौड़ी महला पहला दखनी, सुन सुन बूझे मन नाऊ, ताँ कै सद बलिहारे जाऊं आ।

क्यों अबनासी सहज समावे। नाम हृदय अमृत मुख नाम, नर हर नाम नर हर निकाम। रहाउ सहजी आवे सहजी जाई, मन ते उपजे मन माही समाई। गुरमुख मुख तो बंद ना पाई, शब्द विचार छुटे हर नाई। तरवर पंखी बहो निसबास, सुख दुखिया मन मोह विनाश। सांझ बिहाग तकह आगास, दह दिस तावह कर्म लिखियास। नाम संजोगी गोइन थाट, काम क्रोध फूटे बिखमाट। बिन बखर सुनो घर हाट, गुर मिल खोले बजर कपाट। साध मिले पूरब संजोग, सच

मन तन दिले सहज सुभाई, नानक तिनकै लागो पाई। गौड़ी महला पहला, काम क्रोध।

मुंडा पड़वाऊ जेवा इंद्री एक सुवाऊ दिष्ट वकारी नाही पहु पाऊ आप मारे ता पाए नाऊ शब्द मरे फिर मरन ना हुए बिन मुए क्यों पूरा हुए परपंच व्याप रहया मन।

मन मानिए अमृत रस पीजे रहाउ जन्म जीत मरण मन मानिया आप मुआ मन मन ते जानिया नजर पई कार करते जानिया जत सत तीरथ मज्जन नाम।

थाऊ। नानक गुरमत सहज समाऊ। गौड़ी महला पहला सतगुर मिले सो मरण दिखाई। मरन रहन रस अंतर पाई। गर्भ निवार गगन पुर पाई। मरन लिखाए आए नहीं रहना। हर जप जाप रहन हर सरना रहाउ। सतगुर मिले तदुबदा भागे। कमल बगास मन हर प्रभ लागे। जीवत मरे महारस आगे। सतगुर मिले सच संयम सूचा। गुर की पौड़ी ऊचो ऊचा। कर्म मिले जम का पौ मूचा। गुर मिले मिले अंक समाया। कर कृपा कर महल दिखाया। नानक हों मैं मार मलाया। गौड़ी

गुरबचनी सच शब्द पछाता तेरा तान नाम की वडियाई नानक रहना भगत सरनाई गौड़ी महला पहला जिन अकथ कहाया अपयो पी आया अन पै बिसरे नाम समाया क्या डरिय डर डर है समाना पूरे गुर कै शब्द पछाना रहाओ जिस नर राम हृदय हर रास सहज सुपाए मिले साबास जाहे सवारे सांझ बयाल इत उत मन मुख बांदे काल अहनस राम हृदय से पूरे नानक राम मिले ब्रह्म दूरे गौड़ी महला पहला जन्म मरे त्रै गुण हितकार चारे वेद कथ है आकार तीन अवस्था कह बखियान तुरियावस्था सतगुर ते हर जान राम भगत गुर सेवा तरना बहुर जन्म ना हुए है मरना रहाउ चार पदार्थ कह सब कोई सिमरत सासत पंडित मुख सोई बिन गुर अर्थ विचार ना पाया मुक्त पदार्थ भगत हर पाया जा कै हृदय बसया हर सोई गुरमुख भगत प्राप्त होई हर की भगत मुक्त आनंद गुरमत पाए परमानंद जिन पाया गुर देख दिखाया आसा माहि निराश बुझाया दीना नाथ सर्व सुख दाता नानक हर चरणी मन राता गौड़ी चेती महला पहला अमृत काया रह सुखाली बाजी एहु संसारु लब लोभ मुच कूड़ कमावे बहुत उठावे पारू तू काया मैं रुड़दी देखी ज्यों धारी उपर शारू सुन सुन सिख हमारी सो कृत कीता रहसी मेरे जीअड़े बहुत न आवे वारी रहाउ हौ तुदे आखा मेरी काया तू सुन सिख हमारी निंदा चिंदा करह पराई झूठी लाए तिबारी वेल पराई जो है जियड़े करह चोरी बुरियारी हंस चलिया तू पिछे रही है छुट्टड़ हुई है नारी तू काया रही है सुपनंतर तुद क्या कर्म कमाया कर चोरी मैं जा किश लिया ता मन भला पाया हलत ना सोभा पलक ना ढोई अहला

सुन मूरख मन अजाना होग तिस का पाना रहाऊ। साहू हमारा ठाकुर पारा हम तिसके बन जारी। जियो पिंड सब रास तिस की मार आपे जी वाले। गौड़ी चेती महला पहला अवर पंच हम एक जना क्यों राखो कर बार मना।

थी सातना अमृत केल करे नित कामन अवर लुटेन सो पंच जना ताहे मड़ोली लूटिया देहरा सातन पकड़ी एक जना जम डंडा गल संगल पड़िया भाग गए से पंच जना।

तिनकी पंख होवे जे नानक तो मूड़ा किश पाई रे। गौड़ी चेती महला पहला कत की माई बाप कत केरा किदू थाम हो हम आई अगन बिंब जल पीतर नि

केते पशु अपाय, केते नाग कुली मह आई, केते पंख उड़ाई, हट पटन बिज मंदर पन्ने, कर चोरी कर आवे, अगों देखै पिछों देखै, तुझते कहां छुपावे, तट तीरथ हम नव खंड देखे, हट पटन बाजारा, लैके तकड़ी टोलन लागा, घट ही मह वणजारा, जीता समुंद सागर।

राम का। मूढ़े फिर पाश पछताहे रे रहाउ, अनता तन तरनी तरे अनत ना चाहे आ जाए। अनत को चाहन जो गए से आए अनत गवाए। आपन लिया जे मिले ता सब को पागठ होए।

गौरी बैरागण महला पहला हरनी हुआ बन बसा कंद मूल चुन खाऊं गुर प्रसादी मेरा सहो मिले वार वार हो जाऊं जियो मैं बनजार नाम की तेरा नाम बखर वापार जी रहाऊ कोकिल हुआ अम बसा सहज शब्द विचार सहज सुपाए मेरा सहु मिले।

सहु वसै हौ मिलोंगी बाहां पसार। नागन होआ तर वसा शब्द वसै पहु जाय। नानक सदा सुहागणी जिन ज्योति ज्योत समाए। गौड़ी पूर्बी दीप की महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जय कर कीरत आखिए करते का हुए बिचार। तित कर गाव हो सोहिला सिवर हो सिरजनहार। तुम गाव हो मेरे नरपहु का सोहिला हौ वारी जाऊं। जित सोहिले सदा सुख होए रहाओ। नित नित जियड़े संभालियन देखे गा देवनहार। तेरे दाने कीमत ना पवे तिस दाते कवन समार। संबत साहा लिखिया मिलकर पावो तेल। देहो सज्जन आसी सड़िया ज्यो होए साहिब स्यो मेल। कर कर एहो पहुंचा सदड़े नित पवन। सदन हारा सिमरिया नानक से दे आवन। राग गौड़ी गवारी महला तीजा चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद। गुर

शब्द पछाण सतगुर कह पहे ब्रह्म पहु जाई पैरा कह सच रंग समाई रहाउ गुर मिले हर मन वसै सुपाई मेरा प्रभ भारा कीमत नहीं पाई।

वै जो पांडा हुई ऊंदे पांडे टिके ना कोई गुर शब्दी मन नाम निवास नानक सच पांडा जिस शब्द प्यास गौरी गुवारी महला तीजा।

साची वाणी शब्द विचार गावत रहै जे सतगुर पावे मन तन राता नाम सुहावे रहाउ एक गावे है एक भगत करे नाम ना पावे बिन असने सच्ची भगत गुर शब्द प्यार अपना पिर राखिया सदा उरतार भगत करह मूर्ख आप जनाव है नच नच टप्पे हैं बहुत दुख पाव है नचे टप्पे हैं भगत ना होए शब्द मरे भगत पाए जन सोए भगत वशल भगत कराए सोए सच्ची भगत बिचों आप खोए मेरा प्रभ साचा सब बिद जाने नानक बख्शे नाम पछाणे गौड़ी गुआरी महला तीजा मन मारे तात मर जाए बिन मुए कैसे हर पाए मन मरे दारू जाने कोए मन शब्द मरे बूझे जन सोए जिसनो बख्शे दे वडियाई गुर प्रसाद हर वसे मन आई रहाउ गुरमुख करनी कार कमावे ता इस मन की सोजी पावे मन मैं मत मैं गल मिकदारा गुर अंकस मार जी वालन हारा मन असाद साधे जन कोए अचार चरे ता निर्मल होए गुरमुख एहो मन लया सवार हौ मैं विचों तजे वकार जो तुर राखियन मेल मलाए कदे ना विचण है शब्द समाए अपनी कला आपे ही जाने नानक गुरमुख नाम पछाणे गौड़ी गुआरी महला तीजा हौ मैं विच सब जग बौराना दूजे पाए परम पुलाना बहु चिंता चितवै आप ना पछाना धंधा करतियां आन दिन वेहाना हिरदय राम रमहु मेरे पाई गुरमुख रसना हर रसन रसाई रहाउ गुरमुख हिरदय जिन राम पछाता जग जीवन सेव जुग चारे जाता हौ मैं मारे गुर शब्द पछाता कृपा करे प्रभ कर्म बधाता से जन सच्चे जो गुर शब्द मलाए

पोतै पुन तिन हम मैं मारी। नानक जो नाम रते तिन को बलिहारी। गौड़ी ग्वारी महला तीजा, तू अकथ क्यों कथिया जाई। गुर शब्द मारन

साई। गुरमुख भगत हर नाम समाई, आपे दात करे दातार, पूरे सतगुर स्यों लगे प्यार। नानक नाम रते तिन कहो जयकार, गौड़ी ग्वारी महला तीजा। एक सते सब रूप है रंगा, पौन पानी बैसंतर सब सहलंगा। पिन पिन वेखे हर प्रव रंगा, एक अचरज एको है सोई। गुरमुख विचारे बिरला कोई, रहाउ सहज पवै प्रभ सब नीथाई। कहां गुप्त प्रगट

रहाव। असंत अनाड़ी कदे ना बूझै, कथनी करे तै माया नाल लूझै। अंध अज्ञानी कदे ना सीजै, इस जुग में राम नाम निस्तारा। बिरला को पाई गुर शब्द विचारा, आप तरै सगले कुल उधारा। इस

राम जपहु हो पवजन उतरु हो पार रहाउ परमे आवे परमे जाय एहो जग जन्मया दूजे पाय मन मुख ना चेतै आवे जाय आप भुला के प्रभ आप भुलाया एहो जियो वडाणी चाकरी लाया महा दुख खटे बिरथा जन्म गवाया कृपा कर सतगुरु मलाए एको नाम चेते विचो परम चकाए नानक नाम जपे नाओ नौ निद पाए गौड़ी गुआर दी महला तीजा जिन्ना गुरमुख त्याया।

बिन नावे त्रिग त्रिग अहंकार, बंधन बांधियो माया पास, जन नानक छूटे गुर प्रगास, महला तीजा गौड़ी बैरागण। जैसी धरती ऊपर मेघला बरसत है, क्या धरती मध्य पानी नाही, जैसे धरती मध्य पानी परगासिया, बिन पगा वरसत फराही, बाबा तू ऐसे परम चुकाही।

तेरी तुझ ही माही समाही। इतने जन्म भूल परे से जा पाया ता भूले नाही। जाका कार्ज सोई पर जाने जे गुर कै शब्द समाही।

हर टेक टकाई गौरी गुवारी महला चौथा निर्गुण कथा कथा है हर की पाज मिल साधु संगत जन की तर पौ जल कत कथा सुन हर की गोविंद सत संगत में लाई हर रस रसना राम गुण गाय रहाओ जो जन त्याव है हर हर नामा तिन दासन दास करहो हम रामा जन की सेवा उत्तम कामा जो हर की हर कथा सुनावे सो जन हमरे मन चित पावे जन पग रेन वड भागी पावे संत जना स्यों प्रीत बन आई जिनको लिखत लिखिया तुर पाई ते जन नानक नाम समाई गौड़ी गुवारी महला चौथा माता प्रीत करे पुत खाए मीने प्रीत पई जल नाए सतगुर प्रीत गुर सिख मुख पाए ए हर जन हर मेलो हम प्यारे जिन मिलिया दुख जाहे हमारे।

जहाँ हर जस गावे सारिंग प्रीत बसे जल तारा नरपत प्रीत माया देख पसारा हर जन प्रीत जपे निरंकारा नर प्राणी प्रीत माया धन खाते गुरसिख प्रीत गुर मिले गलाते जन नानक प्रीत साध पग चाटे गौड़ी गुआरी महला चौथा भीखक प्रीत भीख प्रभ पाए भूखे प्रीत होवे अन खाए गुरसिख प्रीत गुर मिल आघाए हर दर्शन देहो हर आस तुम्हारी कर कृपा लोच पूर हमारी रहाओ चकवी प्रीत सूरज मुख लागे मिले प्यारी सब दुख त्यागे गुरसिख प्रीत गुरु मुख लागे बछरे प्रीत खीर मुख खाए हृदय बिगसै देखै माए गुरसिख प्रीत गुरु मुख लाए होर सब प्रीत माया मोह काचा बिन सजाए पूरा कच पाचा जन नानक प्रीत तृप्त गुर साचा गौड़ी गुआर री महला चौथा सतगुर सेवा सफल है बनी जित मिल हर नाम त्याया हर तनी जिन हर जपया तिन पीछे छूटी कनी गुरसिख हर बोलो मेरे भाई हर बोलत सब पाप लह जाई रहाओ जब गुर मिलया तब मन वास आया तावत पंच रहे हर त्याया अन दिन नगरी हर गुण गाया सतगुर पग धूर जिन्ना मुख लाई तिन कूड़ त्यागे हर लिब लाई ते हर दरगाह मुख उजल पाई गुर सेवा आप हर पावे कृष्ण बल भद्र गुर पग लग त्यावे नानक गुरमुख हर आप तरावे गौड़ी गुआर री महला चौथा हर आपे जोगी डंडा तारी हर आपे रव रहया बनवारी हर आपे तप तापै लाए तारी ऐसा मेरा राम रहया भरपूर निकट वसै नाही हर दूर रहाओ हर आपे शब्द सुरत तुन आपे हर आपे वेखै विगसै आपे हर आप जपाए आपे हर जापे हर आपे सारिंग अमृत तारा हर अमृत आप पी आवन हारा।

बणंजह रंग स्यों जे आप दयाल हुए देह हम बण जारे राम के हर वणज करावे देरा सरे रहाओ लाहा हर भगत तन खटिया हर सच्चे साहा मन पाया हर जप हर वखर लद्या जम जा गाती नेड़ ना आ।

गर्भ पालती सुत की कर आसा वड्डा हुए तन खाट दे कर भोग बलासा क्यों हर जन प्रीत हर राखदा दे आप हथासा मेरे राम मैं मूर्ख हर राख मेरे गुसैया जन की उपमा तुझे वडैया रहा मंदर कर आनंद हर हर जस मन पावे सब रस मीठे मुख लगह जा हर गुण गावे हर जन परवार सधार है इक्की ही कुली सब जगत छडावे जो किश किया सो हर किया हर की वडियाई हर जी तेरे तू वरतदा हर पूज कराई हर भगत भंडार लहाईंदा आपे वरताई लाला हाट विहाजिया क्या तिस चतुराई जे राज बहाले ता हर गुलाम कासी को हर नाम कढाई जन नानक हर का दास है हर की वडियाई गौड़ी ग्वार भी महला चौथा किरसानी किरसान करे लोचे जियो लाए हल जोते उदम करे मेरा पुत धी खाए त्यों हर जन हर हर जप करे हर अंत छाए।

मुहु वधावे। त्यो हर जन हर हर बोलता, हर बोल सुख पावे। बिक संचय हटवानिया, बह हाथ कमाए। मोह झूठ पसारा झूठ का, झूठे लपटाए। त्यो हर जन हर तन संचया, हर खर्च लै जाए। एह माया मोह कटंब है,

चौथा नित दिन सरात लाल च करे पर मैं फरमाया वेगार फिरै वेगारिया सिर भार उठाया जो गुर की जन सेवा करे सो घर कै काम हर लाया मेरे राम तोड़ बंधन माया घर कै काम लाए नित हर गुण गावे हर नाम समाए रहाउ नर प्राणी चाकरी करे नरपत राजी अर्थ सब माया कै बंदै कै दान ले कै नरपत मर जाया तन तन सेवा सफल सतगुरु की जित हर हर नाम जप हर सुख पाया नित सौदा सूद कीचै बहु भांत कर माया कै ताई जा लाहा दे ता सुख मने तू टै मर जाई जो गुण सांझी गुर स्यों करे नित नित सुख पाई जितनी भूख अनरस साध है तितनी भूख फिर लागे जिस हर आप कृपा करे सो वेचे सिर गुरिया।

हमरै मन चित हर आस नित, क्यों देखा हर दर्श तुम्हारा, जिन प्रीत लाई सो जानता, हमरै मन चित हर बहुत प्यारा, हौं कुर्बानी गुरे अपनी,

रहाउ। हमरे अवगुण बहुत बहुत है, बहु बार बार हर गणत ना आवे। तू गुणवंता हर हर दयाल, हर आपे बख्श लह हर पावे। हम अपराधी राखे गुर संगति, अपदेश दियो हर नाम छडावे। तुमरे गुण क्या कहा मेरे सतगुरा, जब गुर बोले हैं तब विस्म होए जाए। हम जैसे अपराधी अवर कोई राखे, जैसे हम सतगुर राख लिए छडाए। तू गुर पिता तू है गुर माता, तू गुर बंधप मेरा सखा सखाए। जो हमरी बिद होती मेरे सतगुरा, सा बिद तुम हर जान हो आपे। हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे। तन तन गुरु नानक जन केरा, जित मिले तूके सब सोग संतापे। गौड़ी बैरागण महला चौथा, कंचन नारी मह जियो लुभत है। मोह मीठा माया, कर मंदर घोड़े खुशी, मन अन रस लाया।

कपड़ पहनन दिया रासे अन्न को गहानी जिन दिए सो चेतना आवई पशु हौ कर जानी सब कीता तेरा वर्तदा तू अंतर जामी हम जंत विचारे क्या करह सब खेल तुम स्वामी जन नानक हाट विहाजिया हर गुलम गलामी गौड़ी बैरागण महला चौथा ज्यों जननी सुत जन पालती राखह नदर मजार अंतर बाहर मुख देह ग्रास खिन खिन पोचार त्यों सतगुर गुर सिख राखता हर प्रीत प्यार मेरे राम हम बारक हर प्रभ के है यानी तन तन गुरु गुर सतगुर पांदा जिन हर उपदेश दे किए सियाणी रहाओ जैसी गगन फरंती उड़ती कपरे बागे वाली ओहरा खै चीत पीछे बिच बचरे नित हिरदय सार संभाली त्यों सतगुर सिख प्रीत हर हर की गुर सिख रखै जी नाली जैसे काती तीस बतीस है विच राखै रसना मास रात केरी कोई जान हो मास काती कह किस हाथ है सब वसगत है हर केरी त्यों संत जना की नर निंदा करह हर राखै पैज जन केरी भाई मत कोई जानो किसी कह किस हाथ है सब करे कराया जरा मरा ताप सिरत साप सब हर कै वस है कोई लाग न सकै बिन हर का लाया ऐसा हर नाम मन चित नित त्यावहु जन नानक जो अंति अवसर ले छाया गौड़ी बैरागण महला चौथा जिस मिले मन हुए आनंद सो सतगुर कहिए मन की दुबदा बिन सजाए हर परम पद लहिए मेरा सतगुर प्यारा कित बिद मिले हौ खिन खिन करी नमस्कार मेरा गुर पूरा क्यों मिले रहाव कर कृपा हर मेलिया मेरा सतगुर पूरा इच पुन्नी जन केरिया ले सतगुर तूरा हर भगत दरड़ावे हर भगत सुने तिस सतगुर मिलिये टोटा मूल ना आवई हर लाभ नित दृढ़िये जिस को हृदय विगास है पाओ दूजा नाही नानक तिस गुर मिल उधरे हर गुण गावाही महला चौथा गौड़ी पूर्वी हर दयाल दया प्रकीनी मेरे मन तन मुख हर बोली गुरमुख रंग भया अत गूड़ा हर रंग पीनी मेरी चोली अपने हर प्रभ की हौ गोली जब हम हर सेती मन मानिया कर दीनो जगत सब गोल अमोली रहाओ करहो विवेक संत जन पाई खोज हृदय देख टंडोली हर हर रूप सब जोत सबाई हर निकट वसै हर कोली हर हर निकट वसै सब जग कह अपरंपर पुरख अतोली हर हर प्रगट कियो गुर पूरै सिर वेचियो गुर पै मोली हर जी अंतर बाहर तुम सरनाग तुम वड पुरख वडोली जन नानक अन दिन हर गुण गावै मिल सतगुर गुर वे चोली गौड़ी पूर्वी महला चौथा जग जीवन अपरंपर स्वामी जगदीश्वर पुरख बधाते जित मार्ग तुम प्रेर हो स्वामी तित मार्ग हम जाते राम मेरा मन हर से तीराते सत संगत मिल राम रस पाया हर नाम नाम समाते रहाओ हर हर नाम हर हर जग अवखद हर हर नाम हर साते तिनके पाप दोख सब बिनसे जो गुरमत राम रस खाते जिनको लिखत लिखे तुर मस्तक ते गुर संतोख सरनाते दुर्मत मैल गई सब तिनकी जो राम नाम रंग राते राम तुम आपे आप आप प्रभ ठाकुर तुम जेवड़ अवर ना दाते
जन नानक नाम लए ता जीवै, हर जपियै हर किरपाते, गौड़ी पूर्वी महला चौथा, करहो किरपा जग जीवन दाते, मेरा मन हर से तीराचे, सतगुर बचन दियो अत निर्मल, जप हर हर हर मन माचे, राम मेरा मन तन बेद लियो हर साचे, जेहे काल कै मुख जगत सब ग्रसया, गुर सतगुर कै बचन हर हम बाचे, रहाउ जिनको प्रीत नाही हर सेती, ते साकत मूड नर काचे, तिनको जन्म मरण अत भारी, विच विस्ता मर मर पाचे, तुम दयाल सरन प्रतपालक, मोको दीजै दान हर हम जाचे, हर के दास दास हम कीजै, मन निरत करे कर नाचे, आपे साहा वड्डे प्रभ स्वामी, हम बन जा रे है ताचे, मेरा मन तन जियो रास सब तेरे, जन नानक के साहा प्रभ साचे, गौड़ी पूर्वे महला चौथा, तुम दयाल सर्व दुख पंजन, एक बिनो सुनो दे काने, जिस ते तुम हर जाने स्वामी, सो सतगुर मेल मेरा प्राने, राम हम सतगुर पार ब्रह्म कर माने, हम मूड़ मुगद अशुद्ध मत होते, गुर सतगुर कै बचन हर हम जाने, रहाउ जितने रस अनरस हम देखे, सब तितने फीक फीकाने, हर का नाम अमृत रस चाखिया, मिल सतगुर मीठ रस गाने, जिनको गुर सतगुर नहीं पीटिया, ते साकत मूड देवानी, तिनके कर्महीन तुर पाए, देख दीपक मोहे पचाने, जिनको तुम दया कर मेलो, ते हर हर सेव लगाने, जन नानक हर हर हर जप प्रगटे, मत गुरमत नाम समाने, गौड़ी पूर्वी महला चौथा, मेरे मन सो प्रभ सदा नाल है स्वामी, कहो कितै हर पहु नसीऐ, हर आपे बख्श लए प्रभ साचा, हर आप छुड़ाए छुटिऐ, मेरे मन जप हर हर हर मन जपिऐ, सतगुर की सरनाई भज पौ मेरे मना, गुर सतगुर पीछे छुटिऐ रहाउ, मेरे मन सेवहु सो प्रभ सर्ब सुख दाता, जित सेवै निज कर वसीऐ, गुरमुख जाए लहु कर अपना, कस चंदन हर जस कसीऐ, मेरे मन हर हर हर हर हर जस उत्तम, लैला हर मन हसीऐ, हर हर आप दया कर देवै, ताय अमृत हर रस चखीऐ, मेरे मन नाम बिना जो दूजै लागे, ते साकत नर जम कुटिऐ, ते

निरंजन नरहर जित सेवियै लेखा छुटिया जन नानक हर प्रभ पूरे किए खिन मासा तोल ना कटिया गौड़ी पूर्वे महला चौथा हमरे प्राण वसगत प्रभ तुमरे मेरा जियो पिंड सब तेरी दया कर हो हर दर्श दिखाव हो मेरे मन तन लोच कनेरी राम मेरे मन तन लोच मिलन हर केरी गुर कृपाल कृपा किंचत गुर कीनी हर मिलया आई प्रभ मेरी रहाओ जो हमरे मन चित है स्वामी साबिद तुम हर जानो मेरी अन दिन नाम जो

अन दिन अनद पया वड भागी सब आस पूजी जन केरी जगन्नाथ जगदीश्वर करते सब वसगत है हर केरी जन नानक शरणागत आए हर राखो पैज जन केरी गौड़ी पूर्वी महला चौथा इहो मनुआ खिन ना टिकै बहु रंगी दह दह दिस चल चल हांडी गुरपुरा पाया वड भागी हर मंत्र दिया मन ठाढे राम हम सतगुर लाले कांडे रहाओ हमरे मस्तक दाग दगाना हम कर्ज गुरु बहु साढ़े पार उपकार पुन बहु किया बहु दुत्तर तार पराढ़े जिनको प्रीत हृदय हर नाही तिन कूरे गाडन गाडी ज्यो पानी कागद बिन सुजात है त्यों मन मुख गर्भ गलाटी हम जानिया कशु ना जान है आगै ज्यो हर राख है त्यों ठाढ़ी हम पूल चूक गुर कृपा तारो जन नानक कुतरे कांडी गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम करोद नगर बहु भरिया मिल साधु खंडल खंडाई पूर्व लिखित लिखे गुर पाया मन हर लिव मंडल मंडाई कर साधु अंजलि पुन वड्डाई कर डंडोत पुन वड्डाई रहाओ साकत हर रस साधना जानिया तिन अंतर हम मैं कंडाई ज्यों ज्यों चल है चुभै दुख पावे जम काल सह सिर डंडाई हर जन हर हर नाम समाणी दुख जन्म मरण भव खंडाही अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहु शोभ खंड ब्रह्मंडाही हम गरीब मशकीन प्रभ तेरे हर राख राख वड वड्डाही जन नानक नाम आधार टेक है हर नामे ही सुख मंडाई गौड़ी पूर्वी महला चौथा इस गढ़ में हर राम राय है किस साधना पावे तीठा हर दीन दयाल अनुग्रह किया हर गुर शब्दी चख डीठा राम हर कीर्तन गुर लिव मीठा रहाओ हर अगम अगोचर पार ब्रह्म है मिल सत गुर लाग बसीठा जिन गुर बचन सुखा नेही अरे तिन आगह आन परीठा मन मुख हियरा अत कठोर है तिन अंतर कार करीठा बिसियर कौ बहु दूध पी आईय बिक निकसै फोल फलीठा हर प्रभयान मलाव गुर साधु कस गरड़ शब्द मुख लीठा जन नानक गुर के लाले गोले लग संगत करुआ मीठा गौड़ी पूर्वी महला चौथा।

मुख मस्तक पाग सुभागी राम गुरमत हर लिव लागी रहाउ। कट कट रमैया रमत राम राय गुर शब्द गुरु लिव लागी। हो मन तन देवो काट गुरु कहो मेरा भ्रम पहो गुर बचनी भागी। अंधियार है दीप ज्ञान जलाई गुर ज्ञान गुरु लिव लागी। अज्ञान अंधेरा बिनस बनासेउ कर वस्त लही मन जागी। साकत बदक माया तारी तिन जम जो हन लागी। हुन सतगुर आग्या सीस न बेचिया हुए आवह जाहे अभागी। हमरा बिनो सुनो प्रभ ठाकुर हम शरण प्रभु हर मांगी। जन नानक की लज पात गुरु है सिर बेचे हो सतगुर आगी। गौड़ी पूर्वी महला चौथा हम अहंकारी अहंकार।

गुर कै बचन हर पाया रहाउ, मेरा ही अरे प्रीत राम राय की, गुर मार्ग पंथ बताया, मेरा जियो पिंड सब सतगुर आगे, जिन विछड़िया हर गल लाया, मेरा अंतर प्रीत लगी देखन को, गुर हृदय नाल दिखाया, सहज आनंद भया मन मोरे, गुर आगे आप बिचाया, हम अपराध पाप बहु कीने, कर दुष्टि चोर चुराया, अब नानक शरणागत आए, हर राखो लाज हर पाया, गौड़ी पूर्वी महला चौथा, गुरमत बाजै शब्द अनाहद, गुरमत मनुआ गावे, बड़ पागी गुर दर्शन पाया, तन तन गुरु लिव लावे, गुरमुख हर लिव लावे रहाउ, हमरा ठाकुर सतगुर पूरा, मन गुर की कार कमावे, हम मल मल तो वह पाव गुरु के, जो हर हर कथा सुनावे, हृदय गुरमत राम रसायन, जिहवा हर गुण गावे, मन रसक रसक हर रस आगामी, फिर बहोर न भूख लगावे, कोई करे उपाव अनेक बहुतेरी, बिन कृपा नाम ना पावे, जन नानक को हर कृपा तारी, मत गुरमत नाम दृढ़ावे, राग गौड़ी माज महला चौथा, गुरमुख जिंदू जप नाम करम्मा, मत माता मत जियो नाम मुख रामा, संतोख पिता कर गुरपुरख अजन्मा, वडभागी मिल रामा, गुर जोगी पुरख मिलिया रंग माणी जियो, गुर हर रंग रतड़ा सदा निर्बाणी जियो, वडभागी मिल सुगड़ सुजाणी जियो, मेरा मन तन हर रंग पिन्ना, आवह संत हो मिल नाम जपाहा, विच संगत नाम सदा ले लाहा जियो, कर सेवा संता अमृत मुख पाहा जियो, मिल पूर्व लिखियड़े तुर कर्मा, सावन वर्ष अमृत जग छाया जियो, मन मोर कुह कियड़ा शब्द मुख पाया, हर अमृत बुठड़ा मिलिया हर राया जियो, जन नानक प्रेम रतन्ना, गौड़ी माज महला चौथा, आओ सखी गुण कामन करी हा जियो, मिल संत जना रंग मान रलिया जियो, गुर दीपक ज्ञान सदा मन बलिया जियो, हर तुठै टुल टुल मिलिया जी।

एक राजे तख्त बह नित सुखिए एक ना भिख मगाया जियो सब इको शब्द वरतदा मेरे गोविंदा जन नानक नाम त्याया जियो गौड़ी माज महला चौथा मन माही।

हर हर नाम पर गासिया मेरे गोविंदा सब दालत दुख लह जाही दियो हर पद उत्तम पाया मेरे गोविंदा वडभागी नाम समाही दियो नैनी मेरे प्यारिया नैनी मेरे गोविंदा किनै हर प्रभ डिठड़ा नैनी दियो मेरा मन पन बहुत बैरा गया मेरे गोविंदा हर बाजो धन कुम लैनी जियो संत जना मिल पाया मेरे गोविंदा मेरा हर प्रभ सज्जन सैनी जियो हर आए मिलिया जग जीवन मेरे गोविंदा मैं सुख विहानी रैनी जियो मैं मेलोह संत मेरा हर प्रभ सज्जन मैं मन तन भुख लगाइया जियो हो रह ना सको बिन देखे मेरे प्रीतम मैं अंतर बिरहो हर लाइया जियो हर राया मेरा सज्जन प्यारा गुर मेले मेरा मन जीवाइया जियो मेरा मन तन आसा पूरिया मेरे गोविंदा हर मिलिया मन वाधाइया जियो वारी मेरे गोविंदा वारी मेरे प्यारिया हौ तुद विकटण्यो हो सदवारी जियो मेरा मन तन प्रेम परम का मेरे गोविंदा हर पूंजी राख हमारी जियो सतगुर विश्व

हर आपे सब कट भोगदा मेरे गोविंदा आपे रसिया भोगी जियो हर सुजान ना भुलई मेरे गोविंदा आपे सतगुर जोगी जियो आपे जगत उपाय दा मेरे गोविंदा हर आप खिल बहुरंगी जियो एक ना भोग पुगाए दा मेरे गोविंदा एक नगन फिर है नंग नंगी जियो आपे जगत उपाय दा मेरे गोविंदा हर दान देवै सब मंगी जियो भगता नाम आधार है मेरे गोविंदा हर कथा मंग है हर चंगी जियो हर आपे भगत कराए दा मेरे गोविंदा हर भगता लोच मन पूरी जियो आपे जल थल वरत दा मेरे गोविंदा राव रहया नहीं दूरी जियो हर अंतर बाहर आप है मेरे गोविंदा हर आप रहया परपूरी जियो हर आत्म राम पसारिया मेरे गोविंदा हर वेखै आप हदूरी जियो हर अंतर वाजा पौन है मेरे गोविंदा हर आप बजाए त्यों वाजै जियो हर अंतर नाम निदान है मेरे गोविंदा गुर शब्दी हर प्रभ गाजै जियो आपे सरन पुआए दा मेरे गोविंदा हर भगत जना राख लाजै जियो वडभागी मिल संगती मेरे गोविंदा जन नानक नाम सिद्ध का जय जियो गौड़ी माज महला चौथा मैं हर नामे हर बिरहो लगाई जियो मेरा हर प्रभ मित मिले सुख पाई जियो हर प्रभ देख जीवा मेरी माई जियो मेरा नाम सखा हर पाई जियो गुण गावो संत जियो मेरे हर प्रभ केरे जियो जप गुरमुख नाम जियो भाग वडेरे जियो हर हर नाम जियो प्राण हर मेरे जियो फिर बहुड़ ना भवजल फेरे जियो क्यों हर प्रभ वेखा मेरा मन तन चाओ जियो हर मेलो संत जियो मन लगा पाओ जियो गुर शब्दी पाईए हर प्रीतम राओ जियो वड भागी जप नाओ जियो मेरा मन तन वडड़ी गोविंद प्रभ आसा जियो हर मेलो संत जियो गोविंद प्रभ पासा जियो सतगुर मत नाम सदा प्रगासा जियो जन नानक पूरे अड़ी मन आसा जियो गौड़ी माज महला चौथा मेरा बिरही नाम मिले ता जीवा जियो मन अंदर अमृत गुरमत हर लीमा जियो मन हर रंग रतड़ा हर रस

सुपन पेखारी एक कुशल मोको सतगुरु बताया हर जो किश करे सो हर किया भगता पाया जन नानक कहो मैं मार समाया इन बिद कुशल होत मेरे भाई इउं पाईए हर राम सहाई रहाउ दूजा गौड़ी गुआररी महला पंजवां क्यों भ्रमीए भ्रम किसका होई जां जल थन महियल रविया सोई गुरमुख उबरे मनमुख पत खोई जिस राखै आप राम दयारा तिस नहीं दूजा को पहुंचन हारा रहाउ सब मह वरतै एक अनंता ता तू सुख सो होए अचिंता ओहो सब किस जाने जो वर्तनता मन मुख मोए जिन दूजी प्यासा बहु जोनी पवह तुर किरत लिखियासा जैसा बीजह तैसा खासा देख दर्श मन पया विगासा सब नदनी आया ब्रह्म परगासा जन नानक की हर पूर्ण आसा गौड़ी गुआर री महला पंजवा कई जन्म पय कीत पतंगा कई जन्म गजमीन कोरंगा कई जन्म पंखी सर्प होयो कई जन्म हैवर ब्रिख जोयो मिल जगदीश मिलन की बरिया चिरंकाल एह दे संजरिया रहाओ कई जन्म सैल गिर करिया कई जन्म गर्भ हिर खरिया कई जन्म साख कर उपाया लख चौरासी जोन प्रमाया साध संग भयो जन्म प्रापत कर सेवा पज हर हर गुरमत त्याग मान झूठ अभमान जीवत मरह दरगाह परवान जो किश होआ सो तुझ ते होग अवर ना दूजा करने जोग ता मिलिए जा लह मलाई कहो नानक हर हर गुण गाई गौड़ी गुआर री महला पंजवा कर्म भूम मह बोह नाम पूर्ण होए तुम्हारा काम फल पावह मिटै जम त्रास नित गावह हर हर गुण जास हर हर नाम अंतर उर तार शीघ्र कार्ज लिहो सवार रहाल अपने प्रभ स्यों हो सावधान ता तू दरगाह पावह मान उगत सियाणप सगली त्याग संत जना की चरणी लाग सर्ब जी है जा कै हाथ कदे ना विछड़े सब कै साथ अपाव छोड़ गहो तिसकी ओट निमख माही होवै तेरी छोट सदा निकट कर तिसनो जान प्रभ की आज्ञा सत कर मान गुर कै बचन मटावहु आप हर हर नाम नानक जप जाप गौड़ी गुआर री महला पंजवा गुर का बचन सदा अबनासी गुर कै बचन कट्टी जम फासी गुर का बचन जी कै संग गुर कै बचन रचै राम कै रंग जो गुर दिया सुमन कै काम संत का किया सत करमान रहाउ गुर का बचन अटल अशेद गुर कै बचन कट्टे भ्रम भेद गुर का बचन कतहु न जाय गुर कै बचन हर के गुण गाय गुर का बचन जी कै साथ गुर का बचन अनाथ को नाथ गुर कै बचन नरक ना पवै गुर कै बचन रसना अमृत रवै गुर का बचन प्रकट संसार गुर कै बचन ना आवै हार जिस जन होए आप कृपाल नानक सतगुर सदा दयाल गौड़ी गुआर री महला पंजवा जिन कीता माटी ते रतन गर्भ मह राखिया जिन कर जतन जिन दीनी सोभा वड्याई तिस प्रभ को आठ पहर त्याई रमैया रेन साध जन पावो गुर मिले अपना खसम त्याओ रहाओ जिन कीता मूड ते बक्ता जिन कीता बे सुरत ते सुरता जिस प्रसाद नवै निद पाई सो प्रभ मन ते बिसरत नाही।

सास ग्रासा जिस प्रसाद माया सिलक काटी गुर प्रसाद अमृत बिख खाटी कहो नानक इसते किश नाही राखन हारे कौ सलाही गौड़ी गुआरी महला पंजवा तिसकी शरण नाही पौ सोग उसते बाहर कछु ना होग तजी सियाणप बल बुद्ध बिकार दास अपने की राखनहार जप मन मेरे राम राम रंग राम।

तन मन सीतल पहे, जन्म जन्म के किल विख गए, सर्व निदान पेखे मन माए, अब ढूंढन काहे को जाए, प्रभ अपने जब पहे दयाल, पूर्ण होए सेवक काल, बंधन काट किए अपने दास, सिमर सिमर सिमर गुणतास, एको मन एको सब ठाए, पूर्ण पूर रहे हो सब जाए, गुर पूर सब परम चकाया, हर सिमरत नानक सुख पाया, गौड़ी गुआर दी महला पंजवा, अगले मोए से पाछे परे, जो उबरे से बांध लख खरे, जेहे तंदे

राम गुण गाओ, निमख निमख हर हर हर त्याओ, आन ना सुनिए कतहु जाइए, साध संगत बड़ भागी पाइए, आठ पहर जिहवे आराध, पार ब्रह्म ठाकुर आगाद, इहां उहां सदा सुहेली, हर गुण गावत रसन अमोली, बनस्पत मौली फल फूल पेडे, एह रस राती बहुर ना छोड़े, आन ना रस कस लवै ना लाई, कहो नानक गुर पए है सहाई, गौड़ी गुआरी महला पंजवां, मन मंदर तन साजी बार, इस ही मत ही बस्त अपार, इस ही पीतर सुनियत साह, कवन बापारी जाका उहां वसाह, नाम रतन को व्यवहारी, अमृत भोजन करे आहारी, रहाओ मन तने अर्पी सेव करी जय, कमन सो जुगत जित कर पीजै, पाए लगो तज मेरा तेरै, कमन सो जन जो सौदा जोरै, महल साहा का किन बिद पावै, कमन सो बिद जित पीतर बुलावै, तू वड साह जाके कोट बन जारे, कमन सो दाता ले संचारे, खोजत खोजत निज कर पाया, अमोल रतन साच दिखलाया, कर कृपा जब मेले साह, कहो नानक गुर कै विसार, गौड़ी महला पंजवा गवाररी, रैन दिनस रह इक रंगा, प्रभ को जाने सद ही संगा, ठाकुर नाम कियो उनवर्तन, तृप्त अगावन हर कै दर्शन, हर संग राते मन तन हरे, गुर पूरे की सरनी परे, रहाओ चरण कमल आत्म आधार, एक निहार है आज्ञाकार, एको बनज एको व्यवहारी, अवर ना जान है बिन निरंकारी, हरख सोग दोहू ते मुक्ते, सदा अलिपत जोग अर जुगते, दिस है सब है सब ते रहते, पार ब्रह्म का उए ध्यान धरते, संतन की महिमा कमन बखानो, अगाध बोध किस मित नहीं जानो, पार ब्रह्म मोहे कृपा की जय, तूर संतन की नानक दी जय, गौड़ी गुआरी महला पंजवा, तू मेरा सखा तू ही मेरा मीत, तू मेरा प्रीतम तुम संग हीत, तू मेरी पत तू है मेरा गहना, तुझ बिन निमख ना जाई रहना।

भंडार, रंग रसा तू मन है आधार, तू मेरी शोभा तुम संग रतिया, तू मेरी ओट तू है मेरा तकिया, मन ताने अंतर तू ही त्याया, मर्म तुम्हारा गुरते पाया, सतगुर ते दृढ़िया एक एक है, नानक दास हर हर हर टेक है, गौड़ी गुआरी महला पंजवां, व्यापत हरक सोग विस्थार, व्यापत सुरग नर के अवतार, व्यापत धन निर धन पेख सोभा, मूल ब्यादि व्याप सलोभा, माया व्यापत बहु प्रकारी, संत जीव है प्रभ ओट तुम्हारी, रहाउ व्यापत हम बुद्ध का माता, व्यापत पुत्र कलत्तर संग राता, व्यापत हस्त कोड़े अरबस्ता, व्यापत रूप जोबन मदमस्ता, व्यापत भूम रंक अररंगा, व्यापत गीत नाद सुन संगा, व्यापत सेज महल शिंगार, पंच दूत व्यापत अंधियार, व्यापत कर्म कर हों फासा, व्यापत गिरस्त व्यापत उदासा, चार व्यवहार व्यापत एह जात, सब किश व्यापत बिन हर रंग रात, संतन के बंधन काटे हर राय, ता को कहां व्यापै माए, कहो नानक जिन तूर संत पाई, ता कै निकट न आवै माई, गौड़ी गुआर री महला पंजवां।

मन सोया माया बिस्माद, इस ग्रह में कोई जागत रह, साबत वस्त ओ अपनी लह रहाओ, सगल सहेली अपने रसमाती, ग्रह अपने की खबर ना जाती, मुसनहार पंच बटवारी, सूने नगर परे ठगहारी, उन तेरा कह बाप ना माई, उन तेरा कह मीत ना पाई, दर्ब सियाणप ना हुए रहते, साध संग ओए दुष्ट वस होते,

सो जागै जिस प्रभ कृपाल, एह पूंजी साबत धन माल। रहाओ दूजा गौड़ी ग्वारी महला पंजवां, जाकै वस खान सुल्तान, जाकै वस है सगल जहान। जाका किया सब किश होए, तिसते बाहर ना ही कोए। कहो बेनंती अपने सतगुर पाए, काज तुम्हारे दे निभाहे रहाओ। सब ते ऊंच जाका दरबार, सगल भगत जाका नाम आधार। सर्ब व्यापत पूर्ण तनी, जाकी शोभा कट कट बनी। जिस सिमरत दुख डेरा टह, जिस सिमरत जम किशु ना कह। जिस सिमरत होत सूके हरे, जिस सिमरत डूबत पाहन तरे। संत सभा कहो सदा जयकार, हर हर नाम जन प्राण आधार। कहो नानक मेरी सुनी अरदास, संत प्रसाद मोको नाम निवास। गौड़ी ग्वारी महला पंजवां, सतगुर।

इन मध्यम सब धर्म साध कृपाल दयाल गोविंद साधा मह ए हमरी जिंद किरपा निध किरपाल त्यावो साध संगता बैठन पावो मोहे निर्गुण कौ प्रभ कीनी दया साध संग नानक नाम लया गौड़ी गुआरी महला पंजवा साध संग जपियो भगवंत केवल नाम दियो गुरमंत ताज अभमान पये निरवैर आठ पैर पूजो गुर पैर अब मत बिनसी दुष्ट बेगानी जब ते सुनिया हर जस कानी।

पार ब्रह्म स्यों लागी प्रीत निर्मल करनी साची रीत गुरपूरै मेटिया अंधियारा नानक का प्रभ अपर अपारा गौड़ी ग्वार दी महला पंजवा जिस मन वसै तरै जन सोए जा कै कर्म प्राप्त होए दुख रोग कछ पौ ना व्यापै अमृत नाम हृदय हर जापै पार ब्रह्म परमेश्वर क्या यह।

अगमय गोचर सदा बेअंता सिमरमना पूरे गुरमंता जाकी सेवा सर्व निदान प्रभु की।

सुख निदान हर अलख स्वामी जी जंत तेरी सरनाई नानक नाम मिले बड़ियाई गौड़ी गुआरी महला पंजवा जी जुगत जा कह है हाथ सो सिमरहो अनाथ को नाथ प्रभ चित आए सब दुख जाए पै सब बिन सह हर कह नाए बिन हर पवो काहे का मन है हर बिसरत काहे सुख जान है रहाओ जिन तारे बहु तरन आगास जाकी ज्योत जी परगास जाकी बख्श न मेटे कोए सिमर सिमर प्रभ निरपव होए आठ पैर सिमर हो प्रभ नाम अनक तीरथ मज्जन इशनाम।

कृपा तबे आप मलाया। बहां पकर लीनो करे अपना, हर हर कथा सदा जप जपना। मंत्र तंत्र औखद पुनः त्यार, हर हर नाम जी प्राण आधार। साचा तन पायो हर रंग, दुत्तर तरे साध कह संग। सुख बैसहु संत सज्जन परवार, हर तन खटियो जाका नाही सुमार। जिसह प्राप्त तिस गुर दे, नानक बिरता कोई नाही। गौड़ी ग्वार री महला पंजवां, हस्त पनीत।

कहो नानक हो तिस बल जाओ। राग गौड़ी ग्वारी महला पंजवा चौपदे दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जो परायो सोई अपना जो तज छोड़न तिस स्यो मन रचना। कहो गसाई मिली ऐ के जो बिबरजत तिस स्यो नेह रहाओ। झूठ बात सा सच कर जाती सत होवन मन लगे ना राती। बावे मार्ग टेढ़ा चलना सीधा छोड़ अपूठा बुनना। दोहां सनिया का कसम प्रभ सोई जिस मेले नानक सो मुक्ता होई। गौड़ी गवार री महला पंजवा कल युग मह मिल आए संयोग। जिचर आ गया तिचर भोग है भोग जलै न पाइए राम स्नेही। किरत संयोग सती उठ होई रहाव। देखा देखी मन हठ जल जाइए प्रिय संग ना पावे बहु जोन पवाइए।

जिन प्रयोग परमेश्वर कर जानिया धन सती दरगाह परवानिया गौड़ी गुआर री महला पंजवा हम तनवंत भागठ सच नाय।

मूल परे पंडार अखूट अतोल खाव है खर्च है रल मिल पाई टूट न आवे वद दो जाई कहो नानक जिस मस्तक लेख लिखाए सो एत खजाने लियार लाई गौड़ी महला पंजवा डर डर मरते जब जानिए दूर डर चूका देखिया भरपूर सतगुर अपने कहो बलिहार छोड़ न जाई सर पर तारे रहाओ दुख रोग सोग बिसरे जब नाम सदा आनंद जा हर गुण गाम बुरा भला कोई ना कही जय छोड़ मान हर चरण गही जय कहो नानक गुर मंत्र चितार सुख पावे साचे दरबार गौड़ी महला पंजवा जांका मीत साजन है समिया तिस जन कहो कहो का की कमिया जां की प्रीत गोबिंद सिओ लागी दुख दर्द भ्रम ता का भागी रहा जां को रस हर रस है आयो सो अन रस नाही लपटायो जा का कहया दरगाह चले सो किसको नदर ले आवे तले जां का सब किस ता का होए नानक ता को सदा सुख होए गौड़ी महला पंजवा जां कै दुख सुख सम कर जापै ता को काड़ा कहां बियापै सहज आनंद हर साधु माहे आज्ञाकारी हर हर राय रहाउ जां कै अचिंत वसै मन आए ता को चिंता कतहु नाहे जां

देव आद पुरख अपरंपर देव तिसे ऊपर मन कर तू आसा आद जुगाद जा का परवासा जा की प्रीत सदा सुख होए नानक गावे गुर मिल सोए गौड़ी महला पंजवा मीत करे सोई हम माना मीत के करतब कुशल समाना एकाटेक मेरे मन चीत जिस किस करना सो हमरा मीत रहाओ मीत हमारा वे परवाहा गुर कृपा ते मोहे असनाहा मीत हमारा अंतर जामी सम्राट पुरख पार ब्रह्म स्वामी हम दासे तुम ठाकुर मेरे मान महत नानक प्रभ तेरे गौड़ी महला पंजवा जाको तुम पये समरथ अंगा।

सो वड्डा जिन राम निवलाई रहाउ। भूमिया भूम ऊपर नित लुजै, छोड़ चलै तृष्णा नहीं बुझै। कहो नानक एहो तत बीचारा, बिन हर भजन नाही छुटकारा। गौड़ी महला पंजवां, पूरा मार्ग पूरा इशनान, सब किश पूरा।

हर कै मार्ग पतत पनीत, पूरी शोभा पूरा लोकीक, करनहार सद वसै हदूरा, कहो नानक मेरा सतगुर पूरा। गौड़ी महला पंजवा, संत की धूर मिटे अग कोट, संत प्रसाद जन्म मरण ते छोट, संत का दर्श पूर्ण इशनान, संत कृपा ते जपिए नाम रहाव, संत कै संग मिटिया अहंकार, दृष्ट आवे सबे कंकार, संत सो प्रसन्न आए वस पंचा, अमृत नाम हृदय ले संचा, कहो नानक जा का पूरा कर्म, तिस भेटे साधु के चरण। गौड़ी महला पंजवा, हर गुण जपत कमल परगासै, हर सिमरत त्रास सब नासै, सामत पूरी जित हर गुण गावे, बड़े भाग साधु संग पावे रहाव, साध संग पाईए निदनामा, साध

मुख हर हर बोले सो जन इत उत कतह ना डोले जां कै हर तन सो सच साह गुरपूरै कर दीनो विसा जीवन पुरख मिलिया हर राया कहो नानक परम पद पाया गौड़ी महला पंजवां नाम भगत कै प्राण आधार नामो धन नामो व्यवहार नाम वडाई जन सोभा पाई कर किरपा जिस आप दिवाए रहाउ नाम भगत कै सुख स्थान नाम रत सो भगत परवान हर का नाम जन को तारै सास सास जन नाम सुमारै कहो नानक जिस पूरा भाग नाम संग ताका मन लाग गौड़ी महला पंजवां संत प्रसाद हर नाम ते आया तब ते तावत मा

कल अराध भगवंता हर सिमरन ते मिटी मेरी चिंता सब ताज अनाथ इक सरने आयो ऊच अस्थान तब सहजे पायो दुख दर्द परम पौ नसया करनहार नानक मन बसया गौड़ी महला पंजवा कर कर टहल रसना गुण गावो चरण ठाकुर कै मार्ग धामो भलो समो सिमरन की बरिया सिमरत नाम पै पार उतरिया रहाओ नेतर संतन का दर्शन पेख प्रभ अवनासी मन महलेख सुन कीर्तन साध पह जाए जन्म मरण की त्रास मटाए चरण कमल ठाकुर उरतार दलाब दे नानक निस्तार गौड़ी महला पंजवां जाको अपनी कृपा धारे सो जन रसना नाम उचारे हर बिसरत सहसा दुख व्यापे सिमरत नाम परम पौ भागे।

पहल करत जन सू है ता कौ माया अग्न ना पू है। मन तन मुख हर नाम दयाल नानक तजी अले।

एक टकाई दुख बिन से सुख हर गुण गाई गुर पूरा पेटिया लिवलाई रहाउ हर का नाम दियो गुर मंत्र मिटे वसूरे उतरी चिंत आनंद भये गुर मिलत कृपाल कर कृपा।

गुण पूरै जब कृपा करी, पंथ नानक मेरी पूरी परी, गौड़ी महला पंजवां, अनक रसा खाई जैसी ढोर,

साध संग मिल भजह गोपाला गौड़ी महला पंजवां कल कलेश गुर शब्द निवारी आवन जान रही सुख सारी तै बिन से निरभउ हर त्याया साध संग हर के गुण।

जात पूरे गुड़ काढ़े जन्म जन्म के टूटे गांडे कहो नानक तिस गुर बलिहारी जिस भेटत गत पई हमारी गौड़ी महला पंजवां साध संग तां की सरनी परो मन तन अपना आगै धरो अमृत नाम पीवो मेरे भाई सिमर सिमर सब तपत बुझाई रहाओ ताज अवमान जन्म मरण निवारो हर के दास के चरण नमस्कारो सास सास प्रभ मन सुमाले सो तन संचो जो चाले नाले तिसह प्राप्त जिस मस्तक भाग कहो नानक ता की चरणी लाग गौड़ी महला पंजवा सूके हरे किए खिन माए अमृत दृष्ट संच जीवाए काटे कष्ट पूरे गुरुदेव सेवक को दीनी अपनी सेव रहाओ मिट गई चिंत पुन्नी मन आसा कर दया सतगुर गुणतासा दुख नाठे सुख आए समाए ढील ना परी जा गुर फुरमाए इच पुन्नी पूरे गुर मिले नानक ते जन सुफल फले गौड़ी महला पंजवां।

सिमरत सिमरत प्रभ का नाम, सगल रोग का बिनसे आठाव, सहज सुपाए बोले हर वाणी, आठ पहर प्रभ सिमरहु प्राणी, दुख दर्द जम नेड़ ना आवे, कहो नानक जो हर गुण गावे, गौड़ी महला पंजवा, पले दिनस पले संजोग, जित पेटे पार ब्रह्म निर्जोग, ओह बेला कहो हों बल जाऊं, जित मेरा मन जपै हर नाऊं, रहाऊं, सफल मूरत सफल ओह करी, जित रसना उचरै हर हरी, सफल ओह माथा संत नमस्कारस, चरण पनीत चलह हर मार्ग, कहो नानक भला मेरा कर्म, जित पेटे साधु के चरण, गौड़ी महला पंजवा, गुर का शब्द राख मन माहे, नाम सिमर चिंता सब जाहे, बिन

के अंतर जामी गौड़ी महला पंजवा पै मह रचियो सब संसारा तिस पहो नाही जिस नाम आधारा।

तुमरी कृपा ते दरगाह थाओ, तुझ बिन पार ब्रह्म नहीं कोए, तुमरी कृपा ते सदा सुख होए रहाओ। तुम मन बसे तो दुख न लागे, तुमरी कृपा ते ब्रह्म पौ भागे, पार ब्रह्म अपरंपर स्वामी, सगल कटा के अंतर जामी, करूं अरदास अपने सतगुर पास।

हर हर नाम जपहु नित प्राणी, नाम बिहून त्रिग देह बिगानी रहाउ। नाम बिना नाही मुख भाग, परत

तू है मेरा स्वामी, सब किस सुमते तू अंतर जामी, पार ब्रह्म पूर्ण जने ओट, तेरी शरण उदर है जन कोट रहाव। जेते जी तेते सब तेरे, तुमरी कृपा ते सुख कनेरे, जो किस वरतै सब तेरा पाना, हुक्म बूझै सो सच समाना, कर कृपा दीजै प्रवदान, नानक सिमरै नाम निदान, गौड़ी महला पंजवां, ताका दर्स पाईऐ वड भागी, जाकी राम नाम लिव लागी, जाकै हर वस्या मन माही, ताको दुख सुपने पी नाही रहाओ, सर्व निदान राखे जन माहे, ताकै संग किल विख दुख जाए, जन की महिमा कथि न जाए, पार ब्रह्म जन रहया समाए, कर कृपा प्रभ बिनो सनीजै, दास की तूर नानक को दीजै, गौड़ी महला पंजवां, हर सिमरत तेरी जाए बलाए, सर्व कल्याण बसै मन आए, भज मन मेरे एको नाम, जी तेरे कै आवै काम रहाव, रैन दिनस गुण गाओ अनंता, गुरपूरे का निर्मल मंता, छोड़ अपाव एक टेक राख, महापदार्थ अमृत रस चाख, विक्रम सागर तेई जन तरे, नानक जाको नदर करे, गौड़ी महला पंजवां, हृदय चरण कमल प्रवतारे, पूरे सतगुर मिल निस्तारे, गोविंद गुण गाव हो मेरे भाई, मिन साधु हर नाम त्याई रहाओ, दलभ देह होई परवान, सतगुर ते पाया नाम निशान, हर सिमरत पूरन पद पाया, साध संग पै परम मटाया, जत कत देखो तत रहया समाए, नानक दास हर की सरनाए, गौड़ी महला पंजवां, गुरजी के दर्शन कौ बल जाओ, जप जप जीवा सत गुर नाओ, पार ब्रह्म पूर्ण गुरदेव, कर कृपा लागो तेरी सेव रहाओ, चरण कमल हृदय उरतारी, मन तन धन गुर प्राण आधारी, सफल जन्म होवै परवान, गुर पार ब्रह्म निकट कर जान, संत धूर पाईऐ वड भागी, नानक गुर भेटत हर सिउं लिव लागी, गौड़ी महला पंजवां, करै दुख करम दिखावै होर, राम की दरगाह बांधा चोर, राम रमै सोई रामाणा, जल थल महियल एक समाणा रहाउ, अंतर बेख मुख अमृत सुनावे, जमपुर बाता चोटा खावे, अनक पड़दे मह कमावे विकार, खिन मह प्रगट होए संसार, अंतर साच नाम रस राता, नानक तिस किरपाल बिदाता, गौड़ी महला पंजवां, राम रंग कदे उतर न जाए, गुरपूरा जिस दे बुझाए, हर रंग राता सो मन साचा, लाल रंग पूर्ण पुरख बधाता रहाओ, संत है संग बैस गुण गाए, ताका रंग न उतरै जाए, बिन हर सिमरन सुख नहीं पाया, आन रंग फीके सब माया, गुर रंगे से पहे निहाल, कहो नानक गुर पहे है दयाल, गौड़ी महला पंजवां, सिमरत स्वामी किल विकनासे, सुख सहज आनंद निवासे, राम जना को राम परोसा, नाम जपत सब मिटेओ अंदेसा रहाव, साध संग कस पौ ना परांति, गुण गोपाल गाइह दिन राति, कर कृपा प्रभ बंदन छोट, चरण कमल की दीनी ओट, कहो नानक मन पई प्रतीत, निर्मल जस पीवह जन नीत, गौड़ी महला पंजवां, हर चरणी जा का मन लागा, दुख दर्द प्रमता का भागा, हर धन को व्यापारी पूरा, जिसह

जप जप जीवे परमानंदा नाम रास साध संग खाटी कहो नानक प्रभ अपदा काटी गौड़ी महला पंजवा हर सिमरत सब मिट है कलेश चरण कमल मन मह प्रवेश उच्चरो हो राम नाम लख बारी अमृत रस पीव हो प्रभ प्यारी रहाओ सुख सहज रस महा आनंदा जप जप जीवे परमानंदा काम क्रोध लोभ मद खोए साध कै संग किल विख सब धोए कर कृपा प्रभ दीन दयाला नानक दीजै साध रवाला गौड़ी महला पंजवा जिसका दिया पैने खाए तिस स्यों आलस क्यों बने माए खसम बिसार आन कम लाग है कौडी बदले रतन त्याग है रहाओ प्रभु त्याग लागत अन लोभा दास सलाम करत कत सुभा अमृत रस खावे है खान पान जिन दिए तिसै ना जान है स्वान कहो नानक हम लून हरामी बख्श ले हो प्रभ अंतर जामी गौड़ी महला पंजवा प्रभ के चरण मन माहे ध्यान सगल तीरथ मज्जन इशनान हर दिन हर सिमरन मेरे पाई कोट जन्म की मन लह जाई रहाओ हर की कथा रित माहे बसाई मन बाशत सगले फल पाई जीवन मरण जन्म परवान जहां कैर दैवसै भगवान कहो नानक से ही जन पूरे जिन्ना परापत साधु तूरे गौड़ी महला पंजवा खांदा पैंदा मुकर पाए तिसनो जो है दूत धर्म राय तिस स्यों बेमुख जिन जियो पिंड दीना कोट जन्म परम है बहु जूना रहाओ साकत की ऐसी है रीत जो किस करे सगल विपरीत जियो प्राण जिन मन तन तारिया सोई ठाकुर मनहु बिसारिया बदे विकार लिखे बहु कागर नानक उधर कृपा सुख सागर पार ब्रह्म तेरी सरनाए बंधन काट तरे हर नाए रहाओ दूजा गौड़ी महला पंजवा अपने लोभ को कीनो मीत सगल मनोरथ मुकत पद दीत ऐसा मीत करहु सब कोई जाते बिरथा कोई ना होए रहाओ अपने सुआए हृदय लै तारिया दुख दर्द रोग सगल बदारिया रसना गीदी बोलत राम पूर्ण होए सगले काम अनक बार नानक बलिहारा सफल दर्शन गोविंद हमारा गौड़ी महला पंजवा कोट बिगन हिरे खिन माहे हर हर कथा साध संग सुनाहे पीवत राम रस अमृत गुण जास जप हर चरण मिटी खुद तास रहाओ सर्व कल्याण सुख सहज निदान जहां कैर दे वस्त है भगवान।

कहो नानक अटल एह धर्म गौड़ी महला पंजवां कर कृपा भेटे गुरसोई तित बल रोग न व्यापै कोई राम रमन तरन पै सागर सरल सूर फारे जमकागर रहाओ सतगुर मंत्र दियो हर नाम एह आसर पूर्ण पय काम जप तप संयम पूरी वडियाई

अंतरजामी गौड़ी महला पंजवा आठ पहर संगी बटवारी कर कृपा प्रभ लय निवारी ऐसा हर रस रमो।

होई हर को नाम, बिचर संसार पूर्ण सब काम। वड भागी हर कीर्तन गाइए, पार ब्रह्म तू देहे ता पाइए रहाउ। हर के चरण हृदय उरतार, भव सागर चढ़ उतरह पार। साधु संग करहो सब कोय, सदा कल्याण फिर दुख ना होय। प्रेम भगत भज गुणी निदान, नानक दरगाह पाई है मान। गौड़ी महला पंजवां, जल थल महियल पूर्ण हर मीत। ब्रह्म बिन से गाए गुण नीत, उठत सोवत हर संग पहरुआ। जा कै सिमरन जम नहीं डरुआ रहाउ। चरण कमल प्रभ हृदय निवास, सगल दुख का होया नास। आसा मान तान तानेक, साचे साकी मन मह टेक। महा गरीब जन साध अनाथ, नानक प्रभ राखे दे हाथ। गौड़ी महला पंजवां, हर हर नाम मज्जन कर सूचे। कोट ग्रहण पुन फल मूचे रहाउ। हर के चरण हृदय मह बसे, जन्म जन्म के किल विख नसे।

किल विख खोए, सिमरह साध करह आनंद, मन तन रवे परमानंद, जिसह प्राप्त हर चरण निदान, नानक दास तिसह कुर्बान। गौड़ी महला पंजवां।

संत संग जप केवल नाम, कर्म तर्म नियम ब्रत पूजा, पार ब्रह्म बिन जान ना दूजा, ता की पूर्ण होई काल, जा की प्रीत अपने प्रभ नाल, सो वैष्णो है अपर अपार, कहो नानक जिन तजे बिकार, गौड़ी महला पंजवां, जीवत छाड़ जाहे देवाने।

रहाउ। बिखैठ गौरी जिन जिन खाई, ताकी तृष्णा कबहू न जाई। दारण दुख दुत्तर संसार, राम नाम बिन कैसे उतर सपार। साध संग मिल दुए कुल साध, राम नाम नानक आराध। गौड़ी महला पंजवा, गरीबा उपर जे खिंजै दाड़ी। पार ब्रह्मसा अग्न मह साड़ी, पूरा न्याओ करे करतार। अपने दास को रखनहार, रहाउ आद जगाद प्रगट प्रताप। निंदक मुआ उपज वड ताप, तिन मारिया जे रखे न कोई। आगे पाचे मंदी सोए, अपने दास राखे कंठ लाए। शरण नानक हर नाम त्याए। गौड़ी महला पंजवा, महजर झूठा की तुने आप। पापी को लागा संताप, जिसह सहाई गोविंद मेरा। तिस को जम नहीं आवे नेरा, रहाउ साची दरगाह बोले कूड़। सिर हाथ पछोड़े अंधा मूड़, रोग व्यापे कर दे पाप। अदली होए बैठा प्रभ आप, अपन कमाए आपे बांधे। दर्ब गया सब जी कै साथे, नानक शरण परे दरबार। राखी पैज मेरे करतार, गौड़ी महला पंजवा। जन की धूर मन मीठ खटानी, पूर्व कर्म लिखिया तुर प्राणी। रहाउ अहम बुद्ध मन पूर थिधाई, साध तूर कर सुध मन जाई। अनक जला जे धोवै देही, मैल न उतरै सुध न तेही। सतगुर भेट्यो सदा कृपाल, हर सिमर सिमर काटिया पौ काल। मुकत भुगत जुगत हर नाओ, प्रेम भगत नानक गुण गाओ। गौड़ी महला पंजवा।

कहो नानक जिस कृपा तार है हिरदा शुद्ध ब्रह्म विचार है। गौड़ी महला पंजवां थिर कर बैसो हर जन प्यारी।

बादशाह सहा सब वस कर दीने, अमृत नाम महारस पीने, निरपो होए भजो भगवान, साध संगत मिल कीनो दान, सरन परे प्रभ अंतर जामी, नानक ओट पकरी प्रभ स्वामी, गौड़ी महला पंजवा, हर संग राते पाहे ना जले, हर संग राते माया नहीं चले, हर संग राते नहीं डूबे जला, हर संग राते सुफल फला, सब पै मिटह तुम्हारे नाई, पेटत संग हर हर गुण गाए रहाओ, हर संग राते मिटै सब चिंता, हर सिंह सो रचै जिस साध का मंता, हर संग राते जम की नहीं त्रास, हर संग राते पूर्ण आस, हर संग राते दुख न लागै, हर संग राता अन दिन जागै, हर संग राता सहज कर वसै, हर संग राते ब्रह्म पौ नसै, हर संग राते मत उत्तम होए, हर संग राते निर्मल सोए, कहो नानक तिन कहो बल जाई, जिनको प्रभ मेरा बिसरत नाही, गौड़ी महला पंजवा, उदम करत सीतल मन पहे, मार्ग चलत सगल दुख गए, नाम जपत मन पहे आनंद, रस गाए गुण परमानंद, खेम पया कुशल घर आए, पेटत साध संग गई बलाए रहाओ, नेत्र पनीत पेखत ही दर्श, तन मस्तक चरण कमल ही परस, गोबंद की टहल सफल एकाया, संत प्रसाद परम पद पाया, जन की कीनी आप सहाय, सुख पाया लग दासह पाए, आप गया ताया पह पहे, कृपा निदान की सरनी पए, जो चाहत सोई जब पाया, तब ढूंढन कहां को जाया, अस्थिर पए बसे सुख आसन, गुर प्रसाद नानक सुख बासन, गौड़ी महला पंजवा, कोट मजन कीनो इशनान, लाख अरब खरब दीनो दान, जा मन वस्यो हर को नाम, सगल पवित्र गुण गाए गोपाल, पाप मिट है साधु सरन दयाल रहाव, बहुत उर्द तप साधन साधे, अनक लाभ मनोरथ लादे, हर हर नाम रसन अरादे, सिमरत शास्त्र वेद बखाने, जोग ज्ञान सिद्ध सुख जाने, नाम जपत प्रभ सिंह मन माने, अगाध बोध हर अग्नि अपारे, नाम जपत नाम हृदय बिचारे, नानक कहो प्रभ कृपा तारे, गौड़ी महला पंजवा, सिमर सिमर सिमर सुख पाया, चरण कमल गुर हृदय बसाया, गुरु गोबिंद पार ब्रह्म पूरा, किसह अराध मेरा मन तीरा रहाओ, अन दिन जपो गुरु गुर नाम, ताते सिद्ध पए सगल काम, दर्शन देख सीतल मन पहे, जन्म जन्म के किल बिख गए, कहो नानक कहां पै पाई, अपने सेवक की आप पैज रखाई, गौड़ी महला पंजवा, अपने सेवक को आप सहाई, नित प्रतपार है बाप जैसे माई, प्रभ की शरण उबरे सब कोए, कर्ण करावन पूर्ण सच सोए रहाव, अब मन बसया करने हारा, पै बिन से आत्म सुख सारा, कर कृपा अपने जन राखे, जन्म जन्म के किल बिखलाते, कहन न जाए प्रभ की वडियाई, नानक दास सदा सरनाई, राग गौड़ी चेती महला पंजवा दुपदे, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राम को बल पूरन पाई, ताते बिरता ना व्यापै काई रहाओ, जो जो चितवै दास हर माई, सो सो करता आप कराई, निंदक की प्रभ पत गुआई, नानक हर गुण निरपो गाई, गौड़ी महला पंजवा, भुज बल बीर ब्रह्म सुख सागर,
गर्त परत गह लेहो अंगोरिया रहाओ। श्रवण ना सुरत नैन सुंदर नहीं, आरत द्वार रटत पिंगोरिया। दीना नाथ अनाथ करना में, साजन मीत पिता महतरिया। चरण कमल हृदय गह नानक।

तेरे सम्मना कवन विधि विचार सरल समाई दास हित ऊचे अगम अपार सगल पदार्थ अष्ट सिद्ध नाम महारस माहे सो प्रसन्न भय केसवा सेजन हर गुण गाहे मात पिता सुत बंध पो तू मेरे प्राण आधार साध संग नानक भजै बिख तरिया संसार गौड़ी बैरागण रोहोए के संत के घर महला पंजवां।

रहाव। बन बन खोजत फिरत बैरागी, बिरले काहू एक लिव लागी। जिन हर पाया से वड भागी, ब्रह्मादिक सनकादिक चाहै। जोगी जति सिद्ध हर आहै, जिसह प्रापत सो हर गुण गाए। ताकी शरण जिन बिसरत नाही, बड़ भागी हर संत मलाही।

आधारी राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद कवन गुण प्राण पत मिलो मेरी माई रहाओ रूपहीन बुद्ध बलहीनी मोहे परदेसन दूर ते आई नाहिन दर्ब ना जोबन माती मोहे अनाथ की करो सुमाई खोजत खोजत पई बैरागन प्रभ दर्शन कहो हौ फिरत तसाई दीन दयाल कृपाल प्रभ नान साध संग मेरे जनन बुझाई गौड़ी महला पंजवा प्रभ मिलबे कौ प्रीत मन लागी पाई लगो मोहे करो बेनती को संत मिले बड़ भागी रहाव मन अर्पो तन राखो आगे मन की मत मोहे सगल त्यागी जो प्रभ की हर कथा सुनावे अन दिन फिरो तिस पिछे विरागी पूरब कर्म अंकुर जब प्रगटे पेट्यो पुरख रसक बैरागी मिट्यो अंधेर मिलत हर नानक जन्म जन्म की सोई जागी गौड़ी महला पंजवा।

निरास गौड़ी महला पंजवा हर पीखन को सिमरत मन मेरा आस प्यासी चितवो दिन रैनी है कोई संत मलावे नेरा रहाउ सेवा करूं दास दासन की अनक पांत तिस करूं निहुरा तुला तार तुले सुख सगले बिन हर दर्श सबो ही थोरा संत प्रसाद गाए गुण सागर जन्म जन्म को जात बोहोरा आनंद सुख पेटत हर नानक जन्म किरतार्थ सफल सवेरा राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद किन बिद मिले गुसाई मेरे राम राय कोई ऐसा संत सहज सुखदाता मुह मार्ग दे बताई रहाउ अंतर अलख न जाई लखिया विच पड़दा हूं मैं पाई माया मोहे सबो जग सोया एहो परम कहो क्यों जाई एका संगत इकत ग्रह बस्ते मिल बात ना करते पाई एक बस्त बिन पंच दोहेले ओह बस्त अगोचर ठाई जिसका ग्रहो तिन दिया ताला कुंजी गुर सौंपाई अनक अपाव करे नहीं पावे बिन सत

सहज भया भ्रम खिन मह नाठा मिल ज्योति ज्योत समाई रहा दूजा गौड़ी महला पंजवा ऐसो परचो पायो करी कृपा दयाल बीतलै सतगुर मुझे बतायो रहाउ जत कत देखो तत तत तुम ही मोहे एहो विश्वास हुए आयो कै पह करो अरदास बेनती जो सुन तो है रघुरायो लहयो सहसा बंधन गुर तोरे ता सदा सहज सुख पायो होना सा सोई फुनोसी सुख दुख कहां दिखायो खंड ब्रह्मांड का एको ठाणा गुर परदा खोल दिखायो नौ निध नाम निधान एक ठाई तौ बाहर कैठ जायो एक कनक अनक भांत साजी बहु प्रकार रचायो कहो नानक परम गुर खोई है इव तत्तै तत् मलायो गौड़ी महला पंजवा औद कटै दिन सरै नार।

रहाउ। अनक जन्म बहु जोनी भ्रमिया, बहुर बहुर दुख पाया, तुमरी कृपा ते मनुख दे पाई है, देहो दर्श हर राया, सोई हुआ जो तिस पाणा, अवर ना किन्ही कीता, तुमरे पाणे परम मोहे मोहया, जागत ना ही सूता, बिनो सुनो तुम प्राण पत प्यारी, कृपा निद दयाला, राख ले हो पिता प्रभ मेरे, अनाथ है कर प्रतपाला, जिसनो तुम्हें दिखायो दर्शन, साध संगत कह पाछे, कर कृपा तूर देहो संतन की, सुख नानक एहो बांछे, गौड़ी महला पंजवा, हौ ता कै बलिहारी, जा कै केवल नाम आधारी रहाओ, महमा ता की कीतक गनिए, जन पार ब्रह्म रंग राते, सुख सहज आनंद तिना संग, उन समसारे अवर ना दाते, जगत उदाहरण से ही आए, जो जन दर्श प्यासा, उनकी शरण पर सो तरिया, संत संग पूर्ण आसा, ता कै चरण परो ता जीवा, जन कै संग निहाला, भगतन की रेन, होए मन मेरा, हो प्रभु कृपाला, राज जोबन अवध जो दीसे, सब किस जोग मह काटिया, नाम निदान सद नव तन निर्मल, एहो नानक हर तन खाटिया, गौड़ी महला पंजवा, जोग जुगत सुन आयो गुरते, मोको सतगुर शब्द बुझायो रहाओ, नौ खंड पृथ्वी इस तन मह रविया, निमख निमख नमस्कारा, दीखिया गुर की मुंदरा कानी, दृढ़े हो एक निरंकारा, पांच चेले मिल पए इकतरा, एक सकै वस किए, दस बैराग ने आग्या कारी, तब निर्मल जोगी थिए, परम जराए चराई बेपूता, पंथ एक कर पेखिया, सहज सूख सो कीनी भुगता, जो ठाकुर मस्तक लेखिया, जह पौ नाही तहां आसन बांधे हो, सिंघी अनहत बानी, तत बीचार डंडा कर राखे हो, जुगत नाम मन पानी, ऐसा जोगी वडभागी पेटे, माया के बंधन काटे, सेवा पूज करो तिस मूर्त की, नानक तिस पग चाटे, गौड़ी महला पंजवा, अनूप पदार्थ नाम सुनो, सगल त्याए ले मीता, हर औखद जाको गुरदिया, ताके निर्मल चीता रहाओ, अंधकार मिट्यो ते तानते, गुर शब्द दीपक परगासा, प्रभु की जाली ताकी काटी, जाको साध संगत विश्वासा, तारी ले पवजल तारु बिखड़ा, बोहित साधु संगा, पूर्ण होई मन की आसा, गुर पेट्यो हर रंगा, नाम खजाना भगती पाया, मन तन तृप्त अगाय, नानक हर जियो ता को देवे, जा को हुक्म मनाए, गौड़ी महला पंजवा, दया मया कर प्राण पत मोरी, मोहे अनाथ सरन प्रभ तोरी, अंध कूप मह हाथ दे राखो, पशु सियानप उकत ना मोरी रहाओ, कर्म करावन सब किश तुम ही, तुम समरथ नाही अनहोरी, तुमरी गातमित तुम ही जानी, से सेवक जिन भाग मथोरी, अपने सेवक संग तुम प्रभराती, ओत पोत भगतन संग जोरी, प्रियो प्रियो नाम तेरा दर्शन चाहे, जैसे दृष्ट ओह चंद चकोरी, राम संत मह भेद किश नाही, एक जन कई मह लाख करोरी, जा कहिय प्रगट प्रभ होआ, आनदिन कीर्तन रसन रमोरी, तुम समरथ अपार अति ऊचे, सुखदाते प्रभ प्राण अधोरी, नानक को प्रभ की जय कृपा, उन संतन कै संग संगोरी, गौड़ी महला पंजवा।
तुम हर से तीर आते संत हो, नबाहे लेहो मोको पुरख बधाते, ओढ़ पहचाव हुदाते रहाओ। तुमरा मर्म तुमा ही जानिया, तुम पूर्ण पुरख बधाते, राखो शरण अनाथ दीन कहो, करहो हमारी गाते। तरन सागर बोहित चरण तुम्हारे, तुम जानो अपनी पांते, कर कृपा जिस राखो संगे, ते पार पराते। ईत ऊत प्रभ तुम समरथा, सब किस तुम रह हाथे, ऐसा निदान देहो मोको, हर जन चले हमारे साथे। निर्गुण यारे कहो गुण की जय, हर नाम मेरा मन जापे, संत प्रसाद नानक हर पेटे, मन तन शीतल त्रापे। गौड़ी महला पंजवा, सहज समायो देव, मोको सतगुर भये दयाल देव रहाओ। काट जेवरे कियो दासरु, संतन टहलायो, एक नाम को थियो पुजारी, मोको अचरज गुर है दिखायो। पयो प्रगास सर्व उजियारा, गुर ज्ञान मन है प्रगटायो, अमृत नाम पियो मन तृप्तया, अन पै ठहरायो। मान आज्ञा सर्व सुख पाए, दुखा ठाउ गवायो, जो सो प्रसन्न पये प्रभ ठाकुर, सब आनंद रूप दिखायो। ना किस आवत ना किस जावत, सब खेल कियो हर रायो। कहो नानक अगम अगम है ठाकुर, भगत टेक हर नायो। गौड़ी महला पंजवा, पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर, मन ता कियो टगहि जैरे, जिन तारे ब्रह्मांड खंड हर, ताको नाम जपी जैरे रहाव। मन की मत त्याग हो हर जन, हुक्म बूझ सुख पाई रे, जो प्रभ करे सोई पल मानो, सुख दुख योही त्याई रे। कोट पतत उधारी खिन में, करते बार ना लागे रे, दीन दर्द दुख पंजन स्वामी, जिस पावे तिस

इस करते पूर रहे हो रतनागर के जाचक जाचे नाम तेरा स्वामी कट कट अंतर सोई रे नानक दास तां की सरनाई जाते वृथा ना कोई रे राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर हर कबहू ना मनहु बिसारे इहां उहां सर्ब सुख दाता सगल कटा प्रित पारी रहाओ महाकष्ट काटे खिन पीतर रसना नाम चितारी शीतल शांत सुख हर सरणी जलती अग्न निवारी गर्भ कुंड नरक ते राखे पव जल पारी उतारी चरण कमल अराधत मन में जम की त्रास बदारी पूर्ण पार ब्रह्म परमेश्वर ऊंचा अगम अपारी गुण गावत त्यावत सुख सागर जुए जन्म ना हारी काम क्रोध लोभ मोह मन लीनो निर्गुण के दातारी कर कृपा अपनो नाम दीजे नानक सद बलिहारी राग गौड़ी चेती महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सुख नाही रे हर भगत बिना जीत जन्म एहो रतन अमोलक साध संगत जप एक खिना रहाव सुत संपत बंता बनोद छोड़ गए बहुलोग भोग हैवर गैवर राज रंग त्याग चल्यो है मूड नंग चोआ चंदन देह फूलिया सो तन धर संग रूलिया मोहे मोहिया जाने दूर है कहो नानक सदा हजूर है गौड़ी महला पंजवा मन धर तरबे हर नाम नु सागर लहर संसार संसार गुरबोहित पार ग्राम नु रहाओ कल कालख अंधियारिया गुर ज्ञान दीपक उजियारिया बिख बिख्या पसरी अत घनी उबरे जप जप हर गुनी मतवारो माया सोया गुर भेटत भ्रम पौ खोया कहो नानक एक त्याया घट घट नदरी आया गौड़ी महला पंजवा दीवान हमारू तुही एक सेवा थारी गुरह टेक रहाओ अनक जुगत नहीं पाया गुर चाकर ले आया मारे पंच बिखा दिया गुर कृपा ते दल साध्या बख्शीस वजहो मिल एक नाम सुख सहज आनंद विश्राम प्रभ के चाकर से भले नानक तिन मुख उजले गौड़ी महला पंजवा जियरे ओला नाम का अवर जे करन कराम नु तिन मह पहो है जाम का रहाओ अवर जतन नहीं पाई है वड्डे भाग हर त्याई है लाख हिकमती जानी है आगे तिल नहीं मानी है हम बुद्ध कर्म कमावने ग्रह बालू नीर बहावने प्रभ कृपाल कृपा करे नाम नानक साधु संग मिले गौड़ी महला पंजवा बार ने बलिहार ने लख बरिया नामो हो नाम साहिब को प्राण अधरिया रहाओ कर्ण करावन तुही एक जी जंत की तुही टेक राज जोगन प्रभ तू तली तू निर्गुण तू सरगुणी इहा उहा तुम रखे गुर कृपा ते को लखे अंतर जामी प्रभ सुजान नानक तकिया तुही तान गौड़ी महला पंजवा हर हर हर आराधी है संत संग हर मन वसै परम मोह पहो साधी है रहाओ वेद प्राण सिमरत भने सब ऊच बराजत जन सुने सगल अस्थान पै पीत चीन राम सेवक पै रहत कीन लख चौरासी जोन फिर है गोविंद लोक नहीं जन्म मरह बल बुद्ध स्यान पहो मैं रही हर साध सरन नानक गही गौड़ी महला पंजवा मन राम नाम गुन गाई है नीत नीत हर सेवी है
सास सास हर त्याई रहाओ, संत संग हर मन वसै, दुख दर्द अनेरा भ्रम नसै, संत प्रसाद हर जापी है, सो जन दुख ना व्यापी है, जा को गुर हर मंत्र दे, सो उबरिया माया अग्नते, नानक को प्रभ मया कर, मेरा मन तन वासै नाम हर, गौड़ी महला पंजवां, रसना जपिया एक नाम, इहां सुख आनंद घना, आगे जी कै संग काम रहाओ, कटिया तेरा अंग रोग, तू गुर प्रसाद कर राज जोग, हर रस जिन जन चाखिया, तां की तृष्णा लाथिया, हर विश्राम निध पाया, सो बहुर न कत ही ताया, हर हर नाम जा को गुर दिया, नानक तां का भउ गया, गौड़ी महला पंजवां, जां को बिसरै राम नाम, ताहू को पीर, साध संगत मिल हर रवहै से गुणी गहीर रहाव, जां को गुरमुख हृदय बुद्ध, तां कै कर तल लव निध सिद्ध, जो जान है हर प्रभ धनी, किस नाही तां कै कमी, करनै हार पछानिया, सर्ब सुख रंग माणिया, हर तन जां कै ग्रह वसै, कहो नानक तिन संग दुख नसै, गौड़ी महला पंजवां, गर्भ बड़ो मूल इतनो, रहन नहीं गहो कितनो रहाव, बेबरजत बेद संतना, वाहू स्यों रे हितनो, हार जुआर जुआ बिदे, इंद्री वस लै जितनो, हरन परन संपूर्णा, चरण कमल रंग रितनो, नानक उदरे साध संग, किरपा निद मैं जितनो, गौड़ी महला पंजवां, मोहे दासरो ठाकर को, तान प्रभ का खाना रहाओ, ऐसो है रे खसम हमारा, खिन मह साज स्वार नहारा, काम करी जे ठाकुर पावा, गीत चरित प्रभ के गुण गावा, सरन परयो ठाकुर वजीरा, तिना देख मेरा मन धीरा, एक टेक एको आधारा, जन नानक हर की लागा कारा, गौड़ी महला पंजवां, है कोई ऐसा हूं मैं तोरै, इस मीठी ते एहो मन हो रै रहाओ, अज्ञानी मनुख भया, जो नाही सो लोरै, रैण अंधारी कारिया, कमन जुगत जित पूरै, प्रमतो हारिया, अनक विधि कर टोरै, कहो नानक किरपा पही, साध संगत निद मोरै, गौड़ी महला पंजवां, चिंता मन करना मई रहाओ, दीन दयाला पार ब्रह्म, जांकै सिमरन सुख पई, अकाल पुरख अगाध बोध, सुंत जसो कोट अग खई, किरपा निद प्रभ मया तार, नानक हर हर नाम लई, गौड़ी पूर्वी महला पंजवां, मेरे मन सरन प्रभु सुख पाए, जान दिन बिसरै प्राण सुख दाता, सो दिन जात अजाय रहाव, एक रैन के पहुन तुम आए, बहु जुग आस बंधाए, ग्रह मंदर संपै जो दिसै, ज्यों तरवर की छाए, तन मेरा संपै सब मेरी, बाग मिलक सब जाए, देवनहारा बिसरियो ठाकुर, खिन मह होत पराए, पहरे बागा कर इशनाना, चोआ चंदन लाए, निरपहो निरंकार नहीं चीनिया, ज्यों हस्ती नवाए, जो होए कृपाल, ता सतगुर मिले, सब सुख हर के नाए, मुक्त भया बंधन गुरु खोले, जन नानक हर गुण गाए, गौड़ी पूर्वी महला पंजवां, मेरे मन गुर गुर गुर सद करिए, रत्न जन्म सफल गुर किया, दर्शन को बलहरिये रहाव, जेते सास ग्रास मन लेता, तेते ही गुण गाइये, जो हुए दयाल सतगुरे अपना, तां एह मत बुद्ध पाइये, मेरे मन नाम लए जम बंद ते छूटे,
सर्व सुखा सुख पाईए। सेव स्वामी सतगुरु दाता मन वंचत फल आईए। नाम इष्ट मीत सुत करता मन संग तुहारे चाले। कर सेवा सतगुरु अपने की गुर ते पाईए पाल। गुर कृपाल कृपा प्रभ धारी बिन से सर्व अंदेसा। नानक सुख पाया हर कीर्तन मिटियो सगल कलेशा। राग गौड़ी महला पंजवां।

कारी अनक प्रकारी परिग्रह बेकारी बुरा भला नहीं सुजिए अनक बंधन माया परमत परमाया गुण निद नहीं गाया मन बिखै ही मह लुजिए जा कोरे कृपा करे जीवत सोई मरे साध संग माया तरे नानक सो जन दर हर सिजिए गौड़ी महला पंजवा सबहू को रस हर हो रहाओ काहू जोग काहू भोग काहू ज्ञान काहू ध्यान काहू हो दंड धर हो।

कीर्तन हुए उदार, राग गौड़ी माला महल्ला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, पायो बाल बुद्ध सुखरे, हरख सोग मान मृत दुख सुख, चित समसर गुर मिले रहाओ, जो लो हो किस सोचो चितों,

तेते बंद परे जो साधु कर मस्तक धरियो तब हम मुक्त भए जो लो मेरो मेरो कर तो तौ लो बिख घेरे मन तन बुद्ध अर्पी ठाकुर को तब हम सहज सोए जो लो पोट उठाई चलियो तौ लो दान भरे पोट दार गुरु पूरा मिलिया तौ नानक निर्भय गौड़ी माला महला पंजवा पावन त्यागियो री त्यागियो मैं गुर मिल त्यागियो सर्व सुख आनंद मंगल रस मान गोबिंद आगियो रहाओ मान अभमान दो समाने मस्तक डार गुर पागियो संपत हरख ना आपत दुखा रंग ठाकुर लागियो बास बासरी एक स्वामी उद्यान दृष्टागियो निरपौ भये संत भ्रम डारियो पूर्ण सर्वागियो जो किस करतै कारण कीनो मन बुरो न लागियो साध संगत प्रसाद संतन कै सोयो मन जागियो जन नानक ओड़ तुहारी परियो आयो सरनागियो नाम रंग सहज रस माने फिर दुख ना लागियो गौड़ी माला महला पंजवा पाया लाल रतन मन पाया तन सीतल मन सीतल थिया सतगुर शब्द समाया रहाओ लाथी भूख तृष्ण सब लाथी चिंता सगल बिसारी कर्मस्तक गुर पूरे तरेओ मन जीतो जग सारी तृप्त अगाए रहे हृदय अंतर डोलन ते अब चूके अखुट खजाना सतगुर दिया तोट नहीं रे मूके अचरज एक सुनो रे भाई गुर ऐसी बूझ बुझाई लाहे परदा ठाकुर जो पेटे हो तो बिसरी तात पराई कहो ना जाई एहो अचंभव सो जाने जिन चाखिया कहो नानक सच भये बिगासा गुर निधान हृदय लै राखिया गौड़ी माला महला पंजवा उबरत राजा राम की सरनी सर्व लोक माया के मंडल गिर गिर परते तरनी रहाओ शास्त्र सिमरत वेद बिचारी महापुरखन इउं कहिया बिन हर भजन नाही निस्तारा सुख ना किन्हू लहिया तीन भवन की लक्ष्मी जोरी बूजत नाही लहरे बिन हर भगत कहां थित पावे फिर तो पहरे पहरे अनक बलास करत मन मोहन पूरन होत ना कामा जल तो कबहू ना बूजत सगल बिरथे बिन नामा हर का नाम जपो मेरे मीता एह सार सुख पूरा साध संगत जन्म मरण निवारे नानक जन की धूरा गौड़ी माला महला पंजवा मोको एह बिद को समझावे करता होए जनावे रहाओ अनजानत किस इन्ह कमानो जप तप कशु ना साधा दह दिस लै इहो मन दौरायो कमन कर्म कर बांधा मन तन धन भूम का ठाकुर हौ इसका इहो मेरा परम मोह कस सूजस नाही एह पैखर पए पैरा तब इहो कहां कमावन परिया जब इहो कछु ना होता जब एक निरंजन निरंकार प्रभ सब किस आपह करता अपने कर्तव्य आपे जाने जिन इहो रचन रचाया कहो नानक करनहार है आपे सतगुर परम चुकाया गौड़ी माला महला पंजवा हर बिन अवर क्रिया बिरथे जप तप संयम कर्म कमाणी एह ओरे मूसे रहाओ वर्त नेम संयम मह रहता इनका आड़ ना पाया आगे चलन और है भाई ऊहा काम ना आया तीर्थ नाए अर धरनी भ्रमता।

मेरी मन तन हरिया जियो, दर्शन पेखत सब दुख पर हरिया जियो, हर हर नाम जपे जप तरिया जियो, एहो अजर नानक सुख सही है जियो, गौड़ी माज महला पंजवा, सुन सुन साजन

मूर्त मारे सुख वसा सच शब्द निशान रहाव सबे गल्ला जातियां सुन के चुप किया तद ही सुरत ना लदिया माया मोहड़िया दे बजारत सारता से अखी डिठड़िया कोई जे मूर्ख लोभिया मूल ना सुनी कहया इकस दोहो चौहो क्या गणी सब इकत साध मुठी एक अध नाए रसियड़ा का विरली जाए बुठी भगत सच्चे दर सोहंदे आनंद करह दिन रात रंग रत्ते परमेश्वर है जन नानक तिन बल जात गौड़ी महला पंजवा मांज दुख भंजन तेरा नाम जी दुख भंजन तेरा नाम आठ पहर आराधी है पूरन सतगुर ज्ञान रहाव जित घट वसै पार ब्रह्म सोई सुहावा थां जम कंकर नेड़।

नारायण दयो गुर, गुर सच्चा सिरजनहार, गुर तुठे सब किश पाया, जन नानक सद बलिहार। गौड़ी माज महला पंजवा, हर राम राम राम रामा, जप पूर्ण होए कामा रहा। राम गोबिंद जपेंदिया हुआ मुख पवित्र, हर जस सुनिए जिस ते सोई भाई मित्र। सब पदार्थ सब फला सर्व गुणा जिस माहे, क्यों गोविंद मनो विसारी है जिस सिमरत दुख जाए। जिस लड़ लगे जीवी है भवजल पई है पार, मिल साधु संग उधार होए मुख उजल दरबार। जीवन रूप गोपाल जस संत जना की रास, नानक उबरे नाम जप दर सच्चे साबास। गौड़ी बाज महला।

0: प्राणी गौड़ी महल्ला नौवा मन रे कहां भयो तै बौरा अहनस औद कटै नहीं जाने भयो लोभ संग होरा रहाओ जो तन तै अपनो कर मान्यो हर सुंदर ग्रह नारी इनमें कछ तेरो रे नाहिन देखो सोच बिचारी रत्न जन्म अपनो तै हारियो गोविंद गत नहीं जानी निमख नालीन भयो चरणन सियो बिरथा औद सरानी कहो नानक सोई नर सुखिया राम नाम गुण गावै और सगल जग माया मोहया निरपै पद नहीं पावै गौड़ी महला नौवा नर अचेत पाप ते डर रे दीन दयाल सगल भय भंजन सरन ताहे तुम पर रे रहाओ वेद पराण जास गुण गावत तां को नाम ही है मोतर रे पावन नाम जगत मैं हर को सिमर सिमर कसमल सब हर रे मानस देह बहुर नह पावे कछु उपाओ मुक्त का कर रे नानक कहत गाए करना मैं भव सागर कह पार उत्तर रे राग गौड़ी अष्टपदिया महला पहला गौड़ी गुआर री एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद निध सिद्ध निर्मल नाम विचार पूर्ण पूर रहया बिखमार त्रिकुटी छूटी विमल मजार गुर की मत जिए आई कार इन बिद राम रमत मन मानिया ज्ञान अंजन गुर शब्द पछानिया रहाओ एक सुख मानिया सहज मलाया निर्मल बाणी भरम चुकाया लाल पई सूहा रंग माया नदर पई बिख थाक रहाया उल्ट पई जीवत मर जागया शब्द रवे मन हर स्यों लागया रस संग्रह बिख पर हर त्यागया पाए बसे जम का पौ भागया साध रहे बादम अहंकारा चित हर स्योरा ता हुक्म अपारा जात रहे पत के आचारा दृष्ट पई सुख आत्म तारा तुझ बिन कोई न देखो मीत किस सेवो किस देवो चीत किस पूछो किस लागो पाए किस उपदेश रहा लिवलाए गुर सेवी गुर लागो पाए भगत करी राचो हर नाए सिखिया दीखिया भोजन पाओ हुक्म संजोगी निज घर जाओ गर्भ गतं सुख आत्म ध्याना जोत पई ज्योति माहे सुमाना लिखत मिटै नहीं शब्द निशाना करता करना करता जाना नह पंडित नह चतुर सियाना नह भूलो नह परम पुलाना कथो न कथनी हुक्म पछाना नानक गुरमत सहज सुमाना गौड़ी गुआर री महला पहला मन कुंचर काया उद्यान गुरु अंकत सच शब्द निशान राज द्वार है सोभ सो मान चतराई न चीनिया जाए बिन मारे क्यों कीमत पाए रहाओ कर्म है अमृत तस कर ले नन्ना कार न कोई करे राख है आप बड़ियाई दे नील अनिल अग्न एक ठाई जल निवरी गुरबूज बुझाई मन दे लिया रहस गुण गाई जैसा कर बाहर सो तैसा बैस गुफा मैं आँखों कैसा सागर डूंघर निरपो ऐसा मुए को कहो मारे कौन न डरे को कैसा डर कवन शब्द पछाने तीने पौन जिन कहया तिन कहन बखानिया जिन बूझया तिन सहज पछानिया देख बीचार मेरा मन मानिया कीरत सूरत मुक्त एक नाई तही निरंजन रहया समाई निज कर व्याप रहया निज ठाई पुस्तत करह केते मन प्रीत तन मन सूचै साच सोचीत नानक हर पज नीता नीत गौड़ी गुआर री महला पहला ना मन मरै न कार्ज होय मन वस दूता दुरमत दोय मन माने गुर ते एक होए, निर्गुण राम गुण वस होए,
1: आप निवार बिचारे सोए रहाओ।
0: मन भूलो बहु चितै विकार, मन भूलो सिर आवै भार, मन माने हर एक अंकार, मन भूलो माया घर जाए, काम गुरु दूर है ना ठाए, हर भज प्राणी रसन रसाए, गैवर हैवर कंचन सुत।

मेल मलाई गुण संग्रह औगण शब्द जलाई गुरमुख नाम पदार्थ पाए बिन नावै सब दुख निवास मनमुख मूड माया चितवास गुरमुख ज्ञान तुर कर्म लिखे आस मन चंचल धावत फुन धावै साचे सूचे मैल ना पावै नानक गुरमुख हर गुण गावे गौड़ी ग्वार री महला पहला हौ मैं करत्या नह सुख होए मन मत झूठी सच्चा सोए सगल बगूते पावै दोए सो कमावै तुर लिखिया होए ऐसा जग देखिया जुआरी सब सुख मांगै नाम बिसारी रहाओ अदिष्ट दिसै ता कहया जाए बिन देखे कहना बिथा जाए गुरमुख दिसै सहज सुभाए सेवा सुरत एक लिवलाए सुख मांगत दुख आगल होए सगल बकारी हार परोए एक बिना झूठे।

0: निरपव जोगी निरंजन त्यावे अण दिन जागे सच लिव लावे सो जोगी मेरे मन पावे काल जाल ब्रह्म अग्नि जारी जरा मरण गत गर्भ निवारी आप तरह पितरी निस्तारी सतगुर सेवे सो जोगी होए पै रच रह सो निरपव होए जैसा सेवै तैसो होए नर निह केवल निरपव नाओ अनाथा नाथ करे बल जाओ पुनरप जन्म नाही गुण गाओ अंतर बाहर एको जाने गुर कै शब्दे आप छाने
1: साचै शब्द दर निसाने
0: शब्द मरै तिस निज कर वासा आवै ना जावै चूकै आसा गुर कै शब्द कमल परगासा जो दीसै सो आसन रासा काम क्रोध बिख भूख प्यासा नानक बिरले मिलै उदासा गौड़ी महला पहला ऐसो दास मिलै सुख होई दुख विसरै पावै सच सोई दर्शन देख पई मत पूरी अठसठ मज्जन चरना धूरी रहाव नेत्र संतोखे एक लिवतारा जेवा सूची हर रस सारा सच करनी अब अंतर सेवा मन तृप्ता सिया अलख अपेवा जह जह देखो तह तह साचा बिन बूझे झगरत जग काचा गुर समझावै सोजी होई गुरमुख विरला बूझै कोई कर कृपा राखो रखवाले बिन बूझे पशु भये बेताले गुर कहया अवर नहीं दूजा किस कहो देख करो अन पूजा संत हेत प्रभ त्रे भवन धारे
1: आत्म चीना सो तत बिचारी
0: साच हृदय सच प्रेम निवास प्रणवत नानक हम ता के दास गौड़ी महला पहला ब्रह्म गर्भ किया नहीं जानिया वेद की विपत पड़ी पछतानिया जह प्रभ सिमरे तही मन मानिया ऐसा गर्भ बुरा संसार है जिस गुर मिले तिस गर्भ निवारे रहाओ बाल राजा माया अहंकारी जगन करे बहु पार अफारी बिन गुर पूछे जाए प्यारी हरी चंद दान करे जस लेवे बिन गुर अंत ना पाए अपेवे आप पलाए आपे मत देवे दुर्मत हरनाक्ष दुराचारी प्रव नारायण गर्भ प्रहारी प्रहलाद पुदारी कृपा धारी भूलो रावण मुग्ध अचेत लूटी लंका शीस समेत गर्भ गया बिन सतगुर हेत सहस बाहु मद कीट मह खासा हर नाक्ष ले नखो बिदासा दैत संघारे बिन भगत अभ्यासा जरा संद काल जमन संघारी रक्त बीज काल नेम बिदारी दैत संघार संत निस्तारी आपे सतगुर शब्द बीचारी दूजे पाए दैत संघारे गुरमुख साच भगत निस्तारे बूढ़ा दुर्योधन पत खोई राम ना जानिया करता सोई जन

अवरे परपंच ब्याद क्या गै कवरे भाई मिलै सच साचै साचरे ऐसा राम भगत जन होई हर गुण गाए मिलै मन धोई रहाउ ऊंदो कवल सगल संसार है दुर्मत अगल जगत पर जारै सो उभरै गुर शब्द बीचार।

हितकारी क्रोध बनासै सगल विकारी पत मत खोवै नाम वसारी पर कर चीत मन मुख डोलाए गल जेवरी तंदै लपटाए गुरमुख छूट सहर गुण गाए ज्यों तन विधवा पर को देई काम दाम चित पर वस सेई बिन पेर त्रिपत ना कबहू होई पढ़ पढ़ पोथी सिमरत पाठा वेद पुराण पढ़ै सुन खाटा बिन रस राते मन बहु नाटा ज्यों चातरक जल प्रेम प्यासा ज्यों मीना जल माहे उलासा नानक हर रस पी त्रिपतासा गौड़ी महला पहला हठ कर मरै न लेखै पावै वेश करै बहु भस्म लगावै नाम विसार बहुर पछतावै तू मन हर जियो तू मन सुख नाम बसार सह जम दुख रहाव चोआ चंदन अगर कपूर माया मगन परम पद दूर नाम बसारे है सब कूड़ो कूर नेजे वाजे तखत सलाम अदकी तृष्णा व्यापै काम बिन हर जाचे भगत ना नाम वाद अहंकार नाही प्रभ मेला मन दे पावह नाम सुहेला दूजे पाए अज्ञान दुहेला बिन दम के सौदा नहीं हाट बिन बोहित सागर नहीं वाट बिन गुर सेवे घाटे घाट किसको वाह वाह जे वाट दिखावे किसको वाह वाह जे शब्द सुनावे किसको वाह वाह जे मेल मलावे वाह वाह तिसको जिसका एहो जियो गुर शब्दी मत अमृत पियो नाम वडाई तुद भाणे दियो नाम बिना क्यों जीवा माए अन दिन जपत रहो तेरी सरनाए नानक नाम रते पत पाए गौड़ी महला पहला हौ मैं करत भेखी नहीं जानिया गुरमुख भगत बिरले मन मानिया हौ हौ करत नहीं सच पाईए हौ मैं जाए परम पद पाईए रहाओ हौ मैं कर राजे बहुत आवह हौ मैं खपह जन्म मर आवह हौ मैं निवरै गुर शब्द विचारै चंचल मत त्यागै पंच संघारै अंतर साच सहज घर आवह राजन जान परम गत पावह सच करनी गुर परम चकावै निरपो कै घर ताड़ी लावे हौ हौ कर मरना क्या पावे पूरा गुर भेटे सो झगर चकावे जेती है तेती केहो नाही गुरमुख ज्ञान भेट गुण गाही हौ मैं बंधन बंद पवावे नानक राम भगत सुख पावे गौड़ी महला पहला प्रथमे ब्रह्मा काले घर आया ब्रह्म कमल पयाल ना पाया आग्या नहीं लीनी परम पलाया जो उपजै सो काल संघारिया।

अपनो नहीं पाया। मीठे को कौड़ा कह, कड़ुए को मीठा, राते की निंदा करह, ऐसा कल मैं दीता। चेरी की सेवा करह, ठाकुर नहीं दिस, पोखर नीर वरोली है, माखन नहीं रिस। इस पद जो अर्थाए ले, सो गुरु हमारा, नानक की नय आपको, सो अपर अपारा। सब आपे आप वर्तदा, आपे परमाया, गुर किरपा ते बूजी है, सब ब्रह्म समाया। राग गौड़ी ग्वारी महला तीजा, अष्टपदिया, एको ओंकार सतगुर प्रसाद। मन का सूतक दूजा पाओ, परमे भूले आवो जाओ। मनमुख सूतक कबह न जाए, जिचर शब्द न पी

माहे। सूतक भोजन जेता किस खाहे, सूतक कर्म ना पूजा होए, नाम रत्ते मन निर्मल होए, सतगुर सेवै सूतक जाए, मरै न जन्मै काल न खाए, सास्त सिमरत सोध देखो कोई, विण नावै को मुक्त न होए, जुग चारे नाम उत्तम शब्द बीचार, कल मह गुरमुख उतरस पार, साचा मरै न आवै जाए, नानक गुरमुख रहै समाए। गौड़ी महला तीजा, गुरमुख सेवा प्राण अधारा, हर जियो राखो हिरदय उर धारा, गुरमुख सोभा साच द्वारा, पंडित हर पर तजोह विकारा, गुरमुख भोजन उतरोह पारा, रहाओ गुरमुख विचो होमै जाए, गुरमुख मैल ना लागै आए, गुरमुख नाम वसै मन आए, गुरमुख कर्म धर्म सच होई, गुरमुख अहंकार जलाए दोई, गुरमुख नाम रत्ते सुख होई, अपना मन प्रबोधो बूझो सोई, लोक समझावो हो सुने ना कोई, गुरमुख समझो हो सदा सुख होई, मनमुख डंप बहुत चतराई, जो किछ कमावै सो थाए ना पाई, आवै जावै ठौर ना काई, मनमुख कर्म करे बहुत अभमाना, बाग ज्यों लाए बह नित ध्याना, जम पकड़िया तब ही पछताना, बिन सतगुर सेवे मुक्त ना होई, गुर प्रसादी मिले हर सोई।

चतुराई। गौड़ी महल्ला तीजा, किस युग का धर्म पढ़ो तुम पाई, पूरे गुर सब सो जी पाई, एथे अग्गे हर नाम सिखाई, राम पढ़ो मन करो विचार, गुर प्रसादी मैल उतार रहाओ। वाह।

एहु संसारा नित तीर्थ नावे न जाए अहंकारा बिन गुर भेटे जम करे खुआरा सो जन साचा जे हूं मैं मारे गुर कै शब्द पंच संघारे आप तरह सगले कुल तारे माया मोहे नटबाजी पाई मन मुख अंध रहे लपटाई।

हिरै अहंकारी आप ना चीनै बाजी हारी कापड़ पहर करे चतुराई माया मोहे अत परम पलाई बिन गुर सेवे बहुत दुख पाई नाम रते सदा बैरागी गिरही अंतर साच लिवलागी नानक सतगुर सेवह सेवड भागी गौड़ी महला तीजा ब्रह्मा मूल वेद अभ्यासा तिस ते उपजे देव मोह पयासा त्रै गुण भरमे नाही निज घर वासा हम हर राखे सतगुरु मलाया अन दिन भगत हर नाम दिरड़ाया रहाओ त्रै गुण बाणी ब्रह्म जंजाला पड़वाद बखाण है सिर मारे जमकाला तापना चीन है बन है पांड पराला मनमुख अज्ञान कुमारग पाए हर नाम बसारिया बहु कर्म दिरड़ाए पवजल डूबे दू जय पाए माया का मोहताज पंडित कहावे बिख्या राता बहुत दुख पावे जम का गल जेवड़ा नित काल

माया दासी भगतां की कार कमावे, चरनी लागे ता महल पावे, सद ही निर्मल सहज समावे, हर कथा सुन है से तनवंत दिस है जो गुमाही, तिनको सब निवह अन दिन पूज कराही, सहजे गुण रवह साचे मन माही, पूरे सतगुर शब्द सुनाया, त्रै गुण मेटे चौथे चित लाया, नानक हौमै मार ब्रह्म मलाया, गौड़ी महला तीजा।

ताय साच ना छपै जे को रखै छुपाए ज्ञानी बूझ सहज सुपाए गुरमुख साच रहिया लिभ लाए हम मैं माया शब्द जलाए मेरा प्रभ साचा मेल मलाए सतगुर दाता शब्द सुनाए भावत राखै ठाक रहाए पूरे गुर ते सोजी पाए आपे करता सृष्ट सिरज जिन गोई तिस बिन दूजा अवर ना कोई नानक गुरमुख बूझै कोई गौड़ी महला तीजा नाम अमोलक गुरमुख पावे नामो सेवे नाम सहज समावे अमृत नाम रसना नित गावे जिसनो कृपा करे सो हर रस पावे अनगिन हिरदय जपो जगदीसा गुरमुख पावो परम पद सूखा रहाओ हिरदय सूख पया परगास गुरमुख गावे है सच गुणतास दासन दास नित हो वह दास ग्रह

निर्मल होई, सहजे साच मिले प्रभ सोई, मोह कटंब स्यो प्रीत ना होई, जां हिरदय वसिया सच सोई, गुरमुख मन भेदिया अस्थिर होई।

प्रभ सोए नाम रतन सब जग महलोए गुरमुख बाणी मीठी लागी अंतर बिगसै अन दिन लिव लागी सहजे सच मिलिया प्रसादी सतगुर पाया पूरे वड भागी हौ मैं ममता दुर्मत दुख नास जब हृदय राम नाम गुणतास गुरमुख बुद्ध प्रगटी प्रभ जास जब हृदय रवे।

आए मन करहला अत निर्मला मल लागी हो मैं आए परतख पीर घर नाल प्यारा विछड़ चोटा खाए मन करहला मेरे प्रीतमा हर हृदय पाल पलाए उपाय किते ना लभई गुर हृदय हर देखाए मन करहला मेरे प्रीतमा दिन रहन हर लिवलाए कर जाए पावह रंग महली गुर मेले हर मिलाए मन करहला तू मीत मेरा पाखंड लोभ तजाए पाखंड लोभी मारिए जम डंड दे सजाए मन करहला मेरे प्राण तू मैल पाखंड परम गवाए हर अमृत सर गुर पूरिया मिल संगती मल लह जाए मन करहला मेरे प्यारिया एक गुर की सिख सुनाए एहो मोह माया पसरिया अंत साथ ना कोई जाए मन करहला मेरे साजना हर खर्च लिया पत पाए हर दरगाह पहनाया हर आप लया गल लाए मन करहला गुर मन्या गुरमुख कार कमाए गुर आगे कर जोदड़ी जन नानक हर मेलाए गौड़ी महला चौथा मन करहला विचारिया विचार देख संभाल बन फिर थके बनवासिया फिर गुरमत हृदय निहाल मन करहला गुर गोविंद संभाल रहाओ मन करहला विचारिया मनमुख फाथिया महाजाल गुरमुख प्राणी मुक्त है हर हर नाम संभाल मन करहला मेरे प्यारिया सत संगत सत गुर भाल सत संगत लग हर त्याई है हर हर चले तेरे नाल मन करहला वडभागिया हर एक नदर निहाल आप छडाए छुट्टी है सतगुर चरण संभाल मन करहला मेरे प्यारिया विच देही जोत संभाल गुर नौनिद नाम वखालिया हर दात करी दयाल मन करहला तू चंचला चतुराई छड विकराल हर हर नाम संभाल तू हर मुक्त करे अंतकाल मन करहला बड़ भागिया तू ज्ञान रतन संभाल गुर ज्ञान खड़गा हाथ धारिया जम मारियड़ा जमकाल अंतर निदान मन करहले भ्रम पवह बाहर पाल गुर पुरख पूरा भेटिया हर सज्जन लदड़ा नाल रंग रतड़े मन करहले हर रंग सदा संभाल हर रंग कदे ना उतरे गुर सेवा शब्द संभाल हम पंखी मन करहले हर तरवर पुरख अकाल वडभागी गुरमुख पाया जन नानक नाम संभाल राग गौड़ी गुआरी महला पंजवा अष्टपदिया एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद जब इहो मन मह करत गुमाना तब इहो बावर फिरत बेगाना जब इहो हुआ सगल कीरीना तातेर मैया कट कट चीना सहज सुहेला फल मशकीनी सतगुर अपने मोहे दान दीनी रहाओ जब किसको इहो जानस मंदा तब सगले इस मेल है फंदा मेर तेर जब इन्ह चुकाई ताते इस संग नहीं बैराई जब इन्हें अपनी अपनी तारी तब इसको है मुश्किल भारी जब इन करने हार पछाता तब इसनो नाही किस ताता जब इन अपनो बांधियो मोहा आवे जाए सदा जम जोहा जब इसते सब बिन से परमा भेद नाही है पार ब्रह्मा जब इन किस कर माने भेदा तब ते दुख दंड अर खेदा जब इन एको एकी बूझिया तब ते इसनो सब किस सूझिया जब इह तावे माया अर्थी नह त्रिपतावे नह ते सलाथी जब इसते इह होयो जौला पीछे लाग चली उठ कौला
कर कृपा जो सतगुर मिलियो मन मंदर मह दीपक जलियो जीत हार की सोजी करी तो इस कर की कीमत परी कर्ण करामन सब किश एक है आपे बुद्ध विचार विवेक है दूर ना नेरे सब कह संगा सच सलाहन नानक हर रंगा गौड़ी महला पंजवा गुर सेवा ते नामे लागा तिसको मिलिया जिस मस्तक भागा तिस कह हृदय रविया सोए मन पन सीतल निश्चल होए ऐसा कीर्तन कर मन मेरे इहां उहां जो काम तेरे रहाओ जास जपत पौ अपदा जाए धावत मनुआ आवे ठाए जास जपत फिर दुख ना लागे जास जपत एह होमै भागे जास जपत बस आवह पंचा जास जपत हृदय अमृत संचा जास जपत एह तृष्णा बुझे जास जपत हर दरगाह सिजे जास जपत कोट मिटह अपराध जास जपत हर होवह साद जास जपत मन शीतल होवे जास जपत मल सगली खोवे जास जपत रतन हर मिले बहुर न छोड़े हर संग हिले जास जपत कई बैकुंठ वास जास जपत सुख सहज निवास जास जपत एह अग्न ना पोहत जास जपत एहो काल ना जोहत जास जपत तेरा निर्मल माथा जास जपत सगला दुख लाथा जास जपत मुश्किल कशु ना बने जास जपत सुन अनहत तुने जास जपत एह निर्मल सोए जास जपत कमल सीधा होए गुर शुभ दृष्ट सब ऊपर करी जिसका हृदय मंत्र दे हरी अखंड कीर्तन तिन भोजन चूरा कहो नानक जिस सतगुर पूरा गौड़ी महला पंजवा गुर का शब्द हृदय अंतर तारे पंच जना स्यो संग निवारे दस इंद्री कर राखे वास ताकै आत्मै होए प्रगास ऐसी दृढ़ता ताकै होए जाको दया मया प्रभ सोए रहाओ।

जपना, सहजे पूजन सहजे पाओ, सहजे मिट्यो सगल दुराओ, सहजे हुआ साधु संग, सहज मिलो पार ब्राह्मण संग, सहजे ग्रह में सहज उदासी, सहजे दुबदा तन की नासी, जाके सहज

सहज कथा मह आत्म रसिया तां कै संग अविनाशी वसिया सहजे आसन अस्थिर पाया सहजे अनहत शब्द बजाया सहजे ऋण चुनकार सुहाया तां कै कार पार ब्रह्म समाया सहजे जाको परयो कर्मा सहजे गुर भेट्यो सच धर्मा जां कै सहज भया सो जाने नानक दास तां कै कुर्बान गौड़ी महला पंजवां प्रथमे गर्भ वास्ते तरिया पुत्र कलत्र कटंब संग जुरिया भोजन अनक प्रकार बहु कपरे सर पर गमन करहंगे बपरे तमन अस्थान जो कबह ना तरे तमन शब्द जित दुर्मत हरे रहाओ इंद्रपुरी मैं सर पर मरना ब्रह्मपुरी निह चल नहीं रहना शिवपुरी का होएगा काला त्रै गुण माया बिनस बिताला गिर तर धरन गगन अर तारी राव सस पवन पावक नीरारी दिन सरैन बरत अर पेदा सासत सिमरत बिन सिंगे बेदा तीरथ देव देहरा पोथी माला तिलक सोच पाक होती धोती डंडौत प्रसादन भोगा गमन करे गो सगलो लोगा जात वर्ण तुरक अर हिंदू पस पंखी अनक जोन जिंदू सगल पासार दिसै पासारा बिनस जाए गो सगल अकारा सहज सिफत भगत तत ज्ञाना सदा आनंद निहचल सच थाना तहां संगत साध गुण रसै अनपो नगर तहां सद वसै तह पौ परमा सोग न चिंता आवन जामन मृत ना होता तह सदा आनंद अनहत आखारी भगत वसह कीर्तन आधारी पार ब्रह्म का अंत न पार कौन करे तां का विचार कहो नानक जिस कृपा करे निचल थान साध संग तरे गौड़ी महला पंजवां जो इस मारे सोई सूरा जो इस मारे सोई पूरा जो इस मारे तिसह वडियाई जो इस मारे तिसका दुख जाई ऐसा कोई जे दुबदा मार गवावे इसह मार राज जोग कमावे रहाओ जो इस मारे तिसको पहो नाही जो इस मारे सो नाम समाहे जो इस मारे तिसकी तृष्णा बुझै जो इस मारे सो दरगाह सिजै जो इस मारे सो तनवंता जो इस मारे सो पतवंता जो इस मारे सोई जति जो इस मारे तिस होवै गति जो इस मारे तिसका आया गनी जो इस मारे सो निश्चल तनी जो इस मारे सो वडभागा जो इस मारे सो अनदिन जागा जो इस मारे सो जीवन मुक्ता जो इस मारे तिसकी निर्मल जुगता जो इस मारे सोई सो ज्ञानी जो इस मारे सो सहज त्यानी इस मारी बिन थाए ना परे कोट कर्म जाप तप करे इस मारी बिन जन्म ना मिटे इस मारी बिन जमते नहीं छुटे इस मारी बिन ज्ञान ना होई इस मारी बिन झूठ ना धोई इस मारी बिन सब किस मैला इस मारी बिन सब किस जौला जाको पये कृपाल कृपा निद तिस पई खलासी होई सगल सिद्ध गुर दुबदा जाकी है मारी कहो नानक सो ब्रह्म बिचारी गौड़ी महला पंजवा हर स्यों जुरे ता सबको मीत हर स्यों जुरे ता निश्चल चीत हर स्यों जुरे ना व्यापै काड़ा हर स्यों जुरे ता हुए निस्तारा।

दास नीच कुल सुने है, तिसकै संग खिन मह उदर है। कोट मज्जन जाकै सुन नाम, कोट पूजा जाकै है ध्यान। कोट पुन सुन हर की बाणी, कोट फला गुरते बिद जानी। माने अपने मह फिर चेत, बिनस जाहे माया के हेत। हर अबनासी

करे रस भोग सुख सुपने नहीं तन मह रोग नाम त्याग करे अनुकाज बिनस जाए झूठे सब पाज नाम संग मन प्रीत ना लावे कोट कर्म करतो नरक जावे हर का नाम जिन मन ना अरादा चोर की न्याई जम पुर बादा लाख अडंबर बहुत बिसथारा नाम बिना झूठे पासारा हर का नाम सोई जान ले कर कृपा नानक जिस दे गौड़ी महला पंजवा आद मद जो अंत न बाहै सो साजन मेरा मन चाहै हर की प्रीत सदा संग चालै दयाल पुरख पूर्ण प्रतपालै रहाव बिनसत नाही छोड़ न जाए जह पेखा तह रह आसमाए सुंदर सुगढ़ चतुर जी दाता भाई पूत पिता प्रभ माता जीवन प्र

सब रोग, चरण ध्यान सर्व सुख भोग, पूर्ण पुरख नव तन नित बाला, हर अंतर बाहर संग रखवाला। कहो नानक हर हर पद चीन, सर्बस नाम भगत कौ दीन। राग गौड़ी माज महला पंजवां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। खोजत फिरे असं

प्रीत प्यारे शब्द विचारे तिस ही का सो हुवे पुन दान अनेक नावण क्यों अंतर मल तुवे नाम बिना गत कोए ना पावे हठ निग्रह बेबाण नानक सच कर शब्द सियापे दुबदा महल के जाने तेरा नाम सच्चा जीव शब्द सच्चा विचारु तेरा महल सच्चा जीव नाम सच्चा वापारु नाम का वापार मीठा भगत लाहा अन दिनु तिस बाज वखर कोई ना सूजे नाम ले वो खिन खिनु परख लेखा नदर साची कर्म पूरे पाया नानक नाम महारस मीठा गुर पूरे सच पाया राग गौड़ी पूर्वी संत महला तीजा एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद सातन बिनो करे जियो हर के गुण सारे हिन पल रह न सके जियो बिन हर प्यारे बिन हर प्यारे रह न सके गुर बिन महल न पाईए जो गुर कहे सोई पर कीजे तिसना अग्न बुझाईए हर साचा सोई तिस बिन अवर न कोई बिन सेवे सुख न पाए नानक सा धन मिले मलाई जिसनो आप मलाए धन रहन सुहेलड़िए जियो हर सियो चित लाए सतगुर सेवे भाओ करे जियो विचो आप गवाए विचो आप गवाए हर गुण गाए अन दिन लागा भाओ सुन सखी सहेली जी की मेली गुर कै शब्द सुन।

कूड़ मुट्ठी कूड़ आरी, कूड़ निवारी गुरमत सारी, जूए जन्म ना हारी। गुर शब्द सेवे सच समावे, बिचो हों मैं मारी।

सेवा सुरत भगत एह साची विचो आप गवाई हम मत हीन मूरख मुगद अंधे सतगुर मार्ग पाए नानक गुरमुख शब्द सहावे अन दिन हर गुण गाए आप कराए करे आप जियो आपे शब्द सवारे आपे सतगुर आप शब्द जियो जुग जुग भगत प्यारे जुग जुग भगत प्यारे हर आप सवारे आपे भगती लाए आपे दाना आपे बीना आपे सेव कराए आपे गुणदाता अवगुण काटे हृदय नाम वसाए नानक सद बलिहारी सच्चे विटों आपे करे कराए गौड़ी महला तीजा।

हर पाए, घर बैठिया हर पाए, सदा चित लाए, सहजे सत सुभाए, गुर की सेवा खरी सुखाली, जिसनो आप कराए, नामो बीजे नामो जम्मे, नामो मन वसाई, नानक सच नाम वडियाई, पूरब लिखिया पाए, हर का नाम मीठा पिरा जियो, जा चाख है चित लाए, रसना हर रस चाख मुइये जियो, अनरस साध गुआए, सदा हर रस पाए जा हर पाए, रसना शब्द सुहाए, नाम त्याए सदा सुख पाए, नाम रहे निवलाए, नामे उपजे नामे बिनसे, नामे सच समाए।

करि आवहु नाह प्यारी। हौ माने अर्पी सब ताने अर्पी, अर्पी सब देसा। हौ सिर अर्पी तिसमीत प्यारे, जो प्रभ दे संदेसा। अर्पया ता सीस सुथान गुर पह, संग प्रभु दिखाया। खिन माहे सगला दुख मिटिया, मनो चिंदिया पाया। दिन रहन रलिया करै कामन, मिटे सगल अंदेसा। बिनवंत नानक कंत मिलिया, लोड़ ते हम जैसा। मेरा मन आनंद भया जियो, बजी वादाई। कर लाल आया प्यारा, सब तिखा बुझाई। मिलिया ता लाल गोपाल ठाकुर, सखी मंगल गाया। सब मीत बंद पहरख उपजिया, दूत थाऊ गवाया। अनहत वाजे बजे है घर मह, फिर संग सेज विछाई। बिनवंत नानक सहज रह, हर मिलिया कंत सुखदाई। गौड़ी महला।

यह साध संत इकत्तर होवे है तहां तुझे त्यावहि कर दया मया दयाल स्वामी हो दीन कृपारा बिनवंत नानक दर्स प्यासी मिल दर्शन सुख सारा। मोहन तेरे बचन अनूप चाल निराली मोहन तू मान है एक जी अवर सब राली मान है ता एक अलेख ठाकुर जिन्ह सब कल तारिया तुद बचन गुर कै वस किया आद पुरख बनवारिया तू आप चलिया आप रहिया आप सब कल तारिया बिनवंत नानक पैज राखो सब सेवक सरन तुम्हारिया। मोहन तुद सत संगत ध्यावै दर्स ध्याना मोहन जम नेर ना आवै तुद जपहै निधाना जम काल किनको लगै नाही जो एक मन त्यावे मन बचन कर्म जे तुद आराध है से सबे फल पावे मल मूत मूड जे मुग्ध होते से देख दर्श सुगियाना बिनवंत नानक राज निश्चल पूरन पुरख भगवाना। मोहन तू सफल फलिया सन परवारे मोहन पुत्र मीत भाई कुटुंब सब तारे तारिया जहान लहिया अभमान जिन्नी दर्शन पाया जिन्नी तुद नो धन कहया तिन जम नेड़ ना आया बेअंत गुण तेरे कथे ना जाही सतगुर पुरख मरारी बिनवंत नानक टेक राखी जित लग तरिया संसारी। गौड़ी महला पंजवां सलोक पतत असंख पनीत कर पुनः पुनः बलिहार नानक राम नाम जप पाव को तिन किल बिख दाहनहार। संत जप मना तू राम नारायण गोविंदा हर माधु त्याए मना मरार मुकंदे कटिए काल दुख फादु दुख हरन दीन सरन सिरी तहर चरण कमल अराधिए जम पंथ बिखड़ा अग्न सागर निमक सिमरत साधिए कल मलै दहता शुद्ध करता दिन सरैण अराधु बिनवंत नानक करहु कृपा गोपाल गोविंद माधु। सिमर मना दामोदर दुख हर पै पंजन हर राया श्री रंगो दयाल मनोहर भगत वच्छल बिरदाया भगत वच्छल पुरख पूरन मन है चिंदिया पाईए ताम अंध कूप ते उधार है नाम मन वसाईए सुर सिद्ध गण गंधर्व मुन जन गुण अनक भगती गाया बिनवंत नानक करहु कृपा पार ब्रह्म हर राया। चेत मना पार ब्रह्म परमेश्वर सर्व कला जिन तारी करुणा मैं समरथ स्वामी कट कट प्राण आधारी प्राण मन तन जी दाता बेअंत अगम अपारू सरन जोग समरथ मोहन सर्व दुख बिदारू रोग सोग सब दुख बिन सह जपत नाम मरारी बिनवंत नानक करहो कृपा समरथ सब कल तारी। गुण गाओ मना अचुत अबनासी सब ते ऊच दयाला बिसंबर देवन को एक है सर्व करे प्रतपाला प्रतपाल महादयाल दाना दया तारी सब किसे काल कंटक लोभ मोह नासे जी जा कै प्रभ बसै सो प्रसन्न देवा सफल सेवा पई पूर्ण काला बिनवंत नानक इच पुन्नी जपत दीन दयाला। गौड़ी महला पंजवां सुन सखिए मिल उदम करेहा मनाए लह हर कंते मान त्याग कर भगत ठगौरी मोह है साधु मंते सखी वास आया फिर छोड़ ना जाई एह रीत भली भगवंत है नानक जरा मरण पै नरक निवारे
पनीत करे तिस जनते। सुन सखिए एह भली बिनंती, एहो मतांत पकाइए। सहज सुपाए अपाद रहत हुए, गीत गोविंदह गाइए। कन कलेश मिटे हैं ब्रह्म नासे हैं, मन चिंदिया फल पाइए। पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर, नानक नाम ते आइए। सखी इश करी नित सुख मनाई, प्रभ मेरी आस पुजाए। चरण प्यासी दर्श बैरागण, पेखो थान सबाए। खोज लहो हर संत जना संग, समर्थ पुरख मलाए। नानक किन मिलिया सुर जन सुख दाता, सेवड भागी माए। सखी नाल वसा अपने नाह प्यारे, मेरा मन तन हर संग हिलिया। सुन सखिए मेरी नींद पली, मैं आपनड़ा फिर मिलिया। ब्रह्म खोयो शांत सहज स्वामी, प्रगास भया कौल खिलिया। वर पाया प्रभ अंतर जामी, नानक सुहाग ना टलिया। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, गौड़ी बावन अखरी महला पंजवां सलोक। गुरुदेव माता गुरुदेव पिता, गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा। गुरुदेव सखा अज्ञान भंजन, गुरुदेव बंदप सुहोदरा। गुरुदेव दाता हर नाम उपदेसै, गुरुदेव मंत नरोदरा। गुरुदेव शांत सत बुद्ध मूरत, गुरुदेव पारस परस परा। गुरुदेव तीरथ अमृत सरोवर, गुरु ज्ञान मज्जन अपरंपरा। गुरुदेव करता सब पाप हरता, गुरुदेव पतत पवित्र करा। गुरुदेव आदि जुगादि जुग जुग, गुरुदेव मंत हर जप उदरा। गुरुदेव संगत प्रभ मेल, कर कृपा हम मूड पापी जित लग तरा। गुरुदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर, गुरुदेव नानक हर नमस्कारा सलोक। आपह किया कराया, आपह करमै जोग। नानक एको रब रहया, दूसर हुआ ना होग पौड़ी। ओं साध सतगुर नमस्कारन, आद मद अंत निरंकारन। आपह सुन आपह सुख आसन, आपह सुनत आप ही जासन। आपने आप आपह उपायो, आपह बाप आप ही मायो। आपह सूखम आपह असथूला।

एक बखाननो नानक एक अनेक पौड़ी ओं गुरमुख कियो अकारा एक है सूत पुरो मनहारा भिन भिन त्रै गुण विस्थार निर्गुण ते सरगुण दृष्टार सगल भांत कर करह अपायो जन्म मरण मन मोह बढ़ायो दूहू भांत ते आप नरारा नानक अंत न पारा वारा सलोक से सहा भगवंत से सच संपै हर रास नानक सच सोच पाई है तेहे संतन कै पास पवड़ी ससा सत सत सत सो सत पुरख ते भिन्न ना को सो सरन परै जिह पायं सिमर सिमर गुण गाए सुनायं संसय भरम नहीं कछ व्यापक प्रगट प्रताप ताहू को जापत सो साधु एह पहुंचन हारा नानक ता कै सद बलिहारा सलोक धन तन कहा पकारते माया मोह सब कूर नाम बिहूने नानका होत जात सब तूर पवड़ी तद्दा तूर पनीत तेरे जनुआ तन तेऊ जे रुच या मनुआ तन नहीं बाच है सुरगना आच है अत प्रिय प्रीत साध रज राच है धंदे कहां व्यापहता हूं जो एक शाद अन कत ना जाहू जा कह ही है दियो प्रभ नाम नानक साध पूर्ण भगवान सलोक अनक भेख अर ज्ञान ध्यान मन हठ मिलियो ना कोई कहो नानक कृपा पई भगत ज्ञानी सोए पौड़ी गंगा ज्ञान नहीं मुख बातों अनक जुगत शास्त्र कर पातों ज्ञानी सोए जाकै दृढ़ सो कहत सुनत कस जोग ना हो ज्ञानी रहत आज्ञा दृढ़ जाकै उसन सीत समसर सब ताकै ज्ञानी तत गुरमुख बिचारी नानक जाको कृपा तारी सलोक आमने आए सृष्ट मह बिन बूजे पस ढोर नानक गुरमुख सो बुझे जां कै भाग मथोर पौड़ी या जुग मह एक को आया जन्मत मोहयो मोहनी माया गर्भ कुंट मह उर्द तप करते सास सास सिमरत प्रभ रहते उर्ज परे जो छोड़ छडाना देवनहार मन है बिसराना तारु कृपा जिसह गुसाई इत उत नानक तिस बिसरहो नाही सलोक आवत हुक्म बनास हुक्म आग्या भिन्ना कोए आवन जाना ते मिटै नानक जिहे मन सोए पौड़ी एऊ जी बहुत गर्भवासे मोह मगन मीठ जो नफासे इन माया त्रै गुण बस कीने आपन मोह कटे कट दीने ए साजन कछ कहो उपाया जाते तरो बिखम एह माया कर किरपा सतसंग मलाए नानक तां कै निकट ना माए सलोक किरत कमावन शुभ अशुभ कीने तिन प्रभ आप हस आपन हों हों करे नानक बिन हर कहां कमात पौड़ी ये कह आप करावन हारा आपै पाप पुन बिसथारा या जुग जित जित आपै लायो सो सो पायो जो आप दुआयो वाका अंत ना जाने को जो जो करे सो फुन हो ये कहते सगला बिसथारा नानक आप सवार नहारा सलोक राच रहे बनता बनोद कुसुम रंग बिखशोर नानक ते सरनी परो बिन सजाए मैं मोर पौड़ी रे मन बिन हर जह रचो तह तह बंधन पाहे जेह बिद कतु ना छूटी है साकत तेऊ कमाहे हौ हौ करते कर्म रत ताको भार अपार प्रीत।

नै बुझै सो प्रभ सदहु संग। लेखै गणत ना छूटियै काची भीत ना सुध, जिसै बुझाए नानका तेह गुरमुख निर्मल बुद्ध। सलोक टूटे बंधन जास के होआ साधु संग, जो राते रंग एक कह नानक गूढ़ा रंग पौड़ी। रारा रंग हो क्या मन अपना, हर हर नाम जप हो जप रसना। रे रे दरगाह कह ना को, आओ बैठ आदर शुभ देव। वाह महली पावह तू बासा, जन्म मरन नह हुए बनासा। मस्तक कर्म लिखियो तुर जाके, हर संपै नानक करता कै। सलोक लालच झूठ विकार मोह, व्यापत मूड़े अंध। लाग परे दुर्गंध स्यो, नानक माया बंद पौड़ी। लल्ला लपट बिखै रस राते, अहम बुद्ध माया मद माते। या माया मैं जन्मै मरना, ज्यों ज्यों हुक्म त्यों त्यों करना। को ऊन न को पूरा, को सुगर न को मूरा। जित जित लाभ तित तित लगना, नानक ठाकुर सदा अलिपना। सलोक लाल गोपाल।

कह लवै न को एकह आप अवर नह हो होवन हार होत सद आया वाका अंत न काहू पाया कीत हस्त मह पूर समाने प्रगत पुरख सब ठाऊ जाने जाको दीनो हर रस अपना नानक गुरमुख हर हर ते जपना सलोक आत्म रस जे जानिया हर रंग सहजे मान नानक धन तन धन जन आए ते परवान पौड़ी आया सफल ताहू को गनिए जास रसन हर हर जस भनिए आए बस है साधु कै संगे अन बिन नाम त्याव है रंगे आवत सोजन न महराता जा को दया मया बेदाता एक है आवन फिर जोन न आया नानक हर कै दर्श समाया सलोक यास जपत मन हुए आनंद बिनसै दूजा भाव दुख दर्द तृष्णा बुझे नानक नाम समा

जी रसिया ठाकुरे अपने जो जन पाया नानक वा का मन सीतलाया। श्लोक दंडौत बंदन अनक बार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ पौड़ी डड्डा डेरा एहो नहीं जह डेरा तह जान वा डेरा का संयम गुर कै शब्द पछान या डेरा को श्रम कर खाल जाका तसु नहीं संग चाल वा डेरा की सो मित जान जाको दृष्ट पूर्ण भगवान डेरा निश्चल सच साध संग पाया।

आद संग संबंध पौड़ी टड्डा ढूंढत कह फिर ढूंढन या मन माहे संग तुहार है प्रभु बसै बन बन कहां फराहे तेरी ताहो साध संग हम बुद्ध बिकराल सुख पावो सहजे बसो दर्शन देख निहाल तेरी जामै जम मरे गर्भ जोन दुख पाए मोह मगन लपटत रह हों हों आवे जाए तहत तहत अब टह परे साध जना सरनाए दुख के फाहे काटिया नानक लिए समाए सलोक जह साधु गोविंद भजन कीर्तन नानक नीत ना हो ना तू नह छुटह निकट ना जाइयो दूत पौड़ी नाना रण ते सीधी है आत्म जीत कोवे हों मैं अनस्यो लर मरे सो सोबा दू होए मणि मटाए जीवत मरे गुर पूरे अपदेश मनुआ जीतै हर मिले तेहे सूर तन वेस ना को जाने अपनो एक है टेक आधार रैन दिनस सिमरत रह सो प्रभ पुरख अपार रेन सगल या मन करै एऊ कर्म कमाए हुक्मै बूझै सदा सुख नानक लिखिया पाए सलोक तन मन तन अर्पो तिसै प्रभु मलावै मोहे नानक भ्रम पहु काटियै चूकै जम की जोह पौड़ी तत्ता तांस्यो प्रीत कर गुण निध गोबिंद राय फल पावह मन बांछते तपत तुहारी जाय त्रास मिटै जम पंथ की जास बसै मन नाव गत पावह मत हुए परगास महली पावह ठाव ताहू संग ना धन चलै ग्रह जोबन नहराज संत संग सिमरत रहो एह तुहारे काज ताता कछु ना हुई है जो ताप नवारे आप प्रतपालै नानक हमह आपह माई बाप सलोक थाके बहु बिद काल ते कृपत न तृष्णा लाख संच संच साकत मुए नानक माया ना साथ पौड़ी थत्था तिर को नहीं काए पसारु पाम अनक बंच बल छल करहु माया एक अपाव थैली संच हो श्रम करहु थाक परहु गवार मन कै कामना आ गई अंते अवसर बार हित पावहु गोबिंद भजो हो संत है की सिख ले हो प्रीत करहु सद एक स्यों या साचा असनेहु कारण करन करामनु सब विद एक हाथ जित जित लाभ हो तित तित लग है नानक जंत अनाथ सलोक दासा एक निहारिया सब कछ दे मनहार सास सास सिमरत रह नानक दर्श आधार पौड़ी दद्दा दाता एक है सब को दे वनहार देंदे तोट ना आवई अगणत भरे भंडार दैन हार सद जीवन हारा मन मूर्ख क्यों ताहे बसारा दोष नहीं काहू को मीता माया मोह बंद प्रभ कीता दर्द निवार है जाके आपे नानक तेते गुर

सद्दा तावत तौ मिटे संत संग होए बास तुरते कृपा करो आप तौ होए मनह परगास तन साचा तेउ सच साहा हर हर पूंजी नाम बसाहा धीरज जस सोभा ते बनिया हर हर नाम श्रवण जेह सुनिया गुरमुख जेह कट रहे समाई नानक ते

मत पूरी प्रधान ते गुर पूरे मन मंत जिह जान्यो प्रभ अपना नानक ते भगवंत पौड़ी मम्मा जाहू मर्म पछाना भेटत साध संग पतियाना दुख सुख अवाकै समत बिचारा नरक सुरग रहत अवतारा ताहू संग ताहू निरलेपा पूर्ण घट घट पुरख बसेखा वा रस मैं वाहू सुख पाया नानक लिप्त नहीं तेह माया। सलोक यार मीत सुन साजन हो बिन हर शूतन नाहे नानक तेह बंधन कटे गुर की चरणी पाहे पवड़ी जइया यतन करत बहु विदिया एक नाम बिन कह लो सिदिया याहू जतन कर होत छटारा वाहू जतन साध संगारा या उबरण धारे सब को वाहे जपे बिन उबर ना हो याहू तरन तारन समराता राख लेहो निर्गुण नरनाथा मन बच क्रम जेह आप जनाई नानक तेह मत प्रगति आई। सलोक रोस न काहू संग करहो अपने आप विचार होए निमाना जग रहो नानक नदरी पार पौड़ी रारा रेन होत सब जाकी ताज अवमान छुटै तेरी बाकी रण दरगह तो सीजै पाई जो गुरमुख राम नाम लिवलाई रहत रहत रह जाहे बिकारा गुर पूरे कै शब्द अपारा राते रंग नाम रस माते नानक हर गुर की नींदाते। सलोक लालच झूठ बिखै ब्याद या देही महबास हर हर अमृत गुरमुख पिया नानक सूख निवास पौड़ी लल्ला लावो औखद जाहु दुख दर्द ते मिटै खनाहु नाम औखद जे हृदय हतावै ताहे रोग सुपने नहीं आवै हर औखद सब घट है पाई।

देव सर्वत्र में ऊन ना कतहु ठाए, अंतर बाहर संग है नानक काए दुराए पौड़ी। ववा वैर ना करिए काहू, घट घट अंतर ब्रह्म समाहु। वास देव जल थल में रविया, गुर प्रसाद विरले ही गविया। वैर विरोध मिटे ते मनते, हर कीर्तन गुरमुख जो सुनते। वर्ण चेहन सगल है ते रहता, नानक हर हर गुरमुख जो कहता। श्लोक हौ हौ करत बेहानिया, साकत मुगद अजान। रड़क मोए ज्यो त्रिखावन, नानक किरत कमान पौड़ी। राड़ा राड़ मिटे संग साधु, कर्म तर्म तत नाम अराधु। रूड़ो जेहे बसे उरिद माही, वा की राड़ मिटत बिन साही। राड़ करत साकत गावारा, जेहे ही है हम बुद्ध बेकारा। राड़ा गुरमखड़ाड़ मटाई, निमख माही नानक समझाई। श्लोक साधु की मन ओट गहो, उकत सियान पत्याग। गुर दीखिया जेहे मन बसै, नानक मस्तक भाग पौड़ी। ससा शरण परे अबहारी, शास्त्र सिमरत वेद पुकारी। सोधत सोधत सोध बिचारा, बिन हर भजन नहीं छुटकारा। सास सास हम भूलन हारे, तुम समरत अगनत अपारे। शरण परे की राख दयाला, नानक तुमरे बाल गोपाला। सलोक खुदी मिटी तब सुख पहे,

जो किन मैं ऊने सुबर पराहु खरा निमाना होत परानी अन दिन जापै प्रभ निर्वाणी भावै खसम ता वा सुख देता पार ब्रह्म ऐसो आगंता असंख खते खिन बख्शन हारा नानक साहिब सदा दयारा। सलोक सत कहो सुन मन मेरे सरन परहो हर राय उकत सियानप सगल त्याग नानक लए समाए पौड़ी। ससा सियानप छाड़ आना हिकमत हुक्म ना प्रभ पतियाना सहस भांत करह चतुराई।

0: गुण निधान जाके सदा विवेक हे अपरंपर हर हरे है पी होवनहार हे संत है कै सदा संग निधारा आधार हे ठाकुर हम दासरो मैं निर्गुण गुण नहीं कोए नानक दी जय नाम दान राखो ही है परोए। सलोक गुरुदेव माता गुरुदेव पिता गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा गुरुदेव सखा अज्ञान भंजन गुरुदेव बंधप सहोदरा गुरुदेव दाता हर नाम उपदेश गुरुदेव मंत नरोधरा गुरुदेव शांत सत बुद्ध मूरत गुरुदेव पारस परस परा गुरुदेव तीरथ अमृत सरोवर गुर ज्ञान मज्जन अपरंपरा गुरुदेव करता सब पाप हरता गुरुदेव पतत पवित करा गुरुदेव याद जुगाद जुग जुग गुरुदेव मंत हर जप उधरा गुरुदेव संगत प्रभ मेल कर कृपा हम मूढ़ पापी जित लग तरा गुरुदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर गुरुदेव नानक हर नमस्कारा। इह सलोक आद अंत पढ़ना
1: गौड़ी सुखमनी।

आसन रत्न प्रभ को सिमरह से तनवंते, प्रभ को सिमरह से पतवंते, प्रभ को सिमरह से जन परवान, प्रभ को सिमरह से पुरख प्रधान, प्रभ को सिमरह से बेमोहताजे, प्रभ को सिमरह से सर्व के राजे, प्रभ को सिमरह से सुखवासी, प्रभ को सिमरह सदा अविनाशी,

भाग प्रभु कै सिमरन कार्य पूरे, प्रभु कै सिमरन कबहु ना चूरे, प्रभु कै सिमरन हर गुण बानी, प्रभु कै सिमरन सहज समानी, प्रभु कै सिमरन निश्चल आसन, प्रभु कै सिमरन कमल बिगासन।

हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, हर सिमरन लग बेद उपाय। हर सिमरन भय सिद्ध जति दाते, हर सिमरन नीच चौह कुंट जाते। हर सिमरन धारी सब धरना, सिमर सिमर हर कारण करना। हर सिमरन कियो सगल अकारा, हर सिमरन मह आप निरंकारा। कर किरपा जिस आप बुझाया, नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया। सलोक दीन दर्द दुख भंजना, कट कट नाथ अनाथ शरण तुम्हारी आयो। नानक के प्रभ साथ, अष्टपदी जह मात पिता सुत मीत न पाई। मन ऊहा नाम तेरे संग सहाई, जह महाभयान दूत जम दलै। तह केवल नाम संग तेरे चलै, जह मुश्किल होवे अत भारी। हर को नाम खिन माहे उधारी, अनक पुनः चरण करत नहीं तरै। हर को नाम कोट पाप पर हरै, गुरमुख नाम जपो मन मेरे। नानक पाव सुख कनेरे, सगल श्रेष्ठ को राजा दुखिया। हर का नाम जपत होए सुखिया, लाख करोरी बंधन परै। हर का नाम जपत निस्तरै, अनक माया रंग तेख ना बुझावै। हर का नाम जपत आघावै, जिह मार्ग इहो जात अकेला। तह हर नाम संग होत सहेला, ऐसा नाम मन सदा त्याईऐ। नानक गुरमुख परम गत पाईऐ, छूटत नहीं कोट लख बाही। नाम जपत तह पार पराही, अनक बिगन जह आए संघारै। हर का नाम तत्काल उधारै।

संत दिन रात हर हर औखद साधक मात हर जन कै हर नाम निदान पार ब्रह्म जन कीनो दान मन तन रंग रते रंग एकै नानक जन कै बिरत बिबेकै हर का नाम जन को मुक्त जुगत हर कै नाम जन को तृप्त भुगत हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जपत कब परै ना भंग हर का नाम जन

जन हर रस राते सुन समाद नाम रस माते आठ पैर जन हर हर जपै हर का भगत प्रगट नहीं छपै हर की भगत मुक्त बहु करे नानक जन संग केते करे पार जात एहो हर को नाम काम तेन हर हर गुण गाम।

पूजस नाही हर हरे नानक नाम अमोल अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान खट शास्त्र सिमृत वख्यान योग अभ्यास कर्म त्रम।

चार नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार नौ खंड पृथ्वी फिरै चिर जीवै महा उदास तपीसर पीवै अग्न माहे होमत परान कनक असव है विर भूम दान न्योली कर्म करै बहु आसन जैन मार्ग संयम अत साधन निमख निमख कर शरीर कटावै तौ पी होमै मैल न जावै हर के नाम समसर कछ नाहि नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहि मन कामना तीर्थ देह छुटै गर्भ गमान न मन ते हुटै सोच

अपमान आपस कहो जो जाने नीचा सो गनिये सब ते ऊंचा जाका मन हुए सगल की रीना हर हर नाम तिन घट घट कीना मन अपने ते बुरा मिटाना एक है सगल श्रेष्ठ सा

सगल कटाको देव हुदान कर्ण कराम नहार स्वामी सगल कटाके अंतर जामी अपनी गत मित जानू आपे आपन संग आप प्रभ राते तुमरी उस्तत तुम ते होए नानक अवर ना जान सकोए सर्व धर्म मह श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल करम सगल क्रिया मह उत्तम क्रिया साध संग दुर्मत मल हिरिया सगल उदम मह उदम भला हर का नाम जप हो जी सदा सगल बाणी मह अमृत बाणी हर को जस सुन रसन बखानी।

सुन अंधा कैसे मार्ग पावे, कर गह लेहो ओढ़ निबिहावे, कहां बजारत दूजै डोरा, निस कहिए तो समझै पूरा, कहां

दृढ़ कर्मान मन है प्रतीत, काल न आवे मूड़े चीत, बैर विरोध काम क्रोध मोह, झूठ बकार महालोभ त्रोह, याहू जुगत बिहाने कई जन्म, नानक राख ले हो आपन कर कर्म, तू ठाकुर तुम पह अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास, तुम मात पिता हम बाप।

मिथ्या रथ हस्ती असव वस्त्रा मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता मिथ्या ध्रोह मोह अभमान मिथ्या आपस ऊपर करत गमान अस्थिर भगत साध की सरन नानक जप जप जीवै हर के चरण मिथ्या श्रवण पर निंदा सुनह मिथ्या हसत पर धर्म को हिरह मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रिय रूपाद मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद मिथ्या चरण पर बकार को धाव है मिथ्या मन पर लोभ लुभाव है मिथ्या तन नहीं पर उपकारा मिथ्या बास लेत बेकारा बिन बूझे मिथ्या सब भये सफल देहे नानक हर हर नाम लय बिरथी साकत किया।

कछ अवर कमावत मन नहीं प्रीत मुखो गंध लावत जान नहार प्रभु परबीन बाहर भेख ना काहू पीन अवर अपदेश।

लवते रहत सब कछ जान आत्म की रहत जिस पावे तिस लय लड़ लाई थान थन अंतर रहे आसमाय सो सेवक जिस कृपा करी निमख निमख जप नानक हरी सलोक काम क्रोध अर लोभ मोह बिन सजाए अहमेव नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी जे प्रसाद छत्ति अमृत खाहे तिस ठाकर को रख मन माहे जे प्रसाद सुगंधत तन लाव है तिस को सिमरत परम गत पाव है जे प्रसाद बस है सुख मंदर तिसे त्याहे सदा मन अंदर जेहे प्रसाद ग्रह संग सुख बसना आठ पैर सिमरहो तिस रसना जेहे प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याहिए त्यावन जोग जेहे प्रसाद पाठ पटंबर हंधावे है तिसे त्याग कत अवर लुभावे है।

मन सुख पावह हर हर जस कहत जे प्रसाद तेरे सगल सिदर ढाके मन चरनी पार ठाकर प्रभ ताके जे प्रसाद तुझ

का ध्यान जेह प्रसाद तू अचार व्यवहारी तिस प्रभ को सास सास चतारी जेह प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभ सिमरहु सदा अनूप।

ऐसा प्रभु त्याग अवर कत लाग हो, गुरु प्रसाद नानक मन जाग हो, जे प्रसाद तू प्रगट संसार, तिस पव को मूल।

ता साध जना की अचरज कथा अष्टपदी साध कै संग मुख उज्जल होत साध संग मल सगली खोत साध कै संग मिटै अभिमान साध कै संग प्रगटै सुज्ञान साध कै संग बुझै प्रभ नेरा साध संग सब होत नबेरा साध कै संग पाए नाम रतन साध कै संग एक ऊपर जतन साध की महिमा वर्णै कौन प्राणी नानक साध की शोभा प्रभ माहे सुमानी साध कै संग अगोचर मिलै साध कै संग सदा प्रफुलै साध कै संग आवह बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा साध संग हुए सब की रेन साध कै संग मनोहर बैन साध कै संग न कतहू धावै साध संग अस्थित मन पावै साध कै संग माया ते भिन्न साध संग नानक प्रभ

परमानंदा साध क्या संग नाही हो ताप साध क्या संग तजै सब आप आपे जाने साध बुदाई नानक साध प्रभु बने आई साध क्या संग न कब हूं तावे साध क्या संग सदा सुख पावे साध संग बस्त अगोचर लह साधु कै संग अजर सह साध क्या संग बसे थानी उच्च साधु कै संग महल पहुंच साध क्या संग दृढ़ है सब धर्म साध क्या संग केवल पार ब्रह्म साध क्या संग पाहे नाम निदान नानक साधु कै कुर्बान साध क्या संग सब कुल उधार है साध संग साजन मी

साध कै संग शोभा सुर देवा, साधु कै संग पाप पलायन, साध संग अमृत गुण गायन, साध कै संग सर्ब स्थान गम, नानक साध कै संग सफल जनम, साध कै संग नहीं कछ काल, दर्शन भेट होत निहाल, साध कै संग कलूखत हरै, साध कै संग नरक पर हरै, साध कै संग इहां उहां सोहेला, साध संग बिछरत हर मेला, जो इच्छै सोई फल पावै, साध कै संग न बिरता जावै, पार ब्रह्म साध हृद बसै, नानक उधरै साध सुन रसै, साध कै संग सुनो हर नाऊ, साध संग हर के गुण गाऊ, साध कै संग न मन ते बिसरै, साध संग सर पर निस्तरै, साध कै संग लगै प्रभ मीठा, साधु कै संग घट घट दीठा, साध संग भय आज्ञाकारी, साध संग गत भई हमारी, साध कै संग मिटे सब रोग, नानक साध भेटे संजोग, साध की महिमा भेद न जानह, जेता सुनह तेता बखियान है, साध की उपमा तेहो गुण ते दूर, साध की उपमा रही भरपूर, साध की शोभा का नाही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत, साध की शोभा ऊंच ते ऊंची, साध की शोभा मूच ते मूची, साध की शोभा साध बन आई, नानक साध प्रभ भेद ना पाई, श्लोक मन साचा मुख साचा सोए, अवर ना पेख एकस बिन कोए, नानक एह लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए अष्टपदी, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जा

अभिमान ब्रह्म ज्ञानी ऊच ते ऊचा मन अपने है सब ते नीचा ब्रह्म ज्ञानी से जन भये नानक जिन प्रभ आप करे ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना आत्मरस ब्रह्म ज्ञानी कीना ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा ना भया ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान।

ब्रह्म ज्ञानी हम बुद्ध त्यागत, ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कै घर सदा आनंद, ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी।

ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए, ब्रह्म ज्ञानी को पूजह महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी।

पावै भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्यागै दुष्ट का संग मन ते बिनसै सगला भरम कर पूजै सगल पार ब्रह्म साध संग पापा मल खोवै तिस भगवती की मत उत्तम होवै भगवंत की टहल करै नित नीत मन तन अर्पै बिसन परीत हर के चरण हृदय बसावै नानक ऐसा भगवती भगवंत को।

ना पाई है धर्म नानक किस मिलै जिस लिखिया तुर कर्म जिसकै मन पार ब्रह्म का निवास तिसका नाम सत राम दास आत्म नाम तिस नगरी आया दास दसंतन पाए तिन पाया।

कुमार अष्टपदे कई कोट होए पुजारी कई कोट अचार व्यवहारी कई कोट पै तीर्थ वास्ती कई कोट बन भ्रम है उदासी कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तपीश्वर होते कई कोट आत्म

कई कोट भय अबमहानी, कई कोट अंध अज्ञानी, कई कोट किरपन कठोर, कई कोट अपिग आत्म निकोर, कई कोट पर दर्भ को हिरह, कई कोट पर दुख ना करह, कई कोट माया श्रम माहे, कई कोट परदेश परमाहे, जित जित लाभ हो तित तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना, कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर्प उपाय, कई कोट पात्र बिरख निपजाए, कई कोट पवन पानी बैसंतर, कई कोट देश भूमंडल, कई कोट ससियर सूर नखियतर, कई कोट देव दानव इंद्र सिर शतर, सगल समग्री अपने सूत तारै, नानक जिस जिस पावै तिस तिस निस्तारै, कई कोट राजस तामस सातक, कई कोट वेद पुराण सिमरत अरसास, कई कोट किए रतन समुंद, कई कोट नाना प्रकार जन, कई कोट किए चिर जीवे, कई कोट गिरी मेर स्वर्ण जीवे, कई कोट जख किनर पसाच, कई कोट भूत प्रेत सूकर मिर्गाच, सब ते नेरा सब हूं ते दूर, नानक आप अलिपत रहया भरपूर, कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक सुर्ग निवासी, कई कोट जन्म है जीव है मर है, कई कोट बहु जोनी फिर है, कई कोट बैठत ही खाहे, कई कोट काल है थक पाहे, कई कोट किए तनवंत, कई कोट माया मह चिंत, जह जह पाना तह तह राखे, नानक सब किश प्रभ कह हाते, कई कोट भय बैरागी, राम नाम संग तिन लिव लागी, कई कोट प्रभ कौ खोजंते, आत्म मह पार ब्रह्म लहंते, कई कोट दर्शन प्रभ प्यास, तिनको मिलियो प्रभ अविनाश, कई कोट मांग है सत संग, पार ब्रह्म तिन लागा रंग, जिनको होए आप सो प्रसन्न, नानक ते जन सदा धन धन, कई कोट खानी अरखंड, कई कोट आकाश ब्रह्म।

दास तिन होवत आत्म परगास कई कोट तत के बेते सदा निहार है एको नेत्रे कई कोट नाम रस पीव है अमर पये सद सद ही जीव है कई कोट नाम गुण गाव है आत्म रस सुख सहज समाव है अपने जन को सास

प्रभ भावै बिन सास्ते राखै, प्रभ भावै ता हर गुण भाखै, प्रभ भावै ता पतत उधारै, आप करै आपन विचारै, दोहां सिरियां का आप स्वामी, खेलै बिगसै अंतर जामी।

ब्रह्म प्रगास अपनी बनते आप बनाई नानक जीवै देख बढ़ाई इसका बल नाही इस हाथ करन करावन सर्ब को नाथ आज्ञाकारी बपरा जियो जो तिस पावै सोई फुन थियो कबहू ऊंच नीच मह बसै कबहू सोग हर रंग हसै कबहू निंद चिंद व्योहार कबहू ऊब आकाश पयाल कबहू बेता ब्रह्म विचार नानक आत्मला।

पर राजा कबहु भिखारी नीच का साजा कबहु अपकीर्त मह आवे कबहु भला भला कहावे ज्यों प्रभ राखै तिव ही रह गुर प्रसाद नानक सच कह कबहु होए पंडित करे बखियान कबहु मोन धारी लावे ध्यान कबहु तट तीर्थ इशनान कबहु सिद्ध साधक मुख।

ज्योति संग ज्योत समाना, मिट गए गमन पाए बिसराम। नानक प्रभ कै सद कुर्बान, सलोक सुखी बसै मशकीनिया। आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया, नानक गर्भ गले अष्टपदी। जिसकै अंतर राज अभिमान, सो नरक पाती होवत सुवान। जो जाने मैं जो बनवंत, सो होवत बिष्टा का जंत। आपस कहो कर्मवंत कहावे, जन्म मरै बहु जोन प्रमावै।

तब इसको सुख नाही कोए। जब एह जाने मैं किछ करता, तब लग गर्भ जोन मैं फिरता। जब तारे को बैरी मीत, तब लग निश्चल नाही चीत। जब लग मोह मगन संग माई,

को उठ धावे, तृप्त न आवे माया पाछे पावे, अनक भोग बिख्या के करे, नह तृप्तावे खप खप मरे, बिना संतोख नहीं को राज्य, सुपन मनोरथ बिरथे सब काज्य, नाम रंग सर्व सुख होए, बड़ भागी तिसे प्राप्त होए, करन करावन आपे आप, सदा सदा नानक हर जाप, करन करावन करन हार, इसके हाथ कहां विचार, जैसे

जाय। नानक सद ही रहे आसमाय, आप उपदेसै समझै आप, आपे रचिया सब कै साथ, आप कीनो आपन विस्तार सब।

कौतक करे रंग अपार। मन मह आप मन अपने माहे, नानक कीमत कहन ना जाए। सत सत सत प्रभ स्वामी।

अष्टपदी संत कै दुख में आरजा कटै, संत कै दुखन जमते नहीं छुटै, संत कै दुखन सुख सब जाय, संत कै दुखन नरक मह पाय, संत कै दुखन मत हुए मलीन, संत कै दुखन शोभा ते हीन, संत के हथे को रखै ना कोय, संत कै दुखन थान भ्रष्ट होय, संत किरपाल किरपा जे करै, नानक संत संग निंदक भी तरै, संत के दुखन ते मुख भवै, संतन कै दुखन काग ज्यों लवै, संतन कै दुखन सर्प जोन पाए, संत कै दुखन त्रिगद जोन किरमाए, संतन कै दुखन तृष्णा मह जलै,

नानक ज्योति सपावै सोई थिया। संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए, संत के दुखी को दरगाह मिले सजाए। संत का दुखी सदा सहकाई है, संत का दुखी ना मरे ना जीवाई है। संत के दुखी की पूजै ना आसा, संत का दुखी उठ

है भगवान जिस कैदी रह अघाई बहुर न तिछना लाग आई मार है रख है इको आप मानुख कह किस नाही हाथ जिसका हुक्म

चार ए तनवंत गनी संसार मन तन मुख बोल है हर मुखी सदा सदा जानो ते सुखी एको एक एक पछान इत उत की ओह सोजी जान नाम संग जिसका मन मानिया नानक तिन्ह निरंजन जानिया गुर प्रसाद अपने आप सुजै किसकी जानो तृष्णा बुझै साध संग हर हर जस कहत सर्व रोग ते ओह हर जन रहत अन दिन कीर्तन केवल बखियान गृहस्थ मैं सोही निर्वाण एक ऊपर जिस जन की आसा तिसकी कटिया जम की फासा पार ब्रह्म की जिस मन भूख नानक तिस है ना लाग है दुख जिस को हर प्रभ मन चित आवे सो संत सहेला नहीं दुलावे जिस प्रभ अपना कृपा करे सो सेवक कहो किसते डरे जैसा सा तैसा दृष्टाया अपने कार्य में आप समाया सोदत सोदत सोदत सीजिया गुर प्रसाद तत सब बूजिया जब देखो तब सब किश मूल नानक सो सूखम सोई असथूल नह किस जन्म है नह किस मरे आपन चलते आप ही करे आमन जावन दृष्ट अन दृष्ट आज्ञाकारी।

ਬਿਰਥਾ ਜਾਨਨਹਾਰ ਜਾ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਉਦਰੀ ਹੈ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਿਹਾਰ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ

है, प्रभ की जोत सगल घट सो है, तनमंता हुए क्या को गर्व है, जहाँ सब किस तिस का दिया दर्व है, अत सूरा जे को कहावे, प्रभ की कला बिना कहतावे, जे को हुए बह दातार, तिस देन हार जाने गवार, जिस गुर प्रसाद तूटे हो रोग, नानक सो जन सदा अरोग, ज्यों मंदर को थम्मै थम्मन, त्यों गुर का शब्द मने अस्थम्मन, ज्यों पाखाण नाव चढ़तरै, प्राणी गुर चरण लगत निस्तरै।

संग मिल जोत प्रगटावे, दिन संतन की बाँचो तूर, नानक की हर लोचा पूर, मन मूरख काहे बिन लाइए, पुरब लिखे का लिखिया पाइए।

राज मह राज, जोग मह जोगी, तप मह तपीसर, ग्रस्त मह भोगी, त्याए त्याए भगत है सुख पाया, नानक तिस पुरख का किन अंत ना पाया, जाकी लीला की मित नाहि, सगल देव हारे।

पाई, सब काट तिसके सब तिसके ठाव, जप जप जीवै नानक हर नाव, नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मांड, नाम के तारे सिमरत वेद पुराण, नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान, नाम के तारे आगास पाताल, नाम के तारे सगल आकार, नाम के तारे पुरियां सब भवन, नाम के संग उदरे सुन श्रवन, कर कृपा जिसे अपने नाम लाए, नानक चौथे पद मह सो जन गत पाए, रूप सत जाका सत स्थान, पुरख सत केवल प्रधान।

मूल सत सत उत्पत सत करनी निर्मल निर्मली जिसह बुझाए तिसह सब भली सत नाम प्रभु का सुखदाई विश्वास सत नानक गुरते पाई सत बचन साधु उपदेश सत ते जान जां कै हृदय प्रवेश सत नित बूझै जे कोय नाम जपत ता की गत होय आप सत किया सब सत आपे जानै अपनी मित गत जिसकी सृष्ट सो करनै हार अवर ना बूझ करत विचार करते की मित ना जानै किया नानक जोत सुभावै सो वर्तिया बिस्मन बिस्म भये बिस्माद जिन बूझिया किसे आया स्वाद प्रभु कै रंग रात जन रहे गुरु कै बचन पदार्थ लहे वे दाते दुख काटन हार जा कै संग तरै संसार जन का सेवक सो वड भागी।

अपने सेवक को नाम जपाई, अपने सेवक की आप पात राख है, ताकी गत मित कोए ना लाख है, प्रभु के सेवक को ना पहुंचे, प्रभु के सेवक उचते उच्चे, जो प्रभु अपनी सेवा लाया, नानक सो सेवक दह दिस प्रगटाया, नीकी कीरी मह कल राख है, पसम करे लश्कर कोट लाख है, जिसका शासन काटते आप, तां को राखत दे कर हाथ, मानस जतन करत बहु पांत, तिसके करतब बिरथे जात, मारे ना राखे अवर ना कोए, सर्व जिया का राखा सोए, काहे सोच करह रे प्राणी, जप नानक प्रभ अलख वडाणी, बारंग बार बार प्रभ जपिया, ई अमृत इह मन तन तृपिया, नाम रतन जिन गुरमुख पाया, तिस किस अवर नाही दृष्ट।

बोलहु जस जेह बात निरात प्रभ अपने जन कीनी दात करह भगत आत्म कह चाय प्रभ अपने स्यो रह समाए जो होवा होवत सो जान प्रभ अपने का हुक्म पहचान तिसकी महिमा कौन बखानो तिसका गुण कह एक न जानो आठ पैर प्रभ बसै हजूरे कहो नानक से ही जन पूरे मन मेरे तिनकी ओट ले मन तने अपना तिन जन दे जिन जाने अपना प्रभ।

नानक तिस जन के पूजो सद पैरा सलोक सत पुरख जिन जानिया सतगुर तिसका नाम तिसकै संग सिख उधरै नानक हर गुण गाओ अष्टपदी सतगुर सिख की करै प्रतपाल सेवक को गुर सदा दयाल सिख की गुर दुरमत मल हिरै गुर बचनी हर नाम उच्चरै सतगुर सिख के बंधन काटै गुर का सिख विकार ते हटै सतगुर सिख को नाम धन दे गुर का सिख वडभागी हे सतगुर सिख का हलत पलत सवारै नानक सतगुर सिख को जी नाल समारै गुर के ग्रह सेवक जो रहै गुर की आग्या मन मह सहै आपस को कर कछ ना जनावै हर हर नाम हृदय सद ध्यावै मन बेचै सतगुर कै पास तिस सेवक के कारज रास सेवा करत हुए निहकामी तिस कौ होत प्राप्त स्वामी अपनी कृपा जिसे आप करे नानक सो सेवक गुर की मत ले।

बल जाओ। सर्म निधान जी का दाता, आठ पहर पार ब्रह्म रंग राता। ब्रह्म मैं जन, जन मैं पार ब्रह्म, एक कह आप नहीं कछ भरम। सहस सियान पलया ना जाइए, नानक ऐसा गुरबद भागी पाइए। सफल दर्शन पेखत पनीत, परसत चरण गत निर्मल रीत। भेटत संग राम गुण रवे, पार ब्रह्म की दरगाह गवे। सुन कर बचन करन आगहने, मन संतोख आत्म पतियानी। पूरा गुर अखयो जाका मंत्र, अमृत दृष्ट पेखा हुए संत। गुण बेअंत कीमत नहीं पाए, नानक जिस भावे तिस लये मलाए। जिहवा एक उस्तत अनेक, सत पुरख पूर्ण विवेक। काहू बोल न पहुंचत प्राणी, अगम अगोचर प्रभ निर्वाणी। निराहार निर्वैर सुखदाई, ताकी कीमत किने ना पाई। अनक भगत बंधन नित करह, चरण कमल हृदय सिमरह। सद बलिहारी सतगुरे अपने, नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने। एहो हर रस पावे जन कोए, अमृत पीवे अमर सो होए। उस पुरख का नाही कदे विनाश, जां कै मन प्रगटे गुणतास। आठ पहर हर का नाम ले, सच उपदेश सेवक कौ दे। मोह माया कै संग न लेप, मन मह राखै हर हर एक। अंधकार दीपक परगासे, नानक भरम मोह दुख तह ते नासे। तपत माहे ठांड वरताई, आनंद भया दुख नाठे पहाई। जन्म मरण के मिटे अंदेसे, साधु के पूर्ण उपदेसे। पहु चूका निरपौ होए बसे, सगल ब्याध मन ते खै नसे। जिसका सातिन कृपा तारी, साध संग जप नाम मरारी। थित पाई चूके भ्रम गवन, सुन नानक हर हर जस श्रवन। निर्गुण आप सरगुण पी ओही, कला धार जिन सगली मोही। अपने चरित प्रभ आप बनाए, अपनी कीमत आपे पाए। हर बिन दूजा नाही कोए, सर्ब निरंतर एको सोए। ओत पोत रविया रूप रंग, पये प्रगास साध कै संग। रच रचना अपनी कल धारी, अनक बार नानक बलिहारी। सलोक साथ न चल बिन भजन, विखिया सगली शार। हर हर नाम कमावना, नानक इहो तन सार। अष्टपदी संत जना मिल करो बीचार, एक सिमर नाम आधार। अवर अपाव सब मीत बसार हो, चरण कमल रिद मह उरतार हो। करन कारण सो प्रभ समरथ, दृढ़ कर गहो नाम हरवत। इहो तन संचो हो वो भगवंत, संत जना का निर्मल मंत। एक आस राखो मन माहे, सर्व रोग नानक मिट जाहे। जिस तन को चार कुंट उठ धावह, तो तन हर सेवा ते पावह। जिस सुख को नित बांचह मीत, सो सुख साधु संग प्रीत। जिस शोभा को करह भली करनी, सा शोभा भज हर की सरनी। अनक अपावी रोग न जाए, रोग मिटे हर अवखद लाए। सर्व निधान मह हर नाम निधान, जप नानक दरगह परवान। मन पर बुद्ध हो हर कह नाए, दह

वसेव आप त्याग शरण गुरुदेव यो रतन जन्म का हुए उदहार हर हर सिमर प्राण अधार अनक अपावना छूटन हारे सिमरत शास्त्र वेद बिचारे हर की भगत करहु मन लाए मन बंछत नानक फल पाए संग न चालस तेरे तना तू क्या लपटाव है मूर्ख मना।

भगत बिना बहु डूबे सियाने, हर की भगत करहु मन मीत, निर्मल होए तुम्हारो चीत, चरण कमल राखो मन माहे, जन्म जन्म के किल विख जाहे, आप जप हो अवरा नाम जपाव हो, सुनत कहत रहत गत पाव हो, सार पूत सत हर को नाव, सहज सुपाए नानक गुण गाव, गुण गावत त्रि उत्तर सुमैल, बिन सजाए हों मैं बिख फैल, होहे अचिंत बसै सुख नाल, सास ग्रास हर नाम संभाल, चाड़ सियान पसगली मना, साध संग पावह सच धना।

एक भगवंत एको एक एक हरे आप पूर्ण पूर रहे प्रभ व्याप अनक विस्तार एक ते पए एक अराध परासत गए।

दर्श सुख हुए, मन बिगसै साध चरण धोए, भगत जना कै मन तन रंग, बिरला को पावे संग, एक बस्त दीजै करमया,

आप अष्टपदी जब अकार एहु कस ना दृष्टेता पाप पुन तब कहते होता जब धारी आपन सुन समाद तब बैर विरोध किस संग कमात जब इस का वर्ण चिहन ना जापत तब हरख सोग कहो किसे व्यापत जब आपने आप पार ब्रह्म तब मोह कहां किस होवत परम आपन खेल आप वर्ती जा नानक करने हार न दूजा जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मुक्त कहो किस कहो गनी जब एक है हर अगम अपार तब नरक सुर्ग कहो कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाए तब शिव सकत कहो कित ठाए जब आप है आप अपनी जोत धरे तब कवन नडार कवन कत डरे आपन चलत आप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार अविनाशी सुख अपने आसन तह जन्म मरण कहो कहां विनाशन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए जब अवगत गोचर प्रभेका तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा जब नाथ निरंजन अगोचर अगाधे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे आपने आप ही अचर जा नानक आपन रूप आप ही उपर जा।

नानक आपस को आपह पहुंचा, जह आप रचियो प्रपंच अकार, तेहो गुण मह कीनो विस्थार, पाप पुन कह भई।

अपमान अनक प्रकार की बखियान आपन खेल आप कर देख खेल संकोच तो नानक एक जह अवगत भगत तह आप जह पसरे पासार संत प्रताप दुहू पाख का आप है धनी उनकी शोभा उन्हू बनी आप है कौतक करे अनद चोज आप है रस भोगर निर्जोग जिस भावे तिस आपन नाए लावे जिस भावे तिस खेल खिलावे बेशमार अथाह अगंत अतुल।

की दृष्ट दर्शन पेहत उदरत श्रेष्ठ चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप धन सेवा सेवक परवान अंतर जामी पुरख प्रदान जिस मन बसै सो होत निहाल तां कै निकट ना आवत काल अमर पहे अमरा।

नानक तेह जन सोजी पाए, सो अंतर सो बाहर अनंत, घट घट व्याप रहिया भगवंत, तरन माहे आकाश पायाल, सर्व लोक पूर्ण प्रतपाल, बांतिन पर्वत है पार ब्रह्म, जैसी आज्ञा तैसा कर्म, पौन पानी वैसंतर वाहे, चार कुंट दैद से समाहे, तिसते भिन्न नहीं को ठाव, गुर प्रसाद नानक सुख पाव, वेद प्राण सिमरत मह देख, ससियर सूर नक्षत्र मैं एक, पाणी प्रभ की सबको बोले, आप अडोल न कबहू डोले, सर्व कला कर खिले खेल, मोल ना

कवन निकट कवन कहिया दूर, आपे आप भरपूर अंतरगत जिसे आप जनाए, नानक जिस जने आप बुझाए।

किन्हें कछ करा, आप भला कर तूत आत्मी की, आपे जाने अपने जी की, आप साच तारी सब साच, ओत पोत आपन संगराच, ताकी गत मित कही ना जाए।

तिस सदा सुख हुए, आप मलाए नहीं प्रभ सोए। ओह तनवंत कुलवंत पतवंत, जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत। धन धन धन जन आया, जिस प्रसाद सब जगत तराया। जन आवन का यह सुआउ, जन कै संग चित आवे नाउ। आप मुक्त मुक्त करे संसार।

अष्टपदी पूरे गुर का सुने उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पीख सास सास सिमरो गोविंद मन अंतर की उतरे चिंद आस अनित त्यागो तरंग संत जना की धूर मन मंग आप छोड़ बेनती करो साध संग अगन सागर तरहो हर धन के परले हो भंडार नानक गुर पूरे नमस्कार हेम कुशल सहज आनंद साध संग भज परमानंद नरक नवार।

सादर दीन दयाल दुख भजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का यह आधार उत्तम श्लोक साध के बचन अमलीक लाल यह रतन सुनत कमावत होत उधार आप तरह लोकह निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जा कै मन लागा हर रंग जय जय शब्द अनाहद वाजै सुन सुन आनंद करे प्रभ गाजै प्रगटे गोपाल महात कै माथे नानक कुदरे तिन कै साथे सरन जोग सुन सरनी आए कर कृपा प्रभ आप मलाए मिट गए बैर भय सबरेन अमृत नाम साध संग लैन।

प्रवत्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान चार पदार्थ कमल प्रगास सब कै मद सगल ते उदास सुंदर चतुर तत् का बेता समदर्शी एक दृष्टेता ए फल तिस जन कै मुख भने गुरु नानक नाम बचन मन सुने एहो निदान जपै मन कोए सब

गोविंद भगत कै मन विश्राम, कोट अपराध साध संग मिटे, संत कृपा ते जम ते छुटे, जा कै मस्तक कर्म प्रभ पाई, साध शरण नानक ते आई, जिस मन बसै सुनै लाए प्रीत, जिस जन आवै

सुख जाते सब कछु होए चार कुंत दह दिस भ्रम्यो तिस बिन अवर ना कोय वेद पुराण सिमरत सुने।

तिस बिन अवर ना जाय, जो चाह है सोई मिले, नानक हर गुण गाय, गोविंद जस गाय हर नीत।

हर शरण परों हर राय भ्रम कटिया नानक साध संग दुतिया भाव मिटाए पौड़ी दुतिया दुर्मत दूर कर गुर सेवा करनीत राम रतन मन तन बसे तज काम क्रोध लोभ मीत मरण मिटे जीवन मिले बिन सह सगल कलेश आप तजोह गोबिंद भजोह भाओ भगत प्रवेश लाभ मिले तोटा हिरे हर दरगाह पतवंत राम नाम धन संचवे साच साहा भगवंत उठत बैठत हर भजो साधु संग परीत नानक दुर्मत छुट गई

नानक संत निर्मल भए जिन मन वसिया सोए पौड़ी तृतीया त्रै गुण बिखै फल कब उत्तम कब नीच नरक सुर्ग भ्रम तो घणो सदा संघारे नीच हरख सोग सहसा संसार हों हों करत बिहाय जिन किए तिसह ना जाननी।

मोह परम बूढ़त कणो महानरक महवास कर कृपा प्रभ राख ले हो नानक तेरी आस। श्लोक चतुर सियाणा सुगड़ सोए जिन तजया अभमान चार पदार्थ अष्ट सिद्ध भजन।

अष्टमी अष्ट सिद्ध नव निद सगल पदार्थ पूर्ण बुद्ध कवल परगास सदा आनंद निर्मल रीत नरो धर्मंत सगल धर्म पवित्र इशनान सब मह ऊच बसेख ज्ञान हर हर भजन पूरे गुर संग जप तरिय नानक।

कार्य नरक स्वर्ग अवतार पौड़ी नौमी नवे सिदर अपवीत हर नाम ना जप है करत विपरीत पारत्रय रम है बक है साध निंद कर्म ना सुनही हर जस बिंद फिर है पर दर्भ उधर कहताई अग्न ना निवरे तृष्णा ना बुझाई हर सेवा बिन एह फल लागे नानक प्रभ बिसरत मर जमह अभागे सलोक दस दिस खोजत मैं फिरयो जत देखूं तत सोए मन बसया।

पौड़ी एकादशी निकट पेखो हर राम इंद्री बस कर सुनो हर नाम मन संतोख सर्ब जी दया इन बिद वर्त संपूर्ण भया धावत मन राखे एक ठाई मन तन शुद्ध

नानक प्रभ स्यों मिल रहे, बिन से सगल जंजाल पौड़ी, द्वादशी दान नाम इशनान, हर की भगत करो ताजमान, हर अमृत पान करो साध संग, मन तृप्ता सह कीर्तन प्रभ रंग, कोमल बाणी सब कौ संतोख है, पंच भू आत्मा

पतत उदारन मन बसे नानक छूटे नाम पौड़ी त्रौदशी तीन ताप संसार आवत जात नरके अवतार हर हर भजन न मन मह आयु सुख सागर प्रभ निमुख न गायु हरख सोग का देह कर बांधेउ दीर्घ रोग माया असाध्यु दिने विकार करत श्रम पायु नैनी नींद सुपन बरड़ायु हर बिसरत होवत एह हाल सरन नानक प्रभ पुरख दयाल। श्लोक चार कुंट चौ

कम असथूल सगल भगवान नानक गुरमुख ब्रह्म पिछान। श्लोक आत्म जीता गुरमती गुण गाए गोविंद संत प्रसादी पै मिटे नानक बिनसी किंड। पौड़ी अमावस आत्म सुखी पई

हूँ मैं छुट्टी सिमरत हर को नाम शरण गही पार ब्रह्म की मिटिया आवागमन आप तरिया कुटुंब सियो गुण गोविंद प्रभ रमन हर की टहल कमावनी जपिए प्रभ का नाम गुरपूरे ते पाया नानक सुख विश्राम सलोक पूर्ण कभो ना ढोलता पूरा किया प्रभ आप दिन दिन चढ़े सो आया नानक होत ना।

सभी ऊपर जा का हाथ गुण निदान गोविंद गुर किया जा का होए अंतर जामी प्रभ सुजान अलख निरंजन सोए पार ब्रह्म परमेश्वरो सब विद जानन हार संत सहाई शरण जोग आठ पहर नमस्कार अकथ कथा नह बूझिय सिमरहु हर के चरण पतत उदारन अनाथ नाथ नानक प्रभ की सर

साध। सलोक महला चौथा। सतगुरु पुरख दयाल है जिसनो समत सब कोय। एक दृष्ट कर देखदा मन भावनी ते सिद्ध होए। सतगुर विच अमृत है हर उत्तम हर पद सोए। नानक कृपा ते हर त्याई है गुरमुख पावे कोय। महला चौथा। हो मैं माया सब बिख है नित जग तोटा संसार। लाहा हर धन खटिया गुरमुख शब्द विचार। हो मैं मैल बिख उतरे हर अमृत हर उरतार। सब कार्य तिनके सिद्ध है जिन गुरमुख कृपा तार। नानक जो तुर मिले से मिल रहे हर मेले सिरजनहार। पौड़ी। तू सच्चा साहेब सच है सच सच्चा गोसाई। तुधनो सब त्याईंदी सब लगे तेरी पाई। तेरी सिफत सवाल्यो स्वरूप है जिन कीती तिस पार लंघाई।

मनमुख अहंकार सलाहंदे हमै ममतावाद जिन सलाहन से मर है खप जावे सब अपवाद जन नानक गुरमुख उबरे जप हर हर परमानाद महला चौथा सतगुर हर प्रभ दस नाम त्याई मन हरी नानक नाम पवित हर मुख बोली सब दुख पर हरी पौड़ी तू आपे आप निरंकार है निरंजन हर राया जिन्नी तू एक मन सच त्याया तिनका सब दुख गवाया।

मेरा मन पहाया सच्चे मेरे साहिबा सच्चे सच नाया। श्लोक महला चौथा मन अंतर हो मैं रोग है भ्रम भूले मन मुख दुर्जना नानक रोग गवाए मिल सतगुर साधु सज्जना। महला चौथा मन तन रत्ता रंग सियो गुरमुख हर गुणतास जन नानक हर शरणागति हर मेले गुर साबास पौड़ी। तू करता पुरख अगम है किस नाल तू बड़ी है तुद जे वडहोए सो आखी है तुद जेहा तू है पढ़ी है तू घट घट एक वरतदा गुरमुख परगड़ी है। तू सच्चा सब सुदा खसम है सब दू तू चढ़ी है तू करह सो सच्चे होए सी ता कायत करी है।

सतगुर सुख वसन महला चौथा जिने अंदर प्रीत पिरम की ज्यो बोलन तिवें सोहन नानक हर आपे जानदा जिन लाई प्रीत पिरन पौड़ी तू करता आप भुल है भुलन विच नाही तू करहै सो सच्चे भला है गुर शब्द बुझाही तू करन कारण समरथ है दूजा को नाही तू साहिब अगम दयाल है सब तुद त्याही सब जी तेरे तू सब सदा तू सब छिड़ाही। सलोक महला चौथा सुन साजन प्रेम संदेसरा अखी तार लगन गुर तुठै सजन मेलिया जन नानक सुख सुवन महला चौथा सतगुरु दाता दयाल है जिसनो दया सदा हुए सतगुर अंदरों निर्वैर है सब देखै ब्रह्म एक सोए निर्वैरा नाल जे वैर चलाएंदे तिन विचों किस्तिया ना कोई सतगुर सबना दा भला मनाए।

नानक करता सब किछ जानदा, जिदू किछ गुजा ना होए पौड़ी, जिसनो साहिब वड्डा करे सोई वड जानी, जिस साहिब भावै तिस बख्श लए, सो साहिब मन पाणी, जे को ओस दी रीस करे सो मूड़ अजानी, जिसनो सतगुर मेले सो गुण रवै गुण आख बखाणी, नानक सच्चा सच है बुझ सच समाणी, सलोक महला चौथा, हर सत निरंजन अमर है निर्भउ निरवैर निरंकार, जिन जपया एक मन एक चित तिन लथा हूं मैं भार, जिन गुरमुख हर आराध्या

आया पौड़ी। सच सच्चा सबदू वड्डा है, सो लय जिस सतगुर टिके, सो सतगुर जे सच त्याईंदा। सच सच्चा सतगुर इक्के, सोई

लाया गुरमुख बख्श जमाइन मन मुखी मूल गवाया सब को बीजे अपने भले नो हर भावै सो खेत जमाया गुरसिखी हर अमृत बीजिया हर अमृत नाम फल अमृत पाया जम चूहा किरस नित कुरक दा हर करतै मार कढाया किरसाणी जमी भाओ कर हर बोहल बख्श जमाया तिनका काड़ा अंधिसा सब लाहयुन जिन्नी सतगुर पुरख त्याया जन नानक नाम अराध्या आप तरिया सब जगत तराया महला चौथा सारा दिन लाल चेटिया मन मुकोहरे गल्ला राती ऊंगे दबिया नवे सोत सब ढिला मन मुखा दै सिर जोरा अमर है नित देव है भला जोरा दा आखिया पुरख कमाम दे से अपवित अमेद खला काम व्यापेक सुध नर से जोरा पुछ चला सतगुर कै आखिया जो चले सो सत पुरख भल भला जोरा पुरख सब आप अपायन हर खेल सब खिला सब तेरी बणत बनावनी नानक भल भला पौड़ी तू वे परवाह अथाह है अतुल क्यों तुलिया सेवड भागी जे तुद त्याएं दे जिन सतगुर मिली है सतगुर की बाणी सत स्वरूप है गुरबाणी बणी है सतगुर की रीसै होर कच पिच बोल दे।

सतगुरु की सेवा निर्मली निर्मल जन हो सो सेवा काले जिन अंदर कपट वकार झूठ वो आपे सच्चै वख कड्डे जजमाले सचियार सिख बह सतगुर पास कालन कूड़ियार ना लभनी कितै थाए पाले जिन्ना सतगुर का आख्या सिखावे नाही तिना मुंह भलेरे फिरै दईए गाले जिन अंदर प्रीत नहीं हर केरी से किचर कवेराइन मन मुख बेताले सतगुर नू मिले सो अपना मन थाए रखे ओ आप वरतै अप

मन रान हार तिनके काज दइए आंदे रास तिन चूकी मोहताजी लोकन की हर प्रभ अंग कर बैठा पास जा करता वल ता सब को वल सब दर्शन देख करह साबास साह पातशाह सब हर का किया सब जन को आए करह रहरास गुरपूरे की वड्डी वड्याई हर वड्डा सेव अतुल सुख पाया गुरपूरे दान दिया हर निश्चल नित बख्शे चढ़ै सुआया कोई निंदक वड्याई देख ना सकै सो करते आप पचाया जन नानक गुण बोले करते के भगतानो सदा रखदा आया पौड़ी तू साहिब अगम दयाल है वड दाता दाना तुद जेवड़ मैं होर को दिस ना आवे तू है सुगड़ मेरे मन पाना मोह कटंब दिस आमदा सब चलन हारा आवन जाना जो बिन सच्चे होरत चित लाएंदे से कूड़े आर कूड़ा तिन माना नानक सच त्याए तू बिन सच्चे।

काम ना आवै। अध विच फिरै मन मुख विचारा, गल्ली क्यों सुख पावै। जिस अंदर प्रीत नहीं सतगुर की, सो कूड़ी आवै कूड़ी जावै। जे कृपा करे मेरा हर प्रभ करता, ता सतगुर पार ब्रह्म नदरी आवै। ता अपिहो पीवै शब्द गुर केरा, सब काला अंदेसा भरम चुकावै। सदा आनंद रहै दिन राती, जन नानक अन दिन हर गुण गावै। महला चौथा, गुर सतगुर का जो सिख अखाए, सो भलके उठ हर नाम त्यावै। उदम करे भलके प्रभाती, इशनान करे अमृत सर नावै। उपदेश गुरु हर हर जप जापै, सब किल विख पाप दोख लह जावै। फिर चढ़ै दिवस गुरबाणी गावै, बहिंदियां उठदियां हर नाम त्यावै। जो सास ग्रास त्याए मेरा हर हर, सो गुर सिख गुरु मन भावै। जिसनो दयाल होवै मेरा स्वामी, तिस गुर सिख गुरु उपदेश सुनावै। जन नानक धूड़ मंगै तिस गुर सिख की, जो आप जपै अवरह नाम जपावै। पौड़ी, जो तुद सच त्याई दे, से विरले थोड़े। जो मन चित एक अराध दे, तिनकी बरकत खाही असंख करोड़े। तुदनो सब त्याई दी, से थाई पए जो साहिब लोड़े। जो बिन सतगुर सेवे खांदे पैन दे, से मोए मर जम्मे कोड़े। ओए हाजर मिठा बोल दे, बाहर विस कढ़ मुख कोले। मन खोटे दइए विछोड़े। सलोक महला चौथा, मल जूई भरिया नीला काला खिदोलड़ा। तिन वेमुख वेमुख नो पाया, पास ना देई कोई बहन जगत मह। गुहू पर सगवी मल लाए मन।

रखै हलत पलत सब तिसका गया नित चहियां पाए झगू सुटे झकदा झकदा झड़ पया नित अपाव करै माया धन कारण अगला धन भी उड गया क्या ओह खट्टे क्या ओह खावै जिस अंदर सहसा दुख पया निर्वैर नाल जे वैर विचारे सब पाप जगतै का तिन सिर लया ओस अगे पिछे ढोई नाही जिस अंदर निंदा मुहे अंब पया जे सोइने नो ओह हाथ पाए आखेहू से तीर हल गया जे गुर की सरनी फिर ओह आवे ता पिछले औगण बख्श लया जन नानक अन दिन नाम त्याया हर सिमरत किल विक पाप गया पौड़ी तू है सच्चा सच तू सब तू ऊपर तू दीवान जो तुद सच त्याईंदे सच सेवन सच्चे तेरा मान ओना अंदर सच मुख उजले सच बोलन सच्चे तेरा तान से भगत जिन्नी गुरमुख सा लाहिया सच शब्द निशान सच जे सच्चे सेवंदे तिन वारी सद कुरबान सलोक महला चौथा तुर मारे पूरे सतगुरु से हुन सतगुर मारे जे मेलन नो बहु तेरा लोची है ना दे मिलन करतारे सत संगत ढोई ना लहन विच संगत गुर विचारे कोई जाए मिले हुन ओना नो तिस मारे जम जंदारे गुर बाबे फिटके से फिटे गुर अंगद कीते कूड़ियारे गुर तीजी पीढ़ी वेचारिया क्या हाथ एना वेचारे गुर चौथी पीढ़ी टिकया तिन निंदक दुष्ट सब तारे कोई पोत सिख सेवा करे सतगुरु की तिस कारज सब सुवारे जो इच्छा सो फल पाए सी पुत धन लक्ष्मी खड़ मेले हर निस्तारे सब निदान सतगुरु विच जिस अंदर हर उर तारे सो पाए पूरा सतगुरु जिस लिखिया लिखत ललारे जन नानक मांगै धूड़ तिन जो गुरसिख मित प्यारे महला चौथा जिनको आप दे बड़ियाई जगत भी आपे आन तिनको पैरी पाए डरिया ता जे किश आप दू कीचे सब करता अपनी कला वधाए देखो भाई एहो अखाड़ा हर प्रीतम सच्चे का जिन अपने जोर सब आन निवाए अपने भगतां की रख करे हर स्वामी निंदकां दुष्टां के मुंह काले कराए सतगुरु की वड्याई नित चढ़ै सवाई हर कीरत भगत नित आप कराए अन दिन नाम जपो गुर सिखो हर करता सतगुर करी वसाए सतगुर की बाणी सत सत कर जानो गुर सिखो हर करता आप मुंह कढ़ाए गुरसिखा के मुंह उजले करे हर प्यारा गुर का जयकार संसार सबत कराए।

सच साहा हमारे सच पूंजी नाम दृढ़ाए प्रभ वणजारे ठारे सच सेव है सच वणंज लै है गुण कथ है निरारे सेवक भाए से जन मिले गुर शब्द सुवारे तू सच्चा साहब अलख है गुर शब्द लिखारे। सलोक महला चौथा जिस अंदर तात पराई होवे तिसदा कदे ना होवे भला ओस दे आखे कोई ना लगे नित उजाड़ी पुकारे खला जिस अंदर चुगली चुगलो वजे कीता करत्या ओस दा सब गया नित चुगली करे अनहोंदी पराई मुंह कड ना सके।

तै प्रताख गुरु जो विछड़े तिनको दर ढोई नाही कोई जाए मिले तिन निंदका मुह फिके थुक थुक मुहे पाही जो सतगुर फिटके से सब जगत फिटके नित भंबल भूसे खाही जिन गुर गोपिया अपना से लैंदे तहां फराही तिनकी भुख कदे ना उतरै नित भुखा भुख कुकाही ओना दा आखिया को ना सुने नित हौले हौल मराही सतगुर की वडियाई वेख ना सकनी ओना अगै पिछै थां नाही जो सतगुर मारे।

हर तिनका दर्शन ना करहो जो दूजे पाए चित लाही तुल करत आप लिख पाया तिस नाल केहो चारा नाही जन नानक नाम अराध तू तिस अपड़ को ना सकाही नावै की वडियाई वड्डी है नित सवाई चढ़ै चढ़ाही महला चौथा गे होंदै गुरु बह टिकिया तिस जन की वडियाई वड्डी होई तिस को जगत निमया सब पैरी पया जस वरत्या लोई तिस को खंड ब्रह्मांड नमस्कार करह जिसकै मस्तक हाथ धरिया गुर पूरै सो पूरा होई गुर की वडियाई नित चढ़ै सवाई अपड़ को ना सकोई जन नानक हर करतै आप बह टिकिया।

जिन नाम अराध्या आप तरिया जिन्नी दिथा तिन्ना लय छाय हर सतगुर मेलो दया कर जन नानक धोवै पाए पौड़ी सच सच्चा सतगुर अमर है जिस अंदर हर उर धारिया सच सच्चा सतगुर पुरख है जिन काम क्रोध बिख मारिया जा डिठा पूरा सतगुरु ता अंदरों मन साधारिया बलिहारी गुरे अपने सदा सदा घुम वारिया गुरमुख जिता मनमुख हारिया सलोक महला चौथा कर किरपा सतगुर मेलियोन मुख गुरमुख नाम त्याए सी सो करे जे सतगुर भाव सी।

हर आप होए होर केती झख झख जाए सी जन नानक नाम त्याए तू हर हलत पलत छोड़ाए सी महला चौथा गुर सिखा कै मन पाउंदी गुर सतगुर की वडियाई हर राखो पैज सतगुरु की नित चढ़ै सुआई गुर सतगुर कै मन पार ब्रह्म है पार ब्रह्म छड़ाई गुर सतगुर तान दी बाण हर तिन सब आन निवाई जिन्नी दिठा मेरा सतगुर पाओ कर तिन के सब पाप गवाई।

तेरे भाई पौड़ी हौ आख सलाही सिफत सच सच सच्चे की वड़ियाई सलाही सच सलाह सच सच कीमत किने ना पाई सच सच्चा रस जिन्नी चखिया

सेविया मन वजी वधाई। सलोक महला चौथा। जिन्ना अंदर अमरथल से जान सूलिया, हर जान है से बिरहो। हौ तिन विटो साध घुम घोलिया, हर मेलो सज्जन पुरख मेरा सिर तिन विटो तल रोलिया। जो सिख गुर कार कमाव है हौ गुलम तिना का गोलिया, हर रंग चलूलै जो रते तिन भिन्नी हर रंग।

त्यों संतो निर्मल होए गुरमुख गुण वे हाजी है मल हों मैं कड़ै धोए सच मणंज है रंग स्यों सच सौदा होए तोटा मूल ना आवे लाहा हर भावै सोए नानक तिन सच मणंजिया जिन्ना धुर लिखिया प्राप्त होए पौड़ी सालाही सच सालाहना सच सच्चा पुरख निराली सच सेवी सच मन वस्से सच सच्चा हर रखवाली।

उठा। सतसंगत मह हर पुस्तत है, संग साधु मिले प्यारिया। वे पुरख प्राणी धन ज्ञान है, उपदेश कर है पर उपकारिया। हर नाम दृढ़ाव है, हर नाम सुनाव है, हर नामे जग निस्तारिया। गुर वेखण को सब कोई लोचै, नवखंड जगत नमस्कारिया। तुदे आपे आप रखिया सतगुर विच, गुर आपे तुद सवारिया। तू आपे पूज है पूज कराव है, सतगुर को सिरजन हारिया। कोई विछड़ जाए सतगुरु पासो, तिस काला मुह जम मारिया। तिस अगे पिछे ढोई नाही, गुर सिखी मन विचारिया। सतगुरु नो मिले से ही जन उबरे, जिन हिरदय नाम समारिया। जन नानक के गुरसिख पुत हो, हर जपे हो हर निस्तारिया। महला तीजा, हो मैं जगत भुलाया, दुरमत बिखिया बेकार। सतगुर मिले ता नदर होए, मनमुख अंध अंधियार। नानक आपे मेल लय, जिसनो शब्द लाए प्यार। पौड़ी सच सच्चे की सिफत सलाहा है, सो करे जिस अंदर भिजै। जिन्नी एक मन एक अराध्या, तिनका कंध ना कबहू सिजै। तन तन पुरख साबास है, जिन सच रसना अमृत पिजै। सच सच्चा जिन मन भावदा, से मन सच्ची दरगाह लिजै। तन तन जन्म सचियारिया, मुख उज्जल सच करिजै। सलोक महला चौथा, साकत जाए निवह गुर आगै। मन खोटे कूड़ कूड़ आरी, जां गुर कह उठो मेरे भाई। वह जाहे कुसर बगलारी, गुर सिखा अंदर सतगुर वरतै। चुन कड्डे लद्दो वारी, कोई अगे पिछे बह मुंह सुपाइन। ना रलनी खोटे आरी, ओना दा भख सो ओथै नाही। जाए कूड़ लहन भेडारे, जे साकत नर खवाई है लोची है। बिख कड्डै मुख उगलारे, हर साकत सेती संग ना करियो हो। उए मारे सिरजन हारे, जिसका एहो खेल सोई कर वेखै। जन नानक नाम समारे। महला चौथा, सतगुर पुरख अगम है, जिस अंदर हर उर धारिया। सतगुरु नो अपड़ कोई ना सकई, जिस वल सिरजन हारिया। सतगुरु का खड़ग संजोव हर भगत है, जित काल कंटक मार वडारिया। सतगुरु का रखण हारा हर आप है, सतगुरु कै पिछे हर सब उभारिया। जो मंदा चितवै पूरे सतगुरु का, सो आप उपावन हारे मारिया। एह गल हुआ हर दरगाह सच्चे की, जन नानक अगम विचारिया। पौड़ी सच सुतिया जिन्नी अराध्या, जां उठे ता सच चवे। से विरले जुग मह जानी है, जो गुरमुख सच रवे। हौ बलिहारी तिनको, जे अन दिन सच लवे। जिन मन तन सच्चा भामदा, से सच्ची दरगाह गवे। जन नानक बोलै सच नाम, सच सच्चा सदा नवे। सलोक महला चौथा, क्या सवना क्या जागना, गुरमुख ते परवान। जिन्ना सास ग्रास ना विसरै, से पूरे पुरख प्रधान। करमी सतगुर पाई है, अन दिन लगै ध्यान। तिनकी संगत मिल रहा, दरगाह पाई मान। सौंदे वाहो वाहो उच्चरह, उठदे पी वाहो करेन। नानक ते मुख उजले, जे नित उठ संभालेन। महला चौथा, सतगुर सेविया अपना, पाईए नाम अपार। भौजल डुबदियां कढ लए,

की मन भुख है, मन तृप्त है हर रस खाए पौड़ी। सच सच्चा कुदरत जानी है, दिन राती जिन बनाइया, सो सच सलाही सदा सदा, सच सच्चे किया वडियाइया। सलाही सच सलाह सच, सच कीमत किने ना पाईया, जा मिलिया पूरा सतगुरु ता हाजर नदरी आईया। सच गुरमुख जिनी सलाहया, तिना भुखा सब गवाईया।

माया धारी अत अन्ना बोला शब्द ना सुनी बहु रोल कचोला गुरमुख जापै शब्द लिवलाए हर नाम सुन मन्ने हर नाम समाए जो तिस भावै सो करे कराया नानक वजदा जंत वजाया पौड़ी तू करता सब किस जानदा जो जिया अंदर वरतै तू करता आप अगणत है सब जग विच गणत है सब कीता तेरा वरतदा सब तेरी बणत है तू घट घट एक वरतदा सच साहिब चलत है सतगुरु नू मिले सो हर मिले नाही किसे परत है सलोक महला चौथा एहो मनुआ दृढ़ कर रखी है गुरमुख लाई है चित क्यों सास ग्रास वसारी है बहंदियां उठदियां नित मरण जीवन की चिंता गई एहो जीअड़ा हर प्रभ वस ज्यों भावै त्यों रख तू जन नानक नाम बखश महला तीजा मनमुख अहंकारी महल ना जाने खिन आगे खिन पीछे सदा बलाइए महल ना आवे क्यों कर दरगाह सीजे।

जित सतगुर का मन मन्ने, जहां सतगुर का मन मन्निया ता पाप कसम्मल पन्ने, अपदेश जे दिता सतगुरु सो सुनिया सिखी कन्ने, जिन सतगुर का पाणा मन्निया तिन चढ़ी चवगण वन्ने, एह चाल नराली गुरमुखी गुर दीखिया सुन मन भिन्ने, सलोक महला तीजा जिन गुरु गोपिया अपना तिस ठौर ना ठाओ, हलत पलत दोवें गए दरगाह नाही थाओ, ओह वेला हथ ना आवई फिर सतगुर लगे पाए, सतगुर की गणत कुसी है दुखे दुख विहाय, सतगुर

दुर्मत अहंकारी अंतर क्रोध जुए मातहारी कूड़ कसात ओह पाप कमावे क्या ओह सुने क्या आख सुनावे अन्ना बोला खोए उजड़ पाए मनमुख अंधा आवे जाए बिन सतगुर भेटे थाए ना पाए नानक पूर्व लिखे।

आपे पछताणी अजराइल फरेसता तिन पीड़े कहानी। श्लोक महला पंजवा। सेवक सच्चे शाह के से परवान, दूजा सेवन नानका से पच पच मोए अजान। महला पंजवा। जो तुर लिखिया लेख प्रभ मेटना ना जाए, राम नाम धन वखरो नानक सदा त्याए। पौड़ी पंजवा। नारायण नया न ठूंगड़ा पैर किथे रखे, करदा पाप अमित्या नित विसो चखे। निंदा करदा पच मोआ विच देही पखे, सच्चे साहिब मारिया कौन किसनो रखे। नानक तिस शरणागति जो पुरख अलखे। श्लोक महला पंजवा। नरक घोर बहु दुख घणे, किरत घणा का थान। तिन प्रभ मारे नानका होए होए मोए हराम। महला पंजवा। अवखद सबे कीते अन।

संग जुट सलोक महला चौथा तपा न होवै अंदरों लोभी नित माया नो फिरे जज मालिया अगों दे सद्या सतै दी भिखिया लए नाही पिछों दे पछताए कै आण तपै पुत विच बहालिया पंच लोग सभा सुन लगे।

0: वेद कहन दे
1: भगत मुखै ते बोल दे से वचन हवन दे प्रगट पहारै जाप दे सब लोक सुनन दे सुख ना पायन मुग्ध नर संत नाल कहन दे ओए लोचन ओना गुणा नू ओए अहंकार।

कम कराए सो जंत महा दुख पावे पौड़ी। तू सच्चा साहिब अत वड्डा तुहे जेवड़ तू वड वड्डे। जिस तू मिल है सो तुद मिले तू आपे बख्श लह लेखा छड़े। जिसनो तू आप मलाएंदा सो सतगुर सेवे मन गड गड़े। तू सच्चा साहिब सच तू सब जियो पिंड चम तेरा हड्डे। ज्यों पावे त्यों रख तू सच्चिया नानक मन आस तेरी वड वड्डे। सुद गौड़ी की वार महला पंजवां राय कमाल दी मौज दी की वार की धुन उपर।

मन सच्चे पाणा नानक प्रभ शरणागति साध साध कुर्बाणा। श्लोक महला पंजवा। चेताई ता चेत साहिब सच्चा सो धणी

सारा जग खे वथ सुहावी साए नानक नाओ जपंदो तिस धनी पौड़ी सिमरत शास्त्र सोध सब किने कीम ना जानी जो जन भेटै साध संग सो हर रंग माणी सच नाम करता पुरख एह रतना खाणी मस्तक होवै लिखिया हर सिमर प्राणी तो सा दित्यै सच नाम नानक मेहमानी सलोक महला पंजवां अंतर चिंता नैनी सुखी मूल ना उतरै भोग।

दे मर गए मर पे ना सकै मूल वे मुख होए राम ते ज्यो तस्कर उपर सूल पौड़ी सुख निदान प्रभ एक है अबनासी सुनिया जल फल मैयल पूरिया घट घट हर भणिया ऊच नीच सब एक समान कीट हस्ती बनिया मीत सखा सुत बंद पो सब तिस दे जनिया तुस नानक देवै जिस नाम तिन हर रंग मणिया।

पंजवा जित सिमरत संकट छुट है आनंद मंगल विचराम नानक जपिए सदा हर निमक ना बिसरो नाम पौड़ी जिनकी शोभा क्या गणी।

गुर भेटिया पार ब्रह्म हर पढ़ बुझ समधा नानक पाया सो धनी हर अगम अगद्दा सलोक महला पंजवा कामना करे ही अपना फिरह अवत्ता लोए नानक नाए वसारे सुख कनेहा हुए महला पंजवा बिखै कुड़तन सगल माहे जगत रही लपटाए नानक जन विचारिया मीठा हर का नाम पौड़ी एह निशानी साध की जिस भेटत तरी जम कंकर नेड़ ना आवई फिर बहुड़ ना मरी है भव सागर संसार बिख सो पार उतरी है हर गुण गुम्फो मन माल हर सब मल पर हरी है नानक प्रीतम मिल रहे पार ब्रह्म नर हरी है त्रिलोक महला पंजवा नानक आए से परवान है जिन हर गुठा चित गाली अल पलालिया कम ना आवह मित महला पंजवा पार ब्रह्म प्रभ दृष्टि आया पूर्ण अग

जो जा चंडी हेकड़ो गाली ब्या विकार नानक धनी मिहूणिया महला पंजवा नीह जे विद्या मन पछाणु विरलो थियो जोड़न हारा संत नानक पादर पदरो।

एक जिस तुस देवै आप जित खादे मन तृप्ति है नानक साहिब दात पौड़ी लाहा जग मैं से खट है जिन हर धन रास दुतिया भाव न जाननी सच्चे दी आस निश्चल एक सरेरिया होर सब विनाश पार ब्रह्म जिस विसरै तिस बिरथा सास कंठ लाए जन रखिया नानक बल जास। श्लोक महला पंजवा। पार ब्रह्म फरमाया मीह उठा सहज सुपाए तन तन बहुत उपजिया रिथमी रजी तिप्त अगहाए सदा सदा गुण उच्चरै दुख दालद गया बिलाए पूर्व लिखिया पाया मिलिया तिसै रजाए परमेश्वर जी वालिया नानक तिसै त्याए। महला पंजवा। जीवन पद निर्वाण।

ज्ञान रंग रूप रस बाद के करह परानिया जिस भलाए आप तिस कल नहीं जानिया रंग रते निर्वाण सच्चा गावही नानक सरन द्वार जे तुद भावही पौड़ी जम्मन मरन ना तिनको जो हर लड़ लागे जीवत से परवान हुए हर कीर्तन जागे साध संग जिन पाया से वड भागे नाए विसरिया त्रिग जीवना टूटे कच धागे नानक धूड़ पनीत साध लख कोट पिरागे।

जह दिशा जल पर्वत बन राए, जिथे दिठा मृत को तिल बेठी आए। पौड़ी जिस सर्व सुखा फल लोड़ी है, सो सच कमावो नेड़े देखो पार ब्रह्म। एक नाम त्यावो

सारी पौड़ी रसना उचरै हर श्रवणी सुने सो उधरै मित्ता हर जस लिखें लाए भावनी से हस्त पविता अठ साठ तीर्थ मजना सब पुन तिन किता संसार सागर ते उधरे बिख्या गढ़ जिता नानक ला।

तन फुटन जिन्ना साही विसरै महला पंजवां प्रेतोह की तुन देवता तिन करनै हारे सबे सिख उभारियन प्रभ काज सवारे निंदक पकड़ पछाड़ियन झूठे दरबारे नानक का प्रभ वड्डा है।

जलत राम जल पाया, राम उदक तन जलत बुझाया, रहाउ मन मारन कारण बन जाइए, सो जल बिन भगवंत ना पाइए, जिहे पावक सुर नर है जारी।

तू तरवर हौ पंखी आहे, मंद भागी तेरो दर्शन नाहे। तू सतगुर हौ नौ तन चेला, कह कबीर मिले अंत की बेला। गौड़ी कबीर जी, जब हम एको एक कर जाने।

राज, तब जानोगे जब उगरे गोपाज। कहो कबीर पात हर परवान, सर्व त्याग भज केवल नाम। गौड़ी कबीर जी नगन फिरत जो पाइए जोग, बन का मिर्ग मुक्त सब होग। क्या नांगे क्या बांधे चाम, जब नहीं चीन से आत्म राम। रहाओ मूंड मुंडाए जो सिद्ध पाई, मुक्ति भेद न गई आकाई। गेंद राख जो तरिये पाई, खुसरे क्यों ना परम गत पाई। कहो कबीर सुनो नर पाई, राम नाम बिन किन गत पाई। गौड़ी कबीर जी।

रत बहु रूप रचाही, तिनको दया सुपने पी नाही। चार चरण कह बहु आगर, साधु सुख पावह कल सागर। कहो कबीर बहु काय करीजै, सर्बस छोड़ महारस पीजै।

चतराई ना चतर भुज पाई रहाओ पर हर लोभ अरलोकाचार पर हर काम क्रोध अहंकार कर्म करत बदे अहमेव मिल पाथर की करही सेव कहो कबीर भगत कर पाया भोले पाए मिले रघुराया गौड़ी कबीर जी गर्भवास मह कुल नहीं जाती ब्रह्म बिंद ते सब उत्पाती कहो रे पंडित बामन कब के हुए बामन कह कह जन्म मत खोए रहा जौ तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया तो आन बाट काहे नहीं आया तुम कत ब्राह्मण हम कत सूद हम कत लोहू तुम कत दूध कहो कबीर जो ब्रह्म बीचार है तो ब्राह्मण कहियत है हमारे गौड़ी कबीर जी अंधकार सुख कबह ना सोई है राजा रंक दो मिल रोई है जौ पै रसना राम ना कहबो उपजत बिनसत रोवत रहबो रहाओ जस देखी है तबर की छाया प्राण गए कहो कां की माया जस जंती

इस परचाए परच रहो एस गौड़ी कबीर जी जो जन परमित परमन जाना बातन ही बैकुंठ समाना ना जाना बैकुंठ कहां ही जान जान सब कह तहां ही रहाओ कहन कहावन नह पति आई है तो मन माने जाते हों मैं जई है जब लग मन बैकुंठ की आस तब लग होए नहीं चरण निवास कहो कबीर एह कही है काहे साध संगत बैकुंठ आहे गौड़ी कबीर जी उपजै निपजै निपज समाई।

तौ की जय जो आपन जी जय। मैं ना मरूं मरबो संसारा, अब मोहे मिलियो है जे आवनहारा रहाओ। या देही परमल महकंदा, ता सुख बिसरे परमानंदा। कुवटा एक पंच पनिहारी, टूटी लाज परे मत हारी। कहो कबीर एक बुद्ध बिचारी, ना ओह कुवटा ना पनिहारी। गौड़ी कबीर जी अस्थावर जंगम कीट पतंगा, अनक जन्म किए बहुरंगा। ऐसे घर हम बहुत बसाए, जब हम राम गर्भ होए आए रहाओ। जोगी जति तपी ब्रह्मचारी, कबहू राजा छत्रपत कबहू पेखारी। साकत मर है संत सब जीव है।

पंच पदे ज्यो जल छोड़ बाहर पयो मीना पूर्व जन्म हो तप काहीना अब कहो राम कवन गत मोरी तजी ले बनारस मत पई थोरी रहाओ सगल जन्म शिवपुरी गवाया मरती बार मगहर उठ आया बहुत बरस तप किया कांसी मरन भया मगहर की बासी कांसी मगहर

सुगंध बसाई कहत कबीर चे तरे अंधा सत राम झूठा सब धंधा गौड़ी कबीर जी तिपदे चार तुके जमते उल्ट भये है राम दुख बिन से सुख कियो विश्राम बैरी उल्ट भये है मीता साकत उल्ट सुजन भये चीता अब मोहे सर्ब कुशल कर मानिया शांत भई जब गोविंद जानिया रहाउ तन मह होती कोट अपाद उल्ट भई सुख सहज समाद।

केवल राम भगत निज भागी गौड़ी कबीर जी जिहे मरना सब जगत तरासिया सो मरना गुर शब्द परगासिया अब कैसे मरूं मरन मन मानिया मर मर जाके जिन राम ना जाने।

गौड़ी कबीर जी कत नहीं ठौर मूल कत लाव खोजत तन मह ठौर ना पाव लागी होए सो जाने पीर राम भगत अनियाले तीर रहाओ एक भाई देखो सब नारी क्या जानो सह कौन प्यारी कहो कबीर जाके मस्तक भाग सब पर हर ताको मिले सुहाग गौड़ी कबीर जी जाके हरसा ठाकुर पहाई मुक्त अन

जब लग रथ तब लग नहीं नेह रहाउ साहन सत करे जी अपने चोर मैये को मिले ना सुपने तन मन तन गृह।

नहाऊं। तिनकै सद बलिहारै जाऊं। सो निर्मल निर्मल हर गुण गावे, सो भाई मेरे मन भावै रहाऊ। जेहे कट राम रहया भरपूर, तिनकी पग पंकज हम धूर।

मेरी पाठी, संच महारस तन भया काठी, वाको कहिए सहज मतवारा, पीवत राम रस ज्ञान बीचारा रहाउ, सहज कलालन जो मिले आई, आनंद माते अन दिन जाई, चीनत चीत निरंजन लाया, कहो कबीर तो अनुभव पाया, गौरी कबीर जी मन का सुपहो मन व्यापी, मन है मार कमन सिद्ध थापी।

बूझै बूझनहार सुभागा रहाउ। सूरज चंद करह उजियारा, सब मह पसरिया ब्रह्म पसारा। कहो कबीर जानेगा सोए, हृदय राम मुख रामै होए। गौड़ी कबीर जी बेर की पुत्री सिमरत पहाई, सांकल जेवरी लै है आई। आपन नगर आपते बांधिया, मोह कै फांद काल सर सांधिया। रहाउ कटी ना कटै टूट नह जाई, सास आपन होए जग को।

खसम तारा कह कवना राम जपत तन जर की ना जाए राम नाम चित रहे आसमाए रहाओ काको जरै काहे होए हान नटवट खेलै।

35 राग गौड़ी ग्वार री अष्टपदी कबीर जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद सुख मांगत दुख आगे आवे सो सुख हम हो ना मांगिया पावे बिछिया अजहो सुरत सुख आसा कैसे हुई है राजा राम निवासा रहाउ इस सुख ते सेव ब्रह्म डराना सो सुख हम हो साच कर जाना सनकादक नारद मुन सिखा तिन भी तन

जियो एक अर सगल शरीरा, इस मन को राव रहे कबीरा, गौड़ी गुआर रे अहनस एक नाम जो जागे, केतक सिद्ध भय लिव लागे रहाउ, साधक सिद्ध सगल मुनहारे, एक नाम कल्प तार तारे।

आउ कौन को पुरख कौन की नारी, या तत लेहो शरीर बिचारी। कह कबीर ठग स्यो मन मानिया, गई ठगौरी ठग पहचानिया। अब मोको भय राजा राम सहाई, जन्म मरण कट परम गत पाई रहाओ। साधु संगत दियो रलाई, पंच दूत ते लियो छड़ाई। अमृत नाम जपो जप रसना, मोल दास कर लीनो अपना। सतगुर

आधार जल स्थल पूर रहे प्रभ स्वामी जत पेखो तत अंतर जामी अपनी भगत आप ही दृढ़ाई पूर्व लिखत मिलिया मेरे भाई।

होई। उठत बैठत सूतक लागे सूतक परै रसोई। फासन की बिद सब को जाने छूटन की एक कोई। कह कबीर राम हृदय विचारे सूतक तिन्ह ना।

आप गए और नहूं खो वह, आग लगाए मंदिर में सो वह, अवर्ण हस्त आप है काने, तिनको देख कबीर ल जाने। राग गौड़ी बैरागन कबीर जी, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, जीवत पितर न माने को मुए श्राद्ध कराही, पितर भी बपरे कहो क्यों पावे है, कौआ कूकर खाही, मोको कुशल बतावो कोई, कुशल कुशल करते जा।

कहत कबीर अकुल नहीं चेतिया, दिखिया स्यों लपटाना गौड़ी, जीवत मरै मरै फुन जीवै, ऐसे सुन समाया, अंजन माहे निरंजन रही है, बहुड़ ना पवजल पाया, मेरे राम ऐसा खीर बलोई है, गुरमत मनुआया स्थिर राखो, इन बेद अमृत पियोई है रहाओ, गुर कै बाण बजर कल छेदी, प्रगटिया पद परगासा, सख्त अंधेर जेवड़ी भ्रम चूका, निहचल शिव कर बासा, तिन बिन बाण तनख चढ़ाई, यो जग बेदिया भाई, दह दिस बूढ़ी पवन चलावै, जोर रही लिवलाई, उन मन मनुआ सुन समाना, दुबदा दुरमत भागी, कहो कबीर अनभव एक देखिया, राम नाम लिवलागी, गौड़ी बैरागण तिप दे, उल्टत पवन चक्कर खाट भेदे, सुरत सुन अनरागी, आवै ना जाए मरै ना जीवै, तास खोज बैरागी, मेरे मन मन ही उल्ट समाना, गुर प्रसाद अकल पही अवरै, नातर था बेगाना रहाओ, निवरै दूर दूर फुन निवरै।

तिन तैसी झल देखी गौड़ी तह पावस सिंध धूप नहीं सहिया तह उत्पत परलो नाही जीवन मृत ना दुख सुख व्यापै सुन समाद दो तह नाही सहज की अकथ कथा है निरारी तुल नहीं चढ़ै जाए ना मकाती हल्की लगे ना भारी रहाउ अर्ध उर्द दो तह नाही रात दिन सतह नाही जल नहीं पवन पावक फुन नाही सतगुर तहां समाही अगम अगोचर रह निरंतर गुर कृपा ते लहिए कहो कबीर बल जाओ गुर अपने सत संगत मिल रही है गौड़ी पाप पुन दोए बैल बसाही पवन पूंजी परगासियो तृष्णा गुण भरी घट पीतर इन बिद टांड बसाहयो ऐसा नायक राम हमारा सगल संसार कियो बनजारा रहाउ काम क्रोध दोए भये जगाती मन

कहो डडिया बंद है धन खड़ी, पाहू घर आए मुकलाऊ आए रहाओ, ओहो जे दिसै खूहड़ी, कौन लाज वहारी, लाज घड़ी स्यों टूट पड़ी, उठ चली पनेहारी, साहिब हुए दयाल कृपा करे, अपना कार्ज सवारे, तां सुहागन जानिए, गुर शब्द बीचारे, किरत की बांधी सब फिरै,

हर की चरणी लाग रहो। ताज सरन कबीरा गौड़ी जोगी कह जोग पाल मीठा अवर ना दूजा पाई रुंडित मुंडित एक शब्दी ए कह सिद्ध पाई हर बिन परम पलानी अंधा जाप है जाओ आप छुटकावन ए बंद।

किछ नाही, पांच तत तह नाही, एड़ा पिंगला सुखमन बंदे, ए अवगन कत जाही, तागा टूटा गगन बिनस गया, तेरा बोलत कहां समाई।

पिंड तह नाही, रचनहार तह नाही, जोड़नहारू सदा अतीता, एह कही है किस माही। जोड़ी जुड़े ना तोड़ी टूटे, जब लग होए बिना।

रहाउ। खांड ब्रह्मांड मह सिंगी मेरा बटुआ, सब जग पसमा धारी, ताड़ी लागे त्रिपल पलटी है, झूठे हुए पसारी, मन पवन दोए तुम्बा करी है, जुग जुग सारद साजी, थिर पई तंती टूटस नाही, अनहद किंगरी बाजी, सुन मन मगन पए हैं पूरे, माया डोल ना लागी, कहो कबीर ताको पुनरप जन्म नहीं, खेल गयो बैरागी पौड़ी, गाज नाव गाज दास गाज इक्कीस, पुरिया एक तनाई, साठ सूत नाव खंड बहत्तर, पाठ लगो अधकाई, गई बनावन माहो, कर छोड़े जाए जलाहो रहाओ, गजी ना मिनी है तोल ना तुलिए, पांचन सेर अढ़ाई, जो कर पांचन बेग ना पावे, चगर करे करहाई, दिन की बैठ खसम की बरकस,

नतर रही उरझाई छोड़ पसार इहां रहो बपुरी कहो कबीर समझाई गौड़ी एक जोत एका मिली किंबा हुए मोहोए जित घट नाम ना उपजै फूट मरे जन सोए सांवल सुंदर रामैया मेरा मन लागा तो हे रहाओ साध मिले सिद्ध पाई है

आई गौड़ी जेते जतन करत ते डूबे भाव सागर नहीं तारियो रे कर्म धर्म करते बहु संयम हम बुद्ध मन जारियो रे सास ग्रास को दातो ठाकुर सो क्यों मनहु बिसारियो रे हीरा लाल अमोल जन्म है।

तन तन सब रस गोबिंद तोरा रहाउ। इस माटी मह पवन समाया, झूठा परपंच जोर चलाया। किन्हू लाख पांच की जोरी, अंत की बार गगरिया फोरी। कह कबीर एक नीम उसारी, किन मह बिन सजाए अहंकारी। गौड़ी राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे। दीन दयाल परोसे तेरे, सब परवार चढ़ाया बेड़े रहाव। जां तिस भावे ता हुक्म मनावे, इस बेड़े को पार लंघावे। गुर प्रसाद ऐसी बुद्ध समानी, चूक गई फिर आमन जानी। कहो कबीर भज सारग पानी, उरवार पार सब एको दानी। गौड़ी नौवा जोन छाड़ जो जग मह आयो, लागत पवन खसम बिसरायो। जियरा हर के गुना गाओ रहाओ, गर्भ जोन मह उर्द तप करता। तव जठर अगन मह रहता, लख चौरासी जोन भ्रम आयो। अब के छुटके ठौर ना ठायो, कहो कबीर भज सारग पानी। आवत दिसै जात ना जानी, गौड़ी पूर्वी सुर्ग बास ना बांछी। दरिया ना नरक निवास, होना है सो होई है। मन है ना की जय आस, रमैया गुण गाइए। जाते पाइए परम निदान रहाओ। क्या जप क्या तप संजमो, क्या वर्त क्या स्नान। जब लग जुगत ना जानिए, भाओ भगत भगवान। संपै देख ना हरखिए, विपत देख ना रोए। ज्यों संपै त्यों विपत है, विध निरतिया सो होए। कह कबीर अब जानिया, संतन हृदय मझार। सेवक सो सेवा भले, जेह घट बसै मरार। गौड़ी रे मन तेरो कोई नहीं, खिंच ले जिन पार। बिरक बसेरो पंख को, तैसो इहो संसार। राम रस पिया रे, जेह रस बिसर गए रास और रहाओ।

रची पीवत मर्दन लाग कह कबीर चित चेतिया राम सिमर बैराग राग गौड़ी पंथ निहारे कामनी लोचन भरी ले उस

जीवन पद कारण हर की भगत करी जय एक आधार नाम नारायण हरस नाराम रवि जय राग गौड़ी ग्यारवा आस पास घन तुरसी का बिरवा माज बना रस गाऊं रे वाका स्वरूप देख मोही ग्वारन मोको छोड़ ना आऊ ना जाहू रे तो हे चरण मन लागो सारंग धर सो मिले जो बड़ भागो रहाउ बिंद्राबन मन हरन मनोहर कृष्ण चरावत गाऊ रे जाका ठाकुर तुही सारिंग धर मोहे कबीरा नाहू रे गौड़ी पूर्वी बारवा

नाम पदार्थ मन बसाइए हृदय शुद्ध जो निंदा हुए हमरे कपरे निंदक धोए निंदा करे सो हमरा मीत निंदक माहे हमारा चीत निंदक सो जो निंदा हो रे हमरा जीवन निंदक लोरे निंदा हमरी प्रेम प्यार निंदा हमरा करे उदार जानक वीर को निंदा सार निंदक डूबा हम उतरे पार राजा राम तू ऐसा निरपहु तरन तारन राम राया रहाओ जब हम होते तब तुम नाही अब तुम हो हम नाही अब हम तुम एक भये है एक देखत मन पति आही जब बुद्ध होती तब बल कैसा अब बुद्ध बल ना खटाई कह कबीर बुद्ध हर ली मेरी बुद्ध बदली सिद्ध पाई गौड़ी खट नेम कर कोठड़ी बांधी बस्त अनूप बीच पाई कुंजी कुल्फ प्राण कर राखे करते बार ना लाई अब मन जागत रहो रे पाई गाफल होए कै जन्म गवायो चोर मुस्से घर जाई रहाओ पंच पहरुआ दर मह रहते तिनका नहीं पतियारा चेत सुचेत चेत हुए रहो तव लै परगास उजारा नौ कर देख जो कामन भूली बस्त अनूप ना

तास गुण गाव है, तास बस है मूरी प्राणा न रहाऊ। हृदय प्रगास ज्ञान गुर गम्मित, गगन मंडल में त्या नाना। विखै रोग पै बंधन भागी, मन निज कर सुख जा नाना। एक समत रत जान मान प्रभ, दूसर मन है ना आनाना। चंदन बास पये मन बासन, त्याग घटियो अभमान हाना। जो जन गाए त्याए जस ठाकुर, तास प्रभु है था नाना। तेहे बड भाग बसियो मन जाकै, कर्म प्रधान मथा नाना। काट सकत शिव सहज परगासियो, एकै एक समानाना। कह कबीर गुर भेट महा सुख, भ्रमत रहे मन मानाना।

आद मैं जाना लिख अर मिटे ताहि न माना ओंकार लख जो कोई सोई लख मिटना ना होई कक्का किरण कमल मह पावा सस बगास संपट नहीं आवा हर जी तहां कुसम रस पावा कह कहां कह का समझावा खखा एह खोड़ मन आवा खोड़े शाड ना दह दिस तावा खसम जान खिमा कर रह तो हुए निखियो अखै

ना जाई अगह गह गह गगन रहाई कग्गा घट घट निमसै सोई घट फूटे घट कबह ना होई ता घट माही घाट जो पावा सो घट छाड अब घट कत तावा नन्ना निग्रह स्नेहो कर निर्वारो संदेह नाही देखना भाजी है परम स्यानप एह चचा रचत चित्र है भारी।

इह है शत्रपत पासा शक के ना रहो शाद के ना आसा रे मन मैं तो सिन सिन समझावा ताहे शाद कत आप बंधावा जज्जा जो तन

परवाना कत झक झक और न समझावा झगर किए झगरो ही पावा नन्या निकट सो घट रहे हो दूर कहां तज जाए जा कारण जग ढूंढ्यो नेरो पायो ताहे तटा बिकट घाट घट माही खोल कपाट महल के ना जाही।

न डर हुआ डर उर होए भागै टड्डा ढिग ढूंढ कातियाना ढूंढत ही तह गए पराना चढ़ समेर ढूंढ जब आवा जिह गड़ गड़ो सो गड़ मह पावा।

अर्दह उर्दह मांज बसेरा अर्दह चाड़ उर्द जो आवा तो अर्दह उर्द मिलिया सुख पावा नन्ना निस दिन निरखत जाई निरखत नैन रही रतवाई निरखत निरखत जब जाए पावा तबले निरख है निरख मलावा पप्पा अपार पार नहीं पावा परम ज्योत स्यो परचो लावा पांचो इंद्री निग्रह करी पाप पुन दो निर्वरी फफा बिन फूल फल हुई

दुर्मत हन कर बस काया गांव रण रूतो भाजे नहीं सूरो थारो नाव रारा रस निरस कर जानिया होए नरस सो रस पहचानिया ए रस छाडे ओह रस आवा ओह रस पिया ए रस नहीं भावा लल्ला ऐसे लिव मन लावे अनत ना जाए।

जो उपजै पाओ पूर रहया तह त्रे पवन राव खखा खोज पर जो कोई जो खोजै सो बहुर ना होई खोज बूझ जो करे बिचारा तो पव जल तरत ना लावे बारा सस्सा सो सह सेज सवार सोई सही संदेह निवार अल्प सुख छाड परम सुख पावा तब एह त्री ओह कंत कहावा हा हा हो तो हुए नहीं जाना जब ही हुए तब है मन माना है तो सही लख जो कोई तब ओही ओह एहो ना होई न्यो न्यो।

गए केते खिरत खपत अजहू नह चेते अब जग जान जो मना रह जह का बिछरा तह थिर लह बामने अखर जोरे आन सक्या ना अखर एक पछान सत का शब्द कबीरा कह पंडित होए सुअन पैर है पंडित लोगहा को व्यवहार ज्ञान मंत को तत विचार जा कै जी जैसी बुद्ध होई।

एकादशी एक दिस तावे तो जोनी संकट बहुर ना आवे। शीतल निर्मल भया शरीरा दूर बतावत पाया नीरा। बारस बारह उगवे सूर एनस बाजे अनहद तूर। देखिया तिहूं लोक का पियो अचरज भया जीव ते सियो। तेरस तेरह अगम बखान अर्द उर्द बिच सम पहचान। नीच ऊच नहीं मान अमान व्यापक राम सगल समान। चौदस चौदह लोक मझार रोम रोम मह बसह मरार। सत संतोख का धरहु ध्यान कतनी कथिया ब्रह्म ज्ञान। पुण्यो पूरा चंद आकाश पसरह कला सहज परगास। आदि अंत मद हुए रहे आथीर सुख सागर में।

बार बार हर के गुण गाव, गुरगम भेद सो हर का पाव रहाव। आदत करे भगत आरंभ, काया मंदर मनसा थंभ। अहनिस अखंड सुर ही जाय, तो अनहद बीन सहज महबाय। सोमवार सस अमृत चरै,

रीत पंच चोर की जाने रीत कर छोड़े बाहर जिन जाई नातर खरार सहराय बुधवार बुध करे प्रगास हृदय कमल मह हर का बास गुर मिल दो एक सम धरे उर्द पंकल।

माहि ऐनस कसमल तो वह नाहि सो किरत सहारै सो एह ब्रत चढ़ै अन दिन आप आप स्यो लड़ै सुरखी पांचो राखै सबै तो दूजी दृष्ट ना पैसै कबै थावर थिर कर राखै सोए जोत दी वटी घट मह जोए बाहर भीतर भया प्रगास तब हुआ सगल कर्म का नास जब लग घट मह दूजी आन तौ लो महल न लाभ जान रमत राम स्यों।

योगी एक ओंकार सतगुर प्रसाद देवा पाहन तारियले राम कहत जन कस ना तरे रहाओ तारी ले गनका बिन रूप कुबजा ब्याज अजामल तारियले करन बदक जन तेउ मुक्त भये हौ बाल बाल जिन राम कहे दासी सुत जन बिदर सुदामा उगर सैन कौराज दिए जापहीन तापहीन कोलहीन क्रमहीन नामे के स्वामी तेउ तरे राग गौड़ी रवदास जी के पदे गौड़ी गुआररी एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद मेरी संगत पोच सोच दिन राती मेरा कर्म कुटिलता जन्म को भांति।

प्रसाद कूप भरियो जैसे दादरा कस देश बदेश ना बूझ ऐसे मेरा मन बिख्या बमोहया कश आरा पार ना सूझ सगल भवन के नायका एक छिन दर्श

माय बोरे मोसौ को न कह समझाय जाते आवागमन बिलाय रहाव बहु विद धर्म निरूपी है करता दिसै सब लोए कवन कर्म ते छूटी है जेह साधे सब सिद्ध होए कर्म अकर्म बिचारी है संका सुन वेद पुराण संसा सद हृदय बसै कौन हिरै अभमान बाहर उदक पखारी है घट भीतर बेबिद बेकार शुद्ध कवन पर्व होए बो सोच कुंचर बिद व्यवहार रब प्रगास रजनी जथागत जानत सब संसार पारस मानो तांबो छुए कनक होत नहीं बार परम परस गुर भेटी है पूर्व लिखत लेलाट हुन मन मन मन ही मिले छुटकत बजर कपाट भगत जुगत मत सत करी भ्रम बंधन काट बेकार सोई बस रस मन मिले गुण निर्गुण एक बेचार अनक जतन निग्रह की।

पड़े रिथि सुर जुग जुग बेदा नाले गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन सुरग माछ पयाले गावन तुदनो

ता सो पुरुष निरंजन हर पुरुष निरंजन हर अगमा अगम अपारा सब त्यावह सब त्यावह तुद जी हर सच्चे सृजनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्यावहो संत हो जी सब दुख वसारन हारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी हर एको पुरख समाणा एक दाते एक पेखारी जी सब तेरे चोज वडाणा तू आपे दाता आपे भुगता जी हौं तुद बिन अवर ना।

वह तुद जी जन नानक तिन कुर्बाना हर त्यावह हर त्यावह तुद जी से जन जुग मह सुखवासी से मुक्त भये जिन हर त्याया जियो तिन टूटी जम की पासी जिन निरभउ जिन हर निरभउ त्याया जियो तिन का भउ सब गवासी जिन सेविया मेरा हर जियो ते हर हर रूप समासी से धन जिन हर त्याया जियो जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी परे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनक अनेक अनंता तेरी अनक करह हर पूजा जी तप तापह जपह बेअंता तेरे अनेक पढ़ह बहु सिमरत शास्त्र जी कर क्रिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो भाव है मेरे हर भगवंता तू आदि पुरख अपरंपर करता जी तुद जेवड़ अवर ना कोई तू जुग जुग एको।

चित तरे जा तू करनहार करतार, क्या मोहताजी क्या संसार। आप अपाए आपे दे, आपे दुर्मत मन है करे। गुर प्रसाद वसै मन आए, दुख अनेरा विचों जाए। साच प्यारा आप करे, अवरी को साच ना दे। जे किसै देव खाने, नानक आगे पूछ ना ले। आसा महला पहला, ताल मदीरे घट के घाट। दोलक दुनिया वाजह वाज, नारद नाचै कल का पाव। जति सती कह राखह पाव, नानक नाम विटो कुरबान। अंधी दुनिया साहिब जान रहाऊ।

कही है, सर्ब निरंतर रव रहया, नाल कटंब साथ वरदाता, ब्रह्मा पालन सिष्ट गया, आग्या अंत न पायो ताका, कंस छेद क्या बड़ा भया, रतन उपाय तरे खीर मथया, होर पखलाए जे असी किया, कह नानक छपै क्यों छपया, एकी एकी वंड दिया, आसा महला पहला, कर्म करतूत बेल बिस्थारी, राम नाम फल हुआ, तिस रूप नारेख अनाहद वाजै, शब्द निरंजन की।

आहे ज्योति ज्योत समाणी पीतर ता छोड़े माया के लाहे सर्व ज्योत रूप तेरा देखिया सगल भवन तेरी माया हरारे रूप नरालम बैठा नदर करे विच छाया बिना शब्द वजावे जोगी दर्शन रूप अपारा शब्द अनाहद सो सहोराता

याद, जब लग हृदय न आवह जाद, तौ प्रवाह के ही क्या कीजै, जन्म जन्म किस लीजी लीजै रहाउ, मन की मत मता गल मता, जो किस बोलिए सब खतो खता, क्या मुँह लै कीचै अरदास, पाप पुन धोए साखी पास, जैसा तू करहे तैसा को होए, तुझ बिन दूजा नाही कोए, जे ही तू मत देहे ते ही को पावे, तुझे आपे पावे तिवें चलावे, राग रतन परिया परवार, तिस विच उपजै अमृत सार, नानक करते का इहो धन माल, जे को बूजै इहो बीचार, आसा महला पहला, कर किरपा अपने घर आया, ता मिल सखियां काज रचाया, खेल देख मन आनंद भया, सहो वी आहण आया, गावो गावो कामणी बिबेक बिचार, हमरै घर आया जग जीवन पतार, रहाव गुरु द्वारे हमरा व्याहो जे हुआ, जां सहो मिलिया ता जानिया, तिहो लोका हमें शब्द रविया है, आप गया मन मानिया, अपना कार्ज आप सवारी, पूर्ण कार्ज ना हुई, जित कार्ज सत संतोख दया धर्म है, गुरमुख बूझै कोई, भणत नानक सबना का पिर एको सोए, जिसनो नदर करे सा सुहागण होए, आसा महला पहला, ग्रहो बन समसर सहज सुपाय, दुर्मत गत पई कीरत थाए, सच पौड़ी साचो मुख नाव, सतगुर सेव पाए निज थाव, मन चूरे खट दर्शन जान, सर्ब ज्योत पूर्ण भगवान रहाव, अधिक त्यास भेख बहु करे, दुख बिख्या सुख तन पर हरे, काम क्रोध अंतर तन हिरे, दुबदा छोड़ नाम निस्तरे, सिपत सलाहन सहज आनंद, सखा सहन प्रेम गोबिंद, आपे करे आपे बख्शिंद, तन मन

क्या देखा सूझ बूझ ना पावे, बिन नावे मन तृप्त ना आवे। जो जन्मे से रोग व्यापे, हमे माया दुख संतापे। से जन बाचे जो प्रवराखे, सतगुर सेव अमृत रस चाखे। चल तो मन राखे अमृत चाखे, सतगुर सेव अमृत शब्द पाखे। साचे शब्द मुक्त गत पाई, नानक विचों आ

संग हर जियो राखो अपनी सरनाई गुर प्रसादी हर रस पाया नाम पदार्थ नौ निद पाई रहाओ कर्म धर्म सच साचा नाओ तां कै सद बलिहारे जाओ जो हर राते से जन परवान तिनकी संगत परम निदान हर वार जिन पाया धन नारी।

जात पात सच नाव कर्म धर्म संयम सत भाव नानक बख्शे पूछ ना होए दूजा मेटे एको सो होए आसा महला पहला एक आव है एक जाव है आई एक हर राते रह समाई एक धर्म गगन में ठौर ना पाव है से कर्म हीन हर नाम ना त्याव है गुरपूरे ते गत मित पाई एहो संसार बिख वत अत भौजल

चिंत करे कह सुनह जो मानह नाऊ हो बलिहार ता कह जाऊ नानक एक कह अरदास जियो पिंड सब तेरे पास जा तू देह जपी तेरा नाव दरगाह बैसन हुए थाव जा तुद भावे ता दुरमत जाए ज्ञान रतन मन वसै आए नदर करे ता सतगुर मिले प्रणवत नानक भवजल तरे आसा महला पहला पंचपदी दुध बिन तीन पंख बिन पंखी जल बिन उत्पुज काम नाही क्या सुल्तान सलाम विहूना अंधी कोठी तेरा नाम नाही की विसरह दुख बहुता लागै दुख लागै तू विसर नाही रहाउ अखी अंध जीव रस नाही कन्नी पवन ना वाजै चरनी चलै पजूता आगै बिन सेवा फल लागे अखर बिरख बाग भोए चोखी

सो प्रगट जाई, सच निशान है ठाक न पाई। पंडित पढ़े बखान है वेद, अंतर वसत न जान है भेद। गुरबिन सोजी बूझ ना हुए, साचा रव रहिया प्रभ सोय। क्या हौ आखा आख बखानी, तू आपे जान है सर्ब वडाणी। नानक एको दर दीवान, गुरमुख साच तहां गुदरान। आसा महला पहला, काची गागर देह दोहेली। उपजै बिरसै दुख पाई, यो जग सागर दुत्तर क्यों तरियै। बिन हर गुर पार न पाई, तुझ बिन अवर ना कोई मेरे प्यारे। तुझ बिन अवर ना कोई हरे, सर्बी रंगी रूपी तू है। इस बख्शे जिस नदर करे रहाओ, सास बुरी घर वास ना देवे। फिर स्यों मिलन ना दे बुरी, सखी साजनी के हों चरण सरेवो। हर गुर कृपा ते नदर धरी, आप विचार मार मन देखिया। तुम सामीत ना अवर कोई, ज्यो तू राख है तिव ही रहना। दुख सुख देव है करह सोई, आसा मनसा धूब नासक। त्रिहो गुण आस नरास पई, तुरी अवस्था गुरमुख पाई है। संत सभा की ओट लही, ज्ञान ध्यान सगले सब जप तप। जिस हर हृदय अलख अपेवा, नानक राम नाम मन राता। गुरमत पाई सहज सेवा, आसा महला पहला पंच पदी।

सच नाम जा नव निध पाई रोवै पूत न कलपै माई एत मोहे डूबा संसार गुरमुख कोई उतरै पार एत मोहे फिर जूनी पाहे मोहे लागा जम पुर जाहे गुर दीखिया ले जप तप कमाहे ना मोह टूटै ना थाए पाहे नदर करे ता एहो मोह जाए नानक हर स्यों रह समाए आसा महला पहला आप करे सच अलख अपार हों पापी तू बख्शन हार तेरा भाणा सब किछ होवै मन हथ कीचै अंत वगोवै रहाउ मन मुख की मत कूड़ व्यापी बिन हर सिमरन पाप संतापी दुर्मत त्याग लाहा किछ लेवो जो उपजै सो अलख अपेवो ऐसा हमरा सखा सहाई गुर हर मिलिया भगत दिरडाई सगली सौदी टोटा आवै नानक राम नाम मन भावै आसा महला पहला चौपदे विद्या विचारी ता पर उपकारी जा पंच रासी ता तीर्थवासी घुंगरू वाजै जे मन लागै।

मेरा सहो जागे हों निस भर सोवा क्यों क्यों कंत प्यारी होवा। सहो जागे हों निस भर सोवा रहाव आस प्यासी सीजै आवा आगे सह पावा।

पहला लख लश्कर लख वाजे नेजे लख उठ कर है सलाम लखा उपर फरमाइश तेरी लख उठ राख है मान जा पत लेख ना पवे ता सब नराफल काम हर के नाम बिना जग तंदा जे बहुता समझाइए भोला पीसो अंधो अंधा रहाओ लख खटिय है लख संजिय है खाज है लख आव है लख जाए जा पत लिख ना पवे ता जी किथे फिर पाए लख सासत समझावनी लख पंडित पढ़ है पुराण जा पत लिख ना पवे ता सबे को परवान सच नाम पत उपजे कर्म नाम करतार अहनस हिरदय जी वसै नानक नदरी पार आसा महला पहला दीवा मेरा एक नाम दुख विच पाया तेल उन चानन ओह सोखिया चूका जम सियो मेल लोका मत को पकड़ पाए लख मड़िया कर।

कहाउ दर कर महला हस्ती घोड़े छोड़ वलायत देश गए पीर पे कांबर सालक सादिक छोड़ी दुनिया थाए पए साध सहज सुख रस कस तजियले कापड़ छोड़े चमन लिए दुखिए दर्द वंद दर तेरे नाम रते दरवेश पए खलड़ी खपरी लकड़ी चमड़ी सिखा सूत धोती कीनी तू साहिब हो सांगी तेरा प्रणवै नानक जात कैसी आसा घर पंजवां महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद पीतर पंच गुप्त मन वासी थिर ना रहें जैसे भवहें उदासी मन मेरा दयाल सेती थिर ना रहें लोभी कपटी पापी पाखंडी माया अधिक लगे रहाउ फूल माला गल पहरूंगी हारू मिलेगा प्रीतम तब करूंगी शिंगारू पंच सखी हम एक पतारू पेड़ लगी है जियड़ा चालन हारू पंच सखी।

अगली जोत हमारी समया नाना वर्ण अनेकं कहो नानक सुन परथर जोगी पार ब्रह्म लिव एकं। आसा महला पहला गुड़ कर ज्ञान ध्यान कर तावे कर करनी कस पाईए पाठी भवन प्रेम का पोचा इतरस अमियो चुआईए बाबा मन मतवारो नाम रस पीवे सहज रंग रच रहिया ऐनस बनी प्रेम लिव लागी शब्द अनाहद गहया रहाओ पूरा साच प्याला सहजे तिसह पियाए जाको नदर करे अमृत का वापारी होवे क्या मद छूछे पाओ धरे गुर की साखी अमृत बाणी पीवत ही परवान भया दर दर्शन का प्रीतम होवे मुक्त बैकुंठ करे किया सिफती रत्ता सद बैरागी जुए जन्म ना हारे कहो नानक सुन परथर जोगी खीवा अमृत धारे आसा महला पहला खुरासान खसमा ना किया हिंदुस्तान डराया आपे दोष न देई करता जम कर मुगल चढ़ाया एती मार पई कर लाने तैं की दर्द न आया करता तू सबना का सोई जे सकता सकते कौ मारी ता मन रूस न होई रहाओ सकता सिंह मारे पै बगै।

कोई, गुर के दर्शन सदा सुख होए। गुर के दर्शन मोख द्वार, सतगुर सेवै परवार साधार। नुगुरे को गत काई नाही, अवगुण मुठे चोटा खाही। गुर के शब्द सुख शांत शरीर, गुरमुखता को लगै ना पीर। जम काल किस नेड़ ना आवै, नानक गुरमुख साच समावै। आसा महला तीजा, शब्द मुआ विचों आप गवाए। सतगुर सेवे तिल ना तमाए, निरपहु दाता सदा मन हुए। सच्ची बाणी पाए भाग कोई,

पाए, हर की मत किन बिद होए, हर अपरम पर अगम अगोचर, गुर कै शब्द मिले जान कोए रहाओ, गुरमुख कीमत जान कोए, विरले कर्म प्राप्त होए, ऊंची बाणी ऊंचा होए, गुरमुख शब्द बखाण कोए, विणनावे दुख दर्द शरीर, सतगुर भेटे ता उतरै पीर, बिन गुर भेटे दुख कमाए, मनमुख बहुती मिले सजाए, हर का नाम मीठा अतरस होए, पीवत रह पियाए सोए, गुर किरपा ते हर रस पाए, नानक नाम रते गत पाए, आसा महला तीजा, मेरा प्रभ साचा गहर गंभीर, सेवत ही सुख शांत शरीर, शब्द तरे जन सहज सुपाए, इनकै हम सद लागह पाए, जो मन राते हर रंग लाए, तिनका जन्म मरण दुख लाथा, ते हर दरगाह मिले सुपाए रहाओ, शब्द चाखै साचा साध पाए, हर का नाम मन वसाए, हर प्रभ सदा रहया भरपूर, आपे नेड़ आपे दूर, आखण आखै बकै सब कोई, आपे बख्श मलाए सोए, कहने कथन ना पाया जाए, गुर प्रसाद वसै मन आए, गुरमुख विचों आप गवाए, हर रंग राते मोह चुकाए, हत निर्मल गुर शब्द विचार, नानक नाम सुवारन हार, आसा महला तीजा, दूजै पाए लगे दुख पाया, बिन शब्द बिरता जन्म गवाया, सतगुर सेवै सोजी।

सुख पाए, संत संगत मेल हर गुण गाए, नामे नाम करे विचार, आप तरह कुल उधरनहार, गुर की वाणी नाम वजाए, नानक महल शब्द कर पाए, गुरमत सत सर हर जल नाया, दुरमत महल सब दुरत गुआया, आसा महला तीजा, मनमुख मर है मर मरन बगाड़ है, दूजे भाई आत्म संघार है, मेरा मेरा कर कर विभूता, आत्म ना चीन है पर मैं विच सूता, मर मुया शब्दे मर जाए, उस्तत निंदा गुर समझण आई, इस युग में है लाहा हर जप ले जाए, रहाउ नाम मिहून गर्भ गल जाए, बिरथा जन्म दूजे लो भाई, नाम मिहूनी दुख जले सबाई, सतगुर पूरे बूझ बुझाई, मन चंचल बहु चोटा खाए, इतों छुड़किया खौर ना पाए, गर्भ जोन विस्टा का वास, तित घर मनमुख करे निवास, अपने सतगुर को सदा बल जाई, गुरमुख ज्योति ज्योत मलाई, निर्मल बाणी निज घर वासा, नानक हों मैं मारी सदा उदासा, आसा महला तीजा, लाले अपनी जात गुआई।

सोग हरक दोए सम कर जाने, गुर प्रसादी शब्द उधर रहाउ, करनी कार तुरों फरमाई, बिन शब्द को थाए ना पाई, करनी कीर्त नाम वसाई, आपे देवे ढिल ना पाई, मन मुख परम भुले संसार, बिन रासी कूड़ा करे व्यापार, बिन रासी वखर पल्ले ना पाई, मन मुख भुला जन्म गवाई।

हार रहाउ सदा सुहागण जो प्रभ पावे गुर शब्दी सिंगार बनावे सेज सुखाली अन दिन हर रावे मिल प्रीतम सदा सुख पावे सा सुहागण साची जिस साच प्यार अपना पिर राखे सदा उर तार नेड़े वेखे सदा हदूर।

नानक साच समावै सोए। आसा महला तीजा भगत रत्ता जन सहज सुपाए। गुर कै भै साचै साच समाए। बिन गुर पूरे भगत ना होए। मन मुख रुन्ने अपनी पत खोए। मेरे मन हर जप सदा त्याए। सदा अना

अवर ना कोय। गुरसागर पूरा भंडार उत्तम रतन जवाहर अपार, गुर प्रसादी देवनहार नानक बख्शे बख्शनहार। आसा महला तीजा गुर सायर सतगुर सच सोए, पूरै भाग गुर सेवा होए सो बूझै जिसे आप बुझाए। गुर प्रसादी सेव कराए ज्ञान रतन सब सोजी होए, गुर प्रसाद अज्ञान बना।

ना जाई, पूरै सतगुर दित्ती वडियाई, उत्तम पदवी हर नाम समाई, जो किछ करे सो आपे आप, एक घड़ी मह थाप उथाप, कह कह कहना आख सुनाई, जे सौ काले थाए ना पाई, जिनकै पोतै पुन तिन्ना गुरु मलाई, सच बाणी गुर शब्द सुनाए, जहां शब्द वसै तहां दुख जाए, ज्ञान रतन साचै सहज समाए, नावै जेवड होर धन नाही कोय, जिसनो बख्शे साचा सोए, पूरै शब्द मन वसाए, नानक नाम रते सुख पाए, आसा महला तीजा, निरत करे बहुवाजे बजाए, इहो मन अंधा बोला है किसे आख सुनाई, अंतर लोभ भरम अनलवाओ, दीवा बलै ना सूझी पाए, गुरमुख भगत घट चानण होए, आप पछाण मिलै प्रभ सोए रहाओ, गुरमुख

पछान गुरमुख भगत अंतर प्रीत प्यार गुर का शब्द सहज विचार गुरमुख भगत जुगत सच सोए पाखंड भगत निरत दुख होए एहा भगत जन जीवत मरे गुर प्रसादी भवजल तरे गुर कै बचन भगत थाए पाए हर जीव आप वसै मन आए हर कृपा करे सतगुरु मलाए निश्चल भगत हर सियो चित लाए भगत रते तिन सच्ची सोए नानक नाम रते सुख होए आसा घर अठवां काफी महला तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर कै भाणे सतगुर मिले सच सूझी होई गुर प्रसादी मन वसै हर बूझै सोई मैं सहो दाता एक है अवर नाही कोई गुर कृपा ते मन वसै ता सदा सुख होई रहाउ इस युग में निरपो हर नाम है पाईऐ गुर विचार बिन नामै जम कै वस है मन मुख अंध गुआर हर कै भाणै जन सेवा करै बूझै सच सोई हर कै भाणै सलाहियै भाणै मन्नै सुख होई हर कै भाणै जन्म पदार्थ पाया मत उत्तम होई नानक नाम सलाहे तू गुरमुख गत होई आसा।

बिहारी हमरे हर तड़ा जे हलत पलत सब सवारी कालयुग मह धड़े पंच चोर चगड़ाए काम क्रोध लोभ मोह अभमान वधाए जिसनो कृपा करे तिस सत संग मलाए हमरा हर धड़ा जिन एह धड़े सब गवाए मिथ्या दूजा पाओ धड़े बह पावे प्राया सिदर अटकल अपना अहंकार वधावे जैसा बीजे तैसा खावे जन नानक का हर धड़ा धर्म सब सृष्ट जिन आवे आसा महला चौथा हिरदय सुन सुन मन अमृत पाया गुरबाणी हर अलख लखाया गुरमुख नाम सुनो मेरी भैना एको रव रहिया घट अंतर मुख बोलो गुर अमृत बैना रहाओ मैं मन तन प्रेम महा बैराग सतगुर पुरख पाया वड भाग दूजे पाए पवह बिख माया भागहीन नहीं सतगुर पाया अमृत हर रस हर आप पी आया।

माया मल धारी विण गुण जन्म मुए अहंकारी शरीर सरोवर गुण प्रगट किए नानक गुरमुख मत तत कढ़िए।

काई नाम रवया सब सास ग्रासा रहाओ नामै सुरत सुनी मन पाई जो नाम सुनावै सो मेरा मीत सखाई नाम हीन गए मूड नंगा पच पच मुए बिख देख पतंगा आपे थापे थाप उथापे नानक नाम देवै हर आपे आसा महला चौथा गुरमुख हर हर वेल वधाई।

सुनी मन सरसा नाम लाहा लै गुरमत बिगसा नाम बिना कुश्ती मोह अंधा सब ने फल कर्म किए दुख धंधा हर हर हर जस जपै वड भागी नानक गुरमत नाम लिव लागी एक ओंकार।

जोगी तो तरवाजे बेन गुरमत हर गुण बोलो जोगी एह मनुआ हर रंग पेन जोगी हर देहो मती उपदेश जुग जुग हर हर एको वरतै तिस आगे हम आदेश रहाउ गाव है राग भांत बहु बोल है एह मनुआ खेलै खेल जो वह कूप सिंचन को बसधा उठ बैल गए चर बेल काया नगर मह कर्म हर बोव हो हर जामे हरिया खेत मनुआ अस्थर बैल मन जोग हो हर सिंचो हो गुरमत जेत जोगी जंगम सिष्ट सब तुमरी जो देहो मती तित चेल जन नानक के प्रभ अंतर जामी।

खिन लागे हम तब लग समारो नाम। मेरा मन ऐसी भगत बन आई हम हर बिन खिन पल रह ना सको। जैसे जल बिन मीन मर जाई रहा कब को मेले पंच सत गायन। कब को राग धुन उठावे मेलत चुनत खिन पल चसा लागे। तब लग मेरा मन राम गुण गावे तब को नाचे पाम पसारे। कब को हाथ पसारे हाथ पाम पसारत बिलम तिल लागे। तब लग मेरा मन राम समारे कब को लोगन को पते आवे। लोक पतीने ना पत होए जन नानक हर हिरदय सद त्याव हो। ता जय जय करे सब कोई आसा महला चौथा। सत संगत मिली है हर साधु मिल संगत हर गुण गाए। ज्ञान रतन बलिया घट चानन अज्ञान अंधेरा जाए। हर जन नाच हो हर हर त्याई ऐसे संत मिले है मेरे भाई। हम जन के तो वह पाए रहाओ हर हर नाम जप हो मन मेरे। अन दिन हर निब लाए जो इच्छो हो सोई फल पाव हो। फिर भूख ना लागे आए आपे हर अपरंपर करता हर आपे बोल बुलाए। से संत भले तुद भावे है जिनकी पत पावे है थाए। नानक आख ना राजे हर गुण ज्यों आख है त्यों सुख पाए। भगत पंडार दिए हर अपने गुण गाहक वणज लै जाए। एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग आसा कर अठवां के काफी महला चौथा। आया मन तुराहो हूं मैं रोई है गुरमुख नाम त्याए अस्थिर हुई है। गुरपुरे साबास चलन जानिया लाहा नाम सो सार शब्द समाणिया। रहाओ पूर्व लिखे देहे से आए माया चलन अज के कल तुरो फुरमाया। बिरथा जन्म तिना जिनी नाम वसारिया जुए खेलन जग के इहो मन हारिया। जीवन मरण सुख होए जिन्ना गुर पाया नानक सच्चे सच सच समाया। आसा महला चौथा जन्म पदार्थ पाए नाम त्याया। गुर प्रसादी भुज सच समाया जिन तुर लिखिया लेख तिनी नाम कमाया। दर सच्चे सत्यार महल बुलाया रहाउ अंतर नाम निदान गुरमुख पाई। अन दिन नाम त्याए हर गुण गाई है। अंतर वस्त अनेक मनमुख नहीं पाई है। हम मैं गर्भ है गर्भ आप खुआई है। नानक आपे आप खुआई है। गुरमत मन परगास सच्चा पाई है। राग असावरी कर सोलवा के दो महला चौथा सोधन। एक ओंकार सतगुर प्रसाद हम अन दिन हर नाम कीर्तन करूं। सतगुरु मुह को हर नाम बताया हम हर बिन किन पल रह ना सको। रहाउ हमरे सर्वन सिमरन हर कीर्तन हम हर बिन रह ना सको। हम एक खिन जैसे हंस सर्वर बिन रह ना सके तैसे हर जन क्यों रह हर सेवा बिन। किन्हू प्रीत लाई दूजा भाव रिद धार किन्हू प्रीत लाई मोह अपमान। हर जन प्रीत लाई हर निर्वाण पद नानक सिमरत हर हर भगवान। असावरी महला चौथा माई मोरो प्रीत मराम बताव होरी माई। हम हर बिन खिन पल रह ना सकूं जैसे कर हर बेल रिझाई रहाउ। हमरा मन बैराग बरकत भयो हर दर्शन मीत कहताई। जैसे अल कमला बिन रह ना सके तैसे मोहे हर बिन रहन ना जाई। राख शरण जगदीश्वर प्यारी मोहे शरदा पूर हर गुसाई। जन नानक कै मन आनंद होत है हर दर्शन निमक दिखाई।

सोई फिर खाया, जिन सुख बैठा ली तिस भउ बहुत दिखाया। भाई मीत कुटंब देख बिबादी, हम आई वसगत गुर प्रसादी। ऐसा देख बमोहित हुए, साधक सिद्ध सुर देव मनुखा। बिन साधु सब त्रोहन त्रोहे रहा, एक फिर है उदासी तिन काम व्यापै। एक संचह गिरही तिन हुए ना आपै। एक सती कहावै है तिन बहुत कल पावै। हम हर राखे लग सतगुरु पावै। तप करते तपसी पुलाय, पंडित मोहे लोभ सवाय। त्रै गुण मोहे मोहया आकाश, हम सतगुर राखे दे।

मानी तुरिया गुण मिल साध पछानी सहज गुफा में आसन बांधिया जोत स्वरूप अनाहद वाजिया महा आनंद गुर शब्द विचार प्रिय सो राती धन सुहागण नार जन नानक बोले ब्रह्म विचार जो सुने कमावे सो उतरे पार जन्म ना मरे ना आवे ना जाई हर सेती ओह रह समाई आसा महला पंजवां निज भगती सील।

वख वख परमावै घर की नायक घर वास ना देवै जतन करूं पुरजाई फरेवै रहाऊ।

आदुए मनुख पहचाव। तृतीय मता किस करूं उपाया, मैं सब किस छोड़ प्रभ तुही ते आया। महा आनंद अचिंत सह जाया।

परदेश झाग सौदे कहो आया, वस्त अनूप सुनी लाभाया, गुण रास बन पल्लै आनी, देख रतन एहु मन लपटानी।

मेरो सब दुख जो हो आंगन मेरा सोभा चंद निसबासर प्रिय संग आनंद वस्त्र हमारे रंग चलू।

तानते मन निर्मल हर हर गुण गाए पये आनंद मिल साधु संग अब मेरा मन कत ही ना जाए तपत बुझी गुर शब्दी माए बिनस गयो ताप सब सहसा गुर

जगत उदाहरण संत तुम्हारी दर्शन पीखत रहे अगाए जन्म दुख परे मेरे पाछे अब पकड़े।

पंचपदे प्रथमे तेरी नीकी जात, द्वितीया तेरी मनिये पांत, तृतीया तेरा सुंदर थान, बिगड़ रूप मन मह अभमान, सोहनी स्वरूप सुजान विचखन,

मरना, मुआ होए तिस निश्चल रहना, जीवत मुए मुए से जीवे, हर हर नाम अवखद मुख पाया, गुर शब्दी रस अमृत पीवे रहाओ, काची मटकी बिनस बनासा, जिस छूटे त्रिकुटी किस निज घर वासा, ऊंचा चढ़े सो पवे पयाला, तरन पड़े तिस लगे ना काला, प्रमत फिरे तिन किछु ना पाया, से अस्तर जिन गुर शब्द कमाया, जियो पिंड सब हर का माल, नानक गुरमिल भए निहाल, आसा महला पंजवा, पुत्री तेरी बिद कर थाटी, जान सत कर होएगी।

चौपदी एक घड़ी दिन समो को बहुत दिहारी मन ना रहे कैसे मिलूं प्यारी एक पाल दिन समो को कब हो ना बिहावे।

चहो जुगह समानी, रैण पई तब अंत ना जानी। पंच दूत मिल पिरो बिछोड़ी, ब्रह्म भ्रम रोवै हाथ पछोड़ी।

करने दान अमृत सार साधे ही परपूरा रहाओ। चरण कमल हृदय अंतर तारे प्रगटी ज्योत मिले राम प्यारे। पंच सखी मिल मंगल गाया अनहद बाणी नाद बजाया। गुरु नानक तुठा मिलिया हर राई सुख रैन विहानी सहज सुपाई। आसा महला पंजवां कर कृपा हर प्रगटी आया मिल सतगुर धन पूरा पाया। ऐसा हर धन संची है भाई पाए न जल जल नहीं डूबे। संग छोड़ कर कतहु न जाई रहाओ तोट न आवे नखोट न जाए। खाए खर्च मन रहया अगाए सो सच साह जिस घर हर धन संचाना। इस धन ते सब जग वरसाना इन हर धन पाया जिस पुरब लिखे का लहना। जन नानक अंतवार नाम गहना आसा महला पंजवा जैसे किरसान बोवे किरसानी। काची पाकी बाड परानी जो जन्मे सो जानहु मुआ। गोविंद भगत अस्थर है किया रहाउ दिन ते सर पर पौसी रात। रैन गई फिर हुए प्रभात माया मोहे सोए रहे अपागे। गुर प्रसाद को विरला जागे कहो नानक गुण गाई है नीत। मुख उजल हुए निर्मल चीत आसा महला पंजवा नौ निद तेरे।

पंजवा निकट जी कै सद ही संगा कुदरत वरत रूप अर रंगा करह ना चुरै ना मन रोवन हारा अवनासी।

त्यों कर प्रतपाला आसा महला पंजवा जी प्राण धन हर को नाम ईहा ऊहा उन संग काम बिन हर नाम अवर सब थोरा तृप्त अगावै हर दर्शन मन मोरा रहाओ भगत भंडार

प्रभ अवनासी घट घट चीन आसा महला पंजवा आनंद बनोद परे पुर तारिया अपना कारज आप सुआरिया पूर समगरी पूरे ठाकुर की।

और पूरी बणत बनाई नानक भगत मिली वड्याई। आसा महला पंजवां गुर कै शब्द बंधावो

रहाउ तृप्त अगावन साक्य नाय अठसठ मज्जन संत तुराय सब मैं जानू करता एक साध संगत मिल बुद्ध विवेक दास सगल का छोड़ अभमान नानक को गुर दीनो दान आसा महला पंजवा बुद्ध परगास पई मत पूरी तांते बिनसी दुरमत दूरी ऐसी गुरमत पाई अले बूढ़त

जिसह परापत तिस ही देह, नानक चाख भये बिस्माद, नानक गुरते आया साध, एक ऊत कत छोड़ ना जाए, नानक गीता हर रस माहे। आसा महला पंजवा, काम क्रोध लोभ मोह मिटावे, छुटकै दुर्मते अपनी धारी, होए नमाणी सेव कमावे, ता प्रीतम होवे मन प्यारी, सुन सुंदर साधु बचन उधारी।

आप सहाये गुण निदान नित गावे नानक सहसा दुख मटाई आसा महला पंजवां औखद खायो हर को नाउ सुख पाए दुख बिन सिया थाउ ताप गया बचन गुरपूरे आनंद पया सब मिटे वसूरे रहाउ जी जंत सगल सुख पाया पार ब्रह्म नानक मन त्याया आसा महला पंजवां बांसत नाही सो बेला आई बिन हुक्मै क्यों।

पन्या सदा सदाय आत्म परगास साध संगत हर चरण निवास राम नाम नित जप मन मेरे शीतल शांत सदा सुख पावह किलख जाही सबे मन तेरे रहाओ। कहो नानक जाके पूरन कर्म सतगुर भेटे।

अतोली, हर सिमरत नानक पई अमोली। खासा महला पंजवा, काम क्रोध माया मद मत सर, ए खेलत सब जुए हारे। सत संतोख दया धर्म सच,

0: कर डूबे खप खप मोए गवारा।
1: गुरमिल नानक नाम त्याया साच नाम निसतारा।
2: राग आसा कर पंजवा महला पंजवा।

जन्म जन्म की मल धोवै पराई अपना कीता पावै इहा सुख नहीं दरगाह ढोई जमपुर जाए पचावै निंदक अहला जन्म गवाया पहुँच ना साकै काहू बातै आगे ठौर ना।

बाहर कोए अंतर मन मैला दोए ठौरे अपने खोए इहां काम क्रोध मोहे व्यापिया आगे मुस मुस रोए। गोविंद भजन की मत है होरा बरमी मारी साफ ना मरी नाम ना सुनी डोरा रहाओ माया की किरत छोड़ गवाई।

पाया। कूड़ कपट बंच निम नियादा बिनस गया तत्काली। सत सत सत नानक कहया अपने हिरदय देख संभाली। आसा महला पंजवा उदम करत हो ऐ मन निर्मल नाचै आप निवारी। पंच जना ले वसगत राखै मन मह इकंकारी। तेरा जन नृत करे गुण गावै रबाब पखावज ताल कुंगरू अनहद शब्द।

सुनावै कर संग साधु चरण पखारै संत धूर तन लावै मन तन अर्प धरे गुर आगै सत पदार्थ पावै जो जो सुने पेखै लाए श्रद्धा तड़का जन्म मरण दुख भागै।

मन की होर किस पै आख सुनाइए, बिन नावे सब जग बोराया, नाम मिले सुख पाइए।

गुर काढ़ लिए, निरपव भय सगल भव मिटिया, राखे राख न हारे। ऐसी दात तेरी प्रभ मेरे कार

बहुत तृण जाले, कोई हरिया बूट रहे ओरी। ऐसो समरथ वर्णना साको, ताकि उपमा जात ना कहोरी। काजर कोट मह पई ना कारी, निर्मल वर्ण बनियोरी। महामंत्र गुर हृदय बसियो, अचर्ज नाम सुनियोरी। कर कृपा प्रभ नदर अवलोकन, अपने चरण लगाई। प्रेम भगत नानक सुख पाया।

पंजवा दुख कनो जब होते दूर अब मसलत मोहे मिली हदूर चुका ने हो रहा सखी सहेरी परम गया गुर पिर संग मेरी रहाव निकट आन प्रिय सेज धरी कान कड़न ते छूट परी मंदर मेरा शब्द उजारा आनंद बनोदी खसम हमारा मस्तक भाग मैं फिर घर आया।

दीस आवत है बहुत भी हाला, सगल चरण की इहो मन राला, नानक जन गुर पूरा पाया, अंतर बाहर एक दिखाया, आसा महला पंजवा, पावत रलिया जोबन बलिया, नाम बिना माटी संग रलिया, कान कुंडलिया बस्तर ओडलिया, सेज सुखलिया मन गर्बलिया, रहाव तलै कुंचरिया सिर कनक छतरिया, हर भगत बिना ले धरन गडलिया, रूप सुंदरिया अनक इस्तरिया, हर रस बिन सब स्वाद फिकरिया, माया छलिया विकार बिखलिया, शरण नानक प्रभ पुरख दयालिया, आसा महला पंजवा, एक बगीचा पेड़ घन करिया, अमृत नाम तहा मह फलिया, ऐसा करहु बिचार ज्ञानी, जाते पाई है पद निर्वाणी, आस पास बिखुआ के कुंटा, बीच अमृत है पाई रे रहाव, सिंचन हारे एक माली, खबर करत है पात पत डाली, सगल बनस्पत आन जनाई, सगली फूली निफल ना काई, अमृत फल ना

शास्त्र भेद पाप पुण्य विचार नरक सुर्ग फिर अवतार गिरस्त मह चिंत उदास अहंकार कर्म करत जी कौ जंजार प्रभ कृपा ते मन वासे आया नानक गुरमुख तरी तिन माया साध संग हर की।

चित आवे सो नाम जपै जो जन तुद पावै रहाउ। तन मन शीतल जप नाम तेरा हर हर जपत टह दुख डेरा। हुक्म बूझै सोई परवान साच शब्द जाका निशान। गुरपूरै हर नाम दृढ़ाया भणत नानक मेरा मन सुख पाया। आसा महला पंजवां जहां पठाव हो तह तह जाई।

रतन जन्म एहो सफल भया, कहो नानक प्रभ करी मया। आसा महला पंजवां, सतगुर अपना सद सदा संहारे, गुर के चरण केस संग चारे।

आपे पेड़ बिसथारी साख, अपनी खेती आपे राख, जत कत पेखों एक ओही

कोट प्रभ तोरी आसा महला पंजवा हर हर अखर दुए एह माला जपत जपत भय दीन दयाला करो बेनती सतगुरे अपनी कर कृपा।

मुख हर हर बोले, सूजन इत उत कतह ना डोले, कहो नानक जो राचे नाई, हर माला तां कै संग जाई, आसा महला पंजवा, जिसका सब किस तिसका होए, तिस जन लेप ना व्यापै कोए, हर का सेवक सद ही मुक्ता, जो किछ करै सोई पा।

क्रोवन हार झूठ कमाना, हस हस सोग करत बेगाना, को मुआ काके घर गावन, को रोवे को हस हस पावन रहाव, बाल व्यवस्था ते बिरधाना, पहुंचना मुका फिर पछताना, त्रिहो गुण में वरतै संसारा, नरक सुर्ग फिर अवतारा, कहो नानक।

जानी, भोर पया बहोर पछतानी, प्रिय प्रेम सहज मन आनंद तरहुरी, प्रभ मिलबे की लालसा, तांते आलस कहां करोरी रहाओ, कर्म है अमृत आनन सारेउ, खिसर गयो भूम पर डारेउ, साध मोहे लादी अहंकारे, दोष नाही प्रभ करने हारे, साध संग मिटे परम अंधारे।

देख चलत मन भये दलासा, नानक दास तेरा परवासा। आसा महला पंजवा, अनदिन मूसा लाज टुकाई, गिरत कूप मह खाए मठाई। सोचत साचत रहन बयानी, अनकरंग माया के चितवत। कबहू ना सिमरै सारंग पानी रहाव, द्रुम की छाया निश्चल ग्रह बांधिया। काल कै फांस सकत सर सांधिया, बालू किनारा तरंग मुख आया। सो थान मूड निश्चल।

उनके संग हम तुम संग मेल, उनके संग तुम सब को लोरे, उस बिना को मुख नहीं जोरे, ते बैरागी कहां समाए, तिस बिन तुही दोहे रीरी रहाओ, उनके संग तू ग्रह महमाहर, उनके संग तू हुई है जाहर, उनके संग तू रखी पपोल, उस बिना तू छुटकी रोल, उनके संग तेरा मान महत, उनके संग तुम साक जगत, उनके संग तेरी सब विद थाटी।

सब हुमा गर्भ मोह तज हूं रेन उनके संग देखो प्रभ नैन निमक निमक एही आराधो दिन सरहन ए सेवा साधो भये कृपाल गोपाल गोबिंद साध संग नानक बख्शिंद आसा महला पंजवा प्रभ की प्रीत सदा सुख होए प्रभ की प्रीत दुख लगे ना।

प्रीत सगल उदार है, प्रभु की प्रीत चले संगार है, आपो कोई मिले ना भूले, जिस कृपाल तिस साध संग भूले।

संबाहा निकसिया फूक ता हुए गयो स्वाहा। ऊचे मंदर महल अररानी हस्त घोड़े जोड़े मन पानी वड परवार पूत अरतियां मोहे पच।

जिस खसम दयाल आसा मोहल्ला पंजवा इन स्यों प्रीत करी कान्हेरी जो मिली तो वदै वधेरी गल चमड़ी जो छोड़ नाही लाग छुट्टो सत।

आठ घाट ग्रह बन बन जो है, मन तन लागे होए कै मीठी, गुर प्रसाद में खोटी डीठी, अगरक उसके वड्डे ठगाऊ, छोड़ह नाही बाप ना माऊ, मेली अपने उनले बांधे, गुर कृपा ते मैं सगले साधे, अब मोरे मन भया आनंद, पौ चूका टूटे सब फंद, कहो नानक जा सतगुर पाया, कर सगला मैं सुखी बसाया, आसा महला पंजवा आठ पहर निकट कर जाने।

सब लिखते लेखा, भगत जना कहो दृष्ट ना पेखा, कहो नानक जिस सतगुर पूरा, वाजे ता कै अनहद तूरा, आसा महला पंजवा दुपदा एक, साधु संग सखायो नाम, सर्व मनोरथ पूर्ण काम, बुझ गई तृष्णा हर जसै अगानी, जप जप जीवा सारग पानी, करन करावन सरन परया, गुर प्रसाद सहज कर पाया, मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया रहाओ, लाल जवे हर भरे भंडार, तोट न आवै जप निरंकार, अमृत शब्द पीवै जा

सूख सहज मेरा धन सोहागा, कहो नानक मोरी पूरन आसा, सतगुर मेली प्रभ गुणतासा, आसा महला पंजवा, माथे त्रिकुटी दृष्ट क्रूर, बोले कौड़ा जिहवा की फूड, सदा भूखी पिर जाने दूर, ऐसी स्त्री एक राम अपाई, उन सब जग खाया, हम गुर राखे मेरे पाई रहाओ, पाए ठगौली सब जग जोहया, ब्रह्मा विष्णु महादेव मोहया, गुरमुख नाम लगे से सोहया, वर्त नेम कर थाके पुनः चरना, तट तीरथ पवे सब तरना, से उबरे जे

बाहां पकड़ हम राखा, आसा मोहल्ला पंजवा, सर्ब दुख जब बिसरह स्वामी, इहां उहां कामना प्राणी, संत तृप्ता से हर हर त्याए, कर कृपा अपने नाए लाए, सर्व सुख प्रभ तुमरी रजाए रहाओ, संग होवत को जानत दूर, सो जन मरता नित नित चूर, जिन सब किस दिया तिस चितवत नाही।

नाम जपत मन तन सब हरिया, कल मल दुख सगल पर हरिया, सोई दिवस भला मेरे भाई, हर गुण गाए परम गत पाई। रहाओ साध जना के पूजे पैर, मिटे उपद्रह मन ते बैर, गुरपूरे मिल झगर चुकाया, पंच दूत सब वस गत आया, जिस मन वसया हर का नाम, नानक तिसी ऊपर कुर्बान, आसा मोहल्ला पंजवा, गावले तू गावन हारे, जी पिंड के प्राण आधारे, जां की सेवा सर्व सुख पाव है, अवर काहू पह बहुड़ ना जाव है, सदा आनंद आनंदी साहिब, गुण निधान नित नित जापी है, बलिहारी तिस संत प्यारी, जिस प्रसाद प्रभ मन वासी है। रहाओ जां का दान नुखूटे नाही, पली भांत सब सहज समाही, जां की बख्श न मेटे कोई, मन वासाई है साचा सोई, सगल समग्री ग्रह जां कै पूरन, प्रभ के सेवक दुख ना चूरन, ओट गही निरभउ पद पाई, सास सास सो गुण निद गाई, दूर ना होई कतहूं जाई, नदर करे ता हर हर पाई, अरदास करी पूरे गुर पास, नानक मंगे हर धन रास। आसा महला पंजवा, प्रथमे मिटिया तन का दुख, मन सगल को हुआ सुख, कर कृपा गुर दीनो नाओ, बल बल तिस सतगुर को जाओ, गुरपूरा पायो मेरे भाई, रोग सोग सब दुख बनासे, सतगुर की सरनाई रहाओ, गुर के चरण हृदय वसाए, मन चिंतत सगले फल पाए, अगन बुझी।

जियो पिंड सब तिसदा सब किश है तेरा मान माने तू धनी तेरा परवासा बिन साचे अन टेक है सो जानहु काचा रहाउ तेरा हुक्म अपार है कोई अंत ना पाए जिस गुर पूरा भेट सी सो चले रजाए चतुराई सियाणपां कितै काम ना आई है टुठा साहिब जो देवै सोई सुख पाई है जे लख कर्म कमाई है किश पवै ना बंदा जन नानक कीता नाम धर होर छोड़िया धंधा आसा महला पंजवा सर्व सुखा मैं पालिया हर जीवड ना कोई गुर पुठे ते पाई है सच साहिब सोई बलिहारी गुर अपने सद सद कुरबाना नाम ना विसरो एक खिन चसा एहो कीजै दाना रहाउ भागठ सच्चा सोए है जिस हर धन अंतर सो छूटै महाजाल ते जिस गुर शब्द निरंतर गुर की महिमा क्या कहां गुर विवेक सत सर ओहो आदि जुगादि जुगह जुग पूरा परमेश्वर नाम त्याव हो सद सदा हर हर मन रंगे।

संग भेटिया सुख पाया जन प्रसाद दुख सब मेटिया रहाओ जेते खंड ब्रह्मांड उधारे तिनखे जिन

हर कीर्तन आधार निश्चले हो तनो जेते माया रंग तेत पछावया सुख का नाम निदान गुरमुख गावया सच्चा गुणी निदान तू प्रभ गहर गंभीरे आस भरोसा खसम का नानक के जियरे आसा महला पंजवा जिस सिमरत दुख जाए सहज सुख पाई है रैन दिन सकर जोड़ हर हर त्याई है नानक का प्रभ सोए जिसका सब को

सगल रोग राखन हार अपार राख अग्न माहे शीतल हर हर नाम सिमरत तपत जाए सुख सहज आनंद कणा नानक जन धूरा कार्य सगले सिद्ध भये

जिन हर त्याया जन्म मरण दुख काल सिमरत मिट जावई। नानक कै सुख सोए जो प्रभ पावई। आसा महला पंजवा आवहो मीत इकत्तर होए। रस कास सब पुंच है अमृत नाम हर हर जप है।

जहां का ठाकर तू ही प्रभ ता केवड भागा ओहो सहेला सद सुखी सब भ्रम पौ भागा हम चाकर गोबिंद के ठाकुर मेरा पारा करन करावन सगल बिद सो सतगुरु हमारा रहाओ दूजा नाही और को तांका भो करिए गुर सेवा महल पाई है जग दुत्तर तरी है दृष्ट तेरी सुख पाई है मन माहे निधाना जां को तुम कृपाल भये सेवक से परवाना अमृत रस हर की।

हर नाम मजीठै रंगरी त्याग सियाणप चातुरी तू जान गोपाल है संगरी रहाओ भरता कह सुमानिया एहो शिंगार बनाए री दूजा भाव वसारी है एहो तंबोला खाए री गुर का शब्द कर दीप को एह सत की सेज बछाए री आठ पहर कर जोड़ रहो तौ भेटै हर राए री तिसही चज शिंगार सब साई रूप अपार री।

सर्व सुख पावो आज्ञा पावो के ना पावो। एक दतार सगल है जाचक, दूसर कै पह जावो। हो मांगो आनल जावो, सगल शत्रपत एको ठाकुर। कौन समसर लावो रहाओ, उठो बैसो रह पे ना साको। दर्शन खोज खजावो, ब्रह्मादिक सनकादिक सनक सनंदन सनातन संत कुमार। तिनको महल दुल पावो, अगम अगम अगाध बोध। कीमत परे ना पावो, ताकि शरण सत पुरख की। सत गुर पुरख त्यावो, पयो कृपाल दयाल प्रभ ठाकुर। काट्यो बंद गरावो, कहो नानक जो साध संग पायो। तो फिर जन्म ना

नाम दृढ़ गुरमन मह दिया मोरी तिसा बुझारी दिन पी गावो रहनी गावो गावो सास सास रसनारी सत संगत में बसास होए हर जीवत मर्त संगारी जन नानक को एहो दान देहो प्रभ पावो संतरेन उरतारी श्रवनी कथा नैन दर्श पेखो मस्तक गुर चरनारी एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा कर दसवां महला पंजवा जिसनो तू अस्थर कर मन है ते पाहुन दो दाहा पुत्र कलत्तर ग्रह सगल समग्री सब मिथ्या असनाहा रे मन क्या करह है हाहा दृष्ट देख जैसे हर चंदौरी एक राम भजन लै लाहा रहाओ जैसे बस्तर देह ओढ़ाने दिन दोए चार पुराहा पीत उपरे केतक ताई है अंत ओर को आहा जैसे अंब कुंड कर राखियो परत सिंध गल जाहा आव गया गया पार ब्रह्म की

कीर्त कर नानक हर की उबरे सतगुर चरण उठाहा। आसा महला पंजवां अपुष्ट बात ते भई सीधरी दूत दुष्ट सजनई अंधकार मह रतन परगासेओ मलीन बुद्ध हसनई जो कृपा गोविंद भई सुख संपत हर नाम फल पाए सतगुरु मिली रहाओ मोहि किरपन को कोई ना जानत सगल भवन प्रगटई संग बैठनो कहीं ना पावत हुन सगल चरण सेवी आड़ आड़ को पिरत ढूंढते मन सगल त्रिशन बुझ गई एक बोल पी खवतो नाही साध संगत सीत लई एक जी गुण कवन वखाने अगम अगम अगमई दास दास दास को करियो हो जन नानक हर सरनई। आसा महला पंजवां रे मूड़े लाहे को तू टीला टीला तोटे को बेग ताया सस्त वखर।

गंदन वहन सुनह उर जावह, नाम लैत अलकाया, निंद चिंद को बहुत अमाहयो, बूजी उल्टाया, पर तन पर तन परती निंदा, अखाद खाहे हरकाया, साच धर्म स्यो रुच नहीं आवै, सत सुनत सोहाया, दीन दयाल कृपाल प्रभ ठाकुर, भगत टेक हर नाया, नानक आहे सरन प्रभ आयो, राख लाज अपनाया, आसा महला पंजवा, मिथ्या संग संग लपटाई, मोह माया कर बांधे, जह जानो सो चीत ना आवे, अहम बुद्ध भय आंदे, मन बैरागी क्यों ना अरादे, काच कोठरी माहे तू बसता, संग सगल बिखे की ब्यादे रहाओ, मेरी मेरी करत दिन रैन बिहावे, पलखिन सीजे अर जादे, जैसे मीठे साध लुभाए, झूठ धंद दुर्गम दे, काम क्रोध अर लोभ मोह, एह इंद्री रस लपटा दे, दीप वारी पुरख बधाटे, बहुर बहुर जन माते, जो भयो कृपाल दीन दुख भंजन, तो गुरमेल सब सुख लादे, कहो नानक दिन रैन त्यावो, मार काढ़ी सगले अपादे, इउं जपियो भाई पुरख बधाते,

रहाउ। तिस सेवक कै हौ बलिहारी, जो अपने प्रभ भावे तिसकी सोए सुनी मन हरिया। तिस नानक परसन आवे, आसा घर ग्यारवा महला पंजवा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, नटुआ भेख दिखावे बहु बिद। जैसा है ओह तै सारी, अनक जोन भ्रम्यो भ्रम पीतर। सुख नाही परवेश सारी, साजन संत हमारे मीता। बिन हर हर आनी तारी, साध संग मिल हर गुण गाई। एहो जन्म पदार्थ।

गाखरी गुर शब्दी पार उतरी है रे खोजत खोजत खोज बिचारे तत नानक एहो जाना रे सिमरत नाम निदान निर्मोलक मन मानक पथियाना रे आसा महला पंजवा धोपदे गुर प्रसाद मेरे मन वसिया जो मांगो सो पावो रे नाम रंग एहो मन त्रिपताना बहुर न कतहू तामो रे हमरा ठाकुर सब ते उच्चा रहण।

तिन जन निर्दलिया साध संगत कै चली रे आसा महला पंजवां नीकी जी की हर कथा उत्तम आन सगल रस फीकी रे रहाओ बहु गुण धुन मुन जन खट बेते अवर ना कि

मोहल्ला पंजवा हमारी प्यारी अमृत तारी गुर निमुख न मन ते तारी रे रहाओ दर्शन परसन सरसन हरसन रंग रंगी करतारी रे हिन राम गुर गम हर दम नह जम हर कंठ नानक उरहारी रे

चालत बैसत सोवत हर जस मन तन चरण खटानी हौ हौरो तू ठाकर गौरो नानक सरन पछानी राग आसा महला पंजवां घर बारवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद त्याग सक...

भौजल लंघी है सदा हर गुण गाओ जन्म मरण निवारी है दुख ना जमपुर होए नाम निदान सोई पाए कृपा करे प्रभ सोए एक टेक आधार एको एक का मन जोर नानक जपिए मिल साध संगत हर बिन अवर ना होर आसा महला पंजवा जियो मन तन प्राण प्रभ के दिए सब रस भोग।

मेरा नानक का प्रभ तान आसा महला पंजवा डोल डोल महा दुख पाया बिना साधु संग खाट लाभ गोविंद हर रस पार ब्रह्म एक रंग हर को नाम जपिय नीत सास सास त्या

नाम चराव हो रंगन आपे ही प्रभ रंग मन मह राम नामा जाप कर कृपा वसो मेरा हृदय कोई सहाई।

किरम अपने को यह मनोरथ सुहाओ। तन धन तेरा तू प्रभ मेरा हमरे वस किश नाही। ज्यो ज्यो राख है त्यों त्यों रहना तेरा दिया खाहे। जन्म जन्म के किल विख काटे मज्जन हर जन तूर। पाए भगत परम पौ नासे हर नानक सदा हजूर। आसा महला पंजवां अगम अगोचर दर्श तेरा सो पाए जिस मस्तक भाग। आप किरपाल किरपा प्रभ धारी सतगुर बख्शिया हर नाम। कल युग उधारिया।

साध सतगुर बचन तुम्हारे निर्गुण निस्तारे रहाओ महाबिखादी दुष्ट अपवादी ते पनीत संगारे जन्म पवंते नरक पड़ंते तिनके कुल उधारे कोई न जाने कोई न माने से प्रगट हर द्वारे कमन उपमा देओ कमन वडाई नानक खिन खिन वारे आसा महला पंजवा बावर सोए रहे रहाओ मोह कटांब बिखै रस माते मिथ्या गहन गहे मिथन मनोरथ सुपन आनंद उलास मन मुख सत कहे अमृत नाम पदार्थ संगे तिल मर्म ना लहे

गज मोतियन लालन नह नाहा नहीं राज ना भाग ना हुक्म ना साधन किस किस ना चाही चरणन सरनन संतन बंदन सुखो सुख पाही नानक तपत हरि।

मोहिना कारण करना तारण धरना एकै एकै सोहिना संतन परसन बलिहारी दर्शन नानक सुख सुख सोहिना आसा महला पंजवा हर हर नाम अमोला ओह सहज सुहेला रहाओ संग सहाई छोड़ ना जाई ओह अगह अतोला प्रीतम भाई बाप मोरो माई भगतन का ओलाह अलख लखाया गुरते पाया नानक एहो हर का चोला आसा महला पंजवा अपनी भगत नवाहे ठाकुर आयो आहे रहाओ नाम पदार्थ होए सकारथ हृदय चरण बसाहे एहे मुक्ता एहे जुगता राखो हो संत संगाहे नाम त्यागो हो सहज समावो नानक हर गुण गाहे आसा महला पंजवा ठाकुर चरण सुहावे हर संतन पावे रहाओ आप गवाया सेव कमाया गुण रस रस गावे एक है आसा दर्श प्यासा आन ना पावे दया तुहारी क्या जंत विचारी नानक बल बल जावे आसा महला पंजवा एक सिमर मन माही रहाओ नाम त्याव हो हृदय बसाव हो तिस बिन को नाही प्रभ सरनी आईऐ सर्व फल पाईऐ सगले दुख जाही जीअन को दाता पुरख बधाता नानक घट घट आही आसा महला पंजवा हर बिसरत सो मुआ रहाओ नाम त्यावै सर्व फल पावै सो जन सुखिया हुआ राज कहावै।

संयम कर थाके नानक साध सरन प्रभ संग वसै आसा महला पंजवा घर पंद्रवा पड़ताल एक ओंकार सतगुर प्रसाद बेकार माया माद सोयो सूझ बूझ ना आवै पकर केस जम उठारियो तद ही घर जावै लोभ बिखया बिखै लागे हर वित चित दुखाही।

दान सगल गैर वजह भरिया दीवान लेखे ना परिया जेहे कार्ज रह ओला सोए काम ना करिया।

सहजाए दरसाए अभरात्या गोविंद सिंह संत सेव प्रीत नाथ रंग लालन लाए गुर ज्ञान मन दृढ़ाए रहसाए नहीं आए सहजाए मन मैदान पाए।

प्रभ त्याव भ्रम भीत जीत मटाव निद नाम नानक मोरै आसा महला पंजवा काम क्रोध लोभ त्याग मन सिमर गोविंद नाम हर भजन

पावन पार ब्रह्म हर चरण सिमर जाग कर भगत नानक पूर्ण भाग आसा महला पंजवां हरख सोग बैराग आनंदी खेल रीद खायो रहाओ खिनहु भय निरभय खिनहु खिनहु उठ तायो खिनहु रस भोगन खिनहु खिनहु तज जायो खिनहु योग ताप बहु पूजा खिनहु परमायो

मूड न रहा अनन उपाव कर हां तौ निकसे सरन पैरी सखी थेर थेर चित थेर हां बन ग्रहो सम

अंदेसिया हां संत उपदेसिया मेरे मना जिस जन नाम सुख हां तिस निकट ना कदे दुख हां जो हर हर जस सुने हां सब को तिस मन्ने हां सफल सो आया हां नानक प्रभ पाया मेरे मना सावरी महला पंजवा मिल हर जस गाइए हां परम पद पाइए हां वा रस जो विदे हां तां को सगल सिदे हां अन दिन जागया हां नानक बड़ भागया मेरे मना रहाओ संत पग धोइए हां।

सतगुर प्रसाद, राग आसा महला नौवा, बिरथा कहो कौन स्यो मन की, लोभ ग्रस्यो दस हूं दिस धावत, आसा लाग्यो धन की रहाओ, सुख कै हेत बहुत दुख पावत, सेव करत जन जन की, द्वार है द्वार स्वान ज्यों डोलत, नह सुध राम भजन की, मानस जन्मे अकारथ खोवत, लाज ना लोक हसन की, नानक हर जस क्यों नहीं गावत, कमत बनासै तन की, राग आसा महला पहला, अष्टपदियां घर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, उत्तर अब कट सरवर नावे, बकै न बोले हर गुण गावे, जल आकाशी सुन समावे, रस सत झोल महारस पावे, ऐसा ज्ञान सुनो अब मोरे, भरपुर धार रहया सब ठौरे रहाओ, सच ब्रत नेम ना काल संतावे, सतगुर शब्द क्रोध जलावे, गगन निवास समाध लगावे, पारस परस परम पद पावे, सच मन कारण तत् बलोवे, सुपार सरवर मैल ना धोवे, जैस्यो राता तैसो होवे, आपे करता करे सो होवे, गुर हेव सीतल अगन बुझावे, सेवा सुरत बेभूत चढ़ावे।

कह नाई कर बिन वाजा पग बिन ताला जे शब्द बुझे ता सच निहाला अंतर साच सबे सुख नाला नदर करे राखे रखवाला त्रे भवन सूजे आप गुआवे बाणी बूझे सच सुभावे शब्द विचारे एक लिव तारा नानक धन सवार नहारा आसा महला पहला लेख असंख लिख लिख मान मन माने सच सुरत बखान कथनी बदनी पढ़ पढ़ पार लेख असंख अलेख या

दुख कोई, सो रोवे जिस बेदन होए, जिस बीती जाने प्रभ सोए, आपे करता करे सो होए, जीवत मरना तारे तरना, जय जगदीश परम गत सरना, हौ बलिहारी सतगुर चरना, गुर बोहित शब्द पै तरना, निरपहु आपने

पीत दुख सुख पर हर सहज सुचीत तन मन संपौ कृष्ण परीत भीतर एक अनेक असंख कर्म धर्म बहु संख असंख।

भ्रांत सूतक अगन पखै जग खाए सूतक जल थल सब ही थाए नानक सूतक जन्म मरीजै गुर प्रसादी हर रस पीजै राग आसा महला पहला आप विचारै सो परखे हीरा एक दृष्ट तारे गुर पूरा गुर मानै मन

कहया बूझै बिख का माता जग स्यों लूझै उत्तम संगत उत्तम होवै गुण कौ धावै अवगण धोवै।

नजर निहाल आसा महला पहला गुरमुख ज्ञान ध्यान मन मान गुरमुख महली महल पछान गुरमुख सुरत शब्द निशान ऐसे प्रेम भगत विचारी।

क्या लहस निदान जिसका अन तन सहज ना जाना परम पुलाना फिर पछताना गल पाही बौरा बौराना बूढ़त जग देखिया तो डर भागे सतगुर राखे से वड भागे।

कहावह बीते, भिन्नावै मन झूठ अनीते, कहां चलुहो मन रहो करे, गुरमुख राम नाम तृप्तासे, खोजत पावहो सहज हरे रहाउ, काम क्रोध मन मोह शरीरा, लभ लोभ अहंकार सो पीरा, राम नाम बिन क्यों मन तीरा, अंतर नामन साच पछाणे, अंतर की गात गुरमुख जाने, साच शब्द बिन महल ना पछाणे, निरंकार मह आकार समावे, अकल कला सच साच टिकावे, सो नर गर्भ जोन नहीं आवे, जहां नाम मिले तह जाऊं, गुर प्रसादी कर्म कमाऊं, नामे राता हर गुण गाऊं, गुर सेवा ते आप पछाता, अमृत नाम वस्या सुखदाता।

काल कंटक मारे सच पेलै, एहो मन कर्मा एहो मन धर्मा, एहो मन पंच तत ते जन्मा, साकत लोभी एहो मन मूड़ा, गुरमुख नाम जपै मन रूड़ा, गुरमुख मन अस्थाने सोई, गुरमुख त्रे भवन सोजी होई, एहो मन जोगी भोगी तप तापै, गुरमुख चीनै हर प्रभ आपै, मन बैरागी होमै त्यागी, घट घट मनसा दुबदा लागी, राम रसायन गुरमुख चाखै, दर कर महल

ग्रास इकत थाए कीए गुरमुख राग स्वाद अन त्यागे गुरमुख इहो मन भगती जागे अनहद सुन मानिया शब्द विचारी आत्म चीन भय निरंकारी इहो मन निर्मल दर घर सोई गुरमुख भगत भाव धुन होई अहनस हर जस गुर प्रसाद घट घट सो कब याद जुगाद राम रसायन इहो मन माता सर्व रसायन गुरमुख जाता भगत हेत गुर चरण निवासा नानक हर जन के

तू आप भलावह नाम विसार, तू आपे राखह कृपा धार। रोग भरम भेद मन दूजा, गुरबिन भरम जपह जप दूजा। आद पुरख गुर दर्शना देखह, बिन गुर शब्द जन्म के लेखह। देख अचरज रहे बिस्माद, घट घट सुर नर सहज समाद। भरपुर तार रहे मन माही, तुम समसर अवर को नाही। जां की भगत हेत मुख नाम, संत भगत की

0: मुख तिस लागे।
1: जो जन राम नाम लिव जागे,
0: भगत वछल भगता हर संग, नानक मुक्त भये हर रंग। आसा महला पहला एक तुकी, गुर सेवे सो ठाकुर जाने, दुख मिटे सच शब्द पछाने।

ब्राह्मण जिस वेख नींद ना पाई कहां सुपान तंबोली हरमा होया शाई माई इस जर कारण कणी विगुत्ती इन जर

किसनू आख सुनाइए दुख सुख तेरे पाणे होवे किस थे जाए रुआइए हुक्मी हुक्म चलाए बिगसै नानक लिखिया पाइए एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा काफी महला पहला कर अठवां अष्टपदियां।

नीत नीत घर बांधी है जे रहना होई पिंड पवै जियो चलसी जे जाने कोई ओही ओही क्या करहो है होसी सोई तुम रोवोगे ओसनु तुम कौ कौन होई।

लालच दुख भारी साचो साहिब मन वसे हो मैं बिख मारी दुबदा छोड़ कवाटड़ी मूस हो गए भाई अहनस नाम सलाही है सतगुर सरनाई मनमुख पत्थर सैल है त्रिग जीवन फीका जन्म है के तारा की है

हुक्म पछाण हूँ। हुक्मी वजह लिखाए आया जानिए, लाहा पल्ले पाए हुक्म सियाणी है। हुक्मी पैंदा जाए दरगाह पानी है।

वाटड़ी सच्ची भगत दृढ़ाए मनमुख जे समझाई है पी उजड़ जाए बिन हर नाम ना छूट सी मर नरक समाए जन्म मर परमाई है हर नाम ना लेवे ताकि कीमत ना पवे बिन गुर की सेवै जे ही सेव कराई है करनी पी साई आप करे किसे आकी है वेखै वडे आई गुर की सेवा सो करे जिसे आप कराए नानक सिर दे छूटी है दरगाह पत पाए आसा महला पहला रूड़ो ठाकुर माहरो रूड़ी गुरबाणी वड्डे भाग सतगुर मिले पाईए पद निर्वाणी मैं उल गिया उल गी हम छोरू थारी ज्यो त्यों राख त्यों रहा मुख नाम हमारे रहाओ दर्शन की प्यासा कणी भाणे मन पाईए मेरे ठाकुर हाथ वड्याईया भाणे पत पाईए साचो दूर ना जानिए अंतर है सोई जह देखा तह रव रहे किन कीमत होई आप करे आपे हरे वेखै वड्याई गुरमुख होए निहाली है इउं कीमत पाई जीवंदियां लाहा मिले गुरकार कमावे पूर्व होवे लिखिया तां सतगुर पावे मनमुख तोटा नित है परम है परमाए मनमुख अंध ना चेतई क्यों दर्शन पाए तां जग आया जानिए साचै लिव लाए गुर भेटे पारस पहे ज्योति ज्योत मलाए ऐनस रह निरालमो कार तुरकी करनी नानक नाम संतोखिया राते हर चरनी आसा महला पहला केता आखण आखी है

आस है सच नाम सुहेला, आप गया सूझी पई गुर शब्दी मेला रहाउ, हो मैं गर्भ गवाई है पाई है विचार, साहिब सिंह मन मानिया दे साच आधार, अहनस नाम संतोखिया सेवा सच साई, ताको बिघन ना लाग गई।

जो तिस पाया सच्ची सच्ची दात देह दयाल है जिस सेवी दिन रात नाम अमोल है तू उत्तम हो नीच सेवक कांडिया नानक नदर करे हो मिले सच वांडिया आसा महला पहला आवन जाना क्यों रह क्यों मेला होई जन्म मरण का दुख घणो नित सहसा दोई बिन नावे क्या जीवना हित त्रिग चतराई सतगुर साधना सेविया हर भगत ना पाई रहाउ आवन जावन तौ रह पाइए गुर पूरा राम नाम धन रास दे बिनसै भ्रम पूरा संत जना को मिल रह तन तन जस गाए आदि पुरख अपरंपरा गुरमुख हर पाए नटुए सांग बनाया बाजी संसारा खिन पल बाजी देखिए उजरत नहीं बारा हों मैं चौपड़ खेलना झूठे अहंकारा सब जग हारे सो जिने गुर शब्द विचारा ज्यों अंधले हाथ टोहनी।

अधारा अंत सखाई पाया जन मुक्त द्वारा जन्म मरण दुख मेटिया जप नाम वरारी नानक नाम ना विसरै पूरा गुर तारी आसा महला तीजा अष्टपदिया घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सास वेद सिमरत सर तेरा सुरसरी चरण समाणी साखा तीन मूल मत रावे तू ता सर्ब वडाणी ता के चरण जपै जन नानक बोले अमृत बाणी रहाओ ते तीस करोड़ी दास तुम्हारे रिद सिद्ध प्राण आधारी ताके रूप न जाही लखने क्या कर आख विचारी तीन गुणा तेरे जोग ही अंतर चारी तेरिया खानी कर्म हुए ता परम पद पाई है कथे अकथ कहानी।

देवन वाला सब बिद जाने, गुरमुख पाइए नाम निदान रहाउ। सतगुरु भेटे की वडियाई, जिन ममता अग्न तृष्णा बुझाई, सहजे माता हर गुण गाई।

हर जीव मन वसै सब दुख वसार नहार दर साचै दिसै सचियार गुर सेवा ते त्रे पवन सोजी होए आप पछाण हर पावै सोए साची बाणी महल प्राप्त होए गुर सेवा ते सब कुल उधारी निर्मल नाम रखै उर धारी साची सोभा साच द्वारी सेवड़ भागी जे गुर सेवा लाए अन दिन भगत सच नाम दृढ़ाए नामे उदरे कुल सबाए नानक साच कह विचार हर का नाम रखो उर धार हर भगती राते मोख द्वार आसा महला तीजा आसा आस करे सब कोई हुक्मै बूझै निराशा होई आसा विच सुते कई लोई सो जागै जागाए सोई सतगुर नाम बुझाया विण नावै भुख न जाई नामे तृष्णा अग्न बुझै नाम मिलै तिसै रजाई रहाउ कल की

जप पढ़िया गुर शब्द विचार, हर जप पढ़िया होमे मार, हर जपिया पै सच प्यार, नानक नाम गुरमत उरतार, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राग आसा महला तीजा, अष्टपदिया घर अठवां काफी, गुर ते शांति उपजै जिन तृष्णा अग्न बुझाई, गुर ते नाम पाई वड्डी वडियाई, एको नाम चेत मेरे भाई,

नानिवह दूजा भाउ सुआउ इहो मनुआ क्यों कर वस आवे गुर प्रसादी ठाकिए ज्ञान मती घर आवे रहाउ सुहागनी आप सुआरियों लाए प्रेम प्यार सतगुर कै भाणे चल दिया नामे सहज सिंगार सदा रावे है फिर अपना सच्ची सेज सुपाय फिर कै प्रेम मोहिया मिल प्रीतम सुख पाय ज्ञान अपार सिंगार है सुभावंती नार सा सबराई सुंदरी फिर कै हित प्यार सुहागनी विच रंग रखियों सच्चे अलख अपार सतगुर सेवन अपना सच्चे भाए प्यार सुहागनी सिंगार बनाया गुण का गलहार प्रेम फिरमल तन लावना अंतर रतन विचार भगत रते से उत्मा जत पत शब्दे होए बिन नावे सब नीच जात है बिष्टा का कीड़ा होए हों हों कर दी सब फिरे बिन शब्द हों ना जाई नानक नाम रते तिन हों मैं गई।

दी आगे जुग जुग प्रगट होए ए मन रूड़े रंगले तू सच्चा रंग चढ़ाए रूड़ी बाणी जे रपे ना एहो रंग लह ना जाए रहाओ हम नीच मैले अत अभमानी दूजे पाए विकार गुर पारस मिले कंचन होए निर्मल जोत अपार बिन गुर कोए ना रंगी है गुर मिले रंग चढ़ाओ गुर कह पै पाए जो रते सिफती सच समाओ पै बिन लाग ना लगई ना मन निर्मल होए बिन पै कर्म कमावनी झूठे ठाऊ ना कोई जिसनो आपे रंगे सो रपसी सत संगत मिलाए पूरे गुर ते सत संगत उपजे सहजे सच सुभाए बिन संगती सब ऐसे रह जैसे पास ढोर जिन कीते तिसे ना जाननी बिन नावे सब चोर एक गुण विहाज है औगण विकण है गुर कै सहज सुभाए।

है बहुविध श्रिष्ट उपाय हुक्मे कार कराएंदा दूजा किस कही है भाई बुझना अबुझना तुद किया ए तेरी सिर कार इक ना बख्शे है मेल लह एक दरगाह मार कड्डे कूड़ियार एक धुर पवित पावन है तुद नामे लाए गुर सेवा ते सुख उपजै सच्चा शब्द बुझाए एक कुचल कुचील विखली पते नाम हो आप खुआए ना उन सिद्ध ना बुद्ध है ना संजमी फिर है उतवताए नदर करे जिस अपनी तिस नो भावनी लाए सत संतोख ए संजमी मन निर्मल शब्द सुनाए लेखा पढ़ ना पहुंचिया कत कहने अंत ना पाई गुरते कीमत पाई है सच शब्द सोजी पाए इहो मन देही सोध तू गुर शब्द भी

रहाओ। एक पिरह दूर ना जाननी, दूजे परम भलाए, क्यों पाए निडोहागनी, दुखी रहन विहाए। जिनकै मन सच वसिया, सच्ची कार कमाए, हन दिन सेवह सहज स्यों, सच्चे माहे समाए। दोहागणी परम भलाइया,

शब्द रहे आपरपूर रहाउ गुरमुख आप पछाणिया किन्नी एक मन त्याया सदा रवह पेरे अपना सच्चा नाम सुख पाया ए मन तेरा को नहीं कर वेख शब्द विचार हर सरनाई भज पओ पाए मोख द्वार शब्द सुनिए शब्द बुझिए सच रह लिवलाई शब्द हमें मारिए सच्चे महल सुख पाए इस जुग में शोभा नाम की।

भगत निराली अल्लाह दी जापै गुर विचार नानक नाम हिरदै वसै पै भगती नाम सवार। आसा मोहल्ला तीजा अनरस मह भुलाया बिन नामै दुख पाई सतगुरु पुरख ना भेट्यो जे सच्ची बूझ बुझाई। ए मन मेरे बावले हर रस चख साध पाई अनरस लागा तू फिरह बिरथा जन्म गवाई। रहाओ इस युग मह गुरमुख निर्मली सच नाम रह लिवलाई। बिन कर्मा किश पाई नाही क्या कर कहया जाई। आप पछाण है शब्द मर है मनहु तज विकार गुर सरनाई भज पए बख्शे बख्शन हार। बिन नामै सुख ना पाई ना दुख विचों जाई। इहो जग माया मोहे व्यापिया दूजै भरम भुलाई। दुहागनी पिर की सार ना जानही क्या कर करह श्रींगार। पन दिन सदा जलदियां फिरह सेजै रवै ना पतार। सुहागनी महल पाया विचों आप गवाए गुर शब्दी शिंगारियां अपनी सह लईयां मलाई। मरना मनहु विसारिया माया मोह गुबार मनमुख मर मर जम है पी मर है जमदर होवे खुआर। आप मलायन से मिले गुर शब्द विचार नानक नाम सुमाने मुख उजली तित सच्चै दरबार। आसा महला पंजवां अष्टपदियां कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। पंच मनाए पंच रसाए पंच वसाए पंच गुआई इन बिद नगर गुठा मेरे भाई दुरत गया गुर ज्ञान दृढ़ाई। रहाव साच धर्म की कर दीनी वार हरहे मुहकम गुरु।

साथ चरण कमल बोहित पै लग सागर तरयो ते पेट्यो पूरा सतगुरु साचा प्रभ स्यों ने साध तेरे की जाचना विसरना सास ग्रास जो तुद पावे सो पला तेरे पाने कारज रास सुख सागर प्रीतम मिले उपजे महा आनंद कहो नानक सब दुख मिटे प्रभ पीते परमानंद हासा।

सु मिलै प्यारी तिसकै लागो पाई जो सुख दर्शन पेखते प्यारी मुख ते कहन ना जाई साची प्रीत ना टुटई प्यारे जुग जुग रही सुमाई जो दुभावै सु भला प्यारी तेरी अमर रजाई नानक रंग रते नारायण प्यारी माते सहज सुपाई सब बिद तुम।

सुख दुख तेरी आज्ञा प्यारी दूजी नाही जाय। जो तू कराम है सो करी प्यारे, अवर किछ करन ना जाय। दिन रैन सब सुहावने प्यारी, जित जपिए हर नाम साई कार कमावनी प्यारी। तुर मस्तक लेख लखाई एको आप वर्तदा प्यारी, घट घट रहिया समाई। संसार कूप ते उधर लह प्यारे, नानक हर सरनाई। राग आसा महला पहला पट्टी लिखी, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सस्य सोए सृष्ट जिन साजी, सबना साहिब एक भया। सेवत रहे चित जिनका लागा, आया तिनका सफल भया। मन काहे भूले मूड मना।

कराई सब किस जाने नानक शायर इव कहिया राग आसा महला तीजा पट्टी एक ओंकार सतगुर प्रसाद अयो अंग सब जग आया काके कंग काल पया रीरी लल्ली पाप कमाणी पर अवगण गुण विसरिया।

दारू रुपया अंतर आत्मे ब्रह्म ना चीनिया माया का मोहताज भया कक्कै काम क्रोध भरमियो हो मूड़े ममता लागे तुदा।

मुंद जोबन बालड़िए मेरा पिर रली आला राम तन पिर नेहो कणा रस प्रीत दयाला राम तन पिर मेला हुए स्वामी आप प्रभ कृपा करी सीजा सुहावी संग पिर कै सात सर अमृत भरी कर दया मया दयाल साचे शब्द मिल गुण गावो नानका हर वर देख बिगसी मुंद मन अमाहो मुंद सहज सुलो नड़िए एक प्रेम बिनंती राम मैं मन तन हर पावे प्रभ संगम राती राम प्रभ प्रेम राती हर बिनंती नाम हर कै सुख वसै तौ गुण पछाण है ता प्रभ जान है गुण है वस अवगुण नसै तुद बाज एक तिल रह ना साका कहन सुनन ना तीजे नानका प्रियो प्रियो कर पुकारी रसन रस मन पीजे सखी हो सहेलड़ी हो मेरा पिर बन जारा राम हर नामो वणन जड़िया रस मोल अपारा राम मोल अमोलू सच कर ढोलू प्रभ भावे ता मुंद भली एक संग हर कै करह रलिया औ पुकारी दर खली करन कारण समरथ श्री तर आप कारज सारे नानक नदनी तन सुहागण शब्द अब साधारे हम कर साचा सोहिलड़ा प्रभ आयड़े मीता राम रावे रंग रातड़िया मन लियड़ा दीता राम अपना मन दिया हर वर लिया ज्यों भावे त्यों रावे तन मन पिर आगे शब्द सुभागे घर अमृत फल पावे बुद्ध पाठ ना पाईए बहु चतुराईए भाई मिले मन पाणी नानक ठाकुर मीत हमारी हम नाही लोकाणी हासा महला पहला अनहदो अनहद वाजे रुण चुन कारी राम मेरा मनो मेरा मन राता लाल प्यारी राम अन दिन राता मन बैरागी सुन मंडल घर पाया आद पुरख अपरंपर प्यारा सतगुर अलख लखाया आसन बैसन तिर नारायण तित मन राता विचारी नानक नाम रते बैरागी अनहद रुण चुन कारी तित अगम पुरे कहो कित बिद जाइए राम सच संजमो सार गुणा गुर शब्द कमाइए राम सच शब्द कमाइए निज कर जाइए पाइए गुणी निदाना तित साखा मूल पत नहीं डाली सिर सबना परधाना जप तप कर कर संजम थाकी हठ निग्रह नहीं पाइए नानक सहज मिले जग जीवन सतगुर बूझ बुझाइए गुर सागर रतनागर कित रतन कनेरे राम कर मजनू सप्त सरी मन निर्मल मेरे राम निर्मल जल नहाए जा प्रभ भाई पंच मिले विचारी काम क्रोध कपट बिखिया तज सच नाम उरतारी हो मैं लोभ लहर लब थाके पाए दीन दयाला नानक गुर समान तीर्थ नहीं कोई साचे गुर गोपाला हो बन बनो देख रही त्रिण देख सबाया राम त्रे भवनो तुझह किया सब जगत सबाया राम तेरा सब किया तू ठिर थिया तुद समान को नाही तू दाता सब जाचक तेरे तुद बिन किस सालाही अण मंगिया दान दीजै दाते तेरी भगत भरे भंडारा राम नाम बिन मुक्त ना होई।

आदि पुरुष अपरम्परु तारे नाम अगमय गोचर अपर अपारा पार ब्रह्म परदानो आदि जुगादि है पी होसी अवर झूठा सब मानो कर्म धर्म की सार ना जाने सुरत मुकट क्यों पाई है नानक गुरमुख शब्द पछाने अहनस नाम ते आई है मेरा मनो मेरा मन मानिया नाम सखाई राम हूं मैं ममता माया संग ना जाई राम मात पित भाई सुत चतुराई संग ना संपै नारी शायर की पुत्री पर हर त्यागी चरण तले विचारी आदि पुरख एक चलत दिखाया जह देखा तह सोई नानक हर की भगत ना छोड़ो सहजे होए सो होई मेरा मनो मेरा मन निर्मल साच संभाले राम अवगुण मेट चले गुण संगम नाले राम अवगुण पर हर करनी सारी दर सच्चे सत्यारू आवन जावन थाक रहाए गुरमुख तत विचारू साजन मीत सजान सखा तू सच मिले वडियाई नानक नाम रतन पर गासिया ऐसी गुरमत पाई सच अंजनो अंजन सार निरंजन राता राम मन तन राव रहिया जग जीवनो दाता राम जग जीवन दाता हर मन राता सहज मिले मेलाया साध सभा संतां की संगत नदर प्रभु सुख पाया हर की भगत रति बैरागी चूकै मोह प्यासा नानक हूं मैं मार पतीने विरले दास उदासा राग आसा महला पहला शंत घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद तू सबनी थाई जितै हो जाई साचा सिरजन हार जियो सबना का दाता कर्म विधाता दुख बसारन हार जियो दुख बसारन हार स्वामी कीता जा का होवै कोट कुटंतर पापा केरे एक घड़ी मह खोवै हंस से हंसा बग से बग्गा घट घट करे विचार जियो तू सबनी ताई जितै हो जाई साचा सिरजन हार जियो जिन एक मन प्याया तिन सुख पाया ते विरले संसार जियो तिन जम नेड़ ना आवै गुर शब्द कमावै कबहू ना आवै हार जियो ते कबहू ना हार है हर हर गुण सार है तिन जम नेड़ ना आवै जमन मरन तिना का चूका जो हर लागे पावै गुरमत हर रस हर फल पाया हर हर नाम उर धार जियो जिन एक मन त्याया तिन सुख पाया ते विरले संसार जियो जिन जगत अपाया तंदै लाया तिसै विटोह कुर्बान जियो ताकि सेव करीजै लाहा लीजै हर दरगाह पाईऐ मान जियो हर दरगाह मान सोई जन पावै जो नर एक पछाणै ओह नव निध पावै गुरमत हर त्यावै नित हर गुण आख बखाणै अहनस नाम तिसै का लीजै हर उत्तम पुरख प्रधान जियो जिन जगत अपाया तंदै लाया हों तिसै विटोह कुर्बान जियो नाम लैन से सो है तिन सुख फल होवै है मन है से जिन जाहि जियो इन फल तोट ना आवै जहां तिस पावै जे जुग केते जाहि जियो जे जुग केते जाहि स्वामी तिन फल टूट ना आवै तिन जरा ना मरना नरक ना परना जो हर नाम त्यावै हर हर करहै से सूकह नाही नानक पीर ना खाहे जियो नाम लैन से सोह तिन सुख फल होवै।

तुम करहु ता फिर सह खुशी न आवे। भगत भाव एहो मार्ग बिखड़ा गुरुद्वारे को पावे। कह नानक जिस करे कृपा सो हर भगती चित लावे। मेरे मन बैरागिया तू बैराग कर किस दिखावे। हर सोहिला तिन सदा सदा जो हर गुण गावे। कर बैराग तू छोड़ पाखंड सो सहो सब किस जाने। जल थल महियल एको सोई गुरमुख हुक्म पछाने। जिन हुक्म पछा

का शब्द संभाले, साथ तेरे सो सहु सदा है, एक खिन हर नाम संभाले, जन्म जन्म के तेरे पाप कटे, अंत परम पद पावे, साचे नाल तेरा गंध लागे, गुरमुख

धुनि उपजै जित शब्द जगत थम रहाया तह अनेक वाजे सदा आनंद है सच्चे रहे आसमाए यों कह नानक सतगुर मिले है तावत थमिया निज

ना सहो जान है, मरण जीवन की सोजी होई, गुर प्रसादी एको जान है, ता दूजा भाव ना होई, मन शांत आई बजी बधाई।

सब पर हर त्यागी सुन्ने सुन समावे बन जारे एक भगती आवे है लाहा हर नाम ले जाए नानक मन तन अर्प गुर आगे जिस प्राप्त सो पाए रत्ना रत्न पदारथ

लागे तिन हाथ चढ़िया निर्मोल करत ने अपारा हर हर नाम अतोलक पाया तेरी भगत भरे भंडारा समुंद वरोल शरीर हम देखिया एक वस्त अनूप दिखाई गुरु गोविंद गोविंद गुरु है नानक

सिद्ध कार्य सब सोहाए राम। रोमे रोम रोम रोमे मैं गुरमुख राम त्याए राम। राम नाम त्याए पवे

तमो रमय उच्चा गुण कहत्या अंत ना पाया। नानक राम नाम सुन पीने रामै नाम सुमाया। जिन अंतरे राम नाम वसै किन चिंता सब गवाया। राम सब अर्था सब धर्म मिले मन चिंदिया सो फल पाया। राम मन चिंदिया फल पाया राम नाम ते आया। राम नाम गुण गाई दुर्मत कुबुद गई सुध हुई। राम नाम मन लाए सफल जन्म शरीर सब होआ। जित राम नाम परगासिया नानक हर पज सदा दिन राती। गुरमुख निज घर वासिया जिन शरदा राम नाम लगी तिन दूजे चित ना लाया। राम जे धरती सब कंचन कर दीजे बिन नाम अवर ना पाया। राम राम नाम मन पाया परम सुख पाया।

ना आवे। नानक गुरमुख राम पछाता कर कृपा आप मलावे। राम राम नाम सते सत गुरमुख जाने राम। सेव को गुर सेवा लागा जिन मन तन अर्प चढ़ाया राम। मन तन अर्पया बहुत मन सरदया गुर सेवक पाए मलाए।

भी उत्तम हर जपी है सतगुर पाए जियो गुरमुख हर पढ़िए गुरमुख हर सुनिए हर जपत सुनत दुख जाए जियो हर हर नाम जपया दुख बिनसिया हर नाम परम सुख पाया सतगुर ज्ञान बलिया घट चानन अज्ञान अंधेर गवाया हर हर नाम तिन्नी अरादिया जिन मस्तक तुर लिख पाए जियो हर नाम पदार्थ कल जुगी उत्तम हर जपी है सतगुर पाए जियो हर

सारे गुण गाया। जन्म जन्म के केल वेख दुख उतरे, हर हर नाम सुमाया। जिन हर त्याया तुर भाग लिख पाया, तिन सफल जन्म परवान जियो। हर हर मन पाया परम सुख पाया, हर लाहा पद निर्वाण जियो। जिन हर मीठ लगाना ते जन परधाना, ते उत्तम हर हर लोग जियो। हर नाम वडाई हर नाम सखाई, गुर शब्दी हर रस भोग जियो। हर रस भोग महा निर्जोग, वडभागी हर रस पाया। से धन वड्डे सत पुरखा पूरे, जिन गुरमत नाम ते आया। जन नानक रेण मंगै पग साधु, मन चूका सोग वजोग जियो।

गुरमुख होई अंतर बाहर हर प्रवेक को दूजा अवर ना कोई हर हर लिव लाई हर नाम सिखाई हर दरगाह पावे मान जियो सत जुग सब संतोख सरीरा पग चारे धर्म ध्यान जियो तेता जोग आया अंतर जोर पाया जत संयम कर्म कमाए जियो पग चौथा खिसिया त्रै पग टिकिया मन हिरदय क्रोध जलाए दियो मन हिरदय क्रोध महा बिसलोद निरपता वह लड़ दुख पाया अंतर ममता रोग लगाना हों मैं अहंकार वधाया हर हर कृपा धारी मेरे ठाकुर देख गुरमत हर नाम लह जाए दियो एता जोग आया अंतर जोर पाया जत संयम कर्म कमाए जियो जुग द्वापर आया परम परमाया हर गोपी कान उपाय जियो तप तापन ताप है जग पुन आरंभ है अत किरिया कर्म कमाए जियो किरिया कर्म कमाया पग दोए खिसकाया दोए पग टिकै टकाए जियो महाजुद जोद बहुकीने विच हों मैं पचै पचाए दियो दीन दयाल गुर साध मलाया मिल सतगुर मल लह जाए दियो जुग द्वापर आया परम परमाया हर गोपी कान उपाए दियो कल जुग हर किया पग त्रै खिसकिया पग चौथा टिकै टकाए दियो गुर शब्द कमाया औखद हर पाया हर कीरत हर शांत पाए जियो हर कीरत रोते आई हर नाम वडाई हर हर नाम खेत जमाया कल युग बीज बीजे बिन नावे सब लाहा मूल गवाया जन नानक गुर पूरा पाया मन हिरदय नाम लखाए जियो कल युग हर किया पग त्रै खिसकिया पग चौथा टिकै टकाए दियो आसा महला चौथा हर कीरत मन पाई परम गत पाई हर मन तन मीठ लगान जियो हर हर रस पाया गुरमत हर त्याया तुर मस्तक भाग प्राण जियो तुर मस्तक भाग हर नाम सुहाग हर नामे हर गुण गाया मस्तक मणि प्रीत बहु प्रगटी हर नामे हर सोहाया ज्योति ज्योत मिली प्रभ पाया मिल सतगुर मनुआ मान जियो हर कीरत मन पाई परम गत पाई हर मन तन मीठ लगान जियो हर हर जस गाया परम पद पाया ते उत्तम जन प्रधान जियो तिन हम चरण सरेव है खिन खिन पग धोवे है जिन हर मीठ लगान जियो हर मीठा लाया परम सुख पाया मुख भागा रती चारी गुरमत हर गाया हर हार उर पाया हर नाम कंठ धारी सब एक दृष्ट समत कर देखै सब आत्म राम पछाण जियो हर हर जस गाया परम पद पाया ते उत्तम जन प्रधान जियो सत संगत मन पाई हर रसन रसाई विच संगत हर रस होए जियो हर हर अराध्या गुर शब्द विगासिया बीजा अवर ना कोए जियो अवर ना कोए हरे अमृत सोए।

संगत मन पाई हर रस नरसाई, विच संगत हर रस होए जियो, हर दया प्रभ तार हो पाखण हम तार हो, कद लेवो शब्द सुपाए जियो, मोह चीकड़ पाथे निगरत हम जाते।

एको होए, हर जन प्रभ एक समान जियो, तुर मरन लखाया गुरमुख सुहाया, जन उबरे हर हर ध्यान जियो, जग उपजै बिनसै बिनस बनासै, लग गुरमुख अस्थिर होए जियो, गुरमंत्र दृढ़ाए हर रसक रसाए, हर अमृत हर मुख चोए जियो, हर अमृत रस पाया मुआ जीवाया, फिर बहुड़ मरन ना होई, हर हर नाम अमर पद पाया, हर नाम समावै सोई, जन नानक नाम आधार टेक है, बिन नाम अवर ना कोई जियो, जग उपजै बिन सै बिन सबनासै, लग गुरमुख अस्थिर होए जियो, आसा महला चौथा संत, वड्डा मेरा गोविंद अगम अगोचर, आदि निरंजन निरंकार जियो, तां की गत कही ना जाई, अमित वडियाई, मेरा गोविंद अलख अपार जियो, गोविंद अलख अपार।

अगोचर आद निरंजन निरंकार जियो। तू आद पुरख अपरंपर करता तेरा पार न पाया जाए जियो। तू घट घट अंतर सर्व निरंतर सब मैं रहया समाए जियो। घट अंतर पार ब्रह्म परमेश्वर ताका अंत न पाया किस रूप न रेख अदिष्ट अगोचर। गुरमुख अलख लखाया सदा आनंद रहै दिन राती सहजे नाम समाए जियो। तू आद पुरख अपरंपर करता तेरा पार न पाया जाए जियो। तू सत परमेश्वर सदा अविनाशी हर हर गुणी निदान जियो। हर हर प्रभ एको अवर ना कोई तू आपे पुरख सुजान जियो। पुरख सुजान तू प्रधान तुद जेवड़े अवर ना कोई तेरा शब्द सब तू है वरत है तू आपे करह सो होई। हर सब मह रव्या एको सोई गुरमुख लखिया हर नाम जियो। तू सत परमेश्वर सदा अविनाशी हर हर गुणी निदान जियो। सब तू है करता सब तेरी वडियाई ज्यों भावै तिवें चलाए जियो। तुदे आपे भावै तिवें चलावह सब तेरै शब्द समाए जियो। सब शब्द समावै जां तुद भावै तेरै शब्द वडियाई गुरमुख बुद्ध पाईऐ आप गवाईऐ। शब्दे रहिया समाई तेरा शब्द अगोचर गुरमुख पाईऐ नानक नाम समाए जियो। सब तू है करता सब तेरी वडियाई ज्यों भावै तिवें चलाए जियो। एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा महला चौथा।

मेरा मन तनो पिन्ना जन नानक मुसक चकोलिया सब जन्म तन तन्ना हर प्रेम बाणी मन मारिया अणियाले अणिया राम राजी जिस लागी पीर पिराम की सो जाने जरिया जीवन मुक्त सो आखी है।

हर पाया हर भगत एक मंगा मेरा मन तन शब्द विगासिया जप अनंत तरंगा मिल संत जना हर पाया नानक सत संगा दीन दयाल सुन बेनती हर प्रभ हर राया राम राजी हों मांगू सरन हर नाम की हर हर मुख पाया भगत वच्छल हर बिरद है।

गुर हर मार्ग चाली मेरा मन तन नाम आधार है हम मैं बिख जाली जन नानक सतगुर मेल हर हर मिलिया बनवाली गुरमुख प्यारे आए मिल मैं चिरी बछुने राम राजी मेरा मन तन बहुत बैरागिया हर नैन रस भिन्ने मैं हर प्रभ प्यारा दस गुर मेल हर मन मन्ने हम मूर्ख कार लाइया नानक हर कमे गुर अमृत पिन्नी दे होरी अमृत बुर के राम राजी जिन्ना गुरबाणी मन पाईया अमृत शक शके गुर तुठे हर पाया चूके तक तके हर जन हर हर होया नानक हर इक्के आसा महला चौथा हर अमृत भगत भंडार है गुर सतगुर पासे राम राजी गुर सतगुर सच्चा साहू है सिख दे हर रासी तन तन बन जारा बनज है गुर साहू सबासी जन नानक गुर तिन्नी पाया जिन तोर लिखत ललाट लखासी सच साहू हमारा तू धनी सब जगत बन जारा राम राजी सब भांडे तुदै साजिया।

आई। आसा महला चौथा, इन मस्तक तुर हर लिखिया, इन्ना सतगुर मिलिया राम राजी, अज्ञान अंधेरा कटे।

नानक गुरमुख हिरदा शुद्ध है, हर भगत हर लीजै। आसा महला चौथा, जिने अंतर हर हर प्रीत है, ते जन सुगड़ सियाणे राम राजी, जे बाहर

मेरा सतगुरु सोथान सुहावा राम राजी गुर सिखी सोथान पालिया लै तूर मुख लावा गुर सिखा की काल पाए पई जिन हर नाम त्यावा जिन नानक सतगुर पूजिया तिन हर

गुर सिखा की भुख सब गई, तिन पिछै होर खाए कनेरी। जन नानक हर पुन बीजिया, फिर तोट ना आवै हर पुन केरी। गुर सिखा मन वाधाइया, जिन मेरा सतगुरु डिठा राम राजी। कोई कर गल सुनावै हर नाम की, सो लगै गुर सिखा मन मिठा। हर दरगाह गुर सिख पैलाई है, जिन्ना मेरा सतगुरु तुठा। जन नानक हर हर होया।

सुख सद हुई, जिन्ना नानक सतगुर भेटिया तिन्ह मिलिया हर सोई। जिन्ना अंतर गुरमुख प्रीत है, तिन हर रखण हारा राम राजी। तिनकी निंदा कोई क्या करे, जिन हर नाम प्यारा। जिन हर सेती मन मानिया, सब दुष्ट झख मारा। जन नानक नाम ते आया।

करे, मन तृष्णा ना बुझी मेरे प्यारे, नित आस करे, नित जोवन जावे मेरे प्यारे, जम सास हिरे, भाग मणि सुहागन मेरे प्यारे, नानक हर पुर तारे, फिर रत्याड़े मैंडे लोइन मेरे प्यारे, चात्रक बूंद जिवें मन शीतल हुआ मेरे प्यारे, हर बूंद पीवे तन

सब किस मैं सब किस पाया नाम त्याई राम नाम त्याई सदा सखाई सहज सुपाई गोविंदा गणत मटाई चूकी ताई कदे ना व्यापै मन चिंदा गोविंद गाजे अनहद वाजे अचरज।

सरसे अड़े मेरे भाई सब मीता राम बिखमो बिखम अखाड़ा मैं गुरमिल जीता राम गुरमिल जीता हर हर कीता टूटी पीता भरम गड़ा पाया खजाना बहुत नदाना साणथ मेरी आप खड़ा सोई सुगयाना सो परदाना जो प्रभ

अकथा हर अकथ कथा किस जाए न जानी राम, सुर नर मुन जन सहज बखानी राम, सहजे बखानी।

हर रंग मानी हर संता हर संत सज्जन मेरे मीत सहाई राम वड भागी सत संगत पाई राम वड भागी पाए नाम ते आए लाते दूख संतापै गुर चरणी लागे प्रम पौ भागे आप

हर दर सोहन तेरे भगत प्यारे राम। वारी तिन वारी जावा सद बलिहारे राम। सद बलिहारे कर नमस्कारी जिन भेटत प्रभ जाता। घट घट रव रहा सब थाई पूरन पुरख विधाता। गुरपुरा पाया नाम ते आया जूए जन्म न हारे। बिनवंत नानक सरन तेरी राख किरपा धारे। बेअंता बेअंत गुण तेरे केतक गावा राम। तेरे चरना तेरे चरण धूड़ वडभागी पावा राम। हर धूड़ी नाइय मैल गवाई है जन्म मरण दुख लाथे। अंतर बाहर सदा हदूरे परमेश्वर प्रभ साथे। मिटे दुख कल्याण कीर्तन बहुड़ जोन ना पावा। बिनवंत नानक गुर सरण तरिये अपने प्रभ पावा। आसा संत महला पंजवा घर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर चरण कमल मन बेदिया किशियान न मीठा राम राजे। मिल संत संगत आराध्या हर घट कटे दीठा राम राजे। हर घट कटे दीठा अमृतो बूठा जन्म मरण दुख नाठे। गुण निद गाया सब दुख मटाया हऊ मैं बिनसी गांठे। प्रियो सहज सुपाई छोड़ न जाई मन लागा रंग मजीठा। हर नानक बेदे चरण कमल किश आन ना मीठा। ज्यों राती जल माछुली त्यों राम रस माते राम राजे। गुरपुरे उपदेसिया जीवन गत पाते राम राजे। जीवन गत स्वामी अंतर जामी

जल संगराती माछली नानक हर माते चातरक जाचे बूंद ज्यो हर प्राण अदारा राम राजे मालक जीना सुत।

पंथ भणीए कह साध संग ना डरपीए कर कीरत गोविंद गुणीए सगल परास्त दुख हरे कहो नानक संत गोविंद हर के मन हर स्यों ने हो करे हो ऐसी मन प्रीत हरे जैसी मछली नीर एक खिन पी ना तीरे मन ऐसा नेहो करे हो जैसी चात्रक प्यास खिन खिन बूंद चवे बरस सुहावे मेह हर प्रीत करीजै इहो मन दीजै हत लाइए चित।

मन हर चरण गिहिजै, ऐसी मन प्रीत कीजै। आसा महला पंजवां सलोक, बन बन फिरती खोजती, हारी बहु अवगाही। नानक पेटे साध जब, हर पाया मन माही। संत जां को खोजह असंख मुनि, अनेक तपे ब्रह्मे कोट अराधह। ज्ञानी जाप जपे, जप ताप संयम क्रिया पूजा। अनक सोधन बंदना, कर गवन बसदा। तीर्थ है मज्जन मिलन को निरंजना। मानुख बन तिन पशु पंखी, सगल तुझ है आराधते। दयाल लाल गोबिंद नानक, मिल साध संगत होए गते। कोट बिसन अवतार, शंकर जटा धार। चाह है तुझ दयार, मन तन रुच अपार। अपार अगम गोविंद ठाकुर, सगल पूरक प्रभ धनी। सुर सिद्ध गण गंधर्व त्याव है, जख किनर गुण भनी। कोट इंदर अनेक देवा, जपत स्वामी जय जयकार। अनाथ नाथ दयाल नानक, साध संगत मिल उधार। कोट देवी जाको सेव है, लक्ष्मी अनक पांत। गुप्त प्रगट जाको राध है, पौन पानी दिन सरात। नखियतर ससियर सूर त्याव है, वसुद गगना गावे। सगल खानी सगल बाणी, सदा सदा त्यावे। सिमरत प्राण चतर बेद, खट शास्त्र जा को जपात। पतत पावन भगत वचल, नानक मिलिय संग सात। जेती प्रभु जनाई रसना तेत भनी, अनजानत जो सेवै तेती नह जाए गनी। अवगत अगंत अथाह ठाकुर, सगल मंजे बाहरा। सर्ब जाचक एक दाता, नह दूर संगी जाहरा। वस भगत थिया मिले जिया, ताकी उपमा कित गनी। एहो दान मान नानक पाए, सीस साधह धर चरनी। आसा महला पंजवां सलोक, उदम करहो वडभागी हो। सिमरो हर हर राय, नानक जिस सिमरत सब सुख होवै है। दुख दर्द भ्रम जाए, संत नाम जपत गोबिंद नह अलसाई। भेटत साधु संग, जमपुर नह जाइए। दुख दर्द ना पौ ब्यापै, नाम सिमरत सद सुखी। सास सास अराध हर हर, त्याए सो प्रभ मन मुखी। कृपाल दयाल रसाल गुण निध, कर दया सेवा लाई है। नानक पयंपै चरण जंपै, नाम जपत गोबिंद नह अलसाई है। पावन पतत पनीत नाम निरंजना, परम अधेर बनास ज्ञान गुर अंजना। गुर ज्ञान अंजन प्रभ निरंजन, जल फल मही अल पूरिया। एक निमख जां कैर दै वसिया, मिटे तिसै वसूरिया। अगाध बोध समरथ स्वामी, सर्ब का पौ भंजना। नानक पयंपै चरण जंपै, पावन पतत पुनीत नाम निरंजना। ओट गही गोपाल दयाल कृपा निदे, मोहे आसर तो चरण तुम्हारी शरण सिदे। हर चरण कारण करण स्वामी, पतत उधरन हर हरि। सागर संसार पाव उतार, नाम सिमरत बहुतरी। आद अंत बेअंत खोजें।

सहज सुभाई भगत कार्य सारिया आनंद हर जस महामंगल सर्व दुख वसारिया चमत्कार प्रगास दह दिस एक तह दृष्टाया नानक पयम पै चरण जम पै

आवे अवनासी अवघत सो प्रभ सदा नव तन निर्मला नह दूर सदा हदूर ठाकुर दह दिस पूर्ण सद सदा प्राण पत गत मत जाति प्रिय प्रीत प्रीतम भावे नानक वखाण गुर बचन जाने फिर संतन सुहाग मरे ना जावे जाको राम पतार ता कै अनद घना सुखवंती सहनार सोभा पूर्वणा मान महत कल्याण हर जस संग सुरजन सो प्रभु सर्ब सिद्ध नव निद तित ग्रह नहीं ऊना सब कछु मधुर बाणी प्रह मानी थिर सुहागता का बना नानक वखाण गुरबचन जाने जा को राम पतार ता कै अनद घना आओ सखी संत पास सेवा लागी है पीसो चरण पखार आप त्यागी है ताजे आप मिटे संताप आप नह जनाई है शरण गिही जय मान लीजै करे सो सुख पाई है।

तपास सेवा लागी है। जां कै मस्तक भाग से सेवा लाया, ताकि पूर्ण आस जिन साध संग पाया। साध संग हर कै रंग गोविंद सिमरन लागिया, परम मोह विकार दूजा सगल तिनह त्यागिया। मन शांत सहज सुभाव बूठा, आनंद मंगल गुण गाया। नानक वखाणे गुर बचन जाने जाक।

कर जोड़, हर हर नाम देहो, हर नाम मांगो चरण लागो, मान त्यागो तुम दया, कतहू ना तामू सरन पावो, करना मैं प्रभ करमया, समर्थ अगत अपार निर्मल,

ला पंजवा पुरख पते भगवान ताकी शरण गही निरपो भये प्राण चिंता सगल लही मात पिता सुत मीत सुरजन इष्ट बंधप जानिया गह कंठ लाया गुरम लाया जस बिमल संत बखाणिया बेअंत गुण अनेक महिमा कीमत कशु ना जाए कही प्रभ एक अनक अलख ठाकुर ओट नानक तिस गही अमृत बन संसार सहाई आप भये राम नाम उरहार बिख के दिवस गए गत भरम मोह बेकार बिनसे जोन आवन सब रही अग्न सागर भये शीतल साधे अंचल गह रहे गोविंद गोपाल दयाल समृत बोल साधु हर जय जय नानक नाम त्याहे पूरन साध संग पाई परम गति जह देखो तह संग एको रव रहिया घट घट वासी आप विरलै किने लहिया जल थल महियल पूर पूरन कीट हस्त समानिया आदि अंते मद सोई गुर प्रसादी जानिया ब्रह्म पसरिया ब्रह्म लीला गोविंद गुण निद जन कहिया सिमर स्वामी अंतर जामी हर एक नानक रव रहिया दिन रैन सुहावड़ी आई सिमरत नाम हरे चरण कमल संग प्रीत कल मल पाप तरे दुख भूख दारिद्र नाठे प्रगट मग दिखाया मिल साध संगे नाम रंगे मन लोड़ींदा पाया हर देख दर्शन इश पुन्नी कुल संभूहा सब तरे दिन सरैन आनंद अनदिन सिमरंत नानक हर हरे आसा महला पंजवा शंत कर सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक शुभ चिंतन गोविंद रमन निर्मल साधु संग नानक नाम ना विसरो एक घड़ी कर कृपा भगवंत संत इन्नी रैनड़ी है चाम कन तारी जाग है संत जना मेरे राम प्यारे सदा जाग है नाम सिमर है अन दिनो चरण कमल ध्यान हिरदय प्रभ बिसर नाही एक खिनो तज मान मोह बिकार मन का कलमला दुख जारी बिनवंत नानक सदा जाग है हर दास संत प्यारी मेरी से जड़ी है आडंबर बनिया मन आनंद भया प्रभ आवत सुनिया प्रभ मिले स्वामी सुखागामी चाव मंगल रस परे अंग संग लागे दुख भागे प्राण मन तन सब हरे मन इच पाई प्रभ ते आई संजोग साहा शुभ गणिया बिनवंत नानक मिले श्री तार सगल आनंद रस बनिया मिल सखियां पुछ है कहो कंत नी छाणी रस प्रेम भरी कछ बोल ना जानी गुण गूढ़ गुप्त अपार करते निगम अंत ना पावहे भगत पाए ते आए स्वामी सदा हर गुण गावहे सगल गुण सुगयान पूरन अपने प्रभ पाणी बिनवंत नानक रंग राती प्रेम सहज समाणी सुख सोहिलड़े हर गावन लागे साजन सरसे अड़े दुख दुश्मन भागे सुख सहज सरसे हर नाम रहस्ते प्रभ आप कृपा धारिया हर चरण लागे सदा जागे मिले प्रभ बनवारिया शुभ दिवस आए सहज पाए सगल निद प्रभ पागे बिनवंत नानक शरण स्वामी सदा हर जन तागे आसा महला पंजवा उठ मंज वटाउड़िया तैं क्या चिर लाया मोहलत पुन्नड़िया कित कूड़ लुभाया कूड़े लुभाया तो माया करह पाप अमित्या
तन पसम टेरी जम है हेरी, काल बपड़ै जितया माल जोबन छोड़ वैसी, रहे ओ पैनन खाया नानक कमाना संग जुलिया, नह जाए किरत कमाया हाथ हो मिर्ग जिवें, पेख रहन चंद्रायन सुख हो दुख भये, नित पाप कमायन पापा कमाने छड़ह नाही, लै चले कत गलावया हर चंदौरी देख मूठा, कूड़ से जा रावया लब लोभ अहंकार माता, गर्भ भया समायन नानक मृग अज्ञान बिनसे, नह मिटै आवन जायन मिठै मख मुआ, क्यों लय उडारी हस्ती गर्त पया, क्यों तरियै तारी तरण देह ला पया, खिन मह खसम चेतना आय।

नानक सतगुर बाज मूठा मन मुखो अहंकारी हर के दास जीवे लग प्रभ की चरनी कंठ लगाए लिए किस ठाकुर सरनी बल बुद्ध ज्ञान ध्यान अपना आप नाम जपाया साध संगत आप हुआ आप जगत तराया।

धर्म करे दूत भय पलायन। धर्म धीरज सहज सुखिए साध संगत हर भजे। कर अनुग्रह राख लीने मोह ममता सब तजे। गह कंठ लाए गुरमलाए गोविंद जपत अगायण। विनवंत नानक सिमर स्वामी सगले आस पुजायण। निध सिद चरण गहे तां केहा काड़ा। सब किस वस जिसै सो प्रभु असाड़ा। गह पुजा लीने नाम दीने कर धार मस्तक राखिया। संसार सागर नह व्यापै हम्यों हर रस चाखिया। साज संगे नाम रंगे

इंदड़ो सो वेखी साथ है संग देख करनहारा काए पाप कमाई है सो कृत की जय नाम लीजे नरक मूल ना जाइए आठ पहर हर नाम सिमरहो चले तेरे साथी भज साध संगत सदा नानक मिट है दोख कमाते वलवंच कर उदर भर है मूर्ख गावारा सब किश दे रहया।

प्रसाद कमला ब्रह्म पीत कमला ब्रह्म पीत हे तीखण मद विपरीत हे अवद अकारत जात गहबर बन कोर गहबर बन कोर हे ग्रह मूसत मन चोर हे दिन करो अन दिन खात जात बेहात प्रभ बिन मिलोह प्रभ करुणा पते जन्म मरण अनेक बीते प्रिय संग बिन।

नानक मगन होत अलियल गुंजात अलियल गुंजात हे मकरंद रस बासन मात हे प्रीत कमल बंधावत आप चातरक चित प्यास चातरक चित प्यास हे घन बूंद विचित्र मन आस हे अल पीवत बिन सतताप तापा बनासन दुख नासन मिल प्रेम मन तन अत घना सुंदर चतुर सुजान स्वामी कमन रसना गुण पना गह पुजाले वो नाम देव हो दृष्ट धारत मिटत पाप नानक जंपै पतत पावन हर दर्श पे

करत न लागी वार महला दूजा जे सौ चंदा उगवह सूरज चढ़ है हजार एते चानन होंदिया गुरबेन कोर अंधार महला पहला नानक गुरु ना चेतनी मान्या।

ते से जन गए हार गए से ठगण वालिया लिख नावे धर्म बहालिया। सलोक महला पहला। विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जी विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नांगे फिर है जंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेड विडाणी विस्माद धरती विस्माद खाणी विस्माद साध लग है पराणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद भुख विस्माद भोग विस्माद सिफत विस्माद सलाह विस्माद उजड़ विस्माद राह विस्माद नेड़ विस्माद दूर विस्माद देख हाजरा हजूर वेख वडान रहया विस्माद नानक बुझण पूरा भाग। महला पहला। कुदरत दिसै कुदरत सुनिए कुदरत पौ सुख सार कुदरत पाताली आकाशी कुदरत

बहुते जन्म परमिया ता सतगुर शब्द सुनाया सतगुर जे वरदाता को नहीं सब सुनियो हो लोक सबाया सतगुर मिलया सच पाया जिनी विचो आप गवाया जिन सचो सच बुझाया सलोक महला पहला कड़िया सबे गोपिया पहर कन गोपाल गहने पौन पानी बैसंतर चंद सूरज अवतार सगली धरती माल धन वर्तन सर्ब जंजाल नानक मुस्तै ज्ञान विहूनी खाए गया जमकाल महला पहला वाइन केले नचन गुर पैर हलायन फेरन सिर उड़ उड़ रावा झट पाए।

मन भाऊ पौड़ी ना तेरा निरंकार है ना ही लय नरक ना जाई है जियो पिंड सब तिसदा देखा जय आख गवाई है जे लोड़ है चंगा अपना कर पुन्नो नीच सदाई है जे जरवाना पर हर है जरवेस करें दी आई है को रह ना परिये पाईये सलोक महला पहला मुसलमाना सिफत सरयत

लाव है अर्चा पूजा अगर वास बहकार। जोगी सुन त्यावन जेते अलख नाम करतार। सूखम मूर्त नाम निरंजन।

पौड़ी बिन सतगुर किन ना पायो बिन सतगुर किन ना पाया सतगुर विच आप रखियोन कर प्रगट आख सुनाया।

कूड़ कप्पड़ कूड़ रूप अपार कूड़ मिया कूड़ बीबी खाप होए खार कूड़ कूड़ ने हो लगा विसरिया करतार किस नाल की चै दोस्ती सब जग चलन हार कूड़ मिठा कूड़ माखियों

मल उतर तन करे हच्छा तूय सच ता पर जानिए जा सच धरे प्यार नाउ सुन मन रहसी है ता पाए मोख द्वार।

दुनु पुछके बह रह करे निवास सच सबना हुए दारू पाप कड्डे तोए नानक बखाने बेनती जिन सच पल्ले हुए पौड़ी दान महिंदा तली खाक जे मिले ता मस्तक लाई है कूड़ा लालच छड़ी है होए एक मन अलख ते आई है।

पाहे परे मरदार। ज्ञानी नचह वाजे वावह रूप करह सिंगार। ऊचे कूकह वादा गावह जोदा का विचार। मूर्ख पंडित हिकमत हुज्जत

लेख पत पवे चंगे से ही के पौड़ी तुर कर्म जिन्ना को तुद पाया ता तिन्नी खसम ते आया इना जनता कै बस किश नाही तुद वेकी जग ते उपाया इक नानो तू मेल लै इक आपो तुद खुआया गुर किरपा ते जानिया जिथे तुद आप बुझाया।

न होई, बलिहारी कुदरत वस्या, तेरा अंत न जाई लखिया रहाऊ। जात मह जोत, जोत मह जाता, अकल कला भरपूर रहया। तू सच्चा साहिब सिफत सवालियो, जिन कीती सो पार पया। कहो नानक करते किया बाता, जो किछ करना सो कर रहया। महला दूजा, जोग शब्दं ज्ञान शब्दं, वेद शब्दं ब्राह्मण है, खत्री शब्दं सूर शब्दं, सूदर शब्दं प्राकृत है, सर्व शब्दं एक शब्दं, जे को जाने पेओ, नानकता का दास है, सोई निरंजन देव। महला दूजा, एक

गुनाहगार तां उमी साधना मारी है जेहा काले कालना तेवे हो ना उपचारी है ऐसी कला ना खेडी है जित दरगाह गया हारी है पढ़िया अते उमिया विचार अगे विचारी है मुहे चले सो अगे मारी है। सलोक महला पहला नानक मेरे शरीर का एक रथ एक रथवाओ जुग जुग फेर वटाई है ज्ञानी बुझ ताए सत जुग रथ संतोख का धर्म अगे रथवाहु त्रेत रथ जतै का जोर अगे रथवाह द्वापर रथ तपै का सत अगे रथवाह कल युग

सह साच रहे सबको सच समावे। रिग कह रहे आ भरपूर राम नाम देवा महसूर। नाए लय परास्त जाहे नानक तौ मुख अंतर पाहे। जुज मह जोर छली चंद्रावल कान कृष्ण जादम भया। पार जात गोपी लै आया बिंदरा बन मह रंग की।

कार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसनो हुक्म मनाए सी हुक्म मने हुए प्रवान ता खसमै का महल पाए सी खसमै भावै सो करे मनहु चिंदिया सो फल पाए सी ता दरगाह पैंदा जाए सी। श्लोक महला पहला। गौ ब्राह्मण कौ कर लावो गोबर तरण ना जाई धोती टिक्का तै जप माली धान मलेच्छा खाई अंतर पूजा पढ़ कतेबा संजम तुरका भाई।

ताग तिन कर ब्राह्मण पूरह नाद उना ते आवह ओई साध कूड़ी रास कूड़ा वापार कूड़ बोल करह आहार शर्म धर्म का डेरा दूर नानक कूड़ रहया भरपूर मथे टिका तेड़ धोती कखाई हाथ छुरी जगत का साई नील वस्त्र पहर होवह परवान मलेश तान ले पूजह पुराण अपाख्या का कुठा बकरा खाना चौके ऊपर किसे न जाना देख चौका कड्डी कार ऊपर आए बैठे कूड़ियार मत पिटे वे मत पिटे एह अन्न असाडा फिटे तन फिटे फेड़ करेन मन जूठे चुली परेन कहो नानक सच त्याई सोच होवे ता सच पाई है पौड़ी।

वडोहो वड्डा वड मेदनी सिरे सिर तंदै लाएंदा नदर उपट्ठी जे करे सुल्ताना काहु कराएंदा दर मंगन भिख ना पाएंदा सलोक महला पहला जे मुहाका कर मोहै कर मोहे पितरी दे अग्गै वस्त सियाणी है पितरी चोर करे वड़ी है हाथ दलाल के मुस्फी एह करे नानक अग्गै सो मिले जे खट्टे काले दे महला पहला।

नानका जिन मन वसिया सोए पौड़ी तुरे पलाने पौन वेग हर रंगी हरम सवारिया कोठे मंडप माड़िया लाए बैठे कर पासारिया चीज करन मन भाव दे हर गुजन नाही हारिया कर फुरमाए सिखाया वेख महलत मरन वसारिया।

बाज ना कोई पहला पानी जियो है जित हरिया सब कोई सूतक क्यों कर रखी है सूतक पवैर सोई नानक सूतक एव ना उतर है ज्ञान उतारे तोय महला पहला मन का सूतक लोभ है जिहवा सूतक कूड़ अखी सूतक वेखना पर त्रिय पर धन रूप कन्नी सूतक कन पै लायत बारी खाहे नानक हंसा आदमी बदे जमपुर जाहे महला पहला सभो सूतक भरम है।

नानक आशिक कांडी है सद ही रह समाए चंगा चंगा कर मन्ने मंदा मंदा होए आशिक इहो ना आखी है जे लेखे वरतै सोए महला दूजा सलाम जवाब दो है।

सुख पाई है सो साहिब सदा संभाली है जित कीता पाई है अपना सा काल बुरी क्यों काली है मंदा मूल ना कीचे ही दे लम्मी नजर निहाली है ज्यों साहिब नाल ना हारी है ते वेहा पासा ढाली है किश लाहे उपर काली है सलोक महला दूजा चाकर लगे चाकरी नाले गार बवाद गल्ला करे कड़ेरियां खसम ना पाए साध आप गुआए सेवा करी।

किसनो अगली ओह वजहो पे दूना खाए खसम करे बराबरी फिर गैरत अंदर पाए वजहो गवाए अगला मुहे मुहे पाना खाए जिस दा दिता खावना तिस कही ऐसा बास नानक।

जो पाई है नानक सा करमात साहिब तुठ है जो मिले महला दूजा एक ने ही चाकरी जित भौ खसम ना जाए नानक सेवक कहडी है जे सेती खसम समाए पौड़ी नानक अंत ना जापनी हर ता के पारावार आप कराए साखती फिर आप कराए मार इक ना गली जंजीरियां एक तुरी चढ़े बिसियार आप कराए करे आप हौ कैस्यो करी पकार नानक करना जिन किया फिर तिस ही करनी सार सलोक महला पहला आपे पांडे साजियन आपे पूरन दे इकनी दुध समाई है एक चुल्ला रहन चढ़े एक निहाली पै समन एक ऊपर रहन खड़े।

आप तिस विच जंत उपायक दिखै थाप उथाप किसनो कहिए नानका सब किछ आप।

जियो गुर चरण लाग हम बिनवता पूछत कह जियो पाया कमन काज जग उपजै बिनसै कहो मोहे समझाया देव करो दया मोहे मार्ग लाभ हो।

इन बिद अपियो ना चूके कही ना उपज उपजी जाने भाव अभाव बिहूना उदय अस्त की मन बुद्ध नासी तो सदा सहज लिव लीना ज्यों प्रतिबिंब बिंब को मिली है उदक कुंभ बिगराना कहो कबीर ऐसा गुण भ्रम भागा तो मन सुन समाना आसा गज साडे तै तै धूतियां तेरे पाइन तग गली जिन्ना जप मालियां लोटे हाथ निबग वे हर के संत।

आ मेरा मन पाया हम पूत तेरा तू बाप मेरा एक ठाहर दोहां बसेरा कहो कबीर जन एको बूझिया गुर प्रसाद मैं सब किस सूझिया आसा इकत पत्र पर उरकट कुरकट इकत पत्र पर पानी आस पास पंच जोगिया बैठे बीच नकट दे रानी नकटी कोठन गन बाडाडू किन्ह बबेकी काटी तू रहाउ सगल माहे नकटी का वासा सगल मार ओहेरी सगलियां की हो।

आगम निर्गम जो तिक जान है बहु बहु ब्याह करना तंत मंत्र सब औखद जान है अंत तहु मरना राज भोग अर सतर संघासन बहु सुंदर रमना पान कपूर सुबासक चंदन अंत तहु मरना वेद पुराण सिमरत सब खोजे कहू ना उबरना कहो कबीर इो राम जंपो मेट जन्म मरना आसा फीलर बाबी बल्द पखावज कौआ ताल बजावे पहर चोलना गदहा नाचे पैसा भगत करावे।

गावे, कर कर मुसरी मंगल गावे, कछुआ शंख बजावे, वंश को पूत ब्याहन चलिया, सोइने मंडप छाए, रूप कन्या सुंदर बेदी, ससै सिंह गुन गाए।

आसा बटुआ एक बहतर आधारी एको जिसह द्वारा नवे खंड की पृथ्वी मांगे सो जोगी जग सारा ऐसा जोगी नौनिध पावे तल का ब्रह्म ले गगन चरावे रहाउ खिंथा ज्ञान ध्यान कर सोई शब्द तागा मथ काले पंच तत् की कर मिर्गानी गुर कै मार्ग चाले दया फहरी काया कर तुई दृष्ट की अग्न जलावे तिसका भाव लये हृदय अंतर चहो जुग ताड़ी लावे सब जोग तन राम नाम है जिसका पिंड पराना कहो कबीर जे कृपा धारे दे सच्चा निशाना आसा हिंदू तुर्क कहां ते आई किन ए रहा चलाई दिल में।

पढ़त गुनत ऐसे सब मारे, किन्हू खबर ना जानी रहाओ। सकत सुनेहो कर सुन्नत करिए, मैं ना बदौगा पाई। जोरे खुदाए मोहे तुर्क करेगा, आपन ही कट जाई। सुन्नत किए तुर्क जे होएगा, औरत का क्या करिए। फर्द शरीर ही नार ना छोड़े, तां ते हिंदू ही रही है। शाद कतेब राम भज बौरे, जुल्म करत है पारी। कबीर पकड़ी टेक राम की, तुर्क रहे पचिहारी। हासा जब लग तेल दीवे मुख बाती, तब सूजे सब कोई। तेल जले बाती ठहरानी, सुना मंदर होई। रे बौरे तोहे करी ना राखे कोई, तू राम नाम जप सोई रहाओ। कां की मात पिता कहो कां को, कमन पुरख की जोई। ठट फूटे को बात ना पूछे, काढ़ो होई। देहरी बैठी माता रोए, खटिया ले गए पाई। लट छिटकाए तिरिया रोए, हंस के ला जाई। कहत कबीर सुनो रे संतो, तै सागर कहताई। इस बंदे सिर जुल्म होत है, जम नहीं हटे गुसाई। दो तुके एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आसा श्री कबीर जीओ के चौपदे एक तुके। सनक सनंद अंत नहीं पाया, वेद पढ़े पढ़ ब्रह्मे जन्म गवाया। हर का बलोव ना बलोव हो मेरे भाई, सहज बलोव हो जैसे तत ना जाई रहाओ। तन कर मटकी मन माहे बलोई, इस मटकी मह शब्द संजोई।

कैन कहावन समझ परी तो बिसरयो गावन कहत कबीर पंच जो चूरे तिनते नाहे परम पद दूरे आसा सोते अपर

खंडस अवगन मेरा रहाउ, जे अत क्रोप करे कर ताया, तां पी चीत ना राखस माया, चिंत पवन

डारी फूल शंकर देव तीन देव प्रताख तो रह करह किसकी सेव पाखान गढ़ कै मूर्त कीनी दे कै छाती पाव जे एह मूर्त साची है तो गढ़न हारे खाओ पात पहत अरलापसी कर करा का सार भोगन हारे भोगया इस मूर्त के मुख शार मालिन भूली जग भुलाना हम

पन बीते, 20 वर्ष कस तप ना कियो, 30 वर्ष कस देव ना पूजा, फिर पछताना बिरद भयो, मेरी मेरी करते जन्म गयो, शायर सोख भुजंग बलियो, रहाओ सूके सरवर पाल बंधावे, लूणे खेत हथवार करे, आयो चोर तुरंत है ले गयो, मेरी राखत मुग्द फिरे, चरण सीस कर कंपन लागे, नैनी नीर असार बह, जिहवा बचन शुद्ध नहीं निकसे, तबरे धर्म की आस करे, हर जियो कृपा करे लिव लावे, लाहा हर हर नाम लियो, गुर प्रसादी हर धन पायो, अंते चल दिया नाल चलियो, कहत कबीर सुनो रे संत हो, अन तन कछुए लै ना गयो, आई तलब गुप

सोकृत कर कर लीजै रे मन रहाउ, कुमारै एक जो माटी गूंदी, बहु विद्वानी लाई, काहू मह मोती मुक्ताहल, काहू ब्याद लगाई, सुमह धन राखण को दिया, मुग्ध कह धन मेरा, जम का दंड मूंड मह लागे, किन मह करै निवेरा, हर जन उत्तम भगत सदावे, आग्या मन सुख पाई, जो तिस भावै सत

रफीके आप जनाए अवर को जाने तब हुए पिस्त सरीके माटी एक पेख तर नाना ता मैं ब्रह्म पछाना कह कबीरा पिस्त छोड़ कर दोजक स्यों मन माना आसा गगन नगर एक

राय, कह बिसियर को दूध पियाए। सात संगत मिल बबेक बुद्ध हुई, पारस परस लोहा कंचन सोई। साकत सुआन सब करे कराया, जो तुरली

आओ जल की मछली तरवर बे आई, देखत कुतरा ले गई बलाई। तले अरे बैसा ऊपर सूला, तिसके पेड़ लगे फल फूला। कोरे चार पैस चरावन जाई, बाहर बैल गोन कर आई। कहत कबीर जो इस पद बूझे, राम रमत तिस सब किश सूझे। बाईस चौपदे तथा पंच पदे, आसा श्री कबीर जीओ के तिप दे। अठ दो तुके सत, एक तुका एक, एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद। बिंद ते जिन पिंड किया, अगन कुंड रहाया। दस मास माता उधर राखिया, बहुर लागी माया। प्राणी काहे को लोभ लागे, रतन जन्म खोया। पूरब जन्म कर्म भूम, बीज नाही बोया रहाओ। बारक ते बिरद भया, होना सो होया। जां जम आए चोट पकरे, तब है काहे रोया। जीम ने की आस करह, जम निहार।

नाभ कमल मह बेदी रचले ब्रह्म ज्ञान उचारा राम राय सो दूलोह पायो आसवड भाग हमारा सुर नर मुन जन कौतक आए कोट तेतीस उजाना कह कबीर मोहे ब्याहे चले हैं पुरख एक भगवाना आसा सास की दुखी ससुर की प्यारी जेठ के नाम डरों रे सखी सहेली।

हो गायत्री गोविंद हृदय हमारे, मेरी जिह्वा बिसन नैन नारायण, हृदय बस है गोविंदा, जम द्वार जब पूछस बबरे तब क्या।

अवतार चिरायु हो कैसे खसम हमारे, तू बामन मैं कांसी के जुलहा, बुझो मोर ज्ञाना तुम तो जाचे भूपत राजे, हर सो मोर त्याना आसा, जग जीवन ऐसा सुपने जैसा, जीवन सुपन समान साच कर हम गांठ दीनी, छोड़ परम निदान बाबा माया मोह हित कीन, जिन ज्ञान रतन हिर लीन रहाव, नैन देख पतंग उर्जय पासना देख आग, काल पासना मुग्ध चेत कनक कामन लाग, कर विचार विकार परहर तरन तारन सोए, कह कबीर जग जीवन ऐसा दुतिया नाही कोय, आसा जो मैं रूप किए बहु तेरे, अब फुन रूप न होई, तागा तंत साज सब ठाका राम नाम बस होई, अब मोहे लाचनो ना आवे, मेरा मन मंदरिया ना बजावे रहाव, काम क्रोध माया ले जारी तृष्णा गागर फूटी, काम चोलना भया है पुराना, गया परम सब छूटी।

मह तेरा सोच विचार ना देखै खबर ना करै दीन के बौरे तां ते जन्म अलेखै रहाउ साचक ते बखानै अल्लाह नार पुरख नहीं कोई पड़े गुने नाही कछ बौरे ज्यो दिल मह खबर ना होई अल्लाह गैब सगल घट पीत।

रहु रहुरी बहुरिया कुंगट जिन काढ़े अंत की बार लहगी ना आढ़े रहाऊ। कुंगट काट गई तेरी आगे उनकी गैल तोहे जिन लागे। कुंगट काढ़े की यह बड़ाई दिन दस पांच बहु भले आई। कुंगट तेरो तौ पर साचे हर गुण गाए कूदह अर नाचे। कहत कबीर बहु तब जीते हर गुण गावत जन्म बतीते। आसा करवत भला ना करवट तेरी लाग गले

जाना सब जागे अनतनायो ताना रहाओ। जब तुम सुन ले वेद पुराना तब हम इतनक पसरे उताना। तरन आकाश की कर गह बनाई चांद सूरज दोए साथ चलाई। पाई जोर बात एक कीनी तह तांति मन माना। जो लाहे घर अपना चीना घट ही राम पछाना।

जे तीर्थ नावे तिस बैकुंठ ना जाना, लोक पतीने कछु ना होवे, ना ही राम अयाना, पूजो

एक मन सत सहंस जैसे पूत पूत प्रभ सोई रहाओ जल तरंग हर फेन बुदबदा जल ते भिन्न न होई एहो परपंच पार ब्रह्म की लीला विचरत आन न होई मिथ्या भरम हर सुपन मनोरथ सत पदार्थ जानिया सुकिरत मनसा गुर उपदेसी जागत ही मन मानिया कहत नाम देओ हर की रचना देखो हृदय बिचारी घट घट अंतर सर्ब निरंतर केवल एक मरारी हासा आनी ले कुंभ पराई ले उदक ठाकुर को स्नान करूं बयालीस लाख जी जल मह होते बीठल पहला काहे करूं जत्र जाऊं तत बीठल पहला महा आनंद करे सदके ला रहाओ आनी ले फूल परोई ले माला ठाकुर की हम पूज करूं पहले बास लई है पवर है बीठल पहला काहे करूं आनी ले दूध रिदाई ले खीरं ठाकुर को नैवेद करूं पहले दूध बटारियो बछरे बीठल पहला काहे करूं इबे बीठल उबे बीठल बीठल बिन संसार नहीं थान तनंतर नामा प्रणवे पूर रहे हो तू सर्व मही आसा मन मेरो गाज जेहबा मेरी काती माप माप काटो जम की फासी कहां करूं जाती कहां करूं पाती।

त्रिगद जोन अचेत संभव उन पाप असोच मानुखा अवतार दुलभ तिही संगत पोच जी जंत जहां जहां लग कर्म के बस जाए काल पास अबद लागे कशना चले उपाय रविदास दास उदास तज ब्रह्म तपन तप गुर ज्ञान भगत जन पै हरन परमानंद करो निदान आसा संत तुझी तन संगत प्राण सतगुर ज्ञान जाने संत देवा देव संत की संगत संत कथा रस संत प्रेम माजै दीजै देवा देव रहाओ संत आचरण संत चो मार्ग संत च ओलग ओलगणी और एक मांगो भगत चिंतामण जनी लखाव हो संत पापी सन रविदास भणै।

जो तन भयो छिन छिन प्रेम जाए तो डर पै तेरो जन तुझे चरण अरबिंद भवन मन पान करत पायो पायो रामैया धन रहाओ संपत बिपत पटल माया धन ता मह मगन होत ना तेरो जन प्रेम की जेवरी बांधो तेरो जन कह रविदास छूटे बो कवन गुण आसा हर हर हर हर हर हर हरे हर सिमरत जन गए निस्तर तरे रहाओ हर के नाम कबीर उजागर जन्म जन्म के काटे कागर निमत नाम देओ दूध पियाया तौ जग जन्म संकट नहीं आया जन रविदास राम रंग राता।

है सुने बोले दौड़ियो फिरत है रहाउ। जब कछ पावे तब गर्भ करत है, माया गई तब रोवन लगत है। मन बच क्रम रास कसै लुभाना,

तन्ने जी की। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, प्रमत फिरत बहु जन्म बिलाने, तन मन धन नहीं धीरे, लालच बिख काम लुभ धराता, मन बिसरे प्रभ हीरे रहाउ, बिख फल मीठ लगे मन बौरे, चार विचार ना जानिया, गुण ते प्रीत बड़ी अनपांति, जन्म मरण फिर तानिया, जुगत जान नहीं हृदय निवासी, जलत जाल जम फंद परे, बिख फल संच परे मन ऐसे, परम पुरख प्रभ मन बिसरे, ज्ञान प्रवेश गुरह धन दिया, ध्यान मान मन एक मई, प्रेम भगत मानी सुख जानिया, तृप्त अगाने मुक्त भये, जोत समाए समानी जाकै, अशली प्रभ पहचानिया, तन्ने तन पाया तरनी तर, मिल जन संत।

हीरा रवदास टवंता टोर नीत तिन त्यागी माया प्रगट हुआ साध संग हर दर्शन पाया सैन नाई बुत कारिया ओह कर कर सुनिया हिरदै वसिया पार ब्रह्म भगतां मह गणिया एह बिद सुन कै जट रो उठ भगती लागा मिले परतख गुसाइया तन्ना वड भागा रे चेत चेतस की ना दयाल दमोदर बिबह ना जानस कोई जे तावह ब्रह्मांड खंड को करता करै सो होई रहाउ जननी केरे उदर उदक मह पिंड किया दस द्वारा दे आहार अगन मह राखै ऐसा खसम हमारा।

खुदाई तू बख्शंदगी सेख फरीद खैर दीजै बंदगी आसा बोलै सेख फरीद प्यारे अल्लाह लगे एहो तन हो सी खाक निमाणी गोर करे आज मलावा सेख फरीद ताकम कुंजड़िया मनहुम चिंदड़िया रहाओ जे जाना मर जाइए घुम ना आइए झूठी दुनिया लग ना आप वंजाइए

पीरिया कंचन वन्ने पासे कलवत चीरिया सेख हयाती जागना कोई थिर रहया जिस आसन हम बैठे केते बैस गया कत्तक पूंजा चेत डौ सावन बिजलियां से आले सोहंदियां फिर गल बाहड़ियां चले चलन हार बचारा ले मनो गा देंदियां शे माह तोड़ंदियां हिक खिनो जिमी पुछै।

प्राण आधार जा की भगत करह जन पूरे मुन जन सेवह गुर विचार रहाव राव सस दीपक जा के त्रे भवन एका जोत मरार गुरमुख होए सो अहनस निर्मल मनमुख रहन अंधार सिद्ध समाध करह नित झगड़ा दोह लोचन क्या हेरै अंतर ज्योत शब्द धुन जागै सतगुर झगर नबेरै सुर नर नाथ बेअंत अजोनी साचे महल अपारा नानक सहज मिले जग जीवन नदर करहो निस्तारा राग गुजरी महला तीजा कर पहला

हर मेरा सिमरत हर मेरा शास्त्र हर मेरा बंदप हर मेरा भाई हर की मैं भूख लागे हर नाम मेरा मन तृप्त है हर मेरा साख अंत होए सखाई हर बिन होर रास कूड़ी है चलदियां नाल ना जाई हर मेरा धन मेरे साथ चल जहां हो जाऊं तह जाई सो झूठा जो झूठे लागे झूठे कर्म कमाई कह नानक हर का पाणा हुआ कहना कछु ना जाई गुजरी।

हो गई। वेखो को व्योपाय बलिहारी गुरे अपने, सत बलिहार जाऊ सतगुर मिले हर मन वसै, सहजे रह समाय रहाऊ जा पहु पाए अपना। बैराग उपजे मन आय, बैराग ते हर पाईए हर स्यों रह समाय। से मुकत जे मन जिन है फिर तात ना लागे आय, दसवें द्वार रहत करे त्रिभवन सूजी पाए। नानक गुर ते गुर होया वे।

जिस नर की दुबदा ना जाए, धर्म राये तिस देश जाए, कर्म होवे सोई जन पाए, गुरमुख बूझे कोई, नानक विचो हउमै मारे, ता हर भेटै सोई। गुजरी महला तीजा, तिस जन शांत सदा मत निश्चल, जिसका अभिमान गवाए, सो जन निर्मल जे गुरमुख बूझै, हर चरणी चित लाए, हर चेत अचेत मना, जो इच्छा है सो फल होई, गुर प्रसादी हर रस पाव है, पीवत रह सदा सुख होई। रहाओ सतगुर भेटे ता पारस होए, पारस होए ता पूज कराए, जो उस पूजे सो फल पाए, दीखिया देवे साच बुझाए, बिन पारस पूज ना हो वई, बिन मन परचे अवरा समझाए, गुरु सदाए अज्ञानी अंधा, किस ओहो मार्ग पाए, नानक बिन नदरी किछु ना पाई है, जिस नदर करे सो पाए, गुर प्रसादी दे वडियाई, अपना शब्द वरताए। गुजरी महला तीजा पंच पदे, ना कांसी मत उपजे, ना कांसी मत जाए, सतगुर मिले मत उपजे।

जो आप ना पछाणे सच ना धरे प्यार सच्चे जगत दहकाया कहना कछु ना जाए नानक जो तिस पावे सो करे ज्यों तिस की रजाए एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग गुजरी महला चौथा चौपदे घर पहला हर के जन सतगुर सतपुरखा।

पास गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई हर कीरत हमरी रहरास रहाऊ हर जन के वड भाग वडेरे जिन हर हर श्रद्धा हर प्यास हर हर नाम मिले तृप्तासह मिल संगत गुण परगास जिन हर हर हर रस नाम ना पाया ते भागहीन जम पास जो सतगुर शरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखिया लेखास तन तन सत संगत जित हर रस पाया मिल नानक नाम परगास गुजरी महला चौथा गोविंद गोविंद प्रीतम मन प्रीतम मिल सत संगत शब्द मन मोह है जप गोविंद गोविंद त्याई है सब को दान दे प्रभ को है मेरे भाई जना मोको गोविंद गोविंद गोविंद मन मोह है गोविंद गोविंद गोविंद गुण गावा मिल गुर साध संगत जन सो है रहाऊ सुख साग

भागहीन मत फीके, नाम सुनत आवे मन रोहै, कौआ काग कौ अमृत रस पाईए, तृप्तै विष्टा खाए मुख गोहै, अमृत सर सतगुर सतवादी, जितना तै कौआ हंस हो है। नानक धन तन वड्डे वड भागी,

था। जिन सतगुरु पुरख जिन हर प्रभु पाया, मोको कर उपदेश हर मीठ लगावे, मन तन शीतल सब हरिया हुआ, वड भागी हर नाम ते।

मेरे हर प्रभ की हर कथा सुनावे, रहाव धीरज धर्म गुरमत हर पाया, नित हर नामे हर सिंह चित लावे, अमृत बचन सतगुर की बाणी, जो बोले सो मुख अमृत पावे, निर्मल नाम जित मैल न लागे, गुरमत नाम जपै लिव लावे, नाम पदार्थ जिन नर नहीं पाया, ते भागहीन मोहे मर जावे, आनंद मूल जग जीवन दाता, सब जन को आनंद करहो हर त्यावे, तू दाता जी सब तेरे, जन नानक गुरमुख बख्श मलावे, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, गुजरी महला चौथा घर तीजा, माई बाप पुत्र सब हर के किए, सबना को संबंध हर कर दिए, हमरा जोर सब रहे ओ मेरे वीर, हर का तन मन सब हर कै वस है, शरीर रहाउ भगत जना को श्रद्धा आप हर लाई, विचे ग्रिस्त उदास रहाई, जब अंतर प्रीत हर स्यों बन आई, तब जो किश करे सो मेरे हर प्रभ पाई, जित कार कम हम हर लाई, सो हम करहें जो आप कराई, जिनकी भगत मेरे प्रभ पाई, ते जन नानक राम नाम लिवलाई, गुजरी महला पंजवां चौपदे घर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, काहे रे मन चितवह उदम, जा आहार हर जियो परया, सैल पत्थर मह जनते उपाय, ता कारजक आगे कर तरिया, मेरे माधो जी सत संगत मिले से तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके काष्ट हरिया रहाउ, जनन पिता लोक सुत बनता, कोई ना किसकी तरिया, सिर सिर

शरिया उन कवन खलावे कवन चगावे मन मह सिमरन करिया सब निदान दस अष्ट सिधान ठाकुर कर तल धरिया जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत ना पारा बरिया गुजरी महला पंजवा चौपदी घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद किरिया चार करह खट करमा पितराती संसारी अंतर मैल ना उतरे हम बिन गुरबाजी हारी मेरे ठाकुर रख ले वो कृपा धारी कोट मदे को विरला सेवक होर सगले व्यवहारी रहाव सास्त वेद सिमरत सब सोदे

आवे। हलत पलत कै संगे लाद खजाना गुरु नानक को दिया। एहो मन हर रंग रंगी गुजरी महला पंजवा। जिस सिमरत सब किल विखनास है पितरी होए उदारू। सो हर हर तुम सद ही जापहु जा का अंत न पारू। पूता माता की आसीस निमख न बिसरो तुम कहो हर हर सदा भजो।

सो अपना दुख भरिया पार ब्रह्म जिन हृदय अरादिया तिन भउ सागर तरिया गुर हर बिन को ना बिरथा दुख काटै प्रभ तज अवर सेवक जे हुई है तित मान महत जस का।

ये पदे कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद दुख बिन से सुख किया निवासा तृष्णा जलन बुझाई नाम निदान सतगुरु दृढ़ाया बिन सुनाया वह जाई हर जप माया बंधन टूटे पये कृपाल दयाल प्रभ मेरे साध संगत मिल छूटे रहाउ आठ पैर हर के गुण गावे भगत प्रेम रस माता हरख सोग दोह माहे नराला करने हार पछाता जिसका साथ नहीं रख लिया सगल जुगत बने आई कहो नानक प्रभ पुरख दयाला कीमत कहन ना जाई गुजरी महला पंजवा दो पदे कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद पतत पवित्र लिए करे अपने सगल करत नमस्कारु वर्ण जात को पूछे नाही बांछ चरण रवारु ठाकुर ऐसो नाम तुम्हारु सगल श्रेष्ठ को तनी की जय जन को अंग नरारु रहाउ साध संग नानक बुद्ध पाई हर कीर्तन आधारु नाम देओ त्रिलोचन कबीर दासरु मुक्त पयो चमियारु गुजरी महला पंजवा है नाही को गुजन हारु जान कमन पता शिव बरंच अर सगल मोन जन गहना सकाहे गता प्रभ की अगम अगाध कथा सुनिए अवर अवर विद बुझी।

जतर कता गुजरी महला पंजवा मता मसूरत अवर सियानप जन को कशु न आयु जह जह अवसर आई बनियो है तहां तहां हर त्यायु प्रभ को भगत वच्छल बिरदायु करे प्रतपाल बारक की न्याई जन को लाड लडायु रहाउ जप तप संयम कर्म धर्म हर कीर्तन जा

पंजवां मन जोगी शास्त्रग कहावत सब कीने बस अपने ही तीन देव अर कोड़ तीसा तिनकी हैरत कश ना रही बलवंत व्याप रही सब मही अवर न जानस को मर्मा गुर कृपा ते लही रहाउ जीत जीत जीते सब थाना सगल पवन लपटही कहो नानक साधते भागी होए केरी चरण गही गुजरी महला पंजवां दुए कर जोड़ करी बेनंती ठाकुर अपना त्याया हाथ दे राखी परमेश्वर सगला दुर्त मटाया।

तह भरम अंधेरा नाही। ठाकुर जा सिमरा तू ताही, कर कृपा सर्व प्रत पालक, प्रभ को सदा सलाही। रहाउ सास सास तेरा नाम सुमारो, तुम ही को प्रभ आही। नानक टेक पई करते की, होर आस बढ़ानी लाही। गुजरी महला पंजवा, कर कृपा अपना दर्श दीजै, जस गावो निसे अर भोर।

मिथ्या पज सदा भगवंत रहाउ नाम एक आधार भगता ईत आगै टेक कर कृपा गोविंद दिया गुर ज्ञान बुद्ध विवेक करन कारण सम्राथ श्री धर सरन ताकी गही मुकत जुग तरवाल साधु नानक हर निद लही गुजरी महला पंजवां घर चौथा चौपदी एक ओंकार सतगुर प्रसाद छाड़ सगल सियाणपा साध सरणी आओ पार ब्रह्म परमेश्वरु प्रभु के गुण गाव रे चित चरण कमल आराध सर्ब सुख कल्याण पावह मिटै सगल उपाद रहाव मात पिता सुत मीत भाई किस बिना नहीं कोई ईत ऊत जी नाल संगी सर्ब रविया सोए कोट जतन अपाव मिथ्या कशना आवै काम सरन साधु निर्मला गातो

साध संग उधार इहो मन आठ पहर आराध काम क्रोध अहंकार बिनसै मिटै सगल उपाद अटल अशेद अपेद स्वामी शरण ताकी आओ चरण कमल अराध हृदय एक स्यो लिव लाओ पार ब्रह्म प्रभ दया तारी बक्षली ने आप सर्व सुख हर नाम दिया नानक सो प्रभ जाप गुजरी महला पंजवा गुर प्रसादी प्रभ ते आया।

तर पुत्र कलत्तर सुर रिद तीन ताप जलंत जप राम रामा दुख नवारी मिले हर जन संत सर्ब बिद भ्रम ते पकार है कत है नाही छोट हर चरण सरन अपार प्रभ के दृढ़ गही नानक ओट गुजरी महला पंजवां घर चौथा दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद राज श्री तर सफल मूरत करन कारण योग गुण रमन श्रवण अपार महिमा फिर ना होत बेयोग मन चरनार बिंद उपास कल कलेश मटंत सिमरन काट जमदूत फास रहाउ सत्र दहन हर नाम कहन अवर कछ ना अपाउ कर अनुग्रह प्रभु मेरे नानक नाम सुआउ गुजरी महला पंजवा तू समरथ सरन को दाता दुख भंजन सुख राय जाहे कलेश मिटे भै भरमा निर्मल गुण प्रभ गाय गोविंद तुझ बिन अवर ना ठाउ कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी जपी तुम्हारा नाउ रहाउ सतगुर सेव लगे हर चरनी वड्डे भाग लिव लागी कवल प्रगास भये साध संगे दुर्मत बुद्ध त्यागी आठ पहर हर के गुण गावै सिमरै दीन दयाला आप तरै संगत सब उदरै बिनसी सगल जंजाला चरण आधार तेरा प्रभ स्वामी ओत पोत प्रभ साथ शरण परिउ नानक प्रभ तुमरी दे राख्यो हर हाथ गुजरी अष्टपदियां महला पहला घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद एक नगरी पंच चोर बसी अले बरजत चोरी धावै त्रिह दस माल रखै जो नानक मोख मुक्त सो पावै केतो हो बास देव बनवाली राम हृदय जप माली रहाउ उर्द मूल जिस साख तलाहा चार भेद जित लागी सह

काम क्रोध अहंकार तदियले लोभ मोह तिस माया मन तत अवगत त्याया गुर प्रसादी पाया ज्ञान ध्यान सब दात कथियले

जह अंतर शब्द विचार। अब तबे और ना मांगो हर पै, नाम निरंजन दीजै प्यार। नानक चातरक अमृत जल मांगै।

काई गुरमुख प्राणी नामे राते नामे गत पत पाई भाई रे राम नाम चित लाई गुर प्रसादी हर प्रभ जाचे ऐसी नाम बड़ाई रहाओ ऐजी बहुते भेख करह पिठिया को एते उदर भरन कै ताई बिन हर भगत नाही सुख प्राणी।

सोग बजोग बिसरजत रोग पाई रे। गुर कृपा से भगत ठाकुर की, सतगुर वाक हृदय हर निर्मल, ना जम कान ना जम की बाकी रहाउ। हर गुण रसन रवह प्रभ संगे, जो तिस भावे सहज हरी। बिन हर नाम वृथा जग जीवन, हर बिन निफल मेक करी। ऐ जी खोटे ठौर नाही घर बाहर, निंदक गत नहीं काई। रोस करै प्रभ बख्श ना मेटै, नित नित चढ़ै

ये गुरमुख शब्द विचारी कहो नानक से सहज सुख पावे हैं। जिनको नदर तुम्हारी गुजरी महला चौथा कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर बिन जियरा रह ना सके। ज्यों बालक खीर आधारी अगम अगोचर प्रभ गुरमुख पाई है। अपने सतगुर कै बलिहारी मन रे हर कीरत तर तारी। गुरमुख नाम अमृत जल पाइए जिनको कृपा तुम्हारी रहाओ। सनकस नंदन नारद मुन सेव है अन दिन जपत रह बनवारी। शरणागत प्रहलाद जन आई तिनकी पैज सुवारी।

पसारी भगत जना की उत्तम बाणी गावे है अकथ कथा नित न्यारी सफल जन्म भया तिन केरा।

कथा न पावै ओए डूबे सन परवारी निंदक निंदा कर मल धोवै ओहो मल पख माया धारी संत जना की निंदा व्यापे ना उरवार ना पारी एहो परपंच खेल किया सब करतै हर करतै सब कल धारी हर एको सूत वरतै जोगे अंतर सूत खिंचै एकंकारी रसन रसन रस गावह हर गुण रसना हर रस धारी नानक हर बिन अवर ना मांगो हर रस प्रीत प्यारी गुजरी महला पंजवां घर दूजा।

बंधव पतत पावन देव पै त्रास नास कृपाल गुण निद सफल स्वामी सेव हर गोपाल गुरु गोविंद चरण सरण दयाल केशव तार जग भव सिंध रहाउ काम क्रोध हरन मद मोह दहन मरार मन मकरंद जन्म मरन निवार तरनी तर पात राख परमानंद जलत अनेक तरंग माया गुर ज्ञान हर रिद मंत छेद अहम बुद्ध करना मैं चिंत मेत पुरख अनंत सिमर समरथ पल मुहूर्त प्रभ ध्यान।

पौड़ी अपना आप अपायन तदहो होर ना कोई मता मसूर ते आप करी जो करे सो होई तदहो आकाश ना पताल है ना त्रै लोई तदहो आपे आप निरंकार है ना उपत होई ज्यों तिस भावै तिवें।

ऐसा सतगुरु जी मिले तुठा करे पसाऊ मुक्त द्वारा मोकला सहजे आवो जाओ महला तीजा नानक मुक्त द्वारा।

ना बसियो मन आई त्रिक अवेहा जीविया क्या जुग मह पाया आई माया छोटी रास है एक चसे मह पाज लह जाय हथों छुड़की तन स्याहो होए बदन जाए कमलाय जिन सतगुर स्यो चित लाया तिन सुख वसया मन आय हर नाम त्यावह रंग स्यो हर नाम रहे लिवलाय नानक सतगुर सो तन

आए, तिसकी सेवा जो करे तिस ही को फिर खाए। गुरमुख कोई गारडू इन मल दल लाई पाए, नानक से उबरे जे सच रहे लिवलाए। पौड़ी ताडी करे पुकार प्रभु सुनाए सी, अंदर धीरक होए पूरा पाए सी। जो तुर लिखिया लेख से कर्म कमाए सी, जा होवै खसम दयाल ता महल घर पाए सी। सो प्रभ मेरा अत वड्डा गुरमुख मिलाए सी। सलोक महला तीजा, सबना का सहो एक है सद ही रह हजूर। नानक हुक्म ना मन्ने ता घर ही अंदर दूर। हुक्म पी तिना मनाए सी, जिनको नदर करे हुक्म मन सुख पाया। प्रेम सुहागण होए महला तीजा, रैन सबाई जल मोई कंत ना लायो भावो। नानक सुख वसन सुहागणी, जिन प्यारा पुरख हर राव। पौड़ी सब जग फिर मैं देखिया, हर इको दाता उपाय कित ना पाईए। हर कर्म बधाता गुर शब्दी, हर मन वसै हर सहजे जाता। अंदरों तृष्णा अग्न बुझी, हर अमृत सर नाता। वड्डी वड्याई वड्डे की गुरमुख बोलाता। सलोक महला तीजा, काया हंस क्या प्रीत है जे पया ही छड़ जाए। इसनों कूड़ बोल के खवाली है,

नानक हुकम ना जातु खसम का, जे रहा सच सुमाए महला तीजा। एको निश्चल नाम धन होर धन आवे जाए, इस धन को तस्कर जोहे ना सकई ना उ चक्का ले जाए। एहो हर धन जीए सेती रव रहिया, जीए नाले जाए। पूरे गुरते पाईए मनमुख पल्ले ना पाए, धन वपारी नानका जिन्ना नाम धन खटिया आए। पौड़ी मेरा साहिब अत वड्डा सच गहर गंभीरा, सब जग तिसकै वस है सब तिसका चीरा। गुर प्रसादी पाई है निश्चल धन धीरा, कृपा ते हर मन वसै भेटै गुर सूरा। गुणवंती सलाहिया सदा थिर निश्चल हर पूरा। श्लोक महला तीजा, त्रिग तिन्ना दा जीविया, जो हर सुख पर हर त्याग दे, दुख हो मैं पाप कमाए। मनमुख अज्ञानी माया मोहे व्यापे, तिन बूझ ना काई पाए। हलत पलत कोई सुख ना पावे, अंत गए पछुताए। गुर प्रसादी को नाम त्याए, तिस हऊ मैं विचों जाए। नानक जिस पूर्व होवे लिखिया, सो गुर चरनी आए पाए। महला तीजा, मनमुख ऊंदा कौल है ना तिस भगत ना नाव। शक्ति अंदर वरतदा कूड़ तिसका है उपाव, तिसका अंदर चेतना भिजई मुख फीका आलाव। ओए धर्म रलाए ना रलन, उना अंदर कूड़ सुआव। नानक करता बनत बनाई, मनमुख कूड़ बोल बोल डुबे। गुरमुख तरे जप हर नाउ। पौड़ी बिन बूझे वड्डा फेर पया, फिर आवे जाई। सतगुर की सेवा ना कीतिया, अंत गया पछताई। अपनी कृपा करे गुर पाईऐ, विचों आप गवाई। कृष्णा भुख विचों उतरै, सुख वसै मन आई। सदा सदा सलाहीऐ हिरदै लिवलाई। श्लोक महला तीजा, जे सतगुर सेवे अपना, तिसनो पूजे सब कोए। सबना उपावा सिर उपाऊ है, हर नाम प्राप्त होए। अंतर शीतल शांत वसै, जप हिरदै सदा सुख होए। अमृत खाना अमृत पहनना, नानक नाम वडाई होए। महला तीजा, ए मन गुर की सिख सुन, हर पावह गुणी निदान। हर सुख दाता मन वसै, हऊ मैं जाए गुमान। नानक नदरी पाईऐ ता अन दिन लागै ध्यान। पौड़ी सत संतोख सब सच है, गुरमुख पविता अंदरों कपट वकार गया। मन सहजे जिता तह जोत प्रगास, आनंद रस अज्ञान गविता। अन दिन हर के गुण रवै, गुण प्रगट किता। सबना दाता एक है, इको हर मिता। श्लोक महला तीजा, ब्रह्म बिंदे सो ब्राह्मण कही है। जे अन दिन हर निबलाए, सतगुर पुछे सच संयम कमावे। हम मैं रोग तिस जाए, हर गुण गावे है गुण संग्रह। ज्योति ज्योत मलाए, इस युग में है को विरला ब्रह्म ज्ञानी। जे हम मैं मेत समाए, नानक किसनो मिलिया सदा सुख पाईए। जे अन दिन हर नाम त्याए। महला तीजा, अंतर कपट मनमुख अज्ञानी, रसना झूठ बोलाए। कपट कीता हर पुरख ना पीजै, नित वेखै सुनै सुभाए। दूजै पाए जाए जग प्रबोधै,

काम क्रोध अहंकारा यह जम की सिरकार है। इना उपर जम का डंड करारा मनमुख जम मग पाईन।

तिस गुड़ मिले, गुरमुख निस तारा, सलोक महला तीजा, हो मैं ममता मोहनी, मन मुखा नू गई खाई, जो मोहे दूजे चित लाई दे, तिन्ना व्याप रही लपटाई, गुर कै शब्द पर जाली है, तां एह विचों जाए, तन मन होवे उजला, नाम वसे मन आए, नानक माया का मारन हर नाम है, गुरमुख पाया जाए महला तीजा, इहो मन के तड़िया जुग भरमिया, फिर रह न आवे जाए, हर पाणा ता परमायन, कर परपंच खेल उपाय, जां हर बख्शे ता गुर मिले, अस्थिर रह समाई,

रस भोगी आप अतीत अलिपत है निर्योग हर जोगी जो तिस भावै सो करे हर करे सो होगी हर गुरमुख नाम त्याई है लह जाहे वजोगी। श्लोक महला तीजा।

कर्म प्राप्त होए महला तीजा। वाहो वाहो करती रसना शब्द सुहाई, पूरा शब्द प्रभ मिलिया आई। वडभागियां वाहो वाहो मुंह कढ़ाई,

का नाम जिन सेविया तिन फल पाया थौ तिन बलिहारे जाओ वाह वाह गुणी निदान है जिसनो दे सो खाए वाह वाह जल थल भरपूर है गुरमुख पाया जाए वाह वाह गुरसिख नित सब करो गुरपूरे वाह वाह पावे नानक वाह वाह जो

जाए। नानक हस्ती कुंडे बाहरा फिर उजड़ पाए पौड़ी। तिस आगे अरदास जिन उपाया सतगुरे अपना सेव सब फल पाया। अमृत हर का नाउ सदा त्याया संत जना कै संग दुख मिटाया। नानक भय अचिंत हर धन निह चलाया। श्लोक महला तीजा खेत में आला उचिया कर उच्चा निर्णय। महल भगती घर सरह सज्जन पहुण्यो बरसना ता बरस घना बहुल बरस है काहे। नानक तिन बलिहार ने जिन गुरमुख पाया मन माहे। महला तीजा मिठा सो जो भावदा सज्जन सो जे रास।

तालोक महला पंजवां नदी तरंदड़ी मैंडा खोजना खुंबै मांझ मोहब्बत तेरी।

जिन संग जपिए नाउ तिन संग संग ना कीचई नानक जिन्ना अपना सुआउ पौड़ी ता वेला परवान जित सतगुर भेटिया हुआ साधु संग फिर दुख ना तेटिया पाया निचल थान फिर गर्भ ना लेटिया नदरी आया एक सगल ब्रह्मेटिया तत ज्ञान लाए ध्यान दृष्ट समेटिया सबो जपिया जाप जे मुको बोलेटिया हुक्मे भोजनिहाल सुख सुखेटिया परख खजान पाए ते बहुड़ ना खोटिया। सलोक महला पंजवा विशोहे जंबूर हवे ना वंजन गाखड़े जेसो तनी मलन नान।

आप दया तारी समरथ चुके बिल बलाप नथे ताप दुख रोग पूरे गुर प्रताप कीतियां ने अपनी रख गरीब नवाज थाप आपे लयन छाए बंधन सगल काप तिसन बुझी आस पुन्नी मन संतोख तराप।

जिन सच ना लगो रंग पौड़ी ज्यों ज्यों तेरा हुक्म तिवें त्यों होवना जह जह रखें आप तह जाए खड़ोवना नाम तेरे कै रंग दुरमत धोवना जप जप तुद निरंकार भरम पौ खोवना जो तेरे रंग रत्ती से जोन ना जो

जिन जन त्याया खसम तिन सुख पाया सफल जन्म परवान गुरमुख आया हुक्मै बुझ निहाल खसम फुरमाया जिस हुआ आप किरपाल सो नह परमाया जो जो दिता खसम सोई सुख पाया नानक जिसै दयाल बुझाए हुक्म मित जिसै पलाए आप मर मर जमै।

पौड़ी निंद कुमारे तत्काल हिन टिकन ना दिते प्रभदास का दुख ना खब सकै अर्जोनी जुते मथे वाल पछाड़ियन जम मार्ग मुते दुख लगै बिन लाणिया नरक घोर सुते कंठ लाए दास रखियन नानक हर सत्ते।

आई आवत किने ना पेखियो कमने जाने री बाई कौन कह किन बूझी है रमैया आकुल री बाई रहाउ ज्यों अकाश पंखी अलो खोज निरखियो ना जाई।

पानी लख चौरासी जिन अपाई सो सिमरो निर्वाणी कायक मंडल कापड़ी आरे अठ कायक राही बदत त्रिलोचन सुन रे प्राणी कण बिन गाह के पाही गुजरी अंत काल जो लक्ष्मी सिमरै ऐसी चिंता मह जे मरै सर्प जोन वल वल अवतरै हरी बाई गोविंद नाम।

काल जो लड़के सिमरै ऐसी चिंता मह जे मरै सूकर जोन वल वल अवतरै अंतकार जो मंदर सिमरै ऐसी चिंता मह जे मरै प्रेत जोन वल वल अवतरै अंतकाल नारायण सिमरै ऐसी चिंता मह जे मरै बदत तलोचन ते नर मुक्ता पीतम।

सुखदाई पूर्ण प्रभ करता मेरी बहुत ज्ञान पजरत निर्गुण क्रूप कोलहीन नानक हौ आनंद रूप स्वामी भरत देव गंधारी मन हर कीर्त कर सद हूं गावत सुनत जपत उधारै

ज्यो अपने प्रभ भाव नीच हो नीच नीच अतनाना होए गरीब बलावो रहाओ अनक अडंबर माया के बिरथे तास्यो प्रीत कटावो ज्यो अपनो स्वामी सुख माने ताम है सोभा पावो दासन दास ऋण दासन की जन की टहल कमावो सर्व सुख बड़े

महासुख पायो चिंता रोग बदारियो काम क्रोध लोभ झूठ निंदा साधु संग बसारियो माया बंद काटे कृपा निद नानक आप उधारियो देव गंधारी मन सगल सियान परही करन कराम नहार स्वामी नानक ओट गही रहाओ आप मेट पए सरनाई एह मत साधु कही प्रभु की आज्ञा मान सुख पाया।

हां किल बिख कोट दोख रोगा प्रवदिष्ट तुहारी हाते सोवत जाग हर हर हर गाया नानक गुर चरण पराते।

रहाउ। खोजत खोजत खोज बिचारियो, हर संत जना पह आहा। तिन्हें प्राप्त इहो निधाना, जिनकै कर्म लिखा। ते बड़ भागी ते पतवारी।

आनद सुख कने रह सके दो देव गंधारी पंजवा मन गुरमिल नाम अराध्यो सुख सहज आनंद मंगल रस जीवन का मूल भाद्यो रहाओ कर कृपा अपना दास कीनो काटे माया पाद्यो भाओ भगत गाए गुण गोविंद जम का मार्ग साध्यो भयो अन ग्रहो मिट्यो मूर्चा अमोल पदार्थ लाद्यो बलिहार है नानक लख बेरा मेरे ठाकुर अगम अगा देव देव गंधारी पंजवा माई जो प्रभ के गुण गावे सफले आया जीवन फल ताको पार

जिस लाड लावे देव गंधारी पंजवा चंचल सुपने ही पुर जायो इतनी ना बूझे कब हूं चलना विकल पयो संग मायो रहाओ कुसम रंग संग रस रचिया विखिया एक उपायो लोग सुने मन सुख कर माने बेग तहां उठतायो फिरत फिरत बहुत श्रम पायो संत द्वारे आयो करी कृपा पार ब्रह्म स्वामी नानक लियो समायो देव गंधारी पंजवा।

जाको उपजी छोड़ ना कतहु जाता रहाउ। बैखत हर हर सोवत हर हर हर रस भोजन खाता अठ सठ तीरथ मज्जन कीनो साधु धूरी नाता सफल जन्म।

आय संकट घोर कटे खिन तर नानक हर दर्श समाइय देव गंधारी महला पंजवा ठाकुर होए आप दयाल पई कल्याण आनंद रूप होई है उबरे बाल गोपाल रहाव दुई कर जोड़ करी बेनंती पार ब्रह्म मन त्याया

कृपाल दयाल दुख भंजन मेरा सगल अनेतरा गया रहाउ हम पापी पाखंडी लोभी हमरा गुण अवगुण सब सहया कर मस्तक धार साज निवाजे मुए दुष्ट जो फया पर उपकारी सर्ब सधारी सफल दर्शन सह जया कहो नानक निर्गुण कहो दाता चरण कमल उर धरिया देव गंधारी महला पंजवा अनाथ नाथ प्रभ हमारी।

पाए छोड़ ना जाई सद ही संगे अन दिन गुर मिल गाय रहाउ मिलियो मनोहर सर्ब सुखैना त्याग ना कतहूं जाय अनक अनक भांत बहु पेखे प्रिय रोम ना समसर लाय मंदर भाग शोभ द्वार अनहत रुण चुन लाय कहो नानक सदा रंग

चरण तो उत्तरी सगल दुराच्य देव गंधारी पंजवा अमृता प्रिय बचन तुहारी अत सुंदर मन मोहन प्यारी सब हूँ मद निरारी रहाऊ राज ना चाहो मुक्त ना चाहो मन प्रीत चरण कमलारी।

तरन परियो संत हारिए, कहो नानक प्रभ मिले मनोहर, मन शीतल बिगसारे, देव गंधारी महला पंजवा, हार जाप सेवक पार उतारियो, दीन दयाल भये प्रभ अपने, बहुड़ जन्म नहीं मारियो रहाओ, साध संगम गुण गावे हर के, रतन जन्म नहीं हारियो, प्रभ गुण गाए बिखै बन तरिया, कुल है समूह उधारियो, चरण कमल बसिया रिध पीतर, तास ग्रास उचारियो, नानक ओट गही जगदीश्वर, पुनः पुनः बलिहारियो,

हाल काहे प्रमत हो तुम प्रमहु ना पाई रवियारे रविया सर्वथान ज्यों बैसंतर काष्ट मजार बिन संजम नहीं कार्य सार बिन गुर ना पावे गो हर की को द्वार मिल संगत ताज अभमान कहो नानक पाए है परम निदान।

कर चतुराई बिस्मन बिस्मे कहन कहात गण गंधर्व सिद्ध अरसादक सुर नर देव ब्रह्म ब्रह्मादक चतुर्वेद उचरत दिन रात।

साध पगां हे तरुण तीरे राग देव गंधारी महला पंजवां कर सतवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद सब दिन के सम्राट पंथ बिठले हों बल बल जाओ।

अपनी सी दुर्मत ते ना तरै रहाव मद माया कै भयो बावरू हर जस नह उचरै कर पर पंच जगत को डहकै अपनो उधर भरै स्वान पूछ ज्यों होए ना सूदो कहो ना कान धरै कहो नानक भज राम नाम नित जां ते काज सरै देव गंधारी महला नावा सब किश जीवत को व्यवहार मात पिता भाई सुत बंधप हर फुन ग्रह की नार रहाव तन ते प्राण हो जब न्यारे तीरत प्रेत पकार आद घरी को नह राखै घर ते देत निकार मृग तृष्णा ज्यों जग रचना यह देखो हृदय विचार कहो नानक भज राम नाम नित जहां ते होत उधार देव गंधारी महला नौवां जगत मैं झूठी।

हर रस बीता हर मन प्यारा, मन हर रस नाम चकोले राम। गुरमत मन ठहराइए मेरी जिंदड़िए, अनत ना काहू डोले राम। मन चिंदड़ा फल पाया हर प्रभ, गुण नानक बाणी बोले राम। गुरमत मन अमृत गुठड़ा मेरी जिंदड़िए, मुख अमृत बैन अलाए राम। अमृत बाणी भगत जना की मेरी जिंदड़िए, मन सुनिए हर लिव लाए राम। श्री वचुन्ना हर प्रभ पाया, गल मिलिया सहज सुपाए राम। जन नानक मन आनंद भया है मेरी जिंदड़िए, अनहत शब्द बजाए राम। सखी सहेली मेरिया मेरी जिंदड़िए, कोई हर प्रभ आन मिलावे राम। हौ मन देवो तिसे अपना मेरी जिंदड़िए, हर प्रभ की हर कथा सुनावे राम। गुरमुख सदा अराद हर मेरी जिंदड़िए, मन चिंदड़ा फल पावे राम। नानक भज हर शरनागति मेरी जिंदड़िए, वडभागी नाम त्यावै राम। कर कृपा प्रभ आए मिल मेरी जिंदड़िए, गुरमत नाम परगासे राम। हौ हर बाज उदीनिया मेरी जिंदड़िए, ज्यों जल बिन कमल उदासे राम। गुरपूरै में लाया मेरी जिंदड़िए, हर सज्जन हर प्रभ पासे राम। धन धन गुरु हर दसिया मेरी जिंदड़िए, जन नानक नाम बिगासे राम। राग बिहागड़ा महला चौथा, अमृत हा

राम। मन सुखा हरिया होया मेरी जिंदड़िए, हर हर नाम त्याए राम। हर भाग वड्डे लिख पाया मेरी जिंदड़िए, जन नानक नाम समाए राम। हर सेती मन बेदया मेरी जिंदड़िए, ज्यों बालक लग दुध कीरे राम। हर बिन शांत ना पाईऐ मेरी जिंदड़िए, ज्यों चातरक जल बिन तेरे राम।

फिर मरदा बहुड़ जीव आया राम। जन नानक सतगुरु जो मिले मेरी जिंदड़िए, इनके सब दुख गवाया राम। अत उत्तम हर नाम है मेरी जिंदड़िए, इत जपे पाप गवाते राम। पतत पवित्र गुर हर।

लड़िए भिख पौ जल तारन हारू राम जिन एक मन हर त्याया मेरी जिंदड़िए तिन संत जना जय कारू राम नानक हर जप सुख

गुण गावै हर प्रभु कीरे राम ते सर्वन भले शोभ नीक है मेरी जिंदड़िए हर कीर्तन सुने है हर तेरे राम सो शीस भला पवित्र पावन है मेरी जिंदड़िए जो जाए लगे गुर पैरे राम गुर विट्टो नानक वारिया मेरी जिंदड़िए जिन हर हर नाम च तेरे राम ते नेत्र भले परवान है मेरी जिंदड़िए जो साधु सतगुरु देख है राम ते हस्त पनीत पवित्र है मेरी जिंदड़िए जो हर जस हर हर लेख है राम तिस जन के पग नित पूजिए है मेरी जिंदड़िए जो मार्ग धर्म चले सहै राम नानक तिन विट्टो वारिया मेरी जिंदड़िए हर सुन हर नाम मने सहै राम धरत पाताल आकाश है मेरी जिंदड़िए सब हर हर नाम त्यावै राम पौन पानी वै संतरो मेरी जिंदड़िए नित हर हर हर जस गावै राम वण तृण सब आकार है मेरी जिंदड़िए मुख हर हर नाम।

तेरा जिस अंतर हृदय शुद्ध है मेरी जिंदड़िए तिन जान सब डर सुट कत्ते राम हर निरपो नाम पतीजिया मेरी जिंदड़िए सब झक मारन।

तिनकै संग मल उतरै मेरी जिंदड़िए रंग राते नदर निशाने राम। नानक की प्रभ बेनती मेरी जिंदड़िए मिल साधु संग अगाने राम। हे रसना जप गोविंदो मेरी जिंदड़िए जप हर हर त्रि

जिंदड़िए जन नानक गुरमुख जाता राम शका एक बिहागड़ा महला पंजवा शंत कर पहला।

दयाल की अपर अपारा राम गोपाल दयाल गोविंद लालन मिलहो कंत नमानिया नैन तरसन दर्स परसन नह नींद रैन विहानिया ज्ञान अंजन नाम बिंजन पये सगल शिंगारा नानक पयंपै संत जंपै मेल संत हमारा लाख उलहने मोहे हर जब लग नह मिले राम मिलन को करो उपाव किस हमारा नह चले राम चल चित बित अनित प्रिय बिन कमन विधि ना तीजी है खान पान सिंगार बिरते हर कंत बिन क्यों जीजी है आसा प्यासी रैन दिनियर रह ना सकी है एक तिल है नानक पयम पै संत दासी तो प्रसाद मेरा पिर मिले सेज एक प्रियो संग दर्शना पाई है राम अवगन मोहे अनेक कात महल बुलाई है राम निर्गुण नमानी अनाथ बिनवे मिलहो प्रभ कृपा निधे प्रम पीत खोइय सहज सोइय प्रभ पलक पेखत नाम निधे ग्रह लाल आवे महल पावे मिल संग मंगल गाइय नानक पयम पै संत सरणी मोहे दर्श दिखाइय संतन कै प्रसाद हर हर पाया राम इच पुन्नी मन शांत तपत बुझाया राम सफला सो दिनस रैने सोहावी आनंद मंगल रस घना प्रगटे गोपाल गोविंद लालन कवन रसना गुण भना भ्रम लोभ मोह विकार थाके मिल सखी मंगल गाया नानक पयम पै संत जंपै जिन हर हर संजोग मलाया बिहागड़ा महला पंजवा कर कृपा गुरपार ब्रह्म पूरे अनदिन नाम बखाना राम अमृत बाणी उचरा हर जस मिठा लागे तेरा पाना राम कर दया मया गोपाल गोविंद कोई नाही तुझ बिना समरथ अगत अपार पूरन जियो तन धन तुम मना मूरख मुग्ध अनाथ चंचल बालहीन।

दूर भगतन की मन तन लगो, हर जियो सब पतत पनीता राम, पतता पनीता होए तिन संग, जिन बदाता पाया नाम राते जी दाते, नित देहे चढ़े सो आया, रिद सिद्ध नव निद हर जप, जिन्नी आत्म जीता बिनवंत नानक वड भाग पाई है, साध साजन मीता जिन्नी सच वणंजिया हर जी।

संत प्रसाद तरे पवजल पूर्व लिखिया पाया वजी वधाई मन शांति आई मिलिया पुरख अपारी बिनवंत नानक सिमर हर हर इच पुन्नी हमारी बिहागड़ा महला पंजवां कर दूजा एक ओंकार सतनाम गुर प्रसाद वद सुख रहनड़िए प्रिय प्रेम लगा घट दुख नींदड़िए परसों सदा पगा पग धूर बांचो सदा जाचो नाम रस बैरागनी प्रिय रंग राती सहज माती महा दुरमत त्यागनी गह पुजा लीनी प्रेम पीनी मिलन।

चरण लग है, मन प्रिय प्रेम घना, हर की भगत मंग है, हर भगत पाई है, प्रभ ते आई है, जाहे मिलिए हर जना, मान मोह विकार तजिए, हर पतन तन एहो मना, बड पुरख पूरन गुण संपूर्ण, भ्रम भीत हर हर मिल भगै है।

प्रभ त्यावै धन ते बदभागिया सुख सहज सोवह किल विख खोवह नाम रस रंग जागिया मिल प्रेम रहना हर नाम गहना प्रिय बचन मीठे पाणी।

मन तन रव रहया प्रभ परमानंदा हर कंत अनंत दयाल श्री धर गोविंद पतत उदारनु प्रभ कृपा धारी हर मुरारी भय सिंध सागर तारनु जो शरण आवै तिस कंठ लावै एहो बिरध स्वामी संदा बिनवंत नान।

प्यारी मया धारी कर दया लड़ लाए लीजिए देह नाम अपना जपूं स्वामी हर दर्स पेखे जीजिए समर्थ पूर्ण सदा निश्चल ऊच अगम अपारी।

0: तपत ना कत है बुझे बिन स्वामी सरनाराम। प्रभ सरन तेरी काट बेरी संसार सागर तारी है, नाथ निर्गुण कछ ना जाना।
1: मेरा गुण अवगुण ना बिचारी है,
0: दीन दयाल गोपाल प्रीतम। सम्राट कारण करना नानक चातरक हर बूंद मांगे, जप जीवा हर हर चरना। हमें सरोवरो पियो हर हर नामा राम, संत है संग मिले जप पूर्ण कामा राम। सब काम पूर्ण दुख बदीरन, हर निमख मन हुना बीसरे। आनंद अनदिन सदा साचा, सर्व गुण जगदीसरे। अगणत ऊच अपार ठाकुर, अगम जाको तामा। बिनवंत नानक मेरी इच्छ पूरन, मिले श्री रंग रामा। कई कोटक जग फला, सुन गावन हारे राम। हर हर नाम जपत कुल सगले तारे राम। हर नाम जपत

सद मना, शुभ दिवस आए गह कंठ लाए, प्रभु ऊच अगम अपारी, बिनवंत नानक सफल सब किश, प्रभ मिले अत प्यारी, बिहागरा महला।

गुण गपालना जप है रसना, फिर कदहो से देह आवे, तरवर सुन्ने नह पात जुड़ते, जम मग गौन अकेली।

लेखा धर्म भया तिल पीड़े कहानी राम किरत कमाने दुख सहो पराणी अनक जोन प्रमाया महामोहनी संग राता रतन जन्म गवाया एक सहार के नाम बाजू आन काज सियाणी बिनवंत नानक लेख लिखिया भरम मोहे लोभाणी बीच ना कोई करे किरत घण विछड़ पया आए खरे कठन जम कंकर पकड़ लया पकड़े चलाया अपना कमाया महामोहनी रातिया गुण गोविंद गुरमुख ना जपया तपत थम गल लातिया काम क्रोध अहंकार मूठा खोए ज्ञान पछतापया बिनवंत नानक संजोग भूला हर जाप रसन ना जापया तुझ बिन को नाही प्रभ राखण हारा राम पतत उदारन हर बिरद तुम्हारा राम पतत उदारन सरन स्वामी कृपा निद दयाला अंधकूप ते उधार करते सगल घट प्रतपाला।

मुख कमावनी अलिपत बंधन रहत करता किया अपना पावनी कर अनग्रह पतत पावन बहु जोन प्रमते हारी बिनवंत नानक दास हर का प्रभ जी प्राण आधारी तू समरथ वड्डा मेरी मत थोरी राम पाल है अकिरत घना पूर्ण दृष्ट तेरी राम अगाध बोध अपार करते मोहे नीच कछु न जाना रतन त्याग संग्रहन कौडी पशु नीच इयाना त्याग चलती महाचंचल दोख कर कर जोरी नानक सरन

कल्याण मैं प्रगट भये तीजा सुहावी संग प्रभ कै अपने प्रभ कर लय छोड़ चिंत अचिंत होए बहुड़ दुख ना पाया नानक दर्शन पेख जीवे गोविंद गुण निध गाया।

बिन नाम हर के सुख नहीं, सहस सियाणप अपाव थाके, जह भावत कह जाही, आद अंते मद पूरन सर्वत्र घट घट आही, बिनवंत नानक जिन साध संगम, से पत सेती घर जाही, नरपत जान ग्रहयो सेवक सियाने राम, सर पर विचड़ना मोहे पछताने राम, हर चंदौरी देख भूला कहां अस्थित पाई, बिन नाम हर के आन रचना अहला जन्म गवाई, हों हों करतना त्रिशन बूझै, नह काम पूर्ण ज्ञानी, बिनवंत नानक बिन नाम हर के कीत्या पछताने, तार अनग्रहो अपना कर ली नाराम, पुजा गह काग लियो साधु संग दीना राम, साध संगम हर अरादे सगल कलमल दुख जले, महा धर्म सोदान किरिया संग तेरे से चले, रसना अरादै एक स्वामी हर नाम मन तन पीना, नानक जिसनो हर मलाए

सब लोई। श्लोक महला तीजा, मन प्रतीत ना आईया, सहज ना लगो भाव, शब्द साधना पायो, मन हठ क्या गुण गाय। नानक आया सो प्रवान है, ये गुरमुख सच समाए। महला तीजा, अपना आपना पछाणे मूड़ा, अवरा आख दुखाए, मुंडा दी खसलत ना गईया, अंधे विछड़ चोटा खाए। सतगुर कै भै भन ना घड़ियो, रह अंक समाए, अन दिन सहसा कदे ना चूकै, बिन शब्द दुख पाए। काम क्रोध लोभ अंतर सबला, नित

पाए, गुर का शब्द संभाल तू मूड़े, गत मत शब्दे पाए, नानक सतगुर तद ही पाए, जा विचो आप गवाए पौड़ी, जिस दै चित वसिया मेरा स्वामी, तिसनो क्यों अंदेसा किसै गल दा लोड़ी है, हर सुख दाता सबना गल्लां का, तिसनो त्याए दया केव निमख घड़ी मुंह मोड़ी है, जिन हर त्याया तिसनो सर्ब कल्याण होए, नित संत जना की संगत जाए बहिया मुंह जोड़ी है, सब दुख भुख रोग गए हर सेवक के, सब जन के बंधन तोड़ी है, हर कृपा ते हुआ हर भगत, हर भगत जना कै मुहे दिठै, जगत तरिया सब लोड़ी है। श्लोक महला तीजा, सारस ना जल जाओ, जिन हर का स्वाओ ना पाया, नानक रसना शब्द रसाए, जिन हर हर मन वसाया। महला तीजा, सारस ना जल जाओ, जिन हर का नाओ वसारिया, नानक गुरमुख रसना हर जपै, हर कै नाए प्यारिया पौड़ी, हर आपे ठाकुर सेवक भगत, हर आपे करे कराए, हर आपे वेखै विगसै आपे, जित पावै तित लाए, हर इक ना मार्ग पाए आपे, हर इक ना उजड़ पाए, हर सच्चा साहिब सचत पावस, कर वेखै चलत सुबाए, गुर

आई बंधन तोड़ै सच वसै अज्ञान अंधेरा जाय सब किस देखै तिसै का जिन किया तन साज

जगत उपाया करत दान सबना कौ दिया आपे सेव बनायन गुरमुख आपे अमृत पिया आप निरंकार आकार है आपे आपे करै सो थिया। श्लोक महला तीजा गुरमुख प्रभ सेवह सद साचा अन दिन सहज प्यार सदा आनंद गावह गुण साचे अर्ध उर्ध उर धार अंतर प्रीतम वसिया तुर कर्म।

ना पाई हन दिन रह सदा गुण गाय बिन कर्म किने ना पायु भौंक मोए बिल लाई गुर कै शब्द मन तन भिजै

सब शास्त आप कथै आप पीजै आपे ही बह पूजे करता आप परपंच करीजै आप परविरत आप निर्विरति आपे अकाथक थीजै आपे पुन सब आप कराए आप लिप्त वर्तीजै आपे सुख दुख देवै करता आपे बख्श करीजै। श्लोक महला तीजा। सेका अंदर हो जोर छाड़ तू पहो कर चल गवाए गुर कै भै केते निस्तरे भै विच निरभउ पाए मन कठोर शब्द भेद तू शांत वसै मन आए शांति विच कार कमावनी सा खसम पाए थाए नानक काम करो।

खंडन आपे सब कट भोग वै स्वामी आपे ही सब अंजन आप विवेक आप सब बेता आपे गुरमुख भंजन जन नानक सलाहे ना रजै तुद करते तू हर सुखदाता वडन सलोक महला चौथा बिन सतगुर सेवे जी के बंदना जेते कर्म कमाहे बिन सतगुर सेवे खबर ना पावही।

हरस्यों प्रीत उपजै, माया मोह जलावै, गुर प्रसादी दुबदा मरै, मनुआ अस्थिर संध्या करे विचार। नानक संध्या करै मनमुखी जियो ना टिकै, मर जम्मै होए खुआर महला तीजा। प्रियो प्रियो करती सब जग फिरी, मेरी प्यास ना जाए। नानक सतगुर मिलिया मेरी प्यास गई, फिर पाया घर आए पौड़ी। आपे तंत परम तंत सब आपे, आपे ठाकुर दास भया। आपे दस अठ वर्ण उपायन, आप ब्रह्म आप राज लया। आपे मारे आपे छोड़े, आपे बख्शे करे दया। आप अभुल ना भुलै कबही, सब साचत पावस सच थिया। आपे जिन्ना बजाए गुरमुख, तिन अंदरों दूजा भरम गया।

गुर प्रसादी जीवत मरै हुक्मै बूझै सोय नानक ऐसी मरनी जो मरै ता सद जीवन होए पौड़ी जा आप कृपाल होए हर स्वामी ता अपना नाउ हर आप जपावै आपे सतगुर मेल सुख देवै अपना सेवक आप हर भावै अपनिया सेवकां की आप पैज रखै अपनिया भगतां की पैरी पावै धर्म राए है हर का किया हर जन सेवक नेड़ ना आवै जो हर का प्यार

अगम अगोचर अत वड्डा अतुल ना तुलिया जाय, कीमत किनै ना पाइया कितै ना लया जाय। गुर कै शब्द भेदिया इन बिद वसिया मन आय, नानक आप अमेव है गुर किरपा ते रहिया समाय। आपे मिलिया मिल रहिया

चूड़ा भन पलंग स्यो मुंदे सन बाही सन बाह एते वेश करेंदिए मुंदे सहो रातो अबराह ना मनियार ना चूड़िया ना से बंगड़िया जो सह कंठ ना लगिया जलन से बाहड़िया सब सहिया सहो रावण गईया हों धाती कै दर जावा अम्माली हों खरी सुचजी तै सह एक ना पावा माठ गुंदाई पट्टिया भरिए मांग सदूरे अगे गई ना मनिया मरो वसूर वसूरे मैं रवंदी सब जग रुन्ना रुनने बणो पंखेरू एक ना रुन्ना मेरे तन का बिरहा जिन्हो पिरहो विछोड़ी सुपने आया पी गया मैं जल भरिया रोए आए ना सका तुझ कन प्यारे भेज ना सका कोई।

मिलाया, पूरे सतगुर हर नाम त्याया रहाय। ब्रह्म वेद बाणी परगासी, माया मोह पसारा, महादेव ज्ञानी वरतै घर अपने, तामस बहुत अहंकारा।

मैं निर्गुण बख्श नानक वेचारा वडहंस महला चौथा कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद मैं मन वड्डी आस हरे क्यों कर हर दर्शन पावा हौ जाए पुछा अपने सतगुर है गुर पुछ मन मुग्ध समझावा भूला मन समझै गुर शब्दी हर हर सदा त्याए नानक जिस नदर करे मेरा प्यारा तो हर चरणी चित लाए हौ सब वेश करी फिर कारण जे हर प्रभ साचे पावा

आप खाले जिसनो नदर करे मेरा प्यारा सो हर हर सदा संभाले सो हर हर नाम सदा सदा संभाले जिस सतगुर पूरा मेरा मिलया नानक हर जन हर इक्के होए हर जप हर सेती रलिया वडहंस महला पंजवां घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद अत ऊंचा ताका दरबारा अंत नाही किश पारा वारा कोट कोट कोट लख तावै एक तिल ताका महल ना पावे सहावी कौन सो वेला जित प्रभ मेला रहाव लाख भगत जाको आराध है लाख तपीसर तप ही साध है लाख जोगीसर करते जोगा लाख पुगीसर भोग है भोगा कट कट वस है जान है थोरा

संतन पह आया दुख भ्रम हमारा सगल मताया महल बुलाया प्रभ अमृत पूंचा कहो नानक प्रभ मेरा ऊंचा वडहंस महला पंजवां धन सो वेला जित दर्शन करना।

रहाओ सच मंत्र तुम्हारा अमृत बाणी शीतल पुरख दृष्ट सुजानी सच हुक्म तुम्हारा तख्त निवासी आए न जावे मेरा प्रभ अविनाशी तुम मेहरवान दास हम दीना नानक साहिब भरपुर लीना।

जाति जिसह जनाब हो तिनह तुम जाति सदा सदा जाई बलिहारी इत उत देखो ओट तुम्हारी मोहे निर्गुण गुण किशु ना जाता नानक साधु देख मन राता वडहंस महला पंजवा अंतर जामी सो प्रभ पूरा दान दे साधु की तूरा कर कृपा प्रभ दीन दयाला तेरी ओट पूर्ण गोपाला रहाव जल तल महियल रहे आपर पूरे निकट वसै नाही प्रभ दूरे जिसनो नदर करे सो त्याए आठ पैर हर के गुण गाए जी जंत सगले प्रत पारे सरल परे हो नानक हर द्वारे बड़ा हंस महला पंजवा तू वड दाता अंतर जामी सब मह रविया पूर्ण प्रभ स्वामी मेरे प्रभ प्रीतम नाम अधारा हौ सुन सुन जीवा नाम तुम्हारा रहाव तेरी शरण सतगुर मेरे पूरे मन निर्मल होए संता तूरे चरण कमल हृदय उरतारे

अंतर भूख न उतरे अमाली। जे सौ भोजन मैं नीरे मेरा मन तन प्रेम पिरम का, बिन दर्शन क्यों मन धीरे। सुन सज्जन मेरे प्रीतम भाई,

तिस बिन रह ना सका। ज्यों चातरक जल को बिल लाता, हों क्या गुण तेरे सार संभाली। मैं निर्गुण को रख लेता, हों भई उड़ीनी कंत को अमाली। सो पेर कद नैनी देखा, सब रस भोगण विसरे, बिन पिर कितै ना लेखा। इहो कापड़ तन ना सखावई, कर ना सको हों वेसा। जिन्नी सखी लाल रावया प्यारा, तिने आगै हम आदेसा। मैं सब शिंगार बनाया अमाली, बिन पिर काम ना आए। जां सह बात ना पुछिया अमाली, तां बिरथा जोबन सब जाए। तन तन ते सुहागणी अमाली, जिन सहो रहया समाए। हों वारिया तिन सुहागणी अमाली, तिन के धुआं सद पाए। जिचर दूजा भरम सा अमाली।

सच रती तन मन सच्चा होए बिन साचे होर सलाहना जात है जन्म सब खोए सच खेती सच बीजना साचा वापारा अन दिन लाहा सच नाम धन भगत भरे भंडारा।

वारी खसम कढ़ाए किरत कमावना, मंदा किसे ना आख झगड़ा पावना, नह पाए झगड़ा स्वाम सेती आप आप वन्यावना।

वारी खसम कढाए किरत कमावना सब उपायन आप आपे नदर करे कौड़ा कोई न मांगे मीठा सब मांगे सब कोई मीठा मांग देखे खसम भावे सो करे किश पुन दान अनेक करनी नाम तुलना समसरे नानका जिन नाम मिलया कर्म होवा तुर कदे सब उपायन आप आपे नदर करे बड़हंस महला पहला करहो दया तेरा नाम बखाना सब उपाय आप आपे सर्ब समाना सर्बे समाना आप तू है उपाय तंदे लाइया एक तुझ ही किए राजे किकना भिख पवाइया लोभ मोह तुझ पिया मीठा एत भरम भलाना सदा दया करो अपनी ताम नाम वखाना नाम तेरा है साचा सदा मैं मन पाना दुख गया सुख आए समान गावन सुर नर सुगड़ सुजान सुर नर सुगड़ सुजान गावह जो तेरे मन भावहे माया मोहे चेतह नाही अहला जन्म गवावहे एक मूड मुग्ध।

कब हो ना जावे, राजो ता तेरा सदा निहचल, एहो कब हो ना जावे, चाकर ता तेरा सोए होवे, जोए सहज समावे, दुश्मन ता दुख ना लगे मूले, पाप नेड़ ना आवे, हों बलिहारी सदा हुआ, एक तेरा नावे, जुगा जुगंतर भगत तुम्हारी।

रंग रत्ती मुइये सुभावंती नारे सच्चा शब्द मिल रही मुइये फिर रावे पाए प्यारी सच्चा पाए प्यारी कंत सवारी हर हर त्यों ने हो रचाया आप गुआया ता फिर पाया गुर कै शब्द समाया सा धन शब्द सुहाई प्रेम कसाई अंतर प्रीत प्यारी नानक सा धन मेल लई पिर आपे साचै साहि सवारी निर्गुण वंतड़िए पिर देख हदूरे राम गुरमुख जिन्नी रावया मुइये फिर रव रहया भरपूरे राम फिर रव रहया भरपूरे वेख हजूरे जुग जुग एको जाता तन बाली भोली फिर सहज रावै मिलया कर्म विधाता जिन हर वस चाखिया शब्द सुभाखिया हर सर रही भरपूरे नानक कामन सा फिर भावै।

नानक हर की भगत नराली गुरमुख विरलै कीजै गुरमुख खेती हर अंतर बीजी हर लीजै शरीर जमाए राम अपने घर अंदर रस पुंच तू लाहा लै परथाए राम लाहा परथाए हर मन वसाए धन खेती वापारा हर नाम ते आए मन वसाए।

नानक नाम बीज मन अंदर सच्चै शब्द सुपहाय हर व्यापार से जन लागे जिन्ना मस्तक मणि वडभागो राम गुरमति मन निज कर वसिया सच्चै शब्द बैरागो राम मुख मस्तक भागो सच बैरागो साच रते विचारी नाम बिना सब जग बौराना शब्दे हूं मैं मारी साचै शब्द लाग मत उपजै गुरमुख नाम सुहागो नानक शब्द मिले पहु पंजन हर रावै मस्तक भागो खेती वणज सब हुक्म है हुक्मे मन वडियाई राम गुरमति हुक्म बूझियै हुक्मे मेल मलाई राम हुक्म मलाई सहज समाई गुर का शब्द अपारा सच्ची वडियाई गुर ते पाई सच सवार नहारा पौ भंजन पाया आप गवाया गुरमुख मेल मलाई कहो नानक नाम निरंजन अगम अगोचर।

सत्य शब्द लिव लाए सदा सच रत्ता मन निर्मल आमन जान रहाय। दूजे पाए भरम भगुती मन मुख मोही जमकाल कह नानक सुन मन मेरे तू सदा सच संभाल। मन मेरिया अंतर तेरे निदान है बाहर वस्त ना पाल जो भावे सो पुंच तू गुरमुख नदर निहाल। गुरमुख नदर निहाल मन मेरे अंतर हर नाम सिखाई मनमुख अंधले ज्ञान विहूने दूजे पाए खुआई। बिन नावे को छूटे नाही सब बाधी जमकाल नानक अंतर तेरे निदान है तू बाहर वस्त ना पाल। मन मेरिया जन्म पदार्थ पाए कै एक सच लगे वापारा सतगुर सेवन अपना अंतर शब्द अपारा। अंतर शब्द अपारा हर नाम प्यारा नामे नौ निद पाई

वापारा खोटे खरे सब परखियन तित सच्चे कै दरबारा राम खोटे दरगहा सुटियन उभे करन पुकारा राम उभे करन पुकारा मुग्ध गुवारा मन मुख जन्म गवाया विख्या माया जिन जगत पुलाया साचा नाम ना पाया मन मुख संता नाल वैर कर

से आखी है, और करना किछु ना जाई राम। जित भावै तित लाए सी, ज्यों तिस दी वडियाई राम। ज्यों किस दी वडियाई आप कराई, वरियाम ना फुसती कोई। जगजीवन दाता कर्म विधाता, आपे बक्के सोई। गुर प्रसादी।

रसना हर रस पीजै राम, रसना हर रस पीजै अंतर पीजै, साच शब्द बीचारी अंतर खूटा अमृत भरिया, शब्दे काड पीए पनिहारी, जिस नदर करे सोई सच लागे, रसना राम रबीजै, नानक नाम रते से निर्मल, होर हौ मैं मैल परिजै, पंडित ज्योत की सब पढ़ पढ़ कूक दे, किस पह करह पुकारा राम, माया मोह अंतर मल लागे, माया के वापारा राम, माया के वापारा जगत प्यारा, आवन जान दुख पाई, बिख का कीड़ा बिख स्यों लागा, बिष्टा माही समाई, जो तुर लिखिया सोए कमावे, कोए ना मेटन हारा, नानक नाम रते तिन सदा सुख पाया, होर मूरख कूक मोए गावारा, माया मोहे मन रंगिया, मोहे सुध न काई राम, गुरमुख इहो मन रंगी है, दूजा रंग जाई राम, दूजा रंग जाई साच समाई, सच भरे पन

सेवा लागे सेवट भागे जुग जुग एको जाता जात सत संयम कर्म कमावे बिन गुर गत नहीं पाई नानक तिसनो शब्द बुझाए जो जाए पवे हर सरनाई जो हर मत दे सा उपजे होर मत ना काई राम अंतर बाहर एक तू आपे देहे बुझाई राम आपे देहे बुझाई अवर ना पहाई गुरमुख हर रस चाखिया दर साचै सदा है साचा साचै शब्द सुभाखिया घर मह निज घर पाया सतगुरु दे वडाई नानक जो नाम रते सेई महल पाए मत प्रवान सच साई वडहंस महला चौथा शंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरा मन सतगुर प्रीत लगाई राम हर हर

जप हर हर नाम भिक्षे राम, जप हर हर नाम कमल पर गास्ते, हर नाम नमंग निद पाई, हूं मैं रोग गया दुख लाथा, हर सहज समाद लगाई, हर नाम वडाई सतगुर ते पाई, सुख सतगुर देव मन परसते, हूं जीवा सतगुर देख सरसे, कोई आण मलावे, मेरा सतगुर पूरा राम, हों मन तन देवा, तिस काट शरीर राम, हों मन तन काट काट तिस दे, जो सतगुर बचन सुनाए, मेरा मन बैराग भया बैरागी, मिल गुर दर्शन सुख पाए, हर हर कृपा करो सुख दाते, देहो सतगुर चरण हम धूरा, कोई आण मलावे, मेरा

0: मेरा अंत सखाई राम। हर हर नाम मेरा अंत सखाई, गुर सतगुर नाम दृढ़ाया।
1: जिथे पुत कलत्र कोई बेली नाही,
0: तिथे हर हर नाम छड़ाया। तन तन सतगुर पुरख निरंजन, जित मिल हर नाम त्याई। मेरा सतगुर मेरा सतगुर प्यारा, मैं गुरबिन रहन ना जाई। जिन्नी दर्शन जिन्नी दर्शन, सतगुर पुरख ना पाया राम। तिन निफल जन्म, सब बिरथा गवाया राम। निफल जन्म तिन बिरथा गवाया,
1: ते साकत मोए मर चूरे।
0: कर हुंदै रतन पदार्थ भूखे, भागहीन हर दूरे। हर हर तिनका दर्शन।

सतगुरु पुरख ना पाया हम चातरक दीन हर पास बेनंती राम गुर मेल गुर मेल मेरा प्यारा हम सतगुर करह भगती राम हर हर सतगुर करह भगती जा हर प्रभ कृपा तारे मैं गुर बिन अवर ना कोई बेली गुर सतगुर प्राण हमारे कहो नानक गुर नाम दृढ़ाया हर हर नाम हर सती हम चातरक दीन हर पास बेनंती वडहंस महला चौथा हर कृपा कर सतगुर मेल सुखदाता राम हम पूछे हैं सतगुर पास हर बाता राम सतगुर पास हर बात पूछे हैं जिन नाम पदार्थ पाया पाए लगे हैं नित करह बेनंती गुर सतगुर पंथ बताया सोई भगत दुख सुख समत कर जाने हर हर नाम हर राता हर कृपा कर गुर सतगुर मेल सुख दाता सुन गुरमुख नाम सब बिनसे हूं मैं पापा राम जप हर हर नाम लथे अड़े जग तापा राम हर हर नाम जिन्नी अरादया तिनके दुख पाप नवारे सतगुर ज्ञान खड़ग हाथ दीना जम कंकर मार बिदारे हर प्रभ कृपा धारी सुख दाते दुख लाते पाप संतापा सुन गुरमुख नाम सब बिनसे हूं मैं पापा जप हर हर नाम मेरा मन पाया राम मुख गुरमुख जप सब रोग गवाया राम गुरमुख जप सब रोग गवाया अरोगत भये शरीरा अनदिन सहज समाद हर लागी हर जपया गहर गंभीरा जात अजात नाम जिन त्याया इन परम पदार्थ पाया जप हर हर नाम मेरा मन पाया हर तारु हो कृपा।

आया तू दुख भंजन सर्व सुख दाता हम पाथर तरे तराया सतगुर भेट राम रस पाया जन नानक नाम उधारी हर धारहु हर धारहु कृपा कर कृपा लेहु उबारे राम वडहंस महला चौथा घोड़िया एक ओंकार सतगुर प्रसाद देहे तेजन जी राम उपाइया राम धन मानस जन्म पुन पाइया राम मानस जन्म वड पुन्ने पाया देहे सो कंचन चंगड़िया गुरमुख रंग चलूला पावे हर हर हर नव रंगड़िया एहे देहे सो बांकी जित हर जापी हर हर नाम सुहाविया वडभागी पाई नाम सुखाई जन नानक राम उपाइया देह पावो जीन बुज चंगा राम चढ़ लंगा जी विखम भोए अंगा राम विखम भोए अंगा अंत तरंगा गुरमुख पार लंघाए हर बोहत चढ़ बड़ भागी लंघे गुर खेवट शब्द तराय अन दिन हर रंग हर गुण गावे हर रंगी हर रंगा जन नानक निर्वाण पद पाया हर उत्तम हर पद चंगा कड़ियाल मुखे गुर ज्ञान दृढ़ाया राम तन प्रेम हर चाबक लाया राम तन प्रेम हर हर लाए चाबक मन जिने गुरमुख जीतिया अकड़ो कढ़ावे शब्द पावे अपेओ हर रस पीतिया सुन श्रवण बाणी गुर बखाणी हर रंग तुरी चढ़ाया महामार्ग पंथ बिखड़ा जन नानक पार लंघाया घोड़ी तेजन देहे राम उपाइया राम जित हर प्रभ जापै सा धन तन दुखाइया राम जित हर प्रभ जापै सा धन सब आसै तुर पाया किरत जुड़ंदा चढ़ दे हड़ घोड़ी बिखम लंघाए मिल गुरमुख परमानंदा हर हर काज रचाया पूरे मिल संत जना जानी आई जन नानक हर वर पाया मंगल मिल संत जना वाधाई बड़ा

राम जाड़ हर हर नाम रतन्ना राम जाड़ नाम रतन गोविंद पाया हर मिले हर गुण सुख घनी गुर शब्द पाया हर नाम त्याया बड़भागी हर रंग हर बाणी हर मिले स्वामी अंतर जामी हर नव तन हर नव रंगिया नानक बखाने नाम जाने हर नाम हर प्रभ मंगिया कड़ियाल मुखे गुर अंकस पाया राम मन मैगल गुर शब्द वस आया राम मन वसगत आया परम पद पाया सा धन कंत प्यारी अंतर प्रेम लगा हर सेती कर सो है हर प्रभ नारी हर रंग राती सहजे माती हर प्रभ हर हर पाया नानक जन हर दास कहत है वडभागी हर हर त्याया देह घोड़ी जी जित हर पाया राम मिल सतगुर जी मंगल गाया राम हर गाए मंगल राम नामा हर सेव सेवक सेवकी प्रभ जाए पावे रंग महली हर रंग माने रंग की गुण राम गाए मन सुपहाय हर गुरमति मन त्याया जन नानक हर कृपा तारी देह घोड़ी चढ़ हर पाया राग बड़ा हंस।

गुरमंत्र शब्द सच दीता राम, सच शब्द ते आया मंगल गाया, चूके मनो अदेसा सो प्रभ पाया कतह ना जाया, सदा सदा संग बैसा प्रभ जी भाणा सच्चा माणा, प्रभ हर तन सहजे दीता कहो नानक तिस जन बलिहारी, तेरा दान सबनी है लीता तौ भाणा ता त्रिपत अगाए राम, मन थिया ठंडा सब तृष्ण बुझाए राम, मन थिया ठंडा चूकी डंजा पाया बहुत खजाना, सिख सेवक सब पुंचन लगे हौ सतगुर कै कुर्बाना, निरभउ भये खसम रंग राते जम की त्रास बुझाए

0: तुद सलाही।
1: गुण अवगण मेरा किसना बिचारिया,
0: बख्श लिया खिन माही। नौ निद पाई बजी वधाई, वाजे अनहद तूरे कहो नानक मैं वर घर पाया। मेरे लाथे जी सगल वसूरे, सलोक क्या सुनेंदो कूड़, वंजन पवन चलारिया। नानक सुनियर ते परवान, जो सुनेंदे सच धनी चंत, तिन घोल कमाई जिन प्रभ श्रवणी सुनिया राम। ते सहज सुहेले जिन हर हर रसना भणिया राम, ते सहज सुहेले गुण अमोले जगत उदारने आए। पै बोहित सागर प्रभ चरना, केते पार लंघाए। जिन कौ कृपा करी मेरे ठाकुर, तिनका लेखा ना गणया। कहो नानक तिन कोल कमाई, जिन प्रभ श्रवणी सुनिया। सलोक लोइन लोई डिठ, प्यास ना बुझै मूह घणी। नानक से अखड़िया बेअन, जिन्नी दसंदो मा पेरी संत। जिन्नी हर प्रभ डिठा, तिन कुरबाणे राम। से साची दरगाह पाणे राम, ठाकुर माने से परधाने। हर सेती रंग राते, हर रसै अगाए। सहज समाए घट घट रमैया जाते, से सज्जन संत से सुखिए। ठाकुरे अपने पाणे, कहो नानक जिन हर प्रभ डिठा, तिनकै सद कुरबाणी। सलोक देह अंधारी अंध, सुनी नाम विहूणिया। नानक सफल जनम, जय घट गुठा सच धनी चंत। तिन खनिया वन्या, जिन मेरा हर प्रभ डिठा राम। जन चाख अगाणी, हर हर अमृत मीठा राम। हर मने मीठा प्रभु तूठा, हमें बूठा सुख पए। दुख नास भरम बनास तन ते, जप जगदीश ईसह जय जय। मोह रहत विकार थाके, पंच ते संग तूटा। कहो नानक तिन खनिया वन्या, जिन घट मेरा हर प्रभु बूठा। सलोक जो लड़ींदे राम, सेवक से कांडिया। नानक जाने सत, साई संत ना बाहरा शंत। मिल जल जलह खटाना राम, संग ज्योति ज्योत मलाना राम। समाए पूर्ण पुरख करते, आप आपह जानिए। तह सुन सहज समाद लागी, एक एक वखाणिए। आप गुप्ता आप मुक्ता, आप वखाना। नानक भ्रम पै गुण बिनासे, मिल जा

मन इच्छेड़ा फल पाइय राम, मन इच्छ पाइय प्रभ त्याइय, मिट है जम के त्रासा, गोविंद गाया साध संगाया, पई पूर्ण आसा, तज मान मोह विकार सगले, प्रभु कै मन पाइय, बिनवंत नानक दिन सरैणी, सदा हर हर त्याइय, दरवाजे है अनहत वाजे राम, घट घट हर गोविंद गाजे राम, गोविंद गाजे सदा बिराजे, अगम अगोचर ऊंचा, गुण बेअंत किस कहन ना जाई, कोई ना सकै पहुंचा, आप अपाए आप प्रतपाले, जी जंत सब साजे, बिनवंत नानक सुख नाम भगती, दर वजह है अनहद वाजे, राग बड़ा हंस महला पहला, घर पंजवा अलाहनिया, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, धन सरंदा सच्चा पातशाह, जिन जग धंदै लाया, मोहलत पुन्नी पाई भरी, जानी अड़ा घत चलाया, जानी घत चलाया लिखया आया।

गुरुमुखमाय धन सरंदा सच्चा पातशाह जिन जग तंदै लाया साहिब सिमरहो मेरे भाई हो सबना एहो पयाण इथै तंदा कूड़ा चार देहां आगै सर पर जाण आगै सर पर जाना ज्यों मेहमान काहे गार्ग कीजै जित सेवै दरगाह सुख पाइय नाम तिसै कालीजै आगै हुक्म न

ऐथे आया सब को जासी, कूड़ करहो अहंकारो, नानक रुन्ना बाबा जानिए, जे रोवे लाए प्यारो, वड़ांस महला पहला, आव हो मिल हो सहेली हो, सचड़ा नाम लए हां, रोवे है बिरहा तन का, अपना साहेब संभाले हां, साहेब संभाले हैं पंथ निहाले हैं, असा पे उते जाना, जिसका किया तिन ही लिया, हुआ तिसे का पाणा, जो तिन

हारेवा रुवे माया मुठड़ी धंधड़ा रूवण हारेवा धंधा रुवे मैल ना धोवे सुपनंतर संसारू ज्यो बाजीगर पर मैं भूले झूठ मुठी अहंकारू आपे मार्ग पावन हारा आपे कर्म कमाई नाम रते गुरपूरे राखी नानक सहज सुपहाई वडहंस महला पहला बाबा आया है उठ चलना एहो जग झूठ पसार होवा सच्चा घर सचड़ै सेवी।

अपने कंत संभाल है, ना कदे लग्या विजोगो, सचड़ा फिर सलाही है, सब किश करने जोगो, सचड़ा साहिब शब्द पछाणी है, आपे लए मलाई, सा धन प्रिय कै रंग रत्ती, विचों आप गवाई फिर काल ना खाई, गुरमुख एको जाता, कामन इच पुन्नी अंतर भिन्नी, मिलिया जग जीवन दाता, शब्द रंग राती जोब नमाती, फिर कै अंक समाए, सचड़ा साहिब शब्द पछाणी है, आपे लहे मलाए, जिन्नी अपना कंत पछाणिया, औतिन पूछो संता जाए, आप छोड़ सेवा करे, फिर सचड़ा मिले सहज सुपहाय, फिर सच्चा मिले आए साच कमाए, साच शब्द धन राती, कदे ना रांड सदा सुहागण, अंतर सहज समाधि, फिर रहया परपूरे वेख हदूरे, रंग माणे सहज सुपाए, इन्नी अपना कंत पछाणिया, आउ तिन पूछो संता जाय, फिरों विचुनिया भी मिलहै, जे सतगुर लाग है साचे पाए, सतगुर सदा दयाल है, अवगुण शब्द जलाए, अवगुण शब्द जलाए, दूजा भाव गवाए, सच्चे ही सच राती, सच्चा शब्द सदा सुख पाया, हम मैं गई परांति, फिर निर्मायल सदा सुख दाता, नानक शब्द मलाए, फिर हम चुनिया भी मिल है, जे सतगुर लाग है साचे पाए, बढ़ा

प्रेम समाय जिन्हें अपना पिर नहीं जाता कर्म विधाता कूड़ मुठी कूड़े आरे सुने हो कंत मेहली हो फिर सेवे हो शब्द विचारे सब जागे आप।

पिर नाले गुर प्रसादी साचा पिर मिले अंतर सदा संभाले फिर अंतर संभाले सदा है नाले मन मुख जाता दूरे इहो तन रुलै रलाया काम ना आया जिन खसम ना जाता हदूरे नानक सा धन मिले मलाई फिर अंतर सदा संभाले फिकरो वह फिर है विछुनिया अंधी ना जाने फिर है नाले।